ए हमारे परवरदिगार, अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो हमारी गिरफ्त न फरमाइए, और ए हमारे परवरदिगार, हम पर इस तरह का बोझ न डालिए जैसा आपने हमसे पहले लोगों पर डाला था, और ए हमारे परवरदिगार, हम पर ऐसा बोझ न डालिए जिसे उठाने की हम में ताकत न हो, और हमारी खताओं से दरगुजर फरमाइए, हमें बख्श दीजिए और हम पर रहम फरमाइए, आप ही हमारे हामी व नासिर हैं, इसलिए काफिर लोगों के मुकाबले में हमें नुसरत अता फरमाइए। तो सामने इस दुआ या इस आयत के शान नुज़ूल के हवाले से ये बात काफ़ी अहम है कि इस्लाम आसानी का दीन है, दिल के बात पर पकड़ाव या मुआखजा नहीं होगा, और इसलिए अल्लाह ताला ने दुआ हमें इस तरह की तलकीन की है कि ए हमारे रब, हम पर वो बोझ न डाल जैसा तूने हमसे पहले लोगों पर डाला था, यानी वो बोझ न डाल जिसकी हम में ताकत नहीं। और हाँ, अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं तो हम ऐसे हालात में भी ये दुआ पढ़ सकते हैं, अपनी ख़ताओं, कमज़ोरियों और मुश्किलात के साथ हमेशा अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए, क्योंकि वही कारसाज़ और मददगार है। आइए हम सब मिलकर ये दुआ पढ़ें।

प्यारे बच्चों ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सभी को इखलाकी कहानियाँ नहायत पसंद हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलचस्प और सबक आमोज कहानियाँ जिसमें छुपे हैं आपके लिए मजेदार कीमती सबक। जी हाँ, ये है सुनो और सीखो, जहाँ हर कहानी आपको हंसा भी देगी, सिखा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? नोमी ने अपनी अम्मी से पूछा, जो सुबह नाश्ते की तैयारी कर रही थी। क्यों नहीं बेटा, बिल्कुल मदद कराओ, अम्मी ने खुश होकर कहा। एक काम करो, बोरी से आटा निकाल लो और बर्तन धो दो, उन्होंने हिदायत दी। खुशी से नोमी आटे की बड़ी बोरी के पास गया, लेकिन बोरी उसकी तवक्को से कहीं ज्यादा भारी थी। उसने बोरी उठाने की कोशिश की, लेकिन वो गिर गई और आटा हर जगह बिखर गया। पूरा किचन सफेद धुन में डूब गया और नोमी साहब खुद भी आटे में लथपथ होकर एक सफेद भूत की तरह दिखने लगा। मुझे माफ कर दें अम्मी, मैं तो सिर्फ मदद कराना चाह रहा था, नोमी ने अफसरदगी से कहा। उफ़ अल्लाह, तुमने तो मेरा काम बढ़ा दिया नोमी, अब मुझे

0: क्या आप सुन सकते हैं?
1: ये है फ्यूचर की आवाज, कतर का कल, क्लीन ग्रीन एंड फुल ऑफ लाइफ। ये कल कोई सपना नहीं है, इट्स अ प्रॉमिस, प्रॉमिस ऑफ कतर नेशनल विजन 2030। और इस प्रॉमिस को रियलिटी बनाने का सफर वही है कतर ग्रीन बीट। हम कैसे बदलेंगे, कैसे इनोवेट करेंगे, कौन से छोटे स्टेप्स बिग इंपैक्ट्स लाएंगे,

0: How can you make a difference?
1: From smart cities to saving precious water, desert ko green karne ki ideas se lekar sustainable living tak, hum explore karenge har green corner of Qatar. Matlab simple tips, cool hacks, inspiring stories from Qatar.
2: सोचो मत, जुड़ जाओ, be part of the conversation जो कतर को बना रहा है leader in sustainability. Tune into Qatar Green Beat with A for Amita. Future की आवाज आज सुनो सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी. अस्सलाम वालेकुम, FM 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूँ अमिता आपके साथ और आपके लिए लेकर आई हूँ कतर ग्रीन बीट का एक नया नवेला एपिसोड. जब भी हम कतर ग्रीन बीट की बात करते हैं तो कुछ चीजें हमारी जिंदगी से ऐसे नजदीकी से जुड़ जाती हैं कि हमको लगता है कि इस पूरे एनवायरनमेंट को, इस पूरे वो कहते हैं ना एटमॉस्फेयर को, हम ही बचा सकते हैं. वेल, आज का एपिसोड भी काफी इंटरेस्टिंग है. जब भी हम अपने प्लैनेट को बचाने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आते हैं लैब्स में बैठे साइंटिस्ट या कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पसीना बहाते इंजीनियर्स. सही बताओ, आते हैं ना यही दिमाग में? लेकिन जरा सोचिए कि अगर बदलाव का सबसे ताकतवर जरिया कोई सोलर पैनल नहीं बल्कि एक पेंट ब्रश हो तो फिर क्या हो? या रद्दी में फेंका हुआ रिसाइकल प्लास्टिक का एक टुकड़ा. आज हम क्रिएटिविटी और कंजर्वेशन के उस अनोखे मोड़ पर हैं जहां आर्ट दुनिया को बदलने की ताकत रखता है. कॉर्निश पर बनी उन ऊंची और चमकती स्कल्पचर से लेकर मुशर्रफ की मॉडर्न गैलरीज तक कतर अब सस्टेनेबिलिटी का एक बेहतरीन कैनवस बन चुका है. आज के एपिसोड इको आर्ट में हम डाइव करेंगे एक ऐसी दुनिया में जहां आर्ट सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं लगता बल्कि वेस्ट को मास्टरपीस में बदल कर हमारे एनवायरमेंट की आवाज बन रहा है. तो कुर्सी की अपनी पेटी बांध लो, हाँ, और जहाँ कहीं भी हो इत्मीनान से हमारे साथ बने रहो FM 107 पर सुनते हुए कतर ग्रीन बीट.
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर. मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर.
2: कतर ग्रीन बीट. बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन FM 107 पर. मैं हूँ अमिता आपके साथ और आप सुन रहे कतर ग्रीन बीट. मतलब वक्त है हमारे सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट का और सबसे पहले सेगमेंट का, दैट इज द ग्रीन वायर, जहाँ पर हम सारी अपडेट्स आपसे शेयर करते हैं. आज इस सेगमेंट की शुरुआत एक बहुत ही जबरदस्त खबर या यूं कहें ऐसी तस्वीर के साथ करेंगे जो शायद आपकी आंखों के सामने हर रोज गुजरती है, लेकिन आज हम उसे एक अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे. अच्छा, क्या आपने हाल ही में या यूं कहें कि आप अक्सर दोहा कॉर्निश की सैर पर जाते हैं? वैसे आई नो कि अभी गर्मी बहुत है लेकिन फिर भी जब थोड़ा सा ठंडक मिलती है तो आप जाते हैं. अब आप इमेजिन करो, सूरज ढल रहा है, हल्की ठंडी हवा चल रही है, मतलब उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं कि अभी कभी तो ठंडी हवा मिले, हाँ, इस गर्मी के मौसम में. और समुंदर की लहरों के साथ साथ दोहा का स्काईलाइन चमक रहा है, लेकिन अल मसरा पार्क के पास पहुंचते ही आपकी नजर एक ऐसी चीज पर रुकती है जो बिल्कुल हैरतअंगेज है. जमीन से निकलता हुआ एक बड़ा सुनहरा और चमकता हुआ क्रिएचर. मैं बात कर रही हूँ दुनिया की सबसे मशहूर और कीमती आर्टिस्ट में से एक जेफ कून्स की बनाई हुई डूगोंग स्कल्पचर की. 21 मीटर्स ऊंची और तकरीबन 31 मीटर्स चौड़ी, ये कोई ऐसा वैसा स्टैचू नहीं है, एक ऐसा ट्रिब्यूट है कतर के उन साइलेंट रेजिडेंट्स को जो हमारे पानियों में सदियों से रह रहे हैं. लेकिन जरा आप, दिलचस्प बात सिर्फ इसकी चमक नहीं है. अक्सर लोग वहाँ जाते हैं, सेल्फीज लेते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये स्कल्पचर वहाँ क्यों है? सुनिए, ये हकीकत शायद आपको हैरान कर दे. हमारा कतर पूरी दुनिया में डुगोंग्स की दूसरी सबसे बड़ी आबादी का घर है. इन्हें सी काउस भी कहा जाता है. ये मासूम से जीव, ये क्रिएचर्स हमारी मरीन बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है. लेकिन अफसोस की बात ये है कि क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन की वजह से इनका वजूद खतरे में आ गया है. जब कतर म्यूजियम्स ने इस इको आर्ट को शहर के बिल्कुल बीचों बीच लगाने का फैसला किया तो उनका मकसद सिर्फ ब्यूटिफिकेशन नहीं था, उनका मकसद था अवेयरनेस पैदा करना. एक आर्टिस्ट जब इतनी बड़ी स्कल्पचर बनाता है तो वो हमसे बातें करता है, वो हम

0: याद दिलाता है कि हमारा कतर नेशनल विजन 2030 सिर्फ बड़ी बिल्डिंग्स बनाना नहीं है बल्कि अपने कंजर्वेशन और एनवायरनमेंट को महफूज रखना भी है. आप खुद सोचिए जब हम ऐसी पब्लिक इंस्टॉलेशंस को देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है. क्या हम सिर्फ एक मेटल का डब्बा देखते हैं या कुछ और. हम देखते हैं एक मास्टरपीस जो वेस्ट से लड़ने की ताकत रखता है. जेफ कून्स ने डुगोंग को इतना ऊंचा इसीलिए बनाया ताकि हम इसे इग्नोर ना कर सकें. ये एक कॉल टू एक्शन है. ये हमसे कह रहा है कि हमारा समंदर हमारा सबसे बड़ा खजाना है. अगर हम अपने पानी को साफ नहीं रखेंगे, अगर हम प्लास्टिक वेस्ट को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो शायद आने वाली जनरेशंस के पास देखने के लिए सिर्फ ये मेटल के स्कल्पचर्स ही रह जाएंगे, असली डुगोंग्स नहीं. इसीलिए द ग्रीन वायर पर आज हम सल्यूट करते हैं कतर म्यूजियम्स को और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को, जो आर्ट के जरिए हमारी बायोडाइवर्सिटी के गार्जियन बनकर खड़े हैं. आर्ट एक ऐसी जुबान है जो एक्सेंट्स की मोहताज नहीं है. ये सीधा दिल पर असर करती है. मेरा आप सबसे एक सवाल है. अगली बार जब आप कॉनिश जाएं और उस डुगोंग स्कल्पचर को देखें तो बस एक मिनट के लिए रुकिए, देखिए कि कैसे वो धूप में चमकती है और सोचिए कि हम अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं ताकि हमारा समंदर और उसमें रहने वाले क्रिएचर्स हमेशा महफूज रहें. क्या हम अपने घर का कचरा कम कर सकते हैं? क्या हम सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कह सकते हैं? क्योंकि याद रखिए, हर बड़ा बदलाव एक छोटे से क्रिएटिव कदम से शुरू होता है. वेल, आप सुन रहे हैं कतर ग्रीन बीट. मैं हूं अमिता आपके साथ. तो कहीं ना जाएं, बने रहे हमारे साथ ऑन FM 107 पर. दिल से देसी.
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर.
2: कतर ग्रीन बीट.
0: वेलकम वंस अगेन. FM 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूं अमिता आपके साथ. चलिए अब रुक करते हैं एक ऐसी जगह जहां सपने, हुनर और हकीकत आपस में मिलते हैं. अब वक्त है हमारे सबसे खास सेगमेंट का, प्रोजेक्ट स्पॉटलाइट. आज हमारी जो रोशनी है या स्पॉटलाइट है वो जाती है VCU आर्ट्स, कतर के उन होनहार और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स पर जो लग्जरी की डेफिनेशन को ही हमेशा के लिए बदल रहे हैं. जब हम लग्जरी लव्स सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद चमकने वाला सोना या जमीन की गहराइयों से निकाला गया कोई नायाब हीरा. लेकिन क्या हुआ अगर मैं आपसे कहूं कि असली लग्जरी लूटने में नहीं बल्कि बचाने में है, तो कैसा लगेगा? हाँ, यहाँ के डिजाइनर्स फैशन पीस के जरिए कुछ ऐसा नया कर रहे हैं जो हमारी पुरानी सोच को झंझोड़ कर रख देगा. तो आपको क्या करना है? अब आपको सुनना है कि सदियों से हम इंसान गहनों या यूं कहें ज्वेलरी के लिए जमीन का सीना चीरते आए हैं, है कि नहीं? माइनिंग के इस अमल में हमने ना जाने कितने पहाड़ों को खाली कर दिया, कितने पेड़ों को काट दिया. लेकिन VCU आर्ट्स कदर के इन नौजवानों ने, इन आर्टिस्ट ने एक सवाल पूछा, क्या हम खूबसूरती को बिना किसी नुकसान के पैदा कर सकते हैं? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. उनका ध्यान गया उन दो चीजों पर जो हमारे पास कतर में सबसे ज्यादा है. एक है हमारी डेजर्ट की रेत जो मेलों तक फैली हुई है, और दूसरा है वो रिसाइकल ग्लास जिसे हम अक्सर वेस्ट समझकर कचरे के ढेर में फेंक देते हैं. उन्होंने फैशन को सिर्फ कपड़ों या गहनों तक लिमिटेड नहीं रखा बल्कि उसे एक पैगाम बना दिया. अब जरा सोचिए इस प्रोसेस के बारे में कि एक तरफ पुरानी फेंकी हुई बॉटल्स और कांच के टुकड़े हैं जिन्हें कोई दोबारा देखना पसंद नहीं करता, दूसरी तरफ डेजर्ट की वो रेत है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. इन डिजाइनर्स ने इन दोनों को मिला दिया. इन फर्नेसेस में, यानी उन बड़ी भट्टियों में जहाँ टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि पत्थर भी पिघल जाए, वहाँ ये कांच और रेत एक साथ मिलकर एक नया रूप लेते हैं. इसे पिघलाने के बाद जो मटेरियल है उससे जब वो डेलिकेट ज्वेलरी बनाते हैं ना, तो वो सिर्फ एक इयररिंग या नेकलेस नहीं है, वो एक मास्टरपीस है. एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जहां रद्दी को कीमती बनाया गया है और सबसे कमाल की बात कि इनका कार्बन फुटप्रिंट तकरीबन जीरो है। ये कोई फैक्ट्री में बनी मशीन मेड चीज नहीं है, बल्कि इसमें कतर की मिट्टी की महक और एक

0: जिस की रूह शामिल है। इस प्रोजेक्ट का नाम है फैशनिंग पीस। कितना सुकून भरा नाम है ना, पीस यानी अमन। लेकिन किसके साथ? ये अमन है कुदरत के साथ। ये एक समझौता है कि हम अब और जमीन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लग्जरी का मतलब हमेशा महंगा होना नहीं होता, लग्जरी का मतलब होता है रेयर होना। हाँ जी, और आज के दौर में एक साफ सुथरा प्लैनेट, इससे ज्यादा लग्जूरियस चीज और कोई नहीं हो सकती। सो VCU आर्ट्स के इन स्टूडेंट्स ने हमें सिखाया है कि सस्टेनेबिलिटी कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि एक आर्ट फॉर्म है। जब आप उनकी बनाई ज्वेलरी को पहनते हैं ना, तो आप सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट नहीं दे रहे होते हैं, बल्कि आप पूरी दुनिया को बता रहे होते हैं कि आप इस जमीन की फिक्र करते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा टर्म निकल कर आता है, जिसे हम कहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। रेडियो की भाषा में कहें तो ये एक ऐसा पहिया है जो कभी रुकता नहीं। जो चीज़ खत्म हो गई, वहीं से उसका नया जन्म होता है। ये प्रोजेक्ट एक बेहतरीन नमूना, या यूँ कहें एक बेहतरीन एग्जाम्पल है इस बात का कि फैशन का फ्यूचर ज़्यादा खरीदने या ज़्यादा कंजम्पशन में नहीं है। फैशन का फ्यूचर है कि क्रिएटिंग बेटर विथ व्हाट वी ऑलरेडी हैव। हम अक्सर नए की तलाश में ना पुराने खजाने भूल जाते हैं। कतर नेशनल विजन 2030 का भी यही मकसद है, एक ऐसी नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाना जहां दिमाग और दिल मिलकर काम करें। इन डिजाइनर्स ने साबित कर दिया है कि कतर सिर्फ तेल या गैस का देश नहीं है, बल्कि ये उन क्रिएटिव माइंड्स का भी देश है जो रेत के जर्रों से भी हीरे तराशना जानते हैं। तो जनाब, आगे कतर ग्रीन बीट में और भी कुछ खास है, तो आप कहीं ना जाएं, बने रहे हमारे साथ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
2: कतर ग्रीन बीट,
0: वेलकम वंस अगेन। मैं हूं अमिता, आपके साथ कतर ग्रीन बीट सुन रहे हैं आप। वेल, अब तक हमने बात की उन बड़े बड़े स्कल्पचर्स की और VCU आर्ट्स के उन कमाल के डिजाइनर्स की, लेकिन अब वक्त है एक ऐसी हकीकत का जो आपके और मेरे यानी हम सब के बहुत करीब है। अक्सर हम सोचते हैं कि प्लैनेट को बचाना या एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना सिर्फ बड़े आर्टिस्ट या साइंटिस्ट का काम है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इको आर्ट सिर्फ उनके लिए नहीं है जिनके नाम गैलरीज में लगे होते हैं, बल्कि ये एक मूवमेंट है जो आप अपने लिविंग रूम से, अपनी रसोई या अपने किचन से या अपनी बालकनी से शुरू कर सकते हैं। आपको बस अपना नजरिया थोड़ा सा बदलना होगा। जहां दुनिया को कचरा दिखता है, वहां एक आर्टिस्ट को क्रिएटिविटी का मौका दिखता है कि नहीं? तो सुनिए कैसे आप अपने घर को अपसाइकल करके ग्रीनर बना सकते हैं और कतर की इस हरियाली में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली टिप से, द ग्लास ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे घरों में हर हफ्ते कितने ही जैम के जार्स, या वो कहते हैं शहद के डब्बे, हनी की शीशियां या परफ्यूम की काली बॉटल्स निकलती ही निकलती है। हम क्या करते हैं उसका? बस उन्हें बिन में फेंक देते हैं। लेकिन रुकिए, अगली बार फेंकने से पहले ना उन्हें एक नया पर्सपेक्टिव दीजिए। हाँ, कैसे? उसे देखिए एक नए नजरिए से। एक पुराने कांच की बॉटल, उसे क्या कर सकते हैं? आपने उसे साफ किया, उसकी लेबल उतारी, अब थोड़ा सा इको फ्रेंडली पेंट कीजिए, या फिर कतर के पुराने बाजारों से मिलने वाली जो ट्वाइन का इस्तेमाल है उसे कीजिए। जब आप उस बॉटल के चारों तरफ उस रस्सी को लपेट के तैयार करते हैं, तो वो ट्रैश एक बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही शीक वास बन जाता है। इसमें आप अपने गार्डन के फूल लगा सकते हैं, या फिर इसे कैंडल होल्डर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब उस कांच के अंदर से मोमबत्ती की रोशनी बाहर आएगी ना, तो वो सिर्फ रोशनी नहीं लगेगी, वो आपकी एक छोटी सी कोशिश होगी जो इस प्लैनेट को बचाने के लिए आपने की। वाह, सो ट्राई कीजिएगा। उसके बाद हमें क्या करना है? अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी और इंस्पिरेशन की जरूरत है, तो मैं आपको एक फ्री एडवाइस देती हूँ। एक चक्कर फायर स्टेशन आर्टिस्ट इन रेजिडेंस का जरूर लगाइए, ठीक है? ये दोहा के दिल में एक ऐसी जगह है जहाँ की दीवारों से भी क्रिएटिविटी टपकती है। वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना जॉयफुल है ना कि आपका दिमाग नए आइडियाज से भर जाएगा। वहाँ अक्सर

0: ऐसी वर्कशॉप्स होती हैं जहां आप सीख सकते हैं कि कैसे पुराने कपड़े या प्लास्टिक के वेस्ट से घर का बेहतरीन डेकोर तैयार किया जा सकता है. वहां के आर्टिस्ट से बात कीजिए, देखिए कि कैसे वो एक पुरानी जीन्स को एक बैग में बदल देते हैं या प्लास्टिक कैप से एक मोज़ेक पेंटिंग बना देते हैं. जब आप वहां जाएंगे ना तो आपको एहसास होगा कि सस्टेनेबिलिटी कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि ये एक फनकारी या आर्टिस्ट्री है जिसे हर कोई अपना सकता है. और यही हमारे कतर की खूबसूरती है और खूबी है कि हर चीज डिफिकल्ट नहीं लगती, आसान लगती है और अपनी सी लगती है. और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, नेचर एज अ कैनवस. हाँ, अगली बार जब आप कतर के किसी बीच पर जाएं, जैसे सी लाइन या अलवकरा या फिर डेजर्ट की गहराइयों में कैंप लगाएं, तो वहाँ एक नया खेल खेलिए. इसे कहते हैं एफेमरल आर्ट, यानी वो कला जो कुछ वक्त के लिए है और फिर मिट जाएगी. वहाँ मौजूद पत्थरों या समुंदर की शेल्स या गिरे हुए सूखे पत्तों से पैटर्न्स बनाइए, एक मंडाला बनाइए या कोई जियोमेट्रिक शेप. ठीक है, इसमें सबसे बड़ा सुकून क्या है पता है? इसमें कोई कचरा नहीं फैलता. आपने आर्ट बनाया, उसकी एक फोटो खींची और उसे वहीं कुदरत के हवाले कर दिया बिना किसी नुकसान के. ये हमारी धरती के लिए ना एक गिफ्ट है, एक तोहफा है. ये हमारी क्रिएटिविटी दिखाने का सबसे उमदा मौका है. हाँ जी, तो आज की हमारी इस बातचीत का जो निचोड़ बस यही है कि आर्ट और कंजर्वेशन, यानी कला और हिफाजत, एक ही सिक्के के ना दो पहलू है. आर्ट वो यूनिवर्सल जुबान है जो सबको समझ आती है. इसमें वो ताकत है जो हमें भागती दौड़ती जिंदगी में ना थोड़ा रुकने, देखने और उस दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है जो हम और आप बच्चों के लिए ना पीछे छोड़ रहे हैं. तो जनाब, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आज जो हमने कतर ग्रीन बीट में डिस्कस किया उसका हम थोड़ा थोड़ा ख्याल रखें, क्योंकि जब हम ये ख्याल रखते हैं तो हम अपनी जिंदगी में एक साफ सुथरी सांस ले सकते हैं और अपनी आने वाली जनरेशंस को भी दे सकते हैं. चलिए, इसी बात के साथ अब आप दीजिए मुझे इजाजत, क्योंकि वक्त हो गया है मेरे जाने का. आपकी मेरी मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते कतर ग्रीन बीट के एक अगले एपिसोड में एक नई नवेली बात पर. तो हमारे साथ बने रहिए और एफ एम 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी आप जुड़ सकते हैं. और अगर कोई सजेशंस है तो 666-22-107 हमारा नंबर है, इसके जरिए भी आप अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं. और अभी के लिए अमिता को दीजिए इजाजत, अपना खूब सारा ख्याल रखें, बने रहें एफएम 107 पर दिल से देसी.
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर.
2: कतर ग्रीन बीट,
3: आप सुन रहे हैं एफएम 107.
1: एफएम 107,
4: दिल से देसी.
0: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से.

0: यादगार।
1: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं,

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिस पे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिस पे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती हैं। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे।
0: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ, एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: Anytime, anywhere.
3: Yes, anytime, anywhere.
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
4: FM 107.
2: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Sameen कहते हैं ना कि बंदर को साथ में रखोगे तो वो जरूर तुम्हारे कंधे पर सवार होगा. कहावत का मतलब ये है कि अगर किसी खास मिजाज वाले शख्सियत के साथ ताल्लुक रखते हैं हम या इनके साथ उलझते हैं तो आपको इनसे होने वाले नुकसान या तकलीफ को जरूर बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आपने खुद ही इस किस्म की सूरत हाल का इंतखाब किया है. अरबी जबान की कहावत है, اللي يلعب مع القط يصبر على خرابيشه, यानी जो बिल्ली पालता है, बिल्ली के साथ खेलता है, उसे जरूर उसके नाखूनों को बर्दाश्त करना होगा. اللي يلعب مع القط يصبر على خرابيشه.
0: आप सुन रहे हैं FM 107.
2: दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107 दिल से देसी।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। लिसनर्स, हमारे जॉइंट्स जो कि बहुत ही अहम हैं, और जॉइंट्स की सेहत और उन्हें मजबूत रखने के लिए बहुत ही आसान तरीकों से हम उन्हें अच्छा रख सकते हैं, यानी सही आदत और जो एक्सरसाइजेस हैं वो हमारे जॉइंट्स को दर्द और बीमारी से बचाती हैं। जैसे कि स्ट्रेचिंग है और जो मोबिलिटी है, यानी डेली स्ट्रेचिंग, उससे हमारी जो जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह से हमारी नेक है, शोल्डर्स हैं, बैक है या नीज हैं, वहाँ की तमाम जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं वो आप ज़रूर कीजिए। सिंपल स्ट्रेचेस मॉर्निंग में और फिर इवनिंग में आप कीजिए। और इसी तरह से ऐसी एक्सरसाइजेज जो कि वेट बेरिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं वो भी करनी बेहद ज़रूरी हैं अपनी जॉइंट्स की हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए। उसमें वॉकिंग है या बहुत ही लाइट जॉगिंग है वो आप कर सकते हैं। बॉडी वेट स्क्वाट्स हैं या फिर लेजेंजीज हैं। स्ट्रेंथन जो ट्रेनिंग है वो जॉइंट्स को सपोर्ट भी करती हैं। इस तरह जो हमें अपनी डाइट पर भी खास तवज्जो देनी है, और जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स।

0: उसमें ओमेगा 3 है, उसमें फिश है, वॉलनट है, फ्लेक्स सीड्स हैं, वो अपनी खुराक में शामिल कीजिए। टर्मरिक है यानी हल्दी है, तो वो जो स्वेलिंग हो जाती है, जो इन्फ्लेमेशन होती है जॉइंट्स में, जो कि दर्द का बायस बनती हैं, तो वो कम करती है। और शुगर तो आपको कम करनी ही करनी है। और अपने जो पोस्चर है, जैसे आप बैठते हैं, वो आपने बहुत ही सही रखना है, यानी करेक्ट पोस्चर जो है वो आप रखिए। उसमें ये है कि जब आप बैठे हों या आप खड़े हों, तो आपकी पोस्चर जो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। और इस तरह से जो प्रोलॉन्ग सिटिंग है, यानी बहुत ज़्यादा बैठना, या ऑफिस में भी हैं तो प्रोलॉन्ग आवर्स के लिए बैठना वो सही नहीं है। आप कुछ कुछ देर के लिए आप उठ सकते हैं, हर घंटे के बाद अगर आप 2 मिनट भी उठते हैं, तो वो आप देखेंगे कि आपके लिए हेल्थ के लिए, स्पेशली जो जॉइंट्स की हेल्थ के लिए, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और जो आम, जो बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें नी पेन है, और ये है कि आर्थराइटिस है, मगर इसमें सबसे अहम ये है कि डायग्नोस हो, और ये है कि जो रेगुलर चेकअप्स हैं वो हों। इसी तरह मॉडरेट फिज़िकल एक्टिविटी वो आप ज़रूर कीजिए। तो रोज़ाना छोटी छोटी बातें अपना कर, यानी एक्सरसाइजेस करके, और सही आदत जो है वो आप अपनाइए, तो फिर उससे होगा, हमारे जो जॉइंट्स हैं वो मजबूत होंगे, और आप और हम दर्द से महफूज रहेंगे। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

0: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे कतर के शतरंज खिलाड़ी हुसैन अल अजीज के बारे में। हुसैन अल अजीज कतर के उभरते हुए चेस प्लेयर्स में शुमार किए जाते हैं। उन्होंने बहुत कम उम्र से ही शतरंज में दिलचस्पी लेना शुरू की और अपनी मेहनत, तवज्जो और स्ट्रैटेजिक सोच की वजह से काबिले जिक्र मकाम हासिल किया। शतरंज एक ऐसी गेम है जहां सिर्फ जहनी ताकत ही नहीं बल्कि सब्र, प्लानिंग और फैसला साजी भी बहुत अहमियत रखती है। हुसैन ने इन तमाम खूबियों का मुजाहरा मुख्तलिफ मुकाबलों में किया है। कतर में शतरंज के फरोग के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं उनमें हुसैन जैसे खिलाड़ियों का बहुत बड़ा रोल रहा है। वो नेशनल टूर्नामेंट्स के अलावा बैन अवी इवेंट्स में भी कतर की नुमाइंदगी कर चुके हैं और अपनी परफॉर्मेंस से मुल्क का नाम रोशन किया। उनकी गेम्स में सोच, मजबूत ओपनिंग, तैयारी और एंड गेम पर काबू नुमायाँ नजर आता है। दोस्तों हुसैन अजीज नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल हैं जो चेस में अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं। उनकी लगन और मुसलसल मेहनत ये साबित करती है कि कामयाबी सिर्फ टैलेंट से नहीं बल्कि डिसिप्लिन और मुसलसल प्रैक्टिस से हासिल होती है। उम्मीद की जाती है कि आने वाले सालों में हुसैन अजीज मजीद बैन अवी कामयाबियाँ हासिल करते हुए कतर का परचम शतरंज की दुनिया में बुलंद रखें। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और अजीम खिलाड़ी के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम बात करेंगे कि गजाई फाइबर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अहम क्यों है। कब्ज, कॉन्स्टिपेशन आजकल एक आम मसला बन चुका है, जिसकी एक बड़ी वजह फाइबर की कमी है। जब हमारे गजा में मुनासिब फाइबर मौजूद होता है तो उससे जो फीसिस हैं वो नर्म होते हैं और आंतों से आसानी से खारिज हो जाता है। जब हम फाइबर ज़्यादा अपनी खुराक में शामिल करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन से बचाव हो जाता है, इसी तरह से जो बवासीर के खतरे में कमी आती है, आंतों की कारकर्दगी बेहतर हो जाती है और आंतों में मौजूद मुफीद बैक्टीरिया की नशोनुमा होती है, बड़ी आंत की मजमूई सेहत में बेहतरी आती चली जाती है। फाइबर एक प्रीबायोटिक के तौर पर भी काम करता है, यानी ये आंतों में मौजूद मुफीद जो बैक्टीरिया हैं उनकी गिजा बनता है। यही बैक्टीरिया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर बनाते हैं और इम्यूनिटी जो है उसे भी मजबूत करते हैं और बाज़ बीमारियों से तहफ़ में अहम किरदार अदा करते हैं। फाइबर खाने के बाद मैदा देर तक भरा हुआ महसूस होता है, जिससे गैर जरूरी खाने की ख्वाहिश कम हो जाती है और इस तरह वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है। रोज़मर्रा जिंदगी में फाइबर को ज़्यादा करने के बहुत ही आसान से तरीके हैं, जैसे कि आप सफ़ेद रोटी की बजाय आप जो ब्राउन रोटी है वो इस्तेमाल कीजिए। रोज़ाना कम से कम 2 से 3 फल आप ज़रूर लीजिए। हर खाने में सैलड शामिल कर लीजिए। हफ्ते में 2 से 3 बार दालें और जो फलियां हैं वो इस्तेमाल कीजिए। मीठे स्नैक्स की बजाय फल या फिर आप नट्स जो हैं वो इस्तेमाल कीजिए। याद रखिए, फाइबर के साथ मुनासिब मकदार में पानी पीना बहुत ज़रूरी है, वरना फ़ायदे के

0: Maximum music, maximum fun.
1: On FM 107, Dil Se Desi.
2: Thank you.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। One step to 2030.
2: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
3: One Step to 2030.
2: दोस्तों, आज के इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं सस्टेनेबल टूरिज्म और कल्चरल प्रिजर्वेशन की। देखिए, आज की दुनिया में टूरिज्म सिर्फ घूमने फिरने का जरिया नहीं रहा, बल्कि कंट्रीज की इकोनॉमीज और कल्चर को प्रमोट करने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। और सस्टेनेबल टूरिज्म का मतलब है ऐसा टूरिज्म जो एनवायरमेंट, लोकल कल्चर और लोकल कम्युनिटीज को नुकसान पहुंचाए बगैर उनको फायदा दे। इसके साथ कल्चरल प्रिजर्वेशन, यानी अपनी तहजीब, अपनी रिवायात, जबान, तारीखी मकामात और विरसे को महफूज रखना है, ताकि आने वाली नस्लें भी उनसे फायदा उठा सकें। ये कहलाता है कल्चरल प्रिजर्वेशन। दोस्तों, जब टूरिज्म पर काम किया जाता है तो इस चीज का आज के दौर में खास ख्याल रखना होता है कि एनवायरमेंट मुतासर ना हो और लोकल कल्चर धीरे धीरे अपनी असली शनाख्त ना खोए। जी हाँ, सस्टेनेबल टूरिज्म इस बात को यकीनी बनाता है कि तरक्की तहफ़ दोनों साथ साथ चले। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि दुनिया भर में लोग नए डेस्टिनेशंस देखना चाहते हैं, डिफरेंट कल्चर्स को समझने में उनकी दिलचस्पी बढ़ रही है। अगर हम आज अपनी सखाफत और कुदरती वसाइल का ख्याल नहीं रखेंगे तो कल हमारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। जी हाँ, सस्टेनेबल टूरिज्म लोकल लोगों को रोजगार भी देता है और उनकी रिवायती सनात और दस्तकारी को प्रमोट करता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। अगर टूरिज्म सस्टेनेबल होगा तो शहर साफ रहेगा, कुदरती मनाजर महफूज रहेंगे और लोकल बिजनेसेस को फायदा मिलेगा। इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इकोनॉमी मजबूत होगी और लोग अपनी तहजीब पर फख्र महसूस करेंगे। आज के बच्चे अपनी तहजीब और हिस्ट्री को समझना और उसे मजबूत करने में दिलचस्पी मिलेगी बच्चों को। देखिए, गल्फ कंट्रीज, खास तौर पर अगर मैं कतर जैसी कंट्री की बात करूं, तो यहाँ पर सस्टेनेबल टूरिज्म पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आपने देखा है, कल्चरल विलेजेस हैं, म्यूजियम्स हैं, हेरिटेज साइट्स हैं, इनको प्रमोट किया जा रहा है ताकि दुनिया भर के लोग मकामी कल्चर को समझ सकें और साथ ही उनका तहफ्फुज भी हो। जी हाँ, सस्टेनेबल टूरिज्म जो है वो सिर्फ सफर का नाम नहीं है, मैं कहूँगी ये एक जिम्मेदारी का नाम है। हमें ऐसे टूरिज्म को फरोग देना होगा जो हमारी जमीन, हमारी तहजीब, हमारी पहचान को महफूज रखें। अगर हम आज अपनी सखाफत और कुदरती विरसे का ख्याल नहीं रखेंगे तो कल दुनिया हमारी तारीख और तहजीब को ना देख पाएगी और ना इज्जत की निगाह से देखेगी ना समझेगी। एक पायदार मुस्तकबिल के लिए टूरिज्म और तहफ्फुज का साथ चलना बहुत जरूरी है और शायद इसीलिए दुनिया भर में जितनी भी कंट्रीज हैं वो सस्टेनेबल टूरिज्म को और कल्चरल प्रिजर्वेशन को बहुत ज्यादा अहमियत दे रही हैं। तो हमें भी अपने आसपास का माहौल साफ रखना है, अपने आसपास के एनवायरमेंट का ख्याल रखना है इस तरह से कि वो हमारे एनवायरमेंट को कंट्रीब्यूट करे। हमारी आज की प्रैक्टिसेस हमारे कल के फ्यूचर को डिसाइड करती हैं। तो आज बेहतर प्रैक्टिस अडॉप्ट करना, इस तरह से जहां हम प्लांट्स को नुकसान न दें, जहां हम इस अर्थ को, इस जमीन को और ज्यादा ग्रीन बनाएं, जहां हम वेस्टेज को मिनिमाइज करें, जहां हम कूड़ा करकट इन्हें प्रॉपर डिस्पोज करें, जिससे हमारा मुल्क खूबसूरत दिखे और ऐसे दिखे कि लोग इस मुल्क में बार बार आना चाहें। पर हाँ, टूरिज्म का बुनियादी जो एक एस्पेक्ट है वो है हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी, और हम किस तरह से उसे एग्जिबिट कर सकते हैं ये मैंने आप पर छोड़ा। चलिए, सोचिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने क्या सोचा। आप मुझे बता सकते हैं 666-22-107 पर। फिलहाल मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इस वक्त इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी.
3: One step to 2030.
4: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें.
5: आज ही राब्ता करें
4: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
6: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी.

0: FM 107 पर हर गाना हिट,
1: हर गाना हिट,
0: हर दूसरा गाना सुपर हिट। कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107। साथियों, हम अक्सर ये बात सुनते हैं कि हमें अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना चाहिए, लेकिन सवाल ये है भाई कि कार्बन फुटप्रिंट आखिर होता क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि हमें अपनी जिंदगी बिल्कुल बदल देनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो नहीं है। सिंपल अल्फाज में समझें तो कार्बन फुटप्रिंट का मतलब है हमारी डेली एक्टिविटीज की वजह से एनवायरमेंट में कितनी ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती हैं। अच्छा, जब हम अपनी गाड़ी चलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, चीजें खरीदते हैं या

0: खाना वेस्ट करते हैं। तो भाई इन सब का एनवायरनमेंट पर एक बहुत गहरा असर होता है। लेकिन हाँ, अच्छी बात यह है कि हम अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से अपने कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं। तो चलिए आज के इको स्विच में बात कर लेते हैं रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट डेली, यानी रोज की जिंदगी में ऐसी चॉइसेस जो एनवायरनमेंट के लिए बेहतर हों। अच्छा, थोड़ा सा ना पहले तो प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं कि मसला क्या है। साथियों, हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल ने जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन कन्वीनियंस के साथ रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी बढ़ गया है। बात है ना, सही बात है। कुछ डेली एक्टिविटीज जो कार्बन फुटप्रिंट बढ़ाने में रोल अदा करती हैं, वो क्या है? अगर सोचा जाए तो जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करना, हर छोटी डिस्टेंस के लिए गाड़ी यूज करना, मतलब ये कि अगर साथ वाली दुकान से दही भी लेने जाओगे तो उसके लिए भी गाड़ी में जाना है भाई, हमने गाड़ी में जाना है। फूड वेस्ट करना भाई, खाना जाया कर देना, सिंगल यूज प्रोडक्ट्स का ज्यादा इस्तेमाल या अननेसेसरी शॉपिंग और फास्ट फैशन फॉलो करना। अच्छा, अक्सर हमें ये लगता है कि भाई हम एक इंसान है, हमारी एक आदत से क्या ही कोई जिंदगी में, क्या ही दुनिया को कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन जब लाखों लोग छोटी छोटी बेटर चॉइसेस कर रहे होते हैं ना, तो कलेक्टिव इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है भाई। देखिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना सिर्फ बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि हम सबकी डेली चॉइसेस का ये हिस्सा होती है। चलिए अब मिलकर कुछ इको स्विच के सॉल्यूशंस के बारे में बात कर लेते हैं। आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स देती हूं जो आप आराम से फॉलो कर सकते हैं अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए। पहली चीज तो ये, एनर्जी स्मार्टली यूज करें। जब जरूरत हो तो ही मेहरबानी करके एसी, फैन, लाइट्स, अप्लायंसेस अपने इस्तेमाल करें, वरना तो उन्हें बंद रखें। एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स और अप्लायंसेस का इस्तेमाल भी मददगार हो सकता है साथियों। अच्छा, ट्रैवल चॉइसेस बेहतर बनाएं ना। देखें, जहां मुमकिन हो ना वॉकिंग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। अब देखें कतर मेट्रो कितना अच्छा है, क्यों नहीं यूज करते उसे। कार शेयरिंग करें, छोटे डिस्टेंसेस के लिए अल्टरनेटिव ऑप्शंस चूज करना एनवायरनमेंट के लिए बेहतर हो सकता है। अच्छा, तीसरी चीज है, खाने का वेस्ट कम करें ना। सिर्फ उतना ही खाना बनाएं जितना जरूरी हो, बचा हुआ खाना प्रॉपरली स्टोर करें और फूड वेस्ट को बचाने की कोशिश करें भाई। चौथी चीज ये, रीयूज और रिपेयर करें। अच्छा, ये जो रिपेयर वाली आदत है ना, ये हमारे अम्मा अब्बा तो बड़े परफेक्ट वे में करते हैं, पता नहीं हमें से क्यों गुम हो गई है, कोशिश कर रहे हैं हम भी। तो भाई, किसी चीज के खराब होने पर फौरन नई चीज ना ले आए या उसे ठग कचरे में ना फेंक दें। दूसरी चीज खरीदने के बजाय ये देखें कि वो रिपेयर या रीयूज हो सकती है कि नहीं हो सकती। अक्सर औकात लोगों की कभी इस्त्री खराब हो जाती है या ब्लेंडर वगैरह खराब हो जाता है तो लोग उठा के फेंक देते हैं। नो, उसे फेंके नहीं, उसे एक दफा चेक करवाएं किसी अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक्स के पास जाकर, वो सही हो सकता है। आप अगर चाहें तो वो सही हो सकता है, एक दफा जाकर उसे चेक करवाएं, क्या पता वो रिपेयर होने के लायक हो, आप उसे वापस से रिपेयर करके रीयूज कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉन्शियस शॉपिंग करें। अब ये खास तौर पे शॉपहोलिक लोगों के लिए, देखें शॉपिंग से पहले खुद से पूछें, 10 दफा पूछें, क्या मुझे इस चीज की वाकई में जरूरत है। कम लेकिन बेहतर क्वालिटी की चीजें खरीदना वेस्ट कम कर सकता है साथियों। तो भाई, इसकी अगर रियल लाइफ एग्जांपल दूं आपको, तो एक छोटी सी सिंपल सी एग्जांपल है। अगर एक फैमिली रोजाना अनयूज्ड लाइट्स बंद करना शुरू कर दे, ग्रोसरी प्लानिंग करे, फूड वेस्ट कम करे, रीयूजेबल बैग्स और रीयूजेबल बॉटल्स यूज करे, तो क्या लगता है आपको, है ना? तो शायद हर चेंज छोटा लगे, लेकिन वक्त के साथ इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है भाई। इसी तरह एक ऑफिस भी अगर डिजिटल डॉक्यूमेंट्स यूज करे, एनर्जी सेव करे और रीसाइक्लिंग सिस्टम अडॉप्ट करे, तो भाई बहुत सारा वेस्ट और रिसोर्स कंजम्पशन कम हो सकती है। कार्बन फुटप्रिंट कम करना एक दिन का काम नहीं होता, ये एक लाइफस्टाइल चेंज है जो छोटी छोटी आदतों से बनता है साथियों। तो भाई, आज का इको स्विच चैलेंज आपके लिए ये है कि आज अपनी डेली लाइफ की रूटीन में से एक ऐसी चीज आइडेंटिफाई करें जहां आप कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं। क्या आप एनर्जी बचाएंगे, क्या आप गाड़ी का इस्तेमाल कम करेंगे, या क्या आप फूड वेस्ट कम करना पसंद करेंगे? और भाई, हमें जरूर बताएं कि आपकी नजर में कार्बन फुटप्रिंट कम करने का सबसे आसान तरीका क्या है, ताकि हम भी दूसरों के साथ शेयर कर सकें। इसी नोट के साथ मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए, बड़ी तब्दीली हमेशा छोटी आदतों से शुरू होती है, छोटी सी आदत बदलें और एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें। सुनते रहें इको स्विच ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन एफएम 107 दिल से देसी।

सब संभाल कर रख लेने की ताकत और कुछ कर गुजरने की हिम्मत ख्वातीन में कुदरती है। तो इसलिए हम ला रहे हैं एक प्लेटफॉर्म शोकेस करने के लिए ऐसी ही इंस्पायरिंग वुमेन को। तो ट्यून इन कीजिए इंस्पायरिंग वुमेन विद आरजे नाजिया हर वेंसडे 5 बजे से 6 बजे तक, और सुनिए उनके सफर को जो प्रूफ करती है कि पैशन और डेडिकेशन से कुछ भी

0: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मैं हूं नासी एफएम 107 से और आप सुन रहे हैं शो कॉल इंस्पायरिंग वुमन.
1: इंस्पायरिंग वुमन, उसकी कहानी हर किसी को आगे बढ़ने की ताकत देती है.
0: दोस्तों, एक ऐसा शो जो डेडिकेट किया गया है उन फीमेल्स के नाम जो अपने काम, जज्बे और हिम्मत से दूसरों के लिए रोशनी का सबब बनती हैं. हम हर एपिसोड में आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसी ही इंस्पायरिंग वुमेन से जो अपनी फील्ड में कुछ नया करने का जज्बा रखती हैं और कुछ इम्पैक्टफुल कर रही हैं. इस सीरीज में आज हमारी मेहमान बहुत खास है. आज हमारे बीच एक ऑथर मौजूद हैं. आपका ताल्लुक टीचिंग फील्ड से भी है और आप जो हैं वो लैंग्वेज को प्रमोट करने का भी काम कर रही हैं. सो लेट्स वेलकम मिसेस शालिनी गर्ग ऑन एफएम 107. कैसी हैं आप? सबसे पहले तो आपको स्वागत कहूंगी एफएम 107 पर.
2: बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया जी मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, एफएम से मेरा परिचय कराने के लिए.
0: थैंक यू जी. मैं भी आपकी आभारी हूँ कि आपने वक्त समय निकाला और आप यहाँ पर आई हैं और आपसे हम जो हैं वो आगे बातचीत करेंगे, क्योंकि मैंने आपके बारे में जाना कि आपका बचपन जो है वो उत्तर प्रदेश के किसी गांव में बीता. तो उस परिवेश ने आपकी रचनात्मकता को किस प्रकार जो है वो प्रभावित किया?
2: गांव में मतलब मैं 5 साल तक रही थी. वैसे पापा के पोस्टिंग होती रहती थी उत्तर प्रदेश के, जैसे मथुरा में, मेरठ में ज़्यादा रही. लेकिन हाँ, गांव के परिवेश ने मुझे अभी भी, जैसे कहते हैं ना कि ख्वाबों में भी गांव का जीवन आ जाता है. क्योंकि जो हमने सच्चाई में देखा होता है, हम अपनी कविताओं में, अपने लेखन में उसको हम व्यक्त कर सकते हैं, जो हमने समझा है, जो हमने देखा है. तो मैं कुछ पंक्तियों में कहना चाह रही थी.
0: जी जी.

0: बहुत ही खूबसूरत और बड़ी अच्छी बात आपने की, वापस से हम लोगों को भी आप ले गई उसी पुराने दौर में जहाँ पर ये कल्चर था कि लोग जो है ना वो नुक्कड़ पे मतलब चौराहों पे जमा होना, बात करना, एक दूसरे से जो है ना पूरे दिन का हालचाल लेना एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो वाकई अच्छा, मैं अभी ये भी देख रही थी कि आपने जो है फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की और उसके बाद अपना पूरा अपनी पूरी रुचि जो है वो साहित्य की ओर आप ले गई. तो इस बदलाव की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और क्यों मिली?
1: बदलाव की प्रेरणा तो समय दे देता है.
0: अच्छा.
1: तो एक्चुअली एक लड़की का जीवन, एक नारी का जीवन नदी के जैसा होता है. जहाँ बहाव उसको ले जाता है वो वैसे ही चल देता है आगे, क्योंकि शादी के बाद आपका जीवन कुछ अलग दिशा में जाता है. तो उस समय मैंने, बल्कि बीएड की जो मेरे प्रैक्टिकल्स वगैरह बच गए थे वो शादी के बाद कंप्लीट हुआ मेरा एग्ज़ाम्स जो थे, और फैशन डिज़ाइनिंग भी मैं उसी समय कर रही थी तो उसके एग्ज़ाम भी बाद में दिए मैंने. फिर उसके बाद लेकिन बच्चे होने के बाद फिर दोनों चीज़ों से ही थोड़ा सा रिलीफ मिला और बच्चों में लग गई. लेकिन क्या होता है कि जैसे हम दुबई आए तो दुबई में, दुबई सबको काम सिखा देता है, तो दुबई में जैसे ही आए तो वहाँ मैंने अपना जैसे सीवी डाला और मुझे शिक्षिका का ऑफर मिल गया और मैं वहाँ पर पढ़ाने लगी. तो उसके बाद साहित्य, क्योंकि हिंदी शिक्षिका का ऑफर मिला था तो मैं साहित्य की तरफ रुचि और बढ़ती चली गई. तो जो बचपन का सपना था कुछ लिखने का वो फिर थोड़ा पूरा होना शुरू हो गया.
0: बहुत सही. अच्छा, ये तो आपने मतलब, ये हम भी जानते हैं और सुना भी है मैंने आपके फ्रेंड से कि आपको जो है ना कविता लिखने का शौक जो उसकी शुरुआत हुई वो बचपन से ही हो गई थी, तभी आपने स्टार्ट कर दी था. क्या आपको याद है कि पहली कविता आपने किस विषय पर लिखी थी और वो क्या प्रकाशित हो पाई थी?
1: जी, पहली कविता तो खैर जैसे मतलब गुड़िया, तोता, इस तरह की थी, तो वो अच्छा. स्कूल की मैगजीन में होती थी. लेकिन जो मेरी पहली कविता समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी वो थी गांधी जी के ऊपर.
0: अच्छा.
1: तो कोई कुछ पंक्ति सुनना चाहेंगे आप उसमें?
0: जी जी, प्लीज प्लीज गो अहेड.
1: तो इस कविता का नाम था, लेना होगा तुमको दूसरा जन्म ओ गांधी. देश में बढ़ रही है भ्रष्टाचार की आंधी, लेना होगा तुमको दूसरा जन्म ओ गांधी. सच्चाई और अहिंसा की हंसी जमाना उड़ा रहा, नैतिकता का पाठ अब किताबों से भी जा रहा. विदेशी बाजार के सामने देसी टोपी है जला दी, लेना होगा तुमको दूसरा जन्म ओ गांधी. वैसे इसके बहुत सारे स्टेंजा हैं, मैं अंतिम बताती हूँ. वैसे तो हर साल हम 2 अक्टूबर मनाते हैं, वैसे तो हर साल हम 2 अक्टूबर मनाते हैं, झंडा फहराकर याद करते छुट्टियाँ मनाते हैं. पर हमने आज तुम्हारी हर बात भुला दी, लेना होगा तुमको दूसरा जन्म ओ गांधी.
0: बहुत ही अच्छा. और आज के जो मतलब वही हम कहते हैं ना कि जो ऑथर हैं या जो कवि हैं या कवित्री हैं वो बड़े ही सटीक और सरल अंदाज में जो समाज के जो विभिन्न विभिन्न समस्याएं हैं, जो पहलू हैं, जो एक आम आदमी अपने दृष्टिकोण से जैसे देखता है तो वो उस तरह से उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता जो कि एक ऑथर या पोएट या पोएटिस्ट उसे बहुत ही अच्छे तरीके से उजागर, बड़े सभ्य अंदाज में उसे उजागर करते हैं और कहीं ना कहीं से सोल्यूशन निकलता है. इसीलिए इस बात को बड़ी इज्जत भी दी जाती है हमारी सोसाइटी में जितने पोएट्स हैं. लेकिन आज का दौर थोड़ा सा अलग हो गया, अलग तरह की राइटिंग को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है. लेकिन क्योंकि मैंने, आपने मुझे बताया कि आप जो थी वो आप शादी के बाद आप दुबई चली गई, तो दुबई और कतर जैसे देशों में जो आपका प्रवास रहा उसके दौरान हिंदी भाषा के साहित्य के प्रचार और प्रसार को लेकर किस तरह का आपका अनुभव रहा?
1: हिंदी प्रचार का तो मुझे यहाँ पर अनुभव ज़्यादा अच्छा मिला क्योंकि वहाँ तो मैंने स्कूल में ही पढ़ाया था.
0: अच्छा.
1: और यहाँ पर क्या हुआ कि जब हम आए तो मेरे पति के ऑफिस में ये था कि उनको एक हिंदी अध्यापिका की ज़रूरत थी क्योंकि वो अपने वर्कर, अपने जो मैनेजर वगैरह फ्रेंच लोग थे उनको हिंदी सिखाना चाहते थे क्योंकि उन्हें वर्कर्स के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए.
0: अच्छा.
1: तो फिर वहाँ पर उन्होंने ये हिंदी टीचर की उनको ज़रूरत थी तो मैंने अपना CV उधर डाला और उन्होंने अप्रूव कर लिया. और बड़ा अच्छा वो समय निकला, बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि अनेक देशों के लोग थे, उनके साथ बातें करने में, उनको जानने में और अपने अपने देश के बारे में बताने में, अपनी हिंदी के बारे में बताने में बहुत अच्छा.
0: बहुत ही अच्छा अनुभव, क्योंकि आपने कहा आपने बहुत सारे विभिन्न देशों के लोगों को जो है वो हिंदी सिखाया, तो आपका अनुभव तो बहुत ही अद्भुत रहा. तो कोई आपकी विशेष स्मृति है जो आपके दिल के बड़े करीब है जब आप सिखा रही थी?
1: जब सिखाए थे तो मतलब एक तो मतलब जैसे हम लोग जब हिंदी पढ़ते थे तो हम लोग व्याकरण में ये नहीं देखते थे कि यहाँ पर मैंने क्यों आया, मैं क्यों आया, काके की क्यों आई. पढ़े थे हमने ये कर्ण करता नहीं कर्म को कर्ण से, लेकिन हमने इस पे ध्यान नहीं दिया था कि कहाँ पर कैसे आना चाहिए. हमारी व्याकरण की किताबों में भी होता है लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया था. तो जब वो लोग पूछते थे कि ऐसा क्यों, मैं गया और मैंने खाया, पास्ट टेंस है लेकिन दोनों में अंतर क्यों है, तो फिर ध्यान दिया. हाँ, सकर्मक क्रिया कर्मक क्रिया बताई थी तो फिर उन चीज़ों को समझाती थी एक एक चीज़ अपने आप समझ के कि हाँ ऐसा इसलिए होता है. और एक जो स्मृति है कि जैसे हम लोग हिंदी में बहुत ज़्यादा अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं.
0: हाँ जी.
1: तो वो लोग मुझसे कहते थे नहीं नहीं नहीं, जैसे मैंने कहा कि मैं तुम कल कहाँ गए थे, इस पर कोई वाक्य बताइए. हाँ. तो वो कहते थे कि मैं स्विमिंग पूल गया. तो मैं कहा ठीक है. नहीं, ठीक क्यों है, स्विमिंग पूल की हिंदी तो पहले बता दीजिए. तो अब मैं कहूँ कि स्विमिंग पूल को तरण ताल बोलोगे आप, क्या बोलोगे. तो कहते
0: मुझे तो पता
1: नहीं, हम बोल लेंगे, हम तरण ताल बोलने में हमें तकलीफ नहीं है, हम बोल सकते हैं. तो मैं कहा लेकिन यहाँ हिंदी वाले लोग नहीं समझ सकेंगे.
0: ये तो इसको समझने के लिए पूछेंगे अंग्रेजी में, इसको कुछ बोल दीजिए.
1: तो ये चीज मुझे बहुत टच कर गई कि हम लोग हिंदी में हमने इतने ज्यादा अंग्रेजी शब्द लगा दिए हैं कि हम लोग अपनी हिंदी में शुद्धता खोते जा रहे हैं.
0: और कहीं ना कहीं इस भाषा की अगर मैं वैसे भी बात करूं तो बच्चों को आज घर में जो है वो पेरेंट्स यही सिखाते हैं कि आप इंग्लिश में बात कीजिए. घर में भी बच्चे इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं, तो ऐसे में हिंदी या फिर कोई और भी दूसरी जबान जो है वो बच्चा कैसे इतना आसानी सीखेगा. और यही शायद वजह है कि हिंदी से बच्चों की रुचि भी धीरे धीरे कम हो रही है.
1: हाँ, हम लोगों को कम से कम अपनी जो भाषा है उसको घर में तो बोलना ही चाहिए. अंग्रेजी बच्चे बाहर आराम से सीख जाते हैं.
0: और अच्छा है कि जितनी ज्यादा आपको लैंग्वेजेस आ जाए. हाँ. तो कोशिश ये रहे कि भाई
1: आगे की और लैंग्वेज सीखने में भी बहुत इजी हो जाता है, आसान हो जाता है जब हम दो तीन लैंग्वेज को जानते हैं तो.
0: बातचीत

0: घर, ऑफिस और हमारा वजूद, सब संभाल कर रख लेने की ताकत और कुछ कर गुजरने की हिम्मत ख्वातीन में कुदरती है।
1: जी, जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे ये भी लाइन बड़ी जो है वो अच्छी लगी, जब आपने कहा कि पहली बार हिंदी दिवस समारोह में आपने मंच पर जो है वो अपनी कविता प्रस्तुत की, तो वो आपका अनुभव

0: कैसा था?
1: हाँ, वो अनुभव बहुत अच्छा था.
0: अच्छा.
1: क्योंकि शो में क्या होता है कि आप जब माइक पकड़ के खड़े होते हैं तो थोड़ा सा आपको डर भी लगता है, और जब सुनाने के बाद इतनी सारी तालियां मिलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है. एक आत्मविश्वास जागता है और एक आपको एक पहचान मिलने लगती है.
2: नाजिया जी, और अभी 6 सितंबर को हमने प्रोफेसर हिम्मत सिंह सिन्हा की याद में ICC में एक प्रोग्राम किया था कतर में, और वो प्रोग्राम वाकई बहुत ही अच्छा रहा. महिला काव्य मंच ने जिस तरह से हमको सपोर्ट किया है शुरू से, वो वाकई काबिले तारीफ है. और महिला काव्य मंच की कवियत्रियाँ भी जो उस दिन स्टेज पे आई, वो भी वाकई अद्भुत था. बहुत ही क्या कहना चाहिए, अच्छी कविताएं उन्होंने पढ़ के सुनाई.
1: तो बहुत अच्छा अनुभव था. सब लोगों ने जब तारीफ की, क्या आपने लिखी है, ये बहुत सुंदर आपके भाव, जो हम भी यही फील करते हैं कि उसमें था कैसे भूलूं मैं अपना प्यारा हिंदुस्तान. तो बहुत अच्छा सबको लगा. और उन्हीं लोगों के जब दूसरों से हमें इतना ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है, तारीफ मिलती है, तो कलम और ज़्यादा दौड़ती है.
0: अच्छा, यहाँ पर भी आप कतर में जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, आप उसे हेड कर रही हैं, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने का आपका क्या मतलब, क्या आपने सोचा था, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस है और कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन की एक्चुअली शुरुआत हुई?
1: जी, ये ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली

0: उसमें हम लोग हर महीने ऑनलाइन ही काव्य पाठ करते हैं, उसमें कथा के सब कवि कवित्रियाँ होते हैं और बाहर के देशों के भी होते हैं. तो इस तरह से हमारा पूरे विश्व के कवि कवित्रियों से हमारा संपर्क बढ़ जाता है, सबको सुनने को मिलता है, हाँ सबके विचार जाने को मिलते हैं.
1: क्या बात है. तो इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू सिर्फ कवि आप लोग इकट्ठे होकर जो है वो एक दूसरे के कविताएं सुनते हैं, या इसके अलावा भी कुछ और एक्टिविटीज आप करते हैं कि जिससे बच्चों में भी इस तरह का शौक जो है वो बढ़े या प्रमोट?
0: हाँ, इस बारे में अभी सोचा नहीं है, लेकिन अभी जो हमने यहाँ पर एक कार्यक्रम किया था, हमने हिम्मत सिंह जी के उसमें कार्यक्रम किया था, तो उसमें जो हिम्मत जी सिंह जी के बारे में जो उनका शिक्षा का उन्होंने इतने कार्य किए, उन्होंने दर्शन क्षेत्र में बहुत कार्य किए, तो उसके बारे में गोष्ठी रखी थी. और एक बच्चा जो उनसे मिला था उसने भी बहुत अच्छा, ईशान था, उसने बहुत अच्छा बोला. तो इस तरह से मीन्स हम लोग गोष्ठी करते हैं और आगे और भी करते रहेंगे, ये हमारा कोशिश है.
1: अच्छा, कितनी किताबें अभी तक आप पुस्तकें जो हैं वो लिख चुके हैं?
0: जी, अभी मेरी वैसे प्रकाशित तो दो हुई हैं, लेकिन मेरी दो किताबें और बिल्कुल प्रकाशाधीन हैं, कि जैसे एक तो आओ हिंदी सीखें करके भी है. अच्छा. और एक मेरी कविताओं गजलों की है, तो वो अभी उसमें बस थोड़ा सा ये होता है, इसमें ये अभी चेंज करना है, वो करना है, और बाकी दो किताबें मेरी प्रकाशित.
1: लिखने की प्रेरणा जो है वो कहीं ना कहीं माहौल से या फिर घर में कोई ऐसा होता है उससे भी मिलती है, तो आपकी रोल मॉडल कौन रहे?
0: मेरे रोल मॉडल एक्चुअली मेरे दादाजी बहुत अच्छा बोलते थे, ये मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि वो लिखते थे कि नहीं, लेकिन जब भी वो बैठते थे तो कुछ ना कुछ कविताओं में हम लोगों को प्रेरित करते रहते थे, तो उनकी आवाज़ में भी बहुत दम था. तो मैं कह सकती हूँ हाँ, उनसे मुझे प्रेरणा मिली है, क्योंकि जब भी वो हमारे पास बैठते तो कुछ ना कुछ सुनाते रहते थे. और बाकी लिखने की प्रेरणा तो यही है, अध्ययन वगैरह करते हैं तो शुभ जागते हैं.
1: बहुत ही अच्छी बात. अच्छा, आपकी जो रचनाएं हैं वो कई विश्व रिकॉर्ड्स और साझा संकलों में प्रकाशित हुई हैं, तो इस अंतर्राष्ट्रीय पहचान को आप कैसे देखती हैं?
0: बहुत अच्छा लगता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय आपको पहचान मिलती है, गौरव प्रतीत होता है कि हाँ, अपनी लेखनी पर भी गर्व होता है कि और ये सब कुछ ईश्वर की कृपा से होता है कि हम सोचते कभी कभी सोचते कुछ और लिखा कुछ और जाता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि जब एक पहचान बनने लगती है आपकी, और नारी होने के बाद तो होने उसमें तो और ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ, क्योंकि हम अपना बच्चे बड़े हो गए अब, तो हम पूरा लाइफ उसमें निकल जाती है बच्चों के साथ में.
1: सही, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई. अच्छा, आप नहीं हैं शिक्षिका, और आपने बताया कि हिंदी भाषा को आपने बच्चों, मतलब हिंदी भाषा को पढ़ाया भी है बच्चों को.

0: हम कोशिश करें उनसे हिंदी में बात करने की. और जैसे कुछ गेम की मैंने एक पंक्ति बोली, तुम दूसरी पंक्ति बोलो, इस तरह से कुछ गेम के थ्रू. वैसे तो उनको बोल मतलब उनके साथ हम इसी तरह से बात कर सकते हैं कि अपने जो भी है कुछ हिंदी में बताओ, अच्छा लगेगा सुन के. उनसे तो बातें जितनी ज़्यादा करेंगे वो उतने ज़्यादा सहज होंगे बात करने में.
1: अच्छा, अभी आप जो है और किस तरह की राइटिंग्स की तरफ जो है खुद को जो है आपने डेडिकेट किया है, और आने वाले टाइम में किस तरह की जो है आपके राइटर्स हमें पढ़ने के लिए मिल सकते हैं?
0: अभी मैं थोड़ा गज़लों पे भी ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ.
1: अच्छा,
0: तो गज़ल की तरफ भी थोड़ा सा मेरा रुझान बढ़ा है. और छंदों, इससे पहले मैंने छंदों की तरफ ज़्यादा कोशिश की थी लिखने की. तो मुझे एक्चुअली शब्दों से खेलना बहुत अच्छा लगता है.
1: अच्छा,
0: तो जब इसमें छंदों में, गज़लों में बहुत कुछ, जब हम अनुप्रास अलंकार में लिखते हैं या एक शब्द के दो तीन मीनिंग निकलते हैं तो उसको लिखते हैं, तो वो बहुत अच्छा. तो इन्हीं चीज़ों में मैं आगे
1: बढ़ रही हूँ. अच्छा, लिखने की जब बात आती है तो कहा जाता है कि पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है. अगर आप बहुत सारे जो हैं वो पोइट्स को या ऑथर्स को पढ़ेंगे तभी आप अच्छा लिख पाएंगे. तो आपके एक तो मुझे बताइए कि प्रिय कवि कौन है, और दूसरा जब आप लिखती हैं तो किस तरह के माइंडसेट और किस तरह के अप्रोच जो है वो अडॉप्ट करती हैं, जैसे हमारे अगर यंगस्टर्स हैं, बच्चे सुन रहे हैं और वो भी इस तरह से राइटिंग स्किल्स को और इम्प्रूव और इन्हांस करना चाहें, तो उन्हें उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे?
0: जैसे राइटिंग में तो मतलब हमने जो स्कूल में पढ़े थे, मेनली रामधारी सिंह दिनकर जी हो गए, सुमित्रा नंदन पंत हो गए, महादेवी वर्मा जी हो गई, इनको पढ़ते थे. लेकिन कभी कभी इनकी हिंदी, जैसे महादेवी वर्मा जी की हिंदी कठिन है, तो जिनकी हिंदी सरल होती थी थोड़ा, हमें वो उनका ज़्यादा अच्छा लगता था. तो मीन्स हम लोग अभी जब साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा सुंदर शब्द आते हैं तो उन पर हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान जाता है कि हाँ ये वर्ड कितना अच्छा है. तो ये सब इसी से मैं प्रेरित होकर फिर लिखने की कोशिश करती हूँ.
1: वेरी गुड. बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा इस शॉर्ट सॉन्ग ब्रेक के बाद.

0: घर, ऑफिस और हमारा वजूद, सब संभाल कर रख लेने की ताकत और कुछ कर गुजरने की हिम्मत ख्वातीन में कुदरती है।
1: अच्छा, आप एक तो राइटिंग आपका शौक है, इसके अलावा और क्या क्या आपकी हॉबीज हैं, और अगर टाइम मिलता है तो क्या करना पसंद करती हैं?
2: इसके अलावा तो फ्रेंड्स वगैरह के साथ कभी बाहर निकल गए या उनके साथ बैठ कर गप्पे मार ली, और कुकिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो कुकिंग तो करते ही हैं, और थोड़ा पेड़ पौधों के साथ समय निकाल लिया।
1: तो आप अपनी जो सोशल लाइफ है, जो जहाँ आप एक्टिव भी हैं, आप एसोसिएशन को भी हेड कर रही हैं और भी काम आप कर रही हैं आई एम श्योर, तो आप अच्छे से बैलेंस कर पाती हैं, टाइम अच्छे से मैनेज हो पाता है?
2: हाँ, टाइम मेरा मैनेज हो जाता है। मुझे थोड़ा सा ये भी है कि मैं कहाँ पर हाँ कहनी है, कहाँ पर ना कहनी है।
1: अच्छा,
2: उसको भी थोड़ा सा, क्योंकि आप हर चीज़ में हाँ हाँ कहते जाएंगे तो उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का टाइम का ध्यान रखती हूँ कि क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस पर ध्यान देती हूँ।
1: बहुत सही। आगे आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं?
2: आगे मेरा यही है कि अपने हर साल अगर मेरी एक किताब छप जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, और बस साहित्य की सेवा कर सकूं, हिंदी की सेवा कर सकूं, अपने देश के लिए कुछ कर सकूं, यही है,
1: यही कामना है
2: जी।
1: अच्छा, आपके अनुसार जो प्रवासी जीवन है उसमें हिंदी भाषा और साहित्य को जीवित रखने के लिए सबसे ज़रूरी तत्व क्या है?
2: हिंदी भाषा और साहित्य को जीवित रखने के लिए जी, तो सबसे जरूरी तत्व तो यही है कि हम लोग पहले तो हिंदी में ही बात करें। अगर हम हिंदी में बातें करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी आपस में हम एक ही शहर के हैं, हिंदी बोलने वाले हैं, लेकिन हम तब भी हिंदी में बात करने में आजकल कंफर्टेबल नहीं है कह सकते हैं, या फिर हम बस बाहर जाते हैं तो अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करते हैं, ये कह सकते हैं। तो हमें आपस में हिंदी में बात करें, क्योंकि उससे जो दिल की बातें होती हैं, आप आध घंटे एक घंटे खूब लंबी बात कर सकते हैं जब आप हिंदी में बात करते हो। तो कोशिश करें कि हाँ, बाहर हम दूसरे कंट्री में रहते हैं तो इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें इंग्लिश ही बोलनी है जब बाहर किसी से भी बात करनी है, लेकिन जब हम आपस में अपने देश के लोगों से मिलते हैं तो कोशिश करें कि हिंदी में बातें करें, हिंदी में अपनी दिल के
1: विचारों को व्यक्त करें
2: जी।
1: बिल्कुल। अच्छा देखिए, लाइफ सबकी जो है वो शायद दिखती आसान है लेकिन आसान होती नहीं है, किसी ना किसी मोड़ पे कहीं ना कहीं सभी ने चैलेंजेस फेस किए होते हैं। तो

0: लाइफ में कोई ऐसे चैलेंजेस थे जिन्होंने आपको और स्ट्रॉन्ग बनाया एज अ वुमन, और कोई स्टोरी कोई कहानी आप शेयर करना चाहें हमारी ऑडियंस के लिए इंस्पायर करने के लिए उन्हें?
1: मतलब चांस ऐसा होता है कि जैसे कभी कभी आपके घर में ही जैसे हस्बैंड हैं वो कभी मना करते हैं कि नहीं इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, उस पर घर में ज़्यादा ध्यान दो, तो ये चीज़ें भी हो जाती हैं कई बार, अपने घर में ही चैलेंजेस आ जाते हैं। और बाकी वैसे ईश्वर की कृपा ही कि मुझे ज़्यादा चुनौतियों का सामना जीवन में नहीं करना पड़ा है, और जहाँ मैंने चाहा ईश्वर ने मेरा साथ दिया है, तो
0: बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू शालिनी जी कि आपने टाइम निकाला और आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की।
1: थैंक यू सो मच राजेश,
0: थैंक यू। इसी के साथ दोस्तों वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, इंशाल्लाह नए एपिसोड में नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत।

0: 107. एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीद सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी. स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीद, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम. हदीद टू हैबिट, हदीद टू हैबिट. दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए.
1: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए. स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर एक बजे से सिर्फ FM 107 पर. स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं.
2: आपने सुना हमें ऑन एयर. नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: इलाज सिर्फ दवा नहीं,
2: परहेज और रोजमर्रा की देखभाल भी जरूरी है। प्रोग्राम हेल्थ गाइड में डॉक्टर फौजिया शफीक देती हैं वाज़े रहनुमाई,
1: मिथ्स की खोल, प्रैक्टिकल टिप्स, हर उम्र के लिए सेहत के मशवरे,
2: कंसल्टेंट और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ।
1: FM 107 पर पेश करते हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफी के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।

0: प्रोग्राम हेल्थ गाइड के साथ फौजिया शफीक आपके साथ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जिस प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे, अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे क्योंकि गर्मी का मौसम है और इसमें हमें अपने पानी का, अपनी डाइट का ख्याल रखना है ताकि हम छोटे छोटे मेजर्स अपना कर अपनी सेहत को बरकरार रख सकें या बेहतर बना सकें। जैसे जिसका कि आप मालूम है हम मुख्तलिफ मौजूआत पर बात करते हैं, तो आज भी एक बहुत अहम मौजू अपनाने जा रहे हैं और वो ये कि इन्फेक्शन्स होती हैं और किस तरह से होती हैं इन्फेक्शन्स डिजीज़ पर आज हम बात करेंगे जो कि मुख्तलिफ टाइप्स की हैं। आज का ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड है और हम आज आपकी कॉल्स जो हैं वो रिसीव नहीं कर सकेंगे। लिसनर्स, आप जानते हैं कि हमारे साथ होते हैं डॉक्टर साहिबान, तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वकार मुनीर जो कि कंसल्टेंट हैं सीडीसी में इन्फेक्शियस डिजीज़ में। जैन जिसमें कहा कि आज हम बात करेंगे इन्फेक्शियस डिजीज़ की, तो सबसे पहले हम डॉक्टर से ये पूछेंगे कि ये इन्फेक्शियस जो डिजीज़ हैं ये हैं क्या, या इन्फेक्शन की वजह से जो डिजीज़ होती हैं वो क्या हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में जैसे कि देखा गया है और स्टैटिस्टिक के मुताबिक कि ये भी बहुत बड़ी कॉज है डेथ की। जी
1: तो इन्फेक्शन जो है ये किसी भी वजह से कोई ऑर्गेनिज्म जिस्म में दाखिल हो जाए और फिर जो है वो जिस्म को नुकसान पहुँचाना

0: शुरू कर दे तो इसको इन्फेक्शन कहते हैं
1: जी।
0: तो इसमें मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, इसमें सबसे पहले वायरसेस हैं, तो वायरसेस जो हैं वो बिल्कुल माइक्रोस्कोप से भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं, ख़ास किस्म की खुरदबीन होती है, और ये मुख्तलिफ इन्फेक्शन कर सकते हैं, चेस्ट की इन्फेक्शन, ब्रेन की, पेट की, और इस तरह जो है ये इन्फेक्शन करते हैं। और इसके अलावा बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया जो है वो जिनके लिए हम एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं, तो ये भी जो है मुख्तलिफ जगहों की इन्फेक्शन कर सकते हैं, जैसे चेस्ट की है, और नमोनिया कर सकते हैं, फूड पॉइजनिंग हो सकती है इससे, ब्रेन की इन्फेक्शन हो सकती है, यूरिन की इन्फेक्शन हो सकती है। और फिर इसके अलावा जो थोड़े कम कॉमन चीज़ें हैं, जैसे पैरासाइट्स हैं, तो जैसे पेट के कीड़े, वर्म्स वगैरह होते हैं, तो उसको वो भी इन्फेक्शन कर सकते हैं, और वर्म्स और जगहों पे भी हो सकते हैं, आइज में हो सकते हैं, फेफड़ों में हो सकते हैं, स्किन में हो सकते हैं। और इसके अलावा जैसे पैरासाइट्स हैं, जैसे मलेरिया है, वो भी एक ख़ास किस्म का जो है वो प्रोटोजोआ है, उससे होता है। और इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन होती है, जिसको उर्दू में हम पपूंदी कहते हैं।
1: अच्छा।
0: तो इससे जो है वो मुख्तलिफ बीमारियाँ हो सकती हैं, ख़ासतौर पर उन लोगों में जिनकी किसी वजह से मुदाफ़ती निज़ाम कम हो जाता है, तो उनमें जो है फिर ये फंगल इन्फेक्शन हो सकती हैं, आमतौर पे चेस्ट और वगैरह को इन्फेक्ट करती हैं
1: जी। इसमें डॉक्टर किस टाइप्स की इन्फेक्शन हैं, जैसे कि वायरल कहते हैं या एंटीबायोटिक, वो जो है इसी तरह से मुख्तलिफ जो टाइप्स के वायरसेस या बैक्टीरिया होते हैं, तो वो जो इन्फेक्शन हैं वो हो सकती हैं। हम बात करना चाहेंगे पहले जैसे कि वायरल जो हैं, जैसे आमतौर पर नज़ला ज़ुकाम है, या अभी कुछ अर्सा पहले COVID-19 से हम गुज़रे, और कौन सी हो सकती हैं इस तरह से?
0: जी, वायरसेस जैसे मैंने आपको बताया कि वायरसेस जो हैं ये आमतौर पे सांस से ट्रांसमिट हो सकते हैं, या खुराक से भी ट्रांसमिट हो सकते हैं, या फिर ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से ट्रांसमिट हो सकते हैं, या कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट हो सकते हैं
1: जी।
0: तो ये एक दफ़ा जिस्म में दाखिल होकर फिर इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो अगर तो ये जिस्म के ऊपर वाले, जैसे ऐसे सांस के ऊपर वाले हिस्से में इन्फेक्शन कॉज करें, तो उससे जो है ये इससे मतलब गला जैसे जिस ख़राब हो सकता है, कानों में इन्फेक्शन हो सकती है
1: जी,
0: और नाक का बहना जिससे ज़ुकाम हम कहते हैं, अगर ज़ुकाम बिगड़ जाए जिसे हम कहते हैं, तो इससे ये जो है फेफड़ों में अगर इन्फेक्शन हो जाए, तो इससे निमोनिया भी हो सकता है, जैसे कोविड से कोविड-19 से कोरोना वायरस से निमोनिया भी हो सकता है, और जिसको अगर ये इन्फेक्शन फेफड़ों तक ना जाए तो उसको हम अपर इन्फेक्शन कहते हैं, वो भी हो सकती है
1: ठीक।
0: और इसी तरह फ्लू से भी, इन्फ्लुएंजा से भी हो सकता है, और इसके अलावा जो कुछ वायरसेस हैं जैसे नोरो वायरस है, रोटा वायरस है, वो पेट की इन्फेक्शन कर सकते हैं, जिससे डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है बहुत ज़्यादा, और बाज वायरसेस ऐसे हैं जो स्किन पे इन्फेक्शन करते हैं, जैसे हर्पीस है, चिकन पॉक्स है
1: जी,
0: मीजल्स है, खसरा जिसे कहते हैं, तो इससे स्किन पे स्किन रैशेस हो सकते हैं, या आजकल जो ये एमपॉक्स जो है, मंकी पॉक्स इसके बारे
1: अच्छा,
0: में बताया, तो ये भी जो है वायरस है
1: जी।
0: और इसके अलावा ब्रेन में इन्फेक्शन कर सकते हैं कुछ वायरसेस जो हैं, तो और या लिवर की इन्फेक्शन कर सकते हैं, हेपेटाइटिस होता है
1: जी।
0: तो इस तरह मुख्तलिफ इन्फेक्शन जो है ये वायरसेस से होती हैं
1: जी। ठीक है डॉक्टर, हम कुछ हम स्पेसिफिक उस पर चलेंगे, जैसे कि जो हाथों की हैंड फुट एंड माउथ डिजीज होती हैं, उसमें क्या क्या अलामतें हो सकती हैं, और ये कौन सी जो हैं वायरस या बैक्टीरिया जो हैं वो उन्हें उनकी वजह से होती हैं?
0: हाँ जी, वायरल इन्फेक्शन अगर स्किन में कॉज हो तो इसको हम ना मतलब रैशेस कर सकते हैं, तो मुख्तलिफ वायरसेस के मुख्तलिफ तरह के रैशेस होते हैं, जैसे आपने बात की हैंड फुट एंड माउथ डिजीज है, भी एक वायरल इन्फेक्शन है
1: जी।
0: तो इससे ये होता है कि ये एक दफ़ा एक शख्स को अगर हो जाए, जैसे बच्चों में, तो एक बच्चे से दूसरे बहन भाई में भी ट्रांसफर हो सकती है।
1: अच्छा।
0: तो इससे जिस्म पे छोटे छोटे से जो है दाने बनते हैं, जिसमें खारिश भी होती है और पेन भी हो सकता है, और ये बाज़ूकात बढ़ के जो है वो पूरे जिस्म पे भी फैल जाते हैं, लाल रंग के निशान होते हैं, और बाज़ूकात इसमें थोड़ा बहुत पानी भी भरा होता है
1: जी।
0: और पाम्स और सोल्स पे हो सकते हैं, तो ये इसको इसलिए हैंड फुट एंड माउथ, और मुंह के अराउंड मुंह में छाले बहुत बन जाते हैं, जिसमें बहुत तकलीफ होती है बच्चों को। तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं एक हफ्ते तक। इसके अलावा जैसे स्किन

0: की इन्फेक्शन है, जैसे चिकन पॉक्स है उसको वेरिसेला हम कहते हैं, वो बच्चों में होता है बचपन में, तो उसकी वैक्सीनेशन भी की जाती है ताकि ना हो।
1: और बिल्कुल ये वैक्सीनेशन जो है वो स्केड्यूल में भी,
0: जी इसकी चिकन पॉक्स वैक्सीनेशन स्केड्यूल में अब इंक्लूडेड है कतर में भी और बहुत सारे मुल्कों में।
1: बिल्कुल।
0: इसके अलावा मीजल्स है जिसको खसरा कहते हैं, या जर्मन मीजल्स है जिसको रूबेला कहते हैं, तो जिसमें और तरह की इन्फेक्शन होती है। चिकन पॉक्स में आमतौर पर वो पानी से भरे हुए दाने निकलते हैं और फिर वो उनका जो है वो क्रस्ट हो जाते हैं, यानी उनके ऊपर एक लेयर आ जाती है, फिर वो लेयर भी उतर जाती है और ख़त्म हो जाता है, बुखार होता है उससे। और मीजल्स जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसमें जो दाने होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं नुक्तों की तरह और बहुत ज़्यादा तादाद में निकलते हैं पूरे जिस्म पे,
1: ठीक है,
0: और उसमें मतलब उस क्रस्टिंग नहीं होती, यानी वो पानी से भरे हुए नहीं होते, तो वो और तरह की इन्फेक्शन होती है। मीजल्स की भी वैक्सीनेशन है बचपन में की जाती है, बहुत अरसे से 1960 से की जा रही है, तो MMR वैक्सीन जो है वो लगाई जाती है। ये इन्फेक्शन जो है बच्चों में तो बहुत मतलब जब होती हैं तो उनमें भी ख़तरनाक हो सकती हैं, जैसे खसरा है बच्चों में बहुत ख़तरनाक हो सकता है, चिकन पॉक्स इतना ख़तरनाक बच्चों में नहीं होता लेकिन बड़ों में ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है।
1: आमतौर पर कहा भी जाता है कि अच्छा किसी के अगर कोई बड़ा है एडल्ट है और उसे अगर चिकन पॉक्स हो गए तो क्यों वो,
0: क्योंकि बड़ों में ये ज़्यादा जो है वो वायरस जो है उसकी वजह से इम्यून सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट हो सकता है, फिर ये और जगहों पर फैल जाता है सिवाय स्किन के अलावा, जो है ये चेस्ट में निमोनिया कर सकता है, ब्रेन में मेनिंजाइटिस कर सकता है, इसको गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं,
1: अच्छा,
0: ये लिवर में हेपेटाइटिस कर सकता है, तो बहुत खतरनाक होता है। इसलिए अगर किसी बड़े शख्स को ऐसे दाने निकल आए जिनमें जो है वो बुखार हो और चिकन पॉक्स के अलामात जाहिर हो जाएं, तो फिर उनको लाजमी अगर 12 साल से ज्यादा उम्र है तो डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, बच्चों को भी करना चाहिए, तो ताकि वो उनको दवा दे सकें, क्योंकि उसकी एक खास मेडिसिन होती है जिससे फिर वो उसका ड्यूरेशन कम हो जाता है रैश का और ठीक हो जाते हैं।
1: ठीक है, इसमें जो इसी तरह से अगर हम बात करें आम जुबान में, वैसे तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहा जाता है, मगर फूड पॉइजनिंग की बात करें तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं?
0: हाँ जी, फूड पॉइजनिंग आमतौर पे उन चीज़ों से या गैस्ट्रोएंटेराइटिस उन जो है मुख्तलिफ चीज़ों से हो सकता है, वायरसेस से भी हो सकता है, बैक्टीरिया से भी हो सकता है और पैरासाइट्स से भी हो सकता है, लेकिन पैरासाइट्स वाला आमतौर पे इतना सिवियर नहीं होता।
1: अच्छा।
0: तो बैक्टीरिया से जो होता है वो ज़्यादा सिवियर होता है, उससे बुखार आ सकता है और डायरिया बहुत सिवियर हो सकता है, उस डायरिया में ब्लड आ सकता है, पस आ सकती है और पेट में बहुत शदीद मरोड़ उठना, पेट में दर्द होना, बहुत तेज बुखार चढ़ जाना, तो ये अलामत हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो है ये फूड पॉइजनिंग हुई है। वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से जो है वो उसमें मत कै हो जाना और पेट में दर्द होना, बुखार इतना तेज नहीं होता उसमें और वो जल्दी ठीक हो जाता है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। बैक्टीरियल में आमतौर पर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो वो डॉक्टर ही इसको डायग्नोस कर सकते हैं, अगर तबीयत ज्यादा खराब है, दस्त बहुत ज्यादा आ रहे हैं 6-7 दफा दिन में और उसमें ब्लड है और बहुत तेज बुखार है और तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो फिर एक तो पानी की कमी को आपने पूरा करना है उस उसकी, और दूसरा अगर उसको एंटीबायोटिक चाहिए तो फिर जाहिर है उसके टेस्ट करके डॉक्टर से रजू करना है।
1: ठीक, और इस तरह से और प्रिवेंशन उसकी वही है कि हम उन चीज़ों से दूर रहें जो बाहर की खाने हैं या क्या।
0: हाँ जी, अपने हाथों को अच्छी तरह धोएं, हर वक्त सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें या साबुन से अच्छी तरह हाथों को धोएं, और उसके अलावा जो है अपना खाने पीने की अशिया जो इस्तेमाल करें वो अच्छी तरह पकाई गई हों, अगर कच्ची चीज़ें खा रहे हैं जैसे फलियाँ सब्जियाँ हैं तो उनको या तो अच्छी तरह धोया गया हो या उनके छिलके उतार दें, या फिर उनको जो सब्जियाँ पक सकती हैं उनको अच्छी तरह पका लें, क्योंकि हीट से बहुत सारे जरासीम जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, जिस चीज़ को आप पका के फ्रेश खाएँ तो वो उस चीज़ के जरासीम जो है वो ख़त्म हो जाते हैं।
1: जी ठीक, इस तरह जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हैं जैसे COVID-19 हम उसमें से गुजरे, इन्फ्लुएंजा है, RSV है, और इनके बारे में मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि क्या ये वायरल ही हैं या इसमें सुपर एडेड जो हैं वो इन्फ्लुएंजा उसमें इन्फेक्शन होती हैं, जैसे आपने पहले बताया कि निमोनिया वगैरह जो है।
0: हाँ जी, तो ये आमतौर पे जो वायरल इन्फेक्शन जो चेस्ट की होती हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की यानी फेफड़ों की, ये आमतौर पे सर्दियों में ज़्यादा होती हैं, तो अभी तो हम गर्मियों के सीज़न में हैं लेकिन गर्मियों में भी हो सकती हैं, लेकिन सर्दियों में ज़्यादा होती हैं, सितंबर से लेकर मार्च तक यहाँ मतलब सर्दियों के महीने होते हैं।

0: से मौसम ज़रा बदल जाता है तो उसमें ये इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाती हैं।
1: ठीक है,
0: तो इसमें कॉमन कोल्ड हो सकता है जिसको आम नज़ला ज़ुकाम कहते हैं, नाक बहना, नाक बंद हो जाना, हल्का बुखार होना, खांसी होना हल्की, तो ये खुद बहुत ठीक हो जाता है।
1: ठीक है,
0: इसके अलावा जो है इन्फ्लुएंजा है जिसको जिसका वैक्सीनेशन भी की जाती है, जो ज़्यादा ख़तरनाक होता है, जो निमोनिया कर सकता है, जिनमें इम्यूनिटी कम है उनमें ज़्यादा सिवियर इन्फेक्शन कर सकता है, तो उसके लिए दवाई भी होती है, दवाई दी जाती है, उसकी वैक्सीनेशन भी हर साल की जाती है, जो ज़रूर करवानी चाहिए, अगर डायग्नोस हो जाए तो उसकी मेडिसिन लेनी चाहिए जिससे उसका ड्यूरेशन और इंटेंसिटी कम हो जाती है।
1: इसमें डॉक्टर साहब वैक्सीनेशन की बात की है, पूरी कैंपेन होती है जैसे आपकी तरफ से भी जो है वो कहा जाता है कि 6 महीने से लेकर जो ऊपर बच्चे हैं या एक्सट्रीम में जिस तक जो है वैक्सीनेशन ज़रूर वो करवाएं, तो इसमें कुछ अफराद ये समझते हैं कि वैक्सीनेशन करवाई है तो उसके बाद अगर फ्लू होगा तो और ज़्यादा सीवियर होता है, इस पर मैं थोड़ा आपसे पूछना
0: चाहूं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आमतौर पर काफ़ी सारी मिसकंसेप्शन है फ्लू वैक्सीनेशन के बारे में। आमतौर पर अव्वल सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि ये वायरल डिजीज़ है, माइल्ड होती है, इसलिए इसकी वैक्सीनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं है, ये अक्सर बहुत ज़्यादा सीवियर होती है, बहुत तेज़ बुखार चढ़ना, बहुत ज़्यादा खांसी आना, सांस में तकलीफ़ होना, बाज़ों का तो ऑक्सीजन कम हो जाना
1: जी।
0: और स्पेशली अगर एज कम है या बच्चों छोटे बच्चे हैं बहुत ज़्यादा या बहुत बूढ़े लोग हैं तो आपको मे बी इतना सीवियर ना हो लेकिन आपसे किसी और को बहुत सीवियर हो जाएगा, तो इसलिए। दूसरा, अक्सर लोग ये समझते हैं कि इसकी वैक्सीनेशन अगर एक बार करवा ली जाए तो हर साल करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये भी गलत है। हर साल वैक्सीनेशन इसलिए की जाती है कि वायरस जो सर्कुलेट करते हैं वो चेंज हो जाते हैं, इसलिए वैक्सीनेशन एक साल से ज़्यादा काम नहीं करती,
1: इसलिए हर साल जो
0: हर साल ज़रूरत है। तीसरा चीज़ ये कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी हम वैक्सीनेशन करवाते तो हैं लेकिन हमें फिर भी नज़ला ज़ुकाम ज़रूर होता है, लेकिन ये है कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो नज़ला ज़ुकाम जो आपको हो रहा है माइल्ड सा वो इन्फ्लुएंजा ही है जब तक आप उसको टेस्ट ना करें। और अगर बाज़ औक़ात आपको नज़ला ज़ुकाम हो रहा है तो वो कोई और वायरस, क्योंकि फ्लू लाइक वायरसेस बहुत सारे होते हैं, हर किसी वायरस के लिए हम वैक्सीनेशन नहीं करते, इन्फ्लुएंजा की इसलिए की जाती है कि इससे इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है तो इसलिए इससे हम वैक्सीनेशन करते हैं। चौथा, बाज लोग ये समझते हैं कि अगर इससे वैक्सीनेशन करवाई जाए तो उससे फ्लू हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, ये इस वैक्सीन से फ्लू नहीं हो सकता क्योंकि ये किल्ड वैक्सीन होता है, इसमें जो वायरस होता है वो किल्ड होता है तो वो डिजीज़ नहीं कर सकता। तो उसके बाद वैक्सीनेशन लगाने के बाद वैसे आमतौर पर 1-2 दिन तो हल्का बुखार आना, जगह पे दर्द होना, वैक्सीन वाली जगह पे जिस्म में दर्द होना, सर में दर्द होना, चक्कर आना, मतली होना, ये नॉर्मल है, किसी भी वैक्सीनेशन के बाद इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है तो इससे ये हो सकता है, ये खुद ब खुद 1-2 दिनों में चला जाता है इससे, और या फिर जो पैरासीटामोल वगैरह लेने से आराम हो जाता है, तो इसलिए ये बिल्कुल ख़तरनाक नहीं। इवन हामला ख़वातीन हैं, छोटे बच्चे जिनकी उम्र 6 महीने से ज़्यादा है, बीमार हैं, आपको किसी किस्म की कोई एलर्जीज़ हैं तब भी आप लगवा सकते हैं, आपको एग से एलर्जी है आप फिर भी लगवा सकते हैं। हाँ, किसी शख्स ने कभी फ्लू वैक्सीनेशन लगवाई और उससे उसको बहुत सीवियर किस्म की एलर्जी हो गई, सांस में तकलीफ़ हो गई या जिस्म में बहुत ज़्यादा सीवियर रैशेज आ गए, बहुत रेयर है ये, तो उस सूरत में फिर उनको फ्लू वैक्सीनेशन नहीं करवानी चाहिए, वरना हर शख्स हर साल फ्लू वैक्सीनेशन लगवा सकता है।
1: ठीक है, और ये बिल्कुल एक मिथ ही है कि अगर हमने एक बार लगवाई है उसके बाद जो फ्लू होगा बड़ा सीवियर होगा, और
0: नहीं, ऐसा कोई कंसर्न नहीं है, आपको किसी और चीज़ से फ्लू हो सकता है, और अगर खुदा ना खास्ता उसके बाद फ्लू हो भी तो वो माइल्ड होगा, सीवियर नहीं होगा, अगर इन्फ्लुएंजा हो वो तो।
1: ठीक है जी डॉक्टर, इसमें आर जो है दूसरी RSV उसका मैं पूछना चाहूँगी कि ये जो है वो बच्चों में तो बहुत ज़्यादा है और भी एक्सट्रीम एजेस में है, ये सब इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं।
0: हाँ जी, RSV जो है ये रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस इसको हम कहते हैं, तो ये भी इन्फेक्शन करता है, आमतौर पर ये अपर इन्फेक्शन करता है लेकिन ये चेस्ट में भी इन्फेक्शन कर सकता है, बच्चों में ये जो सांस की छोटी नालियाँ होती हैं उनको उनमें इन्फेक्शन कर देता है, तो इसलिए बच्चों में ज़रा सिवेयर होता है, इसलिए इसमें हम लोग वैक्सीनेशन जो है हामला ख़वातीन की करते हैं
1: जी।
0: और या फिर ऐसे लोग जिन्होंने किसी वजह से अपने फेफड़ों का ट्रांसप्लांट करवाया हो या उन्होंने बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाया हो तो उनकी वैक्सीनेशन हम 60 साल की उम्र से या उससे पहले भी कर सकते हैं। अगर कोई भी ऐसी सांस की बीमारी ना हो या कोई मसला ना हो तो 70 साल की उम्र के बाद हम वैक्सीनेशन कर सकते हैं
1: जी।
0: और सर्दियों में ये वैक्सीनेशन लगाई जाती है, हामला ख़वातीन को भी سردیوں میں ایک بار تھرڈ ٹرائمسٹر میں

0: ये वैक्सीन लगाई जाती है।
1: और तो इसमें जैसे क्या कि विंटर में सर्दियों में इसका पीछे कोई रीजन है?
0: क्योंकि ये आमतौर पर सर्दियों में ज्यादा होता है, तो इसलिए सर्दियों में वैक्सीनेशन करना बेहतर है। लेकिन पूरे साल में कभी भी लगाई जा सकती है, जैसे किसी औरत को अगर थर्ड ट्राइमेस्टर सर्दियों के बजाय गर्मियों में आ गए तो तब भी लगाई जा सकती है।
1: ठीक है, तो डॉक्टर साहब ये जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हैं वो क्या जो एंटीबायोटिक अननेसेसरी यूज होता है उस वजह से भी ज्यादा सुपर एडिड हो जाती हैं या हो जाती हैं, उसका क्या रोल है?
0: आमतौर पे ये वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक तो काम नहीं करती, तो इसलिए वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक लेना तो कोई फायदेमंद चीज नहीं है। अगर आपको वायरस डायग्नोस हुआ है किसी स्वाब कल्चर में वायरस आया है तो उसके लिए तो एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। बाज़ुकात ये होता है कि वायरल इन्फेक्शन इतनी देर तक रहती है कि उसके ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है, जिसको सुपर एडिड बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं। यानी आप खुद डायग्नोस नहीं कर सकते, आपका डॉक्टर डायग्नोस करके बताएगा कि हमें ऐसे लग रहा है कि सुपर एडिड इन्फेक्शन है, ब्लड टेस्ट में ऐसे लग रहा है, या बलगम का रंग बदल रहा है, या बलगम में कुछ बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, या एक्सरे में कुछ ऐसे अलामत हैं, या जिस्म में कुछ ऐसी अलामत हैं, तो फिर उस सूरत में एंटीबायोटिक बाज़ों का दी जा सकती है। लेकिन खुद से एंटीबायोटिक हर बुखार और खांसी के लिए खाना ये सही नहीं है।
1: सही जी डॉक्टर साहब, इसमें जैसे मुख्तलिफ इलाकों में जैसे कि आपने कहा कि ट्रेवल भी करते हैं, जैसे मॉस्किटो बॉर्न जो डिजीज हैं मॉस्किटो की वजह से होती हैं, उसमें मलेरिया है और डेंगू है, इसके अलावा और भी बहुत से इलाकों में हैं, तो उनसे उनके बारे में पूछना चाहूँगी। स्पेशली हम पहले मलेरिया की बात करेंगे जो कि हमारे ममालिक में भी है, बहुत ज़्यादा है।
0: तो मलेरिया जो है ये कॉमन है, तो ये मॉस्किटो से मच्छर के काटने से होता है। बड़ी पुरानी बीमारी है, मतलब हजारों सालों से चली आ रही है, और जब तक इसका ट्रीटमेंट नहीं था तो हर साल हजारों लोग इससे मर जाते थे। आज भी हर साल बहुत सारे लोग इससे जान से हाथ धो बैठते हैं कि उसका ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस सही नहीं होता। तो ख़तरनाक बीमारी है, ख़ासतौर पे उन लोगों में जिनकी इम्यूनिटी कम है या जो जो हामला ख़वातीन है उनमें ख़तरनाक है। या अगर अफ्रीका वगैरह से होकर आए जहाँ फॉल्सपैरम किस्म का मलेरिया होता है, तो उसको बहुत ख़तरनाक है। हमारे मुल्कों में भी मलेरिया होता है, उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे मुल्कों में जो मलेरिया होता है उसकी एक जिसे कहते हैं डॉर्मेंट फेज़ होता है या स्लीपिंग फेज़ होता है, जिसके बाद वो दोबारा भी हो सकता है बग़ैर मच्छर के काटे। तो वो लिवर में जाकर उसका एक फेज़ होता है जिसमें वो लीवर में हाइड कर जाता है और फिर दोबारा एक्टिवेट होकर ये बीमारी दोबारा कर सकता है। तो इसलिए अगर मलेरिया आपको अव्वल तो अगर बहुत तेज बुखार चल रहा है, आप ऐसी जगह पे जहाँ मलेरिया फैल रहा है, या आप ऐसी जगह से होकर आए जहाँ मलेरिया हो सकता था और आपको बहुत तेज बुखार है कपकपी के साथ और बुखार आ जा रहा है, तो इस सूरत में आपको लाजमी है कि आप डॉक्टर से रुजू करें ताकि वो आपके टेस्ट

0: से दवाई खाने से के जी मलेरिया ही होगा, मैं खुद ही दवाई खा लेता हूँ, तो ये खतरनाक होता है।
1: ठीक, कि इस तरह से हमें नहीं
0: करना। और फिर इसकी प्रिवेंशन है कि आप मुख्तलिफ तरीके से मच्छर काटने से जो प्रिवेंशन आप कर सकते हैं कि आप ऐसा स्प्रे या क्रीम यूज करें बाहर से बाहर जाते हैं जिससे मच्छर आपको ना काटें, ऐसे कपड़े पहने जो फुल लेंथ हों ताकि मच्छरों को कम एरिया मिले आपको काटने के लिए, डार्क कलर क्लोथिंग जो है परहेज करें, कोशिश करें लाइट कलर, क्योंकि डार्क कलर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप जैसे घर के अंदर हैं और खिड़की वगैरह को ओपन कर रहे हैं तो आप खिड़की के मतलब स्क्रीन लगी हो आपकी खिड़की में जाली हो जाके मच्छर अंदर ना आए, तो दरवाजों को खिड़कियों को आमतौर पे बंद रखें। अगर आप जैसे रात को सो रहे हैं, खिड़की खोल रहे हैं या छत पे सो रहे हैं या सहन में सो रहे हैं, तो फिर आप मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करें,
1: ठीक है,
0: और कॉयल का इस्तेमाल करें, मॉस्किटो भगाने के जो स्प्रे है उसका इस्तेमाल करें। और अगर आपके घर में ऐसे पानी के जो हैं सोर्सेज हैं एक्सपोज हैं, जैसे गमलों में पौधों को पानी दिया जाता है, तो वो इतना ज्यादा ना हो कि वो पानी उधर खड़ा रहे
1: जी।
0: और या फिर जो है टैंकी में पानी है, पानी का जो टैंक है उसमें है, या एयर कूलर्स में पानी होता है, तो वो कवर्ड रखें
1: जी।
0: तो उसमें मच्छर जो है वो जाए ना, क्योंकि इन जगहों पर मच्छर जो है वो अपनी अफजाइश करते हैं और फिर मच्छर बढ़ते ही जाते हैं।
1: ठीक ठीक, इस तरह से जो है वो इसमें लोग सब कुछ कुछ ऐसी भी मेडिसिन है जो लेते हैं जैसे खाने के लिए रिपेलेंट होती हैं।
0: जी बिल्कुल, मच्छरों के अगर आप ऐसे एरिया में ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे मलेरिया होता है, तो इसके लिए हम दवाई देते हैं जिसको हम कीमोप्रोफाइलेक्सिस कहते हैं
1: जी।
0: इस दवाई से ये फ़ायदा होता है कि तमाम एहतियात के साथ ये दवाई जो है मलेरिया को प्रिवेंट करती है
1: जी।
0: तो उसमें मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ होती हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो हफ्ता में एक दफ़ा खानी होती हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो दिन में एक दफ़ा खानी होती हैं। तो इनके बेसिक प्रिंसिपल ये है कि इनको उस जगह में एंटर होने से कुछ दिन पहले से शुरू करना पड़ता है।
1: अच्छा,
0: ताकि जब आप उस जगह में पहुंचे जहां मलेरिया है तो आपके ब्लड में उस दवाई का लेवल हाई हो।
1: ठीक है।
0: तो और उसके बाद उस दवाई को लगातार जिस तरह डॉक्टर बताए उस तरह इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर वीकली है तो किसी भी वीक आपने उसको मिस नहीं करना, सेम डे। अगर आपने संडे को खाया है या मंडे को, तो नेक्स्ट संडे और मंडे को फिर आप अलार्म लगाएं कि मैं जी इसी तारीख को खाऊंगा दोबारा।
1: अच्छा।
0: अगर डेली टेबलेट्स ले रहे हैं तो किसी भी दिन उसको मिस नहीं करना है, खाने के बाद आपने रोजाना उस दवाई को खाना है। और फिर जब आप उस एरिया को छोड़ेंगे तो उस दवाई के जो ऊपर इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से आपको उस एरिया को छोड़ने के बाद भी कुछ अरसे तक उस दवाई को खाना पड़ता है।
1: अच्छा।
0: जैसे डेली टैबलेट्स को बाज़ औक़ात जो है वो एक हफ्ता खाना पड़ता है और वीकली टैबलेट्स को चार हफ्ते तक खाना पड़ता है। ये इसलिए है कि तमाम एहतियात के बावजूद भी मच्छर आखिरी दिन भी अगर काट जाए तो उससे अगर मलेरिया हो तो इसको कवर करने के लिए फिर इस दवाइयों का इस्तेमाल होता है।
1: अच्छा,
0: लेकिन दवाइयों के इस्तेमाल और तमाम एहतियात के बावजूद भी बाज़ औक़ात मलेरिया हो सकता है अगर एहतियात में कोई भी कमी रह जाए। तो इसलिए ये कभी भी नहीं सोचे कि मैंने तो सारी एहतियात की थी, अब मुझे बुखार हो रहा है तो ये मलेरिया नहीं होगा। सो खुद से अज्यूम ना करें, लाजमी डॉक्टर से रजू करें और चेक करवाएं कि ये क्या है।
1: इसकी डॉक्टर कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत जैसे मलेरिया की होती हैं, जैसे वो क्या क्या हो सकती हैं अगर जैसे बाज़ दफ़ा पता ही नहीं चला कि मलेरिया है या इग्नोर हो गया तो वो।
0: हाँ जी, कॉम्प्लिकेशन इसकी जो है वो इसकी स्पीशीज पर डिपेंड करती हैं। जो हमारे मुल्कों में होता है वो आमतौर पे इतना सिवियर नहीं होता, लेकिन हो सकता है सिवियर। तो फॉल्सिपेरम ज़्यादा सिवियर होता है, लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशन ये है कि ये अगर बहुत ज़्यादा परसेंटेज हो तो उससे ये जिस्म के अंदर मुख्तलिफ जगहों को ख़राब कर सकता है। ब्रेन में जैसे सेरिब्रल मलेरिया कर सकता है, ब्रेन की ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर सकता है। और दूसरा ये है कि ये अगर इसका पैरासाइटीमिया बहुत ज़्यादा हो तो आपके ब्लड सेल्स टूटते हैं तो उससे ब्लड की कमी हो सकती है, फिर किडनी को फेल कर सकता है, और बाज़ औक़ात इसकी वजह से जो है फेफड़ों में पानी पड़ सकता है, फिर इसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए बाज़ औक़ात इसमें एंटीबायोटिक भी साथ देनी पड़ती है, अगर स्पेशली अगर ब्लड प्रेशर बहुत कम हो तो इस सूरत में ये जो है ख़तरनाक हो सकता है, तो इससे फिर डेथ भी हो सकती है।
1: अच्छा ठीक जी, मलेरिया की बात हुई और डेंगू फीवर जो है वो भी जो है वो وجہ تو زیادہ تر وہی ہے کہ پانی کے پولز ہوں یا کچھ, مگر آپ ہمیں بتائیے کہ اس میں اور کیا کیا ہمیں دیکھنا ہے, یہ کیوں ہو جاتا ہے؟
0: ہاں جی, ملیریا جو ہے یہ تو پلازموڈیم سے ہونے والی بیماری تھی, ڈینگی جو ہے یہ وائرل انفیکشن

0: है, लेकिन ट्रांसमिशन इसका भी उसी तरह ही है, बीमार शख्स से मॉस्कीटो के जरिए ट्रांसमिट होता है। डिफरेंट मॉस्कीटो है, तो मलेरिया का मॉस्कीटो डिफरेंट होता है डेंगी का, यूजुअली इसको टाइगर मॉस्कीटो कहते हैं, इसके ऊपर वो सफेद सफेद निशान होते हैं, तो ये उससे ट्रांसमिट होता है। तो लेकिन इसके लिए जो कोई भी जो ये कीड़ों से या मच्छरों से ट्रांसमिट होने वाली इन्फेक्शन है, इसके लिए तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक तो वेक्टर जिसको मच्छर खुद का होना बहुत जरूरी है, दूसरा पैरासाइट या उस जर्म का होना बहुत जरूरी है जिसको उसने ट्रांसमिट करना है,
1: ठीक है,
0: और तीसरा वो होस्ट होना बहुत जरूरी है जिससे या जिसको उसने उस बीमारी को देना है,
1: ठीक है।
0: इसलिए मच्छरों को जब हम इस इक्वेशन से हटा देते हैं तो फिर उससे ये इन्फेक्शन रुक जाता है,
1: ठीक है।
0: तो इसलिए हम लोग जब अपने मुल्कों में जाते हैं तो डेंगू के लिए क्योंकि वैक्सीनेशन कोई नहीं है तो इसका इलाज भी कोई नहीं है, तो ये खुद अगर माइल्ड फॉर्म में हो तो ये खुद ब खुद ही एक टाइम के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन ये एक सवेयर फॉर्म में हो तो फिर ये बहुत खतरनाक होता है। अगर फेफड़ों में पानी पड़ जाए या इससे बहुत ज्यादा प्लेटलेट्स जो है वो ड्रॉप कर जाए तो इस सूरत हाल में ये बहुत खतरनाक हो जाता है कि ब्लीडिंग हो सकती है, तो उसी सूरत में जो है इसके लिए फिर हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, ब्लड प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज करने पड़ते हैं और ICU में रख के मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। तो इसकी अलामत होती है, इससे सर में बहुत शदीद दर्द होता है जैसे आंखों के पीछे और बहुत तेज बुखार होता है, तो उससे पता चलता है कि और जिस्म पे बाद छोटे छोटे से निशान पड़ जाते हैं रैश,
1: अच्छा।
0: तो और मच्छर के काटने के बाद भी, और जरूरी नहीं उस जगह पे, वो पूरे जिस्म पे पड़ सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, तो इससे अच्छा। पता चलता है पेट में दर्द हो सकता है, मतली कै हो सकती है, तो ये डेंगू की अलामत होती है। तो अगर आप ऐसी जगह पे थे जहाँ डेंगू है तो उस सूरत में फिर आपको टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट एपिसोड में माइल्ड होता है लेकिन सेकेंड थर्ड एपिसोड में बहुत सिवियर हो सकता है,
1: ठीक।
0: और इसकी चार डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो एक टाइप के होने से बाकी टाइप से कोई इम्यूनिटी नहीं होती, तो दोबारा दूसरी टाइप से हो सकता है।
1: अच्छा, ठीक ठीक, इस तरह से इसमें जैसे इसमें आमतौर पर मेडिसिन कोई नहीं होती है, सिम्टम
0: का अपना कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब कोई ऐसी दवाई नहीं है जो डेंगू के वायरस को मार सके, आपका जिस्म ही इसके खिलाफ लड़ता है तो आहिस्ता इसको खत्म कर देता है, लेकिन उसमें कुछ वक्त दरकार होता है, 2-3 हफ्ते लग जाते हैं इंसान को ठीक होने में। और लेकिन ये कि उसमें फिर अब सिम्टोमेटिक केयर देते हैं, जैसे बुखार है तो पैरासीटामोल से उसको कम किया जा सकता है, पानी की कमी को पूरा किया जा सकता है, अगर प्लेटलेट्स कम है तो प्लेटलेट्स लगाए जा सकते हैं, तो लेकिन ये कि मतलब रेस्ट देना होता है बॉडी को और फिर बॉडी खुद रिकवर करती है उसको,
1: ठीक ठीक। और इसमें बिल्कुल ये है कि और उस जगह अगर स्पेशल यहाँ पर तो वही जो कैरी करके आए होंगे,
0: हाँ जी,
1: जो
0: तो अगर आपके घर में किसी को डेंगू है तो फिर मच्छरों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे फिर डेंगू दूसरे को फैल सकता है और तीसरे को मच्छरों के काटने से, तो ये तो और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस मौसम में डेंगू फैल रहा है तो फिर आप जो है मच्छरों का ज्यादा एहतियात करें, स्प्रे का या रिपेलेंट का इस्तेमाल करें, मुख्तलिफ तरह के रिपेलेंट मार्केट में अवेलेबल हैं, कोशिश करें ऐसा रिपेलेंट लें जो 6-8 घंटे तक काम करता हो और उसको जो है जिस्म के ऊपर आप लगा सकते हैं, सेफ होते हैं आमतौर पे, मुख्तलिफ तरह के हैं, कुछ कंपाउंड है जैसे डीट है 30%, आइकार्डिन है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें ना यूज़ करें जिनके ऊपर बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें लिखी हैं, जैसे बाज़ एंटी मलेरियल्स पे लिखा होता है जी ये कि ये आप मोबाइल पे ऐप है इसको खोल लें तो इससे मच्छर नहीं आएंगे, या ये साउंड है इसको चला लें इससे मच्छर नहीं आएंगे, तो ये सब चीज़ें काम नहीं करती, तो इन पे जो है वो भरोसा ना करें,
1: ठीक।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
3: दिल से देसी।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
5: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday.

0: डे दोपहर 1:30 बजे से ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी
1: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए।
2: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो। द रिक्वेस्ट शो हर शाम 4 से 5 फजील के साथ, फजील के साथ संडे से थर्सडे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी, दिल से देसी।
3: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @ FM 107 कतर। दिल से देसी।
4: आप सुन रहे हैं हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफी के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: लिसनर, आज हम बात कर रहे हैं कि इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में, कि इन्फेक्शन की वजह से जो बीमारियां होती हैं। अब हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि जो टाइफाइड है कि वो भी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ये बताएंगे कि कैसे होता है और ये किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है या फैलता कैसे है।
1: हाँ जी, टाइफाइड जो है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग सब अपने मुल्कों में ट्रैवल करते हैं, साउथ एशिया में, वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा है, साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा है। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ख़ास किस्म का बैक्टीरिया होता है सेल्मोनेला जिसे कहते हैं, उससे फैलता है ये, और ये आमतौर पर मुँह के रास्ते जो है ये फैलता है, पेट में जाता है और गंदी खुराक, ऐसी खुराक जो साफ
0: सुथरा
1: नहीं खाया, जो साफ सुथरा नहीं था, जिसमें कोई ऐसी सीवरेज की अमेजिश हो जाए, तो उन चीज़ों से ये फैलता है, एक शख्स से दूसरे को फैल सकता है। तो इसके लिए ये है कि ये जब बुखार होता है, पेट में दर्द होता है और जिस्म पे रैशेस हो सकते हैं और बाज़ औक़ात डायरिया भी हो सकता है।
0: अच्छा।
1: तो इसका डायग्नोसिस हम आमतौर पे मुख्तलिफ टाइम पे करते हैं, ये 2-3 हफ्ते की बीमारी होती है, बहुत सिवियर बुखार होता है, बहुत वीकनेस होती है
0: जी।
1: और वज़न भी कम हो सकता है, और इससे जो है ये ख़तरनाक इसलिए होता है कि अगर ये प्रोलॉन्ग कर जाए तो ये मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों को इन्फेक्ट कर सकता है, बड़ी आंत को इन्फेक्ट कर सकता है, जिससे बड़ी आंत में सुराख हो सकते हैं
0: जी।
1: तो ये इसलिए इससे बहुत ख़तरनाक होता है, तो इसलिए इसके लिए हम मेडिसिन देते हैं, इसकी ट्रीटमेंट होता है, तो उससे 10 दिन में इसमें आराम आ जाता है। इसको डायग्नोज करते हैं ब्लड कल्चर से, लैब में हम टेस्ट करते हैं, जिससे इसमें ये ग्रो कर जाता है, इससे हमें पता चल जाता है कि टाइफाइड है।
0: और इसमें पहले एक स्किन टेस्ट भी होता था,
1: स्किन टेस्ट नहीं, एक ब्लड टेस्ट ही होता था जिसको वाइटल टेस्ट कहते थे, अब वो आजकल जो है वो डिस्करेज किया जाता है क्योंकि वो इतना सेंसिटिव नहीं था और उससे इतना रिजल्ट सही नहीं आता, तो आमतौर पर अब वो टेस्ट नहीं करवाया जाता बल्कि ब्लड कल्चर बताया जाता है, या स्टूल टेस्ट से भी पता चल सकता है, डायरिया स्टूल जो है उसको टेस्ट करके उसमें भी पता चल सकता है। बाज़ औक़ात इसमें एक स्टेट बन जाती है जिसको कैरियर स्टेट कहते हैं, जिसमें ये है कि ये स्टूल में परसिस्ट कर जाता है और फिर बार बार जो है उससे इन्फेक्शन हो सकती है, उन शख्स को खुद को भी हो सकती है और घर के दूसरे लोगों को और लोगों को भी हो सकती है, अगर हाथों को सही तरीके से धोया ना जाए और खाने की एहतियात ना की जाए, तो इसलिए फिर बहुत ज़रूरी होता है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि सारी एहतियात के बावजूद भी जो है वो परसिस्टेंट कैरियर स्टेट रहता है, तो उसमें फिर ये देखना पड़ता है कि कोई गॉल ब्लैडर में स्टोन तो नहीं है कि वो उस जगह पे परसिस्ट कर जाए, तो फिर ऐसे लोगों को गॉल ब्लैडर रिमूव करना करवाना पड़ता है।
0: ठीक।
1: ये मतलब
0: वो सारे सिम्टम्स आ रहे होते हैं।
1: हाँ जी। अच्छा। लेट चीज़ें इसकी बहुत आराम से प्रिवेंशन हो सकती है, आम प्रिवेंशन इसकी ये है कि आप हाथ अच्छे तरीके से धोएं खाने से पहले, टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद, बच्चों के जिनको आपको लग रहा है कि टाइफाइड है या डायग्नोस्ड है, उन बच्चों को कोशिश करें कि वो अपने हाथों को अच्छी तरह धोएं टॉयलेट के बाद, बहुत छोटे बच्चे हैं अगर उनके डायपर वगैरह चेंज कर रहे हैं तो एहतियात करें, और पर टॉयलेट को अच्छी तरह से धोएं, टॉयलेट की एहतियात करें।

0: अवेलेबल है, बचपन में लगाई जाती है, फिर आपने नहीं लगवाई, तीन डोजेस तो बोल सर लगवाएं। हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन अवेलेबल है, ये भी बचपन में लगाई जाती है, अगर आपको नहीं लगी हुई ट्रैवलिंग से पहले जरूर लगवाएं।
1: ठीक है, ये जो हेपेटाइटिस की बी की वैक्सीन है वो तो स्केड्यूल में है, तो ये जो ए है ये कब लगाते हैं?
0: जी ए भी कतर में स्केड्यूल में इंक्लूडेड है, 2010 से ऑनवर्ड्स बच्चों को लगाई जाती है। अगर आपके बच्चे को किसी वजह से मतलब वो कह रहे हैं तो आप उनको बता सकते हैं कि हम इन मुल्कों में रहते हैं जहाँ पे हेपेटाइटिस ए होता है, तो वैक्सीनेशन अवेलेबल है, 18 मंथ्स की एज से लगाई जा सकती है बच्चों को, पहले भी लगाई जा सकती है। और अगर आपके बच्चे को किसी वजह से नहीं लगी हुई और आप लगवाना चाहते हैं तो हेल्थ सेंटर्स में अवेलेबल है, CDC में अवेलेबल है, प्राइवेट में अवेलेबल है, आप लगवा सकते हैं।
1: ठीक, इस तरह से जो है वो वैक्सीनेशन जो है,
0: हाँ जी, दो डोजेस होती हैं, 6 months at least apart जो है ये लगाई जा सकती है।
1: ठीक है,
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफी के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: डॉक्टर साहब, इसमें थोड़ा पूछना चाहूँगी कि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो क्यों रेजिस्टेंट हो जाती हैं हमारी जो इन्फेक्शन का ट्रीट करते हुए, क्या हम करते हैं या पेशेंट्स में क्या गलती करते हैं?
1: जी, इसमें बहुत सारी चीज़ें, एक तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल तब करना जब उसकी ज़रूरत ना हो, जैसे वायरल या पैरासिटिक इन्फेक्शन, उसमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना। दूसरा, एंटीबायोटिक को सही तरीके से उस डोज पे इस्तेमाल ना करना जिस पे डॉक्टर ने लिख के दिए है, उसको उस तरह इस्तेमाल ना करना, डोज भूल जाना, गलत टाइम पर लेना ही ना, या डोज को खुद से कम कर देना, या फिर अगर आपको 2 या 3 दिनों बाद फ़र्क पड़ गया सिम्टम्स में तो दवाई एंटीबायोटिक बंद कर देना, कोर्स पूरा ना करना, या अपनी एंटीबायोटिक जो खाई थी वो किसी और को दे देना कि तुम्हें भी यही सिम्टम्स है, तुम भी ये इस्तेमाल कर लो
0: जी।
1: तो इससे रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, या ये सोचना कि जी ये बैक्टीरिया तो पहले इस एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हुआ था तो अब भी ठीक नहीं होगा
0: जी।
1: तो ये चीज़ें जो है ख़तरनाक होती हैं, इससे रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। आजकल हमारी डाइट में ऐसा मीट है, ऐसा चिकन है, ऐसे चीज़ें हैं जिनमें एंटीबायोटिक लाइक कंपाउंड्स यूज होते हैं
0: जी।
1: तो उससे भी जो है ये रेजिस्टेंस बढ़ रही है
0: जी। ठीक, इसमें डॉक्टर साहब थोड़ा सा जैसे कि लोग उम्रे पे जैसे जाते हैं तो उसमें कुछ वैक्सीनेशन जो हैं वो कही जाती हैं कि ये जो है ये वैक्सीनेशन कराएं या ज़रूरी हो जाती हैं, इसमें भी कुछ किसी जो किसी इलाके से आ रहे हैं या हमारे यहाँ से जाते हुए कौन सी वैक्सीनेशन जो है वो मैंडेटरी कहेंगे या ज़रूरी लगवानी चाहिए?
1: हाँ जी, उम्र और हज की स्पेसिफिक जो है वो गाइडलाइन है वैक्सीनेशन के लिए। तो जैसे हम यहाँ से कतर से जो लोग जाते हैं तो उनको अब सबसे पूरी दुनिया से कहीं से भी हैं तो मेनिनजाइटिस का इंजेक्शन जो है वो मेनिनजोकोकल मेनिनजाइटिस का लगाया जाता है।
0: अच्छा।
1: गर्दन तोड़ बुखार का जिसको टीका कहते हैं
0: जी जी।
1: तो वो एक टीका लगवाना ज़रूरी है अगर 3 से 5 साल के अंदर आपको टीका नहीं लगा हुआ तो, क्योंकि वो उसको चेक करते हैं, ख़ासतौर पर हज के लिए ज़रूर चेक किया जाता है
0: जी।
1: इसके अलावा अगर आप ऐसे सीज़न में जा रहे हैं जब इन्फ्लुएंजा हो सकता है तो फ्लू का इंजेक्शन लगवाना जो है वो मैंडेटरी तो नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक रिकमेंडेड है कि लगवा लें
0: जी।
1: क्योंकि आपको पता है हज के दौरान जो है बहुत गहमा गहमी होती है हज और उम्रा में, और एक दूसरे से जो है सांस के ज़रिए इन्फेक्शन लगने का ख़तरा बढ़ जाता है
0: जी।
1: तीसरी चीज़ ये है कि अगर किसी शख्स की उम्र जो है वो 50 साल से ज़्यादा है या सिगरेट नोशी करते हैं या कोई भी इम्यूनिटी उनकी कम है तो उनको जो है, और उम्र 50 साल से कम भी है तो उनको निमोकोकल वैक्सीन लग सकती है।
0: ठीक है।
1: तो इससे जो है ये चेस्ट की इन्फेक्शन, ब्रेन की इन्फेक्शन जो है उसमें कमी आती है उस बैक्टीरिया से। हमारे मुल्कों से जो लोग ट्रैवल करते हैं जैसे पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, वहाँ पोलियो का इंजेक्शन भी लगाया जाता है या ड्रॉप्स लाए जाते हैं
0: जी। बिल्कुल।
1: और इसके अलावा अगर आपकी कोविड वैक्सीनेशन कभी भी नहीं हुई तो कोविड वैक्सीनेशन कभी एक बार करवाना जरूरी है
0: अभी
1: हज पे जाने के लिए जी। बिल्कुल, हज के लिए मैंडेटरी है, स्पेशली अगर एज जो है वो 65 से ज्यादा है। तो ये सारी वैक्सीनेशन जो है वो वहाँ चेक भी होती हैं और ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है
0: जी। डॉक्टर साहब, इसमें जैसे कोविड का आपने जिक्र किया तो क्या अभी भी केसेस हैं कुछ?
1: कहीं पे भी गया नहीं है कोविड,

0: जगह मौजूद है, केसेस अभी भी आते हैं, सर्दियों में बढ़ जाते हैं, गर्मियों में कम हो जाते हैं, और किसी भी इवेंट के बाद बढ़ जाते हैं, जैसे जब लोग छुट्टियों में जाते हैं वापस आते हैं, जैसे स्प्रिंग ब्रेक है, समर वेकेशन है, विंटर वेकेशन है, उनके बाद केसेस देखने में आते हैं
1: जी।
0: तो अभी भी है, फैल रहा है, एक दूसरे से दूसरे शख्स को लग सकता है। माइल्ड हो गया है क्योंकि जो ओमाइक्रॉन स्ट्रेन है वो काफी हद तक माइल्ड है, लेकिन अभी भी फैल रहा है, तो एहतियात जरूरी है। अगर किसी शख्स को जैसे इम्यूनिटी कम है तो उनको वैक्सीनेशन भी हर साल करवानी चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि जो ये इन्फेक्शंस की वजह से आपके पास पेशेंट्स आते हैं, कौन सी इन्फेक्शंस ज़्यादा होती हैं?
0: डिपेंड करता है कि सीजन कौन सा चल रहा है। जैसे सर्दियों में है तो उसमें तो ज्यादातर चेस्ट इन्फेक्शन ज्यादा होती हैं, वायरल इन्फेक्शन ज्यादा होती हैं। लेकिन जैसे आजकल गर्मियां हैं तो यहाँ पे तो खैर उस तरह मतलब फूड पॉइजनिंग के केसेस बहुत कम आते हैं,
1: बहुत कम।
0: तो हमारे पास निमोनिया के केसेस काफी आते हैं, यूरिन इन्फेक्शन के केसेस खासतौर पर खवातीन में आते हैं, गर्दन तोड़ बुखार के केसेस भी आते हैं लेकिन वो कम होते हैं, और डायरिया के केसेस कभी कभी आ जाते हैं, स्पेशली अगर बाहर से खाया या ट्रैवल करके आए हो, और इम्पोर्टेड इन्फेक्शन आती हैं जैसे मलेरिया है, डेंगी है, बुखार के साथ लोग आ जाते हैं।
1: अच्छा,
0: तो उसके इन्फेक्शन होती हैं, लेकिन ज्यादातर निमोनिया होता है और यूरिन इन्फेक्शन।
1: ठीक है, यूरिन इन्फेक्शन जो है वो भी
0: हाँ जी
1: बहुत जैसे होती हैं। और इसमें डॉक्टर साहब आप हमें बताइएगा कि जो डायरिया है, आप पहले भी हमने जिक्र किया मगर ट्रेवलर्स डायरिया जो है स्पेशली, वो जो है उसकी क्या प्रिवेंशन जो है वो होनी चाहिए?
0: हाँ जी, ट्रैवलर्स डायरिया बहुत कॉमन है ये आमतौर पे, अगर आप अपने मुल्क में भी वापस ट्रैवल कर रहे हैं किसी खास जगह पे रहने के बाद, तो ये ड्यूरिंग ट्रैवल भी हो सकता है और ट्रैवलिंग के बाद भी कुछ टाइम तक हो सकता है। तो इसकी आमतौर पे जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पानी बदल गया है तो इस वजह से हो रहा है, तो किसी हद तक ये बात ठीक भी है कि बेसिकली आपके जर्म्स जो है वो चेंज हो जाते हैं, हर जगह पे डिफरेंट तरह के जर्म्स होते हैं, तो उस वजह से बाज़ औक़ात जो है ये इन्फेक्शन हो सकती है। इन्फेक्शन होती है ये, और बेसिकली ये हैंड हाइजीन ना होने की वजह से हो सकती है, और इससे ये है कि आमतौर पर डायरिया होता है, पेट में दर्द माइल्ड सा हो सकता है, मॉडरेट, और डायरिया आमतौर पर 3 दफ़ा दिन में होने से 3 दफ़ा के करीब हो सकता है
1: जी जी।
0: तो आमतौर पर अगर ये माइल्ड हो तो हम इमोडियम जो है वो देते हैं, जिससे जो है डायरिया में फर्क पड़ जाता है, लेकिन अगर डायरिया जो है उसके साथ फीवर है या पेट में बहुत शदीद तकलीफ है या कोई ऐसा शख्स है जिसकी इम्यूनिटी कम है या फिर डायरिया दस्त में जो है वो ब्लड आ रहा है, इसको पेचिश कहते हैं, या फिर उसमें पस आ रहा है, या दस्त जो है वो 6 दिन में 6-7 दफ़ा से ज्यादा हो रहे हैं
1: जी,
0: और ऐसी सूरत में फिर जो है इमोडियम नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो खतरनाक हो सकती है, डायरिया को रोक देगी
1: जी।
0: तो फिर उस सूरत में जो है फिर टेस्ट करके एंटीबायोटिक जो है वो दी जाती है, और एंटीबायोटिक हम बाज़ औक़ात ट्रैवल क्लिनिक में जो पेशेंट आते हैं उनको हाथ में भी देते हैं।
1: अच्छा।
0: अगर आपको ये सिम्टम्स आए तो ये एंटीबायोटिक आप खा लीजिए।
1: ठीक है।
0: और फिर जाहिर है डायरिया के दौरान जो है आपने अपनी एहतियात भी करनी है, पानी की एहतियात करनी है, जितना वाटर आप लूज कर रहे हैं स्टूल में या वॉमिटिंग में उसको आपने पूरा करना है, उस ORS का इस्तेमाल करें और नमकियात अपने रखें, बच्चों में को देखें अगर दूध पीते बच्चे हैं तो वो दूध सही से पी रहे हैं कि नहीं। दूसरी बात ये है कि अगर यूरिन बच्चे सही नहीं कर रहे, यूरिन कम आ रहा है या यूरिन बहुत डार्क कलर में आ रहा है तो ये इस चीज का इंडिकेशन है कि या मुंह बहुत खुश्क हो गया है, स्किन बहुत खुश्क हो गई है, तो इस चीज का इंडिकेशन है कि बहुत ज्यादा सिवियर डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो इस सूरत में लाजमी डॉक्टर से रजू करना, क्योंकि बाज़ औक़ात जो है वो इतना सिवियर होता है कि आपको IV फ्लूइड्स यानी वो ड्रिप लगाने टिप से आपको पानी देने की जरूरत होती है।
1: ठीक है, वो इमरजेंसी
0: जी डॉक्टर के ऑफिस में इमरजेंसी में।
1: ठीक है, जैसे आपने कहा कि आप हाइड्रेशन का ख्याल रखें, उसमें ORS वगैरह बहुत हेल्पफुल
0: है जी।
1: ठीक,
0: तो ORS जो है वो मार्केट से हर मुल्क में तकरीबन अवेलेबल होता है, सैशे की फॉर्म में होता है, बस जगहों पे बना बनाया ORS भी मिलता है वेस्टर्न कंट्रीज में, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें अगर आप खुद बना रहे हैं तो उबल पानी उबाल के ठंडा करके उसमें इस्तेमाल करें, या फिर मिनरल वाटर में बनाएं जो आप मतलब वेल नोन हो
1: कि
0: साफ सुथरा है।

0: पानी फिल्टर
1: उससे भी ठीक होता है, उसमें जो सॉल्ट वगैरह उसमें इंक्रीज तो नहीं हो जाते क्योंकि उनके अंदर भी
0: इतना बहुत माइन्यूट क्वांटिटी होती है। आम पानी भी जो हम पीते हैं तो वो 100% तो डिस्टिल्ड तो नहीं होता
1: जी जी,
0: तो वो फिर उसके अंदर जो क्वांटिटी होती है जो उसमें लिखी है उसको उसके हिसाब से बनाया। अगर जैसे उसमें 4 लीटर पानी में खोलना है तो 4 लीटर में ही बनाए, 2 लीटर में या 1 लीटर में बनाएंगे फिर उसकी वो कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी और वो फिर खतरनाक हो सकता है। या फिर 4 लीटर को आप पूरे 8-10 लीटर में बना देंगे तो फिर
1: वो भी उसका
0: बेकार हो जाएगा। तो जितने लीटर में उसको लिखा गया कोशिश करें कि उसने में ही बनाएं और उसको फिर इस्तेमाल करें। आमतौर पे कोशिश करें कि जितना फ्लूइड लॉस हो रहा है उतना तो आप जो है वो लाजमी पिए दोबारा से।
1: इसमें डॉक्टर वो क्रैम्प्स की जैसे वो भी बहुत जो कंप्लेन करते हैं उसके लिए आप
0: उनकी वेट के हिसाब से होती है, क्रश की जा सकती है टैबलेट
1: जी,
0: तो बच्चों को भी दी जाती है, ऐसी बात नहीं कि बच्चों के लिए नहीं है, बच्चों को भी मलेरिया हो सकता है तो बहुत जरूरी है
1: हो सकता है जी।
0: और इसके अलावा जो लोग फिर अपॉइंटमेंट लेके हमारे पास आते हैं तो फिर हम इनको एडवाइस करते हैं और हमारा नंबर भी है CDC का, आप ऑनलाइन जो है उस पर फ़ोन करके भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं तो, और फिर दवाइयां देते हैं और फिर अगर कोई वैक्सीनेशन ऐसी है जिसकी मल्टीपल डोजेज़ हैं तो वो भी फिर हम उनको रिकमेंड करते हैं कि आप इस तारीख को आके अपनी सेकेंड डोज या थर्ड डोज लगवा लें। और उनकी एज के हिसाब से हम ये भी देखते हैं कि अगर कोई ऐसी मेडिसिन या ऐसी वैक्सीनेशन है जो उनको लगवानी चाहिए थी अपनी एज के हिसाब से, बेशक वो ट्रैवल में जरूरी नहीं है, तो हम उसको भी देखते हैं कि रूटीन वैक्सीनेशन इनकी कंप्लीट है
1: नहीं है। बिल्कुल जी, आप ये प्रोग्राम दोबारा सुनना चाहें तो हफ्ते की सुबह 8 बजे ये प्रोग्राम पेश किया जाता है। डॉक्टर साहब कोई मैसेज आप दें, क्या कहना चाहेंगे?
0: हाँ जी, यही मैसेज है कि समर वेकेशंस हैं तो हम लोग सफ़र कर रहे हैं तो सेफ़ ट्रैवल करें, ख़ुद भी सेफ रहें, लोगों को भी सेफ़ रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, गर्मी से अपने आप को बचाएं, पानी ज़्यादा पिएं, साफ़ सुथरे जगह पर रहें, साफ़ सुथरा खाना खाएं, साफ़ सुथरा पानी पिएं, अब क्राउडेड जगहों पर मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों को अच्छी तरह से धोएं, बहुत सारी इन्फेक्शन से आप बचें
1: इंशाल्लाह। और सामिन मोहतरम, इसके साथ ही प्रोग्राम हेल्थ गाइड से डॉक्टर वकार मुनीर और फौजे शफीक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

0: करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोज़मर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। समीर कराम, आज की सुन्नत का खुलासा यह है कि मोहब्बत की कदर कीमत से नहीं होती। तोहफा बड़ा हो या छोटा, दावत शानदार हो या मामूली, अगर उसके पीछे खुलूस है तो उसे इज्जत के साथ कबूल करना चाहिए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे पाए या दस्त के गोश्त खाने की दावत दी जाए तो मैं यकीनन कबूल कर लूंगा, और अगर मुझे दस्त या पाया बतौर तोहफा भेजा जाए तो मैं उसे जरूर कबूल करूंगा। इसे रिवायत किया है बुखारी ने। सामिन किराम, इस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न खुल्क, आपकी तवाज़ो खाकसारी और इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की दिलजोई करते थे और ये कि मामूली तोहफा भी कबूल करना चाहिए। नीज़ जो किसी आदमी को अपने घर दावत दे उसे कबूल करना चाहिए, अगरचे ये मालूम हो कि वो मामूली चीज़ के लिए दावत दे रहा है, क्योंकि हदिया और दावत कबूल करने का मकसद दावत देने वाले की दिलजोई करना और बाहमी मोहब्बत को मजबूत करना है, जबकि दावत रद्द करने और उसे कबूल न करने से नफरत व अदावत जन्म लेती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर दस्त और पाए का इसलिए जिक्र किया है ताकि मामूली और अहम दोनों चीज़ें यकजा कर दे, क्योंकि दस्त का गोश्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा पसंद था, जबकि पाए की उतनी कीमत नहीं है जितनी दस्त के गोश्त की है। समय कराम, बाज़ औक़ात हम तोहफे की कीमत देखते हैं कि ये कितना महंगा है, किस ब्रांड का है, कितना कीमती है, लेकिन सुन्नत हमें सिखाती है कि असल चीज़ मोहब्बत और नीयत है। कभी एक सादा खजूर, एक छोटी किताब या एक कप चाय भी बड़े तोहफे से ज़्यादा कीमती होती है अगर उसके पीछे दिल की मोहब्बत हो, खलूस नीयत हो। जब कोई आपको अपने घर बुलाता है तो वो सिर्फ खाना नहीं बांट रहा होता, हमने तो दावत के तसव्वुर को खाने में महदूद कर लिया है। जो आपको घर में बुलाता है वो तो आपको अपनी मोहब्बत में शरीक कर रहा होता है, वो चाहता है कि आप उसके करीब आएं, आपके साथ वक्त गुजारे, दिलों के फासले कम हो। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत कबूल करने को पसंद फरमाते थे। अगर दावत किसी जायज़ चीज़ की हो और कोई शरीर रुकावट ना हो तो उसे कबूल करना हुस्ने मुआशरत का हिस्सा है। इसी तरह हदिया कबूल करना ये दिलजोई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटा हदिया भी कबूल फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ये नहीं देखते थे कि चीज़ कितनी कीमती है। अल्लाह ताला हमें अपने महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवाज़ो, हुस्न मुआशरत और जूदो करम अपनाने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों से तकब्बुर निकाल दे, हमें लोगों की मोहब्बत की कदर करने वाला बनाए और हमारे ताल्लुकात को खुलूस, एहतराम और रहमत से भर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। सामीन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है, और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107. ایف ایم 107
2: دل سے دیسی. زندگی ہر روز نئی کہانیاں لکھتی ہے. کبھی ورک پلیس کے بزی دن, تو کبھی مال کی بھیڑ میں چھوٹی سی ملاقات, اور کبھی سفر کے دوران وہ پہلی ملاقات جو بن جاتی ہے یاد. اور یہ یادیں ہی دیتی ہیں ہمیں سکون اور ایک خوبصورت سا اسکیپ اپنی بزی لائف سے. تو آئیے اور اس سفر کا حصہ بنیے. پروگرام دوہا ڈائریز With RJ Sarwar Mirza. ہر پروگرام میں ہوں گے ایک گیسٹ جن کے پاس ہے ایک کہانی, ایک احساس, ان کی زبانی. ہر سیٹرڈے شام 7:15 اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی. دوہا ڈائریز, جہاں ہر کہانی بنے گی یادگار.
3: دوستوں, لیموزین چلانے والے ڈرائیورز کے لیے ایک اہم پیغام یہ ہے کہ سیف ڈرائیونگ صرف آپ کی نہیں بلکہ سب کی سیفٹی کی گارنٹی ہوتی ہے. یاد رکھیے, فار لیفٹ فاسٹ لین کا استعمال آپ کے لیے اسٹرکٹلی پروہیبیٹڈ ہے یا منع ہے. روڈ پر رینڈم اسٹاپنگ مت کیجیے, یعنی گاڑی کہیں بھی مت روک دیجیے. رکنا صرف تب الاؤڈ ہے جب اپلیکیشن کے ذریعے ریکویسٹ ملتی ہے, اور ہمیشہ اسپیسیفائیڈ اسپیڈ لمٹ کا خیال رکھیے, کیونکہ سلو ڈرائیونگ بھی مین روڈز پر ٹریفک کے لیے خطرہ بن سکتی ہے. سیفٹی کے ان سمپل رولز پر عمل کر کے آپ اپنی حفاظت کرتے ہیں اور دوسروں کے سفر کو بھی محفوظ بناتے ہیں. وزارت داخلہ کا کہنا ہے, اسٹے سیف, ڈرائیو سیف. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی دعا کرتا ہے. سیف رہیں اور خوش رہیں. گرمی کا سیزن اور اسپورٹس کا ایکشن,
4: لائیو اپڈیٹس, بگ میچز اور نان سٹاپ ایکسائٹمنٹ.
3: گیم آن,
4: والیوم اپ.
3: ایوری سنڈے اور ٹیوزڈے دوپہر 1:00 سے
4: ود آر اسپورٹس جرنلسٹ محمد امین.
3: سنیے سمر اسپورٹس اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی.
5: का पहला देसी रेडियो स्टेशन एफ एम 107 दिल से देसी.

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे कतर टेनिस के बारे में। इनफैक्ट कतर टेनिस के एक बहुत ही इंस्पिरेशनल टेनिस प्लेयर है जिनका नाम है मुबारक शनान। जी हाँ दोस्तों, मुबारक शनान कतर के नुमाया टेनिस खिलाड़ियों में शुमार होते हैं और मुल्क की नेशनल टेनिस टीम का अहम हिस्सा रहे हैं। उन्होंने छोटी उम्र से टेनिस खेलना शुरू किया और अपनी मेहनत और लगन की बदौलत कतर की बैन अक्वामी सतह पर नुमाइंदगी की और इसके अलावा उन्होंने डेविस कप में कतर के लिए कई यादगार मुकाबले खेले और टीम की कामयाबी में अपना किरदार अदा किया। दोस्तों, मुबारक ने 2016 में कतर एग्जाम मोबिल ओपन के मेन ड्रॉ में अपना ATP डेब्यू किया जो उनके करियर का एक अहम मोड़ था। इसके बाद उन्होंने ITF और ATP टूर्नामेंट्स में मुसलसल हिस्सा लिया और कीमती तजुर्बा हासिल किया। 2017 इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में मेन सिंगल्स का ब्रॉन्ज मेडल जीतकर उन्होंने कतर का नाम रोशन किया। इनफैक्ट मुबारक अपनी फिटनेस, डिसिप्लिन और फाइटिंग स्पिरिट के लिए जाने जाते हैं। वो हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि कतर टेनिस फेडरेशन की हिमायत ने उनके करियर को मजबूत बुनियाद फराहम की। 2026 कतर एग्जाम मोबाइल ओपन में वाइल्ड कार्ड के जरिए शिरकत के बाद उन्होंने कहा कि दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों के खिलाफ खेलना उनके लिए कीमती तजुर्बा है और इससे उनकी परफॉर्मेंस मजीद बेहतर होगी। आज मुबारक शनान कतर के नौजवान टेनिस खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल हैं। उनका सफर ये साबित करता है कि मुसलसल मेहनत, सब्र और अजम के जरिए बैन अक्वामी टेनिस में भी अपनी पहचान बनाई जा सकती है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्टार और लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

लड़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: दोस्तों, सिक्योरिटी सर्विलेंस कैमरास जुर्म रोकने और उनकी डिटेक्शन में मदद करते हैं। ये इंश्योर करें कि ये कैमरास सिर्फ लाइसेंस्ड और अप्रूव्ड कंपनीज के जरिए इंस्टॉल किए गए हों, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के सिक्योरिटी सिस्टम डिपार्टमेंट के साथ लाइसेंस्ड या रजिस्टर्ड हैं। ये आपकी प्राइवेसी की हिफाजत करते हैं और सेफ्टी को इनहेंस करते हैं। सिक्योरिटी सर्विलेंस कैमरास आजकल हर जगह जरूरी हो चुके हैं, घर से लेकर ऑफिस तक। ये कैमरास ना सिर्फ जुर्म की रोकथाम में मदद करते हैं, बल्कि किसी भी हादसे के बाद इन्वेस्टिगेशन में भी मददगार साबित होते हैं। याद रखिए, अनऑथराइज्ड कंपनीज के थ्रू लगवाए गए सिस्टम आपकी प्राइवेसी के लिए रिस्क बन सकते हैं। सिर्फ लाइसेंस्ड कंपनीज ही आपकी डेटा प्रोटेक्शन और कैमरा कवरेज के हवाले से प्रॉपर गाइडेंस देती हैं। कैमरास को एंट्रेंसेस, एग्जिट्स और पार्किंग एरियाज में इंस्टॉल करें। ये आपके लिए जहनी सुकून का बायस बनते हैं, खासकर जब आप घर या ऑफिस में नहीं होते। आपके सेफ और स्ट्रेस फ्री दिन की दुआ के साथ FM 107 हमेशा आपके साथ है।
0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
3: Aap sun rahe hain Health Check.
4: Assalamu alaikum listeners. Aaj hum ek aise masle par baat karenge jiska duniya bhar mein samna lakhon afraad karte hain aur wo hai

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।
3: सुनिए, क्या आप सुन सकते हैं? ये है फ्यूचर की आवाज, कतर का कल, क्लीन, ग्रीन एंड फुल ऑफ लाइफ। ये कल कोई सपना नहीं है, इट्स अ प्रॉमिस, प्रॉमिस ऑफ कतर नेशनल विजन 2030। और इस प्रॉमिस को रियलिटी बनाने का सफर वही है कतर ग्रीन बीट। हम कैसे बदलेंगे, कैसे इनोवेट करेंगे, कौन से छोटे स्टेप्स बिग इंपैक्ट्स लाएंगे? How can you make a difference? From smart cities to saving precious water, desert ko green karne ki ideas se lekar sustainable living tak, hum explore karenge har green corner of Qatar. Matlab simple tips, cool hacks, inspiring stories from Qatar.
4: Socho mat, jud jao. Be part of the conversation jo Qatar ko bana raha hai leader in sustainability. Tune in to Qatar Green Beat with A for Amita. Future ki awaaz, aaj suno. Sirf FM 107 par. Dil se, desi.
5: Assalamualaikum, FM 107 sun rahe hain aap. Main hoon Amita.

0: के साथ और आपके लिए लेकर आई हूँ कतर ग्रीन बीट का एक नया नवेला एपिसोड। जब भी हम कतर ग्रीन बीट की बात करते हैं तो कुछ चीजें हमारी जिंदगी से ऐसे नजदीकी से जुड़ जाती है कि हमको लगता है कि इस पूरे एनवायरनमेंट को, इस पूरे वो कहते हैं ना एटमॉस्फेयर को हम ही बचा सकते हैं। वेल, आज का एपिसोड भी काफी इंटरेस्टिंग है। जब भी हम अपने प्लैनेट को बचाने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आते हैं लैब्स में बैठे साइंटिस्ट्स या कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पसीना बहाते इंजीनियर्स। सही बताओ, आते हैं ना यही दिमाग में? लेकिन जरा सोचिए कि अगर बदलाव का सबसे ताकतवर जरिया कोई सोलर पैनल नहीं बल्कि एक पेंट ब्रश हो तो फिर क्या हो? या रद्दी में फेंका हुआ रिसाइकल प्लास्टिक का एक टुकड़ा। आज हम क्रिएटिविटी और कंजर्वेशन के उस अनोखे मोड़ पर हैं जहां आर्ट दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। कॉर्निश पर बनी उन ऊंची और चमकती स्कल्पचर्स से लेकर मुशर्रफ की मॉडर्न गैलरीज तक कतर अब सस्टेनेबिलिटी का एक बेहतरीन कैनवस बन चुका है। आज के एपिसोड इको आर्ट में हम डाइव करेंगे एक ऐसी दुनिया में जहां आर्ट सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं लगता बल्कि वेस्ट को मास्टरपीस में बदल कर हमारे एनवायरमेंट की आवाज बन रहा है। तो कुर्सी के अपनी पेटी बांध लो, हाँ, और जहाँ कहीं भी हो इत्मीनान से हमारे साथ बने रहो FM 107 पर सुनते हुए कतर ग्रीन बीट।
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
0: कतर ग्रीन बीट। बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन FM 107 पर। मैं हूं अमिता आपके साथ और आप सुन रहे कतर ग्रीन बीट। मतलब वक्त है हमारे सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट का और सबसे पहले सेगमेंट का, दैट इज द ग्रीन वायर, जहां पर हम सारी अपडेट्स आपसे शेयर करते हैं। आज इस सेगमेंट की शुरुआत एक बहुत ही जबरदस्त खबर या यूं कहें ऐसी तस्वीर के साथ करेंगे जो शायद आपकी आंखों के सामने हर रोज गुजरती है, लेकिन आज हम उसे एक अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे। अच्छा, क्या आपने हाल ही में, या यूं कहें कि आप अक्सर दोहा कॉर्निश की सैर पर जाते हैं? वैसे आई नो कि अभी गर्मी बहुत है, लेकिन फिर भी जब थोड़ा सा ठंडक मिलती है तो आप जाते हैं। अब आप इमेजिन करो, सूरज ढल रहा है, हल्की ठंडी हवा चल रही है, मतलब उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं कि अभी कभी तो ठंडी हवा मिले, हाँ, इस गर्मी के मौसम में। और समुन्दर की लहरों के साथ साथ दोहा का स्काईलाइन चमक रहा है, लेकिन अल मसरा पार्क के पास पहुंचते ही आपकी नजर एक ऐसी चीज पर रुकती है जो बिल्कुल हैरतअंगेज है। जमीन से निकलता हुआ एक बड़ा सुनहरा और चमकता हुआ क्रिएचर। मैं बात कर रही हूँ दुनिया की सबसे मशहूर और कीमती आर्टिस्ट में से एक जेफ कून्स की बनाई हुई डूगोंग स्कल्पचर की। 21 मीटर्स ऊंची और तकरीबन 31 मीटर्स चौड़ी, ये कोई ऐसा वैसा स्टैचू नहीं है, एक ऐसा ट्रिब्यूट है कतर के उन साइलेंट रेजिडेंट्स को जो हमारे पानियों में सदियों से रह रहे हैं। लेकिन जनाब, दिलचस्प बात सिर्फ इसकी चमक नहीं है। अक्सर लोग वहां जाते हैं, सेल्फीज लेते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये स्कल्पचर वहां क्यों है? सुनिए, ये हकीकत शायद आपको हैरान कर दे। हमारा कतर पूरी दुनिया में डुगोंग्स की दूसरी सबसे बड़ी आबादी का घर है। इन्हें सी काउज भी कहा जाता है। ये मासूम से जीव, ये क्रिएचर्स हमारी मरीन बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन की वजह से इनका वजूद खतरे में आ गया है। जब कतर म्यूजियम्स ने इस इको आर्ट को शहर के बिल्कुल बीचों बीच लगाने का फैसला किया तो उनका मकसद सिर्फ ब्यूटिफिकेशन नहीं था, उनका मकसद था अवेयरनेस पैदा करना। एक आर्टिस्ट जब इतनी बड़ी स्कल्पचर बनाता है तो वो हमसे बातें करता है, वो हमें याद दिलाता है कि हमारा कतर नेशनल विजन 2030 सिर्फ बड़ी बिल्डिंग्स बनाना नहीं है बल्कि अपने कंजर्वेशन और एनवायरमेंट को महफूज रखना भी है। आप खुद सोचिए, जब हम ऐसी पब्लिक इंस्टॉलेशंस को देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? क्या हम सिर्फ एक मेटल का डब्बा देखते हैं या कुछ और? हम देखते हैं एक मास्टरपीस जो वेस्ट से लड़ने की ताकत रखता है। जेफ कून्स ने डुगोंग को इतना ऊंचा इसीलिए बनाया ताकि हम इसे इग्नोर ना कर सकें। ये एक कॉल टू एक्शन है, ये हमसे कह रहा है कि हमारा समंदर हमारा सबसे बड़ा खजाना है, अगर हम अपने पानी को साफ नहीं रखें

0: करेंगे, अगर हम प्लास्टिक वेस्ट को कंट्रोल नहीं करेंगे तो शायद आने वाली जनरेशन के पास देखने के लिए सिर्फ ये मेटल के स्कल्पचर्स ही रह जाएंगे, असली डुगोंग्स नहीं। इसीलिए द ग्रीन वायर पर आज हम सल्यूट करते हैं कतर म्यूजियम्स को और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को, जो आर्ट के जरिए हमारी बायोडाइवर्सिटी के गार्जियन बनकर खड़े हैं। आर्ट एक ऐसी जुबान है जो एक्सेंट्स की मोहताज नहीं है, ये सीधा दिल पर असर करती है। मेरा आप सबसे एक सवाल है, अगली बार जब आप कॉलेज जाएं और उस डुगोंग स्कल्पचर को देखें तो बस एक मिनट के लिए रुकिए, देखिए कि कैसे वो धूप में चमकती है और सोचिए कि हम अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं ताकि हमारा समंदर और उसमें रहने वाले क्रिएचर्स हमेशा महफूज रहें। क्या हम अपने घर का कचरा कम कर सकते हैं? क्या हम सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कह सकते हैं? क्योंकि याद रखिए, हर बड़ा बदलाव एक छोटे से क्रिएटिव कदम से शुरू होता है। वेल, आप सुन रहे हैं कतर ग्रीन बीट, मैं हूं अमिता आपके साथ, तो कहीं ना जाएं, बने रहे हमारे साथ ऑन FM 107 पर, दिल से देसी।
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
2: कतर ग्रीन बीट,
0: वेलकम वंस अगेन, FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं अमिता आपके साथ। चलिए अब रुक करते हैं एक ऐसी जगह जहां सपने, हुनर और हकीकत आपस में मिलते हैं। अब वक्त है हमारे सबसे खास सेगमेंट का, प्रोजेक्ट स्पॉटलाइट। आज हमारी जो रोशनी है या स्पॉटलाइट है वो जाती है VCU आर्ट्स, कतर के उन होनहार और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स पर जो लग्जरी की डेफिनेशन को ही हमेशा के लिए बदल रहे हैं। जब हम लग्जरी लव्स सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद चमकने वाला सोना या जमीन की गहराइयों से निकाला गया कोई नायाब हीरा। लेकिन क्या हुआ अगर मैं आपसे कहूं कि असली लग्जरी लूटने में नहीं बल्कि बचाने में है, तो कैसा लगेगा? हाँ, यहाँ के डिजाइनर्स फैशन पीस के जरिए कुछ ऐसा नया कर रहे हैं जो हमारी पुरानी सोच को झंझोड़ कर रख देगा। तो आपको क्या करना है, अब आपको सुनना है कि सदियों से हम इंसान गहनों या यूं कहें ज्वेलरी के लिए जमीन का सीना चीरते आए हैं, है कि नहीं? माइनिंग के इस अमल में हमने ना जाने कितने पहाड़ों को खाली कर दिया, कितने पेड़ों को काट दिया। लेकिन VCU आर्ट्स कदर के इन नौजवानों ने, इन आर्टिस्ट ने एक सवाल पूछा, क्या हम खूबसूरती को बिना किसी नुकसान के पैदा कर सकते हैं? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उनका ध्यान गया उन दो चीजों पर जो हमारे पास कतर में सबसे ज्यादा है। एक है हमारी डेजर्ट की रेत जो मीलों तक फैली हुई है, और दूसरा है वो रिसाइकल ग्लास जिसे हम अक्सर वेस्ट समझकर कचरे के ढेर में फेंक देते हैं। उन्होंने फैशन को सिर्फ कपड़ों या गहनों तक लिमिटेड नहीं रखा बल्कि उसे एक पैगाम बना दिया। अब जरा सोचिए इस प्रोसेस के बारे में कि एक तरफ पुरानी फेंकी हुई बॉटल्स और कांच के टुकड़े हैं जिन्हें कोई दोबारा देखना पसंद नहीं करता, दूसरी तरफ डेजर्ट की वो रेत है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इन डिजाइनर्स ने इन दोनों को मिला दिया इन फर्नेसेस में, यानी उन बड़ी भट्टियों में जहाँ टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि पत्थर भी पिघल जाए, वहां ये कांच और रेत एक साथ मिलकर एक नया रूप लेते हैं। इसे पिघलाने के बाद जो मटेरियल है उससे जब वो डेलिकेट ज्वेलरी बनाते हैं ना, तो वो सिर्फ एक इयररिंग या नेकलेस नहीं है, वो एक मास्टरपीस है। एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जहां रद्दी को कीमती बनाया गया है, और सबसे कमाल की बात कि इनका कार्बन फुटप्रिंट तकरीबन जीरो है। ये कोई फैक्ट्री में बनी मशीन मेड चीज नहीं है बल्कि इसमें कतर की मिट्टी की महक और एक आर्टिस्ट की रूह शामिल है। इस प्रोजेक्ट का नाम है फैशनिंग पीस। कितना सुकून भरा नाम है ना, पीस यानी अमन। लेकिन किसके साथ? ये अमन है कुदरत के साथ। ये एक समझौता है कि हम अब और जमीन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लग्जरी का मतलब हमेशा महंगा होना नहीं होता, लग्जरी का मतलब होता है रेयर होना। हाँ जी, और आज के दौर में एक साफ सुथरा प्लैनेट, इससे ज्यादा लग्जूरियस चीज और कोई नहीं हो सकती। सो VCU आर्ट्स के इन स्टूडेंट्स ने हमें सिखाया है कि सस्टेनेबिलिटी कोई मजबूरी नहीं है बल्कि एक आर्ट फॉर्म है. जब आप उनकी बनाई ज्वेलरी को पहनते हैं ना तो आप सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट नहीं दे रहे होते हैं बल्कि आप पूरी दुनिया को बता रहे होते हैं कि आप इस जमीन की फिक्र करते हैं. यहाँ एक बहुत बड़ा टर्म निकल कर आता है जिसे हम कहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी. रेडियो की भाषा में कहें तो ये एक ऐसा पहिया है जो कभी रुकता नहीं. जो चीज़ खत्म हो गई वहीं से उसका नया जन्म होता है. ये प्रोजेक्ट एक बेहतरीन नमूना या यूँ कहें एक बेहतरीन एग्जाम्पल है इस बात का कि फैशन का फ्यूचर ज़्यादा खरीदने या ज़्यादा कंजम्पशन में नहीं है. फैशन का फ्यूचर है कि क्रिएटिंग बेटर विथ व्हाट वी ऑलरेडी हैव. हम अक्सर नए की तलाश में ना पुराने खजाने भूल जाते हैं. कतर नेशनल विजन 2030 का भी यही मकसद है. एक ऐसी नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाना जहां दिमाग और दिल मिलकर काम करें. इन डिजाइनर्स ने साबित कर दिया है कि कतर सिर्फ तेल या गैस का देश नहीं है बल्कि ये उन क्रिएटिव माइंड्स का भी देश है जो रेत के जर्रों से भी हीरे तराशना जानते हैं. तो जनाब आगे कतर ग्रीन बीट में और भी कुछ खास है तो आप कहीं ना जाएं, बने रहे हमारे साथ FM 107 पर. दिल से देसी
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर. मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर.
2: कतर ग्रीन बीट.
0: वेलकम वंस अगेन. मैं हूं अमिता, आपके साथ कतर ग्रीन बीट सुन रहे हैं आप. वेल, अब तक हमने बात की उन बड़े बड़े स्कल्पचर्स की और VCU आर्ट्स के उन कमाल के डिज़ाइनर्स की, लेकिन अब वक्त है एक ऐसी हकीकत का जो आपके और मेरे यानी हम सब के बहुत करीब है. अक्सर हम सोचते हैं कि प्लानेट को बचाना या एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना सिर्फ बड़े आर्टिस्ट या साइंटिस्ट का काम है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इको आर्ट सिर्फ उनके लिए नहीं है जिनके नाम गैलरीज में लगे होते हैं, बल्कि ये एक मूवमेंट है जो आप अपने लिविंग रूम से, अपनी रसोई या अपने किचन से या अपनी बालकनी से शुरू कर सकते हैं. आपको बस अपना नजरिया थोड़ा सा बदलना होगा. जहां दुनिया को कचरा दिखता है वहां एक आर्टिस्ट को क्रिएटिविटी का मौका दिखता है, है कि नहीं? तो सुनिए कैसे आप अपने घर को अपसाइकल करके ग्रीनर बना सकते हैं और कतर की इस हरियाली में अपना हिस्सा डाल सकते हैं. सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली टिप से, द ग्लास ट्रांसफॉर्मेशन. हमारे घरों में हर हफ्ते कितने ही जैम के जार्स या वो कहते हैं शहद के डब्बे, हनी की शीशियां या परफ्यूम की खाली बॉटल्स निकलती ही निकलती है. हम क्या करते हैं उसका? बस उन्हें बिन में फेंक देते हैं. लेकिन रुकिए, अगली बार फेंकने से पहले ना उन्हें एक नया पर्सपेक्टिव दीजिए. हाँ, कैसे? उसे देखिए एक नए नजरिए से. एक पुराने कांच की बॉटल, उसे क्या कर सकते हैं? आपने उसे साफ किया, उसकी लेबल उतारी, अब थोड़ा सा इको फ्रेंडली पेंट कीजिए या फिर कतर के पुराने बाजारों से मिलने वाली जो ट्वाइन का इस्तेमाल है उसे कीजिए. जब आप उस बॉटल के चारों तरफ उस रस्सी को लपेट के तैयार करते हैं तो वो ट्रैश एक बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही शीक वास बन जाता है. इसमें आप अपने गार्डन के फूल लगा सकते हैं या फिर इसे कैंडल होल्डर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब उस कांच के अंदर से मोमबत्ती की रोशनी बाहर आएगी ना तो वो सिर्फ रोशनी नहीं लगेगी, वो आपकी एक छोटी सी कोशिश होगी जो इस प्लैनेट को बचाने के लिए आपने की. वाह, सो ट्राई कीजिएगा. उसके बाद हमें क्या करना है? अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी और इंस्पिरेशन की ज़रूरत है तो मैं आपको एक फ्री एडवाइस देती हूँ. एक चक्कर फायर स्टेशन आर्टिस्ट इन रेजिडेंस का ज़रूर लगाइए, ठीक है? ये दोहा के दिल में एक ऐसी जगह है जहाँ की दीवारों से भी क्रिएटिविटी टपकती है. वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना जॉयफुल है ना कि आपका दिमाग नए आइडियाज से भर जाएगा. वहाँ अक्सर ऐसी वर्कशॉप्स होती हैं जहाँ आप सीख सकते हैं कि कैसे पुराने कपड़े या प्लास्टिक के वेस्ट से घर का बेहतरीन डेकोर तैयार किया जा सकता है। वहां के आर्टिस्ट से बात कीजिए, देखिए कि कैसे वो एक पुरानी जीन्स को एक बैग में बदल देते हैं या प्लास्टिक कैप से एक मोजैक पेंटिंग बना देते हैं। जब आप वहां जाएंगे ना तो आपको एहसास होगा कि सस्टेनेबिलिटी कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि ये एक फनकारी या आर्टिस्ट्री है जिसे हर कोई अपना सकता है। और यही हमारे कतर की खूबसूरती है और खूबी है कि हर चीज डिफिकल्ट नहीं लगती, आसान लगती है और अपनी सी लगती है। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, नेचर एज अ कैनवस। हाँ, अगली बार जब आप कतर के किसी बीच पर जाएं, जैसे सी लाइन या अल वक्रा या फिर डेजर्ट की गहराइयों में कैंप लगाएं, तो वहां एक नया खेल खेलिए। इसे कहते हैं एफेमरल आर्ट, यानी वो कला जो कुछ वक्त के लिए है और फिर मिट जाएगी। वहां मौजूद पत्थरों या समुंदर की शेल्स या गिरे हुए सूखे पत्तों से पैटर्न्स बनाइए, एक मंडाला बनाइए या कोई जियोमेट्रिक शेप। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा सुकून क्या है पता है? इसमें कोई कचरा नहीं फैलता। आपने आर्ट बनाया, उसकी एक फोटो खींची और उसे वहीं कुदरत के हवाले कर दिया बिना किसी नुकसान के। ये हमारी धरती के लिए ना एक गिफ्ट है, एक तोहफा है। ये हमारी क्रिएटिविटी दिखाने का सबसे उमदा मौका है। हाँ जी, तो आज की हमारी इस बातचीत का जो निचोड़ बस यही है कि आर्ट और कंजर्वेशन यानी कला और हिफाजत एक ही सिक्के के ना दो पहलू है। आर्ट वो यूनिवर्सल जुबान है जो सबको समझ आती है, इसमें वो ताकत है जो हमें भागती दौड़ती जिंदगी में ना थोड़ा रुकने, देखने और उस दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है जो हम और आप बच्चों के लिए ना पीछे छोड़ रहे हैं। तो जनाब, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आज जो हमने कतर ग्रीन बीट में डिस्कस किया उसका हम थोड़ा थोड़ा ख्याल रखें, क्योंकि जब हम ये ख्याल रखते हैं तो हम अपनी जिंदगी में एक साफ सुथरी सांस ले सकते हैं और अपनी आने वाली जनरेशन को भी दे सकते हैं। चलिए, इसी बात के साथ अब आप दीजिए मुझे इजाजत, क्योंकि वक्त हो गया है मेरे जाने का। आपकी मेरी मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते कतर ग्रीन बीट के एक अगले एपिसोड में एक नई नवेली बात पर। तो हमारे साथ बने रहिए और FM 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी आप जुड़ सकते हैं, और अगर कोई सजेशंस है तो 666-22-107 हमारा नंबर है, इसके जरिए भी आप अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं। और अभी के लिए अमिता को दीजिए इजाजत, अपना खूब सारा ख्याल रखें, बने रहें FM 107 पर, दिल से देसी।
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
2: कतर ग्रीन बीट,
3: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर। दिल से देसी।

0: anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
2: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है. कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद. और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से. तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए. प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा. हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी. हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी. दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार.
3: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन. यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है. बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है. जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक. ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
4: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se desi.
0: Aap sun rahe hain FM 107.
1: दिल से देसी.
5: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें. हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
6: स्कैम अलर्ट. अस्सलाम वालेकुम, FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों. ये एपिसोड है फ्रॉड अवेयरनेस का, जहां पर नए जमाने के नए फ्रॉड से आपका सामना होता है. वेल, आज हम जिस फ्रॉड के बारे में बात करने वाले हैं, ये बहुत ही ज्यादा आसान फ्रॉड है, और इतना आसान है कि कोई भी शख्स इसमें फंस जाता है. दिस फ्रॉड इज कॉल्ड फेक गिव अवे स्कैम या फ्रॉड. आजकल बच्चों को टारगेट करने के लिए ये एक बहुत ही कॉमन ऑनलाइन धोखा है. स्कैमर्स सोशल मीडिया, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब और मैसेजिंग एप्स पर बहुत अट्रैक्टिव एड्स बनाते हैं. वो फ्री स्मार्टफोन्स, गेमिंग कॉन्सोल्स, गिफ्ट कार्ड्स या फ्री सब्सक्रिप्शंस जैसे बड़े रिवॉर्ड देने का झूठा वादा करते हैं. इन इनामों यानी कि प्राइजेस को लेने के लिए बच्चों से किसी लिंक पर क्लिक करने, सर्वे पूरा करने, ऐप को डाउनलोड करने या आपकी अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि नाम, ईमेल्स, फोन नंबर या पासवर्ड ये डालने को कहा जाता है. कुछ फेक वेबसाइट्स तो बिल्कुल ऑफिशियल कंपनी वेबसाइट्स जैसी ही दिखती हैं, जिससे असली और नकली का फर्क पहचानना बेहद मुश्किल हो जाता है. स्कैमर्स का असली मकसद आपकी पर्सनल इन्फो चुराना, ऑनलाइन अकाउंट को हैक करना या डिवाइस में वायरस यानी कि हार्मफुल सॉफ्टवेयर डालना होता है. कभी कभी वो प्राइस देने से पहले एक छोटी सी प्रोसेसिंग फी भी मांगते हैं. जैसे ही आप पैसे देते हैं, उनको पैसे मिलते हैं, स्कैमर्स गायब हो जाते हैं. इसके अलावा बच्चे अनजाने में अपने पेरेंट्स की बैंक डिटेल्स भी शेयर कर देते हैं, जिससे बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाता है. इससे ना सिर्फ पैसे डूबते हैं, बल्कि गेमिंग अकाउंट्स, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स और पर्सनल फोटोज का एक्सेस भी खोना पड़ सकता है. लेकिन इस तरह के स्कैम से बचने का सॉल्यूशन भी है. बड़े गौर से सुनिएगा इन सॉल्यूशंस को, क्योंकि कई बार अगर हमें सॉल्यूशन पता हो, कई बार हमें अगर सिर्फ अवेयरनेस हो, तो हम फ्रॉड से या स्कैम से बच सकते हैं. कैसे सेफ रहें इन स्कैम से? सबसे पहला जो ऑप्शन आपको हर स्कैम में देखना चाहिए या आप अपना सकते हैं, वो है टू गुड टू बी ट्रू. अगर कोई ऑफर सच होने के लिहाज से बहुत ज्यादा अच्छी लगे, तो समझ लीजिए कि वो एक फ्रॉड है, वो एक स्कैम है. कोई ऐसी चीज यानी कि कोई 1,000 रियाल की चीज अगर आपको 10 रियाल, 20 रियाल, 50 या 100 रियाल में नहीं मिल रही है, तो ये है साइन टू

0: गुड टू बी ट्रू का। कोई भी ऑफर ऐसा जो आपको जरूरत से ज्यादा लुभावना लगे उस पर शक जरूर करें। दूसरा है नो लिंक्स और इन्फो। किसी भी प्राइस के लालच में सस्पिशियस लिंक्स पर क्लिक बिल्कुल ना करें और ना ही अपनी पर्सनल डिटेल्स उन वेबसाइट्स पर या सॉफ्टवेयर में डालें जो आपको लग रही हो कि हो सकता है ये फ्रॉड है। जरा भी शक हो तो आप कोई भी डिटेल्स शेयर ना करें। सबसे पहले अपने पेरेंट्स से पूछें। किसी भी कॉम्पिटिशन या गिव अवे में हिस्सा लेने से पहले पेरेंट्स, टीचर या किसी बड़ों से जरूर पूछें, उनसे राय लें। ट्रस्ट वेरीफाइड पेजेस। सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट और वेरीफाइड सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ही भरोसा करें और कभी भी अपना पासवर्ड शेयर ना करें। किसी भी इनाम के बदले अपना पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर बिल्कुल ना करें। यूज टेक सिक्योरिटी। अपने डिवाइस में एंटीवायरस इंस्टॉल करें, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करें और सस्पिशियस पोस्ट को जरूर रिपोर्ट करें। इस तरह से आप नए जमाने के नए स्कैम से बच सकते हैं। फिलहाल मुझे यानी कि फजीर को दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में एक बार फिर मुलाकात होगी नए जमाने के नए फ्रॉड से बचते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट। आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। One step to 2030. Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया। One step to 2030. दोस्तों आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं ग्रीन एनर्जी और नेट जीरो इकोनॉमीज की। देखिए आज दुनिया को सबसे बड़ा चैलेंज क्लाइमेट चेंज का लगता है। क्लाइमेट चेंज का हम सबको सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती हुई गर्मी, पोल्यूशन, कुदरती तब्दीलियां इंसानी जिंदगी को मुतासिर कर रही हैं। इन मसाइल का हल ग्रीन एनर्जी और नेट जीरो इकोनॉमी के तसव्वुर में छुपा है। ग्रीन एनर्जी है क्या? देखिए ग्रीन एनर्जी से मुराद ऐसी एनर्जी है जो कुदरती और रिन्यूएबल रिसोर्स से हासिल की जाती है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर। ये एनर्जी एनवायरमेंट को कम नुकसान पहुंचाती है, फॉसिल फ्यूल्स के मुकाबले में ज्यादा पायदार होती है। वहीं पर नेट जीरो इकोनॉमी का मतलब है ऐसा निजाम जहां पे कार्बन इमर्शंस को इतना कम कर दिया जाए जितने कार्बन हवा में जाए उतनी ही एब्जॉर्ब या रिमूव भी कर ली जाए। इस तरह से एनवायरमेंट पर नेगेटिव असर कम से कम हो जाता है। यहाँ पर ये टॉपिक इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर दुनिया ने एनर्जी के पुराने तरीकों को जारी रखा तो क्लाइमेट चेंज मजीद खतरनाक सूरत इख्तियार कर सकता है। समंदरी सतह बढ़ सकती है, मौसम में शदीद तब्दीलियां आ सकती हैं और कई इलाके रहने के काबिल ही ना बचे शायद। दोस्तों ग्रीन एनर्जी का असर हमारी रोजमर्रा जिंदगी पर बहुत गहरा होता है। सोलर पैनल से बिजली सस्ती हो सकती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पोल्यूशन कम कर सकते हैं और इंडस्ट्री ज्यादा इन्वायरमेंटल या ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली बन सकती है। इसके साथ नई जॉब्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी पैदा होंगी। आज बहुत से कंट्रीज नेट जीरो टारगेट सेट कर रहे हैं और रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कतर और दूसरी गल्फ कंट्रीज भी सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस पर काम कर रही हैं ताकि मुस्तकबिल को ज्यादा महफूज और पायदार बनाया जाए। जी हाँ, ग्रीन एनर्जी सिर्फ एनवायरमेंट के लिए नहीं बल्कि इकोनॉमी के लिए भी फायदेमंद है। इससे एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी, फ्यूल इम्पोर्ट्स पर खर्चा कम होगा और टेक्नोलॉजी में इनोवेशन को फरोग मिलेगा। दोस्तों ग्रीन एनर्जी और नेट जीरो इकोनॉमी सिर्फ एक एनवायरमेंटल स्ट्रेटजी नहीं है बल्कि इंसानियत के मुस्तकबिल का एक रोड मैप है। आज जो फैसले हम एनर्जी के हवाले से करेंगे या ये कहें कि वही कल की बुनियाद होंगे या वही कल की दुनिया का ताउन करेंगे, अगर हम साफ एनर्जी और पायदार मईशत की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो हम अपने आने वाली नस्लों को एक साफ, सेहतमंद, खुशहाल दुनिया का वादा कर रहे हैं या खुशहाल दुनिया दे सकते हैं। मुस्तकबिल में उन्हें ही है जो इन सारी चीज़ों को संभालना है। मुस्तकबिल उनका ही है जो आज से एनवायरमेंट की जिम्मेदारी को समझेगा, अमल करेगा, वो कल एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ बढ़ सकेगा। वेल दोस्तों अभी के लिए तो मैं बढ़ रही हूँ आपसे इजाजत लेने की तरफ इस वादे के साथ कि कल वापस एक और नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी। One step to 2030.
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

अस्सलामुअलैकुम, आपका गैजेट गुरु हाजिर है। नहीं, गैजेट गुरु थोड़ा कूल नहीं लग रहा आपका। टैकी नहीं, ये भी कूल नहीं लग रहा। छोड़ो, मैं दुआ वाला कबीर एफ 107 पे। अस्सलामुअलैकुम, आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड हाजिर है। सर जी, इस बार टेक्नोलॉजी के बारे में जरा बात कर लेंगे। आज जो है मैं बहुत जबरदस्त चीजें लेके आया हूँ आपके लिए। मैं सही बता रहा हूँ, अभी आपके सामने जब पेश करूंगा बोलेंगे भाई ये तो बड़ी काम की चीज है। तो आज बहुत काम की चीजें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। AI टूल्स हैं, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके बारे में आपने शायद सुना नहीं होगा, लेकिन जब आप यूज करने लगेंगे तो आप बोलेंगे रोए भाई, ये तो गजब उठा दिया भाई, तो धुआं उठा देंगे भाई। बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पे जरूर आना है आपने। सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 Qatar इस नाम से हर जगह है, तो आपको भी हमारे साथ जुड़े होना चाहिए। वी आर फैमिली। नो, आइए आप और शुरू करेंगे सबसे पहले ऐप से, एंड उसके बाद हम जाएंगे गैजेट्स पे और फिर जरा खबरों की तरफ रुख करेंगे। ठीक है, चला शुरू कर दें। एक सेकंड। सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 कतर इधर भी आइएगा और मैं मुझे भी ढूंढ लीजिएगा दो हवाला कबीर के नाम से KABIR। चलो शुरू करते हैं। ट्रेंडिंग ऐप्स। सबसे पहले बात करेंगे ऐप्स दिस वीक में ऐप नंबर वन की। ये रैंकिंग नहीं है, रैंडमली बता रहा हूं, तो उसी हिसाब से सुनिएगा। जो सबसे पहले जो वेबसाइट है AI की वो है nosignups.net, nosignups.net सो nosignups.net एक बहुत ही सीक्रेट, बहुत ही कमाल की वेबसाइट है। अब तो ये मैंने पब्लिक कर दी, तो इट्स नॉट अ सीक्रेट एनीमोर। इस वेबसाइट पे जाइएगा, आपको बहुत सारी जो पेड AI टूल्स नहीं होते जो आपकी जेब से पैसे ले रहे होते हैं, उनके सारे के सारे ऑल्टरनेट आपको मिलेंगे। जैसे कैप कट की जगह आपको ओपन कट मिल जाएगा, बहुत सारे और भी AIs हैं जिनके ऑल्टरनेटिव्स यहां पर आपको मिलेंगे। ऑल ऑफ देम आर फ्री, फ्यू ऑफ देम एक्चुअली रिक्वायर्ड यू टू पे सम।

0: नहीं मगर वो बहुत कमी है या ये बहुत कमाल की साइट है, कोई साइन अप नहीं, सीधा का सीधा आप जो AI टूल्स दे रखे हैं, जो ऑल्टरनेट दे रखे हैं आप यूज कर सकते हैं. दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग वेबसाइट दैट आई गॉन थ्रू और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुतों के काम आने वाली है. आपको वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट टू स्पीच, डॉक्यूमेंट्स, डिजाइन, वर्क फ्लो, किसी भी काम के लिए चाहिए यहाँ पर, हर चीज के लिए, फोटो एडिटिंग के लिए भी यहाँ पर सारे के सारे ऑल्टरनेट्स मिलेंगे. डेफिनेटली एक बार देखने के लिए तो वेबसाइट है, हो सकता है आपका काम का आपको कुछ मिल जाए. nosignups.net. ओके, आगे बढ़ते हैं. तो अगली जो वेबसाइट है, दिस इज ऑल्सो एन AI वेबसाइट, क्यों बोल रहा हूँ मैं, AI टूल है, इसका नाम है रफायल AI. मेरे गले पे मत हंसिएगा, वो हो जाता है कभी. ओके, RAPHAEL, रफायल AI. दोबारा एक बार बोल देता हूं मैं, RAPHAEL .AI. यस, पेज एक AI लिखेंगे आप तो ये पेज अपने आप आ जाएगा. इसमें आप AI इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, फ्लायर्स बना सकते हैं, पोस्टर्स बना सकते हैं, एवरीथिंग इज मोस्टली फ्री. आप बिल्कुल इसके एडवांस वर्जन में जाएंगे जो बात दूसरी है, लेकिन जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको कंपटीशन नजर आएगा इसकी और बहुत सारे और भी AI इसके बीच में. दिस इज डेफिनेटली ऑन द लिस्ट क्योंकि बहुत अच्छे से प्रोडक्टिविटी के साथ काफी अच्छा देता है AI. वो वाला एक तो देखो AI की वाली इमेजेस होती है जो देखते पता लगता है अरे ये तो AI है, लेकिन इसकी बनाई हुई इमेजेस आर जस्ट अमेजिंग मैन. आई वॉज ब्लोन अवे कि ये मेरी नजर में कैसे नहीं आया और किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं. सो रफायल AI, this is definitely on the list right now. मैं एक बार फिर से इसका इसे spell out कर देता हूँ, RAPHAEL, रफायल AI. ये इतना सर्च कीजिएगा, एक पेज खुलेगा उसमें आपको सब का सब दिख जाएगा. ठीक है, हैप्पी इमेज क्रिएशन. मुझे बताइए कोई भी हेल्प लगे मेरी तो आई वुड लव टू हेल्प. कोई आपने कुछ नया चीज इसमें ढूंढ ली हो तो प्लीज शेयर इट दैट विद मी, मेरे भी काम आ सकते हैं. ओके ओके, मूविंग ऑन. देखिए, एक परेशानी होती है लोगों की, फोटोज में किसी बंदे को या बंदी को हटाना होता है तो पहले जमाने में लोग फोटो फाड़ देते थे और उसके बाद जो है एडिटिंग टूल्स आए और आप सीधा सीधा फोटो अपलोड करें और जिस बंदे को, जिस ऑब्जेक्ट को या बंदी को आपको हटाना है आप फोटोज में से क्लियरली हटा सकते हैं. सो ये AI का नाम है cleanup.pictures. cleanup, CLEANUP, cleanup.pictures, PICTURES. इस पे जाइएगा और मैं आपको ट्रिक बताता हूं. 720p कर दीजिएगा, चूज कीजिएगा रेजोल्यूशन और उसके बाद आप बढ़िया करके रिमूव करिए जो आपको रिमूव करना है पिक्चर पे से. अब इमेज अपलोड करना है उसमें आपको जो नहीं चाहिए उसे मार्क करो, हट जाएगा अपने आप और बहुत क्लीन हटेगा. मैं सही बता रहा हूँ, ये आपके बहुत काम आने वाली. ट्राई दिस वन, cleanup.pictures एंड मैं आप मुझे थैंक यू जरूर बोलेंगे, मैं गारंटी दे सकता हूँ इस बात की. ठीक है, तो ये तो थी कुछ AI टूल्स वेबसाइट जो मैंने आपको बताई. अब जरा आगे बढ़ते हैं गैजेट्स दिस वीक की तरफ. cool gadgets. तो गैजेट नंबर वन, ये मुझे चाहिए भाई, मेरा बड्डा आने वाला है, मैं अपने आपको गिफ्ट कर दूंगा, कोई नहीं करेगा. तो इसका नाम है मैक्लॉक. मैं स्पेल आउट कर देता हूं, आप जैसे इसका प्रोनाउंसिएशन करना चाहें, MACLOCK, मैक्लॉक. ये एक विंटेज डेस्क पे रखने वाली एक क्लॉक है. बोले घड़िया तो यार क्या बड़ी बात है घड़ी में. ये एक छोटा सा पुराना कंप्यूटर, याद है आपको व्हाइट वाला कंप्यूटर आता था पहले, है ना, बल्की सा होता था उसका मॉनिटर, बड़ा भारी सा फ्लॉपी डिस्क, याद है किसी को, ये मिलेनियल समझ पाएंगे भाई, फ्लॉपी डिस्क होती थी एक, जेन जी वालों को बता रहा हूँ. वो इसमें हम इंसर्ट करेंगे, टाइम हो जाएगा और बहुत क्यूट है यार ये, बहुत इसके साथ स्टिकर्स भी आते हैं, इतनी प्यारी चीज है ना ये. अब अगर आप गिफ्ट करेंगे ना किसी को, अगर आप सोच रहे हैं कि किसी का बर्थडे आने वाला है और बर्थडे किसी आपके मेल दोस्त का आ रहा है, किसी लड़के का आ रहा है, आदमी का आ रहा है, उसको गिफ्ट कर दो, डेफिनेटली खुश हो जाएगा. बहुत प्यारी चीज है यार, बहुत प्यारी चीज है मैक्लॉक. ये नाम है इसका MACLOCK. देखिए आप इसकी फोटो एक बारी फिर मुझे बताइएगा, डेफिनेटली बोलेंगे यार चीज तो प्यारी है. बड़ी क्यूट सी वॉच कह रहा हूँ, वो है घड़ी है, डेस्कटॉप पे आप अपने रख सकते हैं अपने काम करते करते, एंड डेफिनेटली गिफ्ट वर्दी चीज है भाई, पूरी की पूरी गिफ्ट वर्दी चीज है एंड बजट में भी है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अगला जो है बहुत सिंपल लेकिन मुझे बहुत काम का लगा. देखिए जब क्या है, बैटरी खत्म हो जाती है ना भाई साहब रिमोट की, तो थप्पड़ मार के आप कब तक रिमोट चला लेंगे. एक पॉइंट तो आएगा जब आपका चांटा जो आप रिमोट पे टीवी के मारे जा रहे हैं वो काम नहीं आएगा, और तब आपको बैटरी वन उसकी सेल जो है वो बदलने पड़ेंगे. फिर आप कहेंगे अरे यार इरिटेशन होता है राइट, या तो आपने घर के अंदर वो चार्जर खरीद के रखा होगा जिसमें आप जो रिचार्जेबल बैटरी होती है आप लगा देते हैं, वेट करते हैं अगली सुबह निकालूंगा। लेकिन एक और बैटरी है और ये सिस्टम मुझे बहुत बढ़िया लगा, इनका नाम है पोर्ट्रॉनिक्स ट्रिपल ए लिथियस टाइप सी। पोर्ट्रॉनिक्स ट्रिपल ए लिथियस, मैं पहला नाम बता देता हूं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा सुनने में, पी ओ आर टी आर ओ एन आई सी एस, पोर्ट्रॉनिक्स लिथियस। तो ये एक सेल ऑफकोर्स बैटरी है लेकिन रिचार्जेबल बैटरी है और ये दो के पैक में आती है, मतलब दो सेल आपको एक साथ मिलेंगे। लिथियम आयरन सेल कंपोजिशन है इसमें भी और 440 mAh की पावर है, मतलब जो आपके डिवाइसेज हैं टीवी का रिमोट ये सब इनके काम आएगा। एंड इसको आप यूएसबी से चार्ज कर सकते हैं। खत्म भाई, कहानी खत्म। यूएसबी का जो है इसमें सेक्शन दिया हुआ है तो यू कैन जस्ट चार्ज द सेल इजीली कहीं पे भी लगा के, जल्दी चार्ज हो जाते हैं, कोई सेपरेट चार्जर फार्जर कुछ नहीं चाहिए और डिस्चार्ज भी जल्दी नहीं होते, सालों साल चलेंगे भाई। ये मुझे इतनी मस्त चीज लगी ना, ये किसी को गिफ्ट करोगे तो हो सकता है कि वो कह रहे यार मेरे को सेल क्यों दे रहे हो भाई, लेकिन आप अपने आप को गिफ्ट कर सकते हो। ये वाला जो है ये खुद को गिफ्ट करने वाला प्रोडक्ट है एंड इट इज डेफिनेटली हाईली हाईली रिकमेंडेड अपने लिए। तो भाई ये आप ले सकते हैं, एक बारी में आपकी सारी जो परेशानी है ना, ये टीवी के रिमोट बंद जाना, एसी का रिमोट का सेल गया, फलाने का सेल गया, तो वो परेशानी ठीक हो जाएगी। आई नो वो डिवाइस आप कह रहे होंगे हम तो डिवाइस में लगा देते हैं, मगर ये और भी ज्यादा बढ़िया है, इट ऑल्सो लुक्स कूल। कुछ चीजें कूल लगने के लिए भी ले लेनी चाहिए, ठीक है, और बहुत सस्ती भी है। आगे बढ़ते हैं। ये प्रोडक्ट जो बताने जा रहा हूं मैं तीसरे नंबर पे, ये मेरा पसंदीदा प्रोडक्ट है ऑन द लिस्ट, सॉरी इस बार मैं थोड़ा फेवरेबल हो चुका हूं, ये मेरा फेवरेट है इस हफ्ते। इसका नाम है मेसन वैक्यूम सीलर मशीन, मेसन एम ए वाई, जैसे मई के महीने का लिखते हैं ना स्पेलिंग, एम ए वाई सन एस ओ एन वैक्यूम सीलर मशीन, और पैकिंग 3-in-1 कॉर्डलेस पोर्टेबल पैकेजिंग मशीन। ये पैकेजिंग भी करती है, ये वार्म भी करती है, ये हवा भरने का सिस्टम भी है इसमें गुब्बारों में किसी चीज में। ये 3-in-1 डिवाइस जो है ना, ये मेसन वैक्यूम सीलर मशीन, ये मुझे इतनी पसंद आई है मैंने डिसाइड कर लिया जब मैं छुट्टी पे जाऊंगा भाई ये उठा के मैं जरूर लाऊंगा, जरूर। कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो आप हल्के में लेते हैं पर जब वो चीजें सॉल्व हो जाती हैं तो आपको लगता है यार ये पहले क्यों नहीं सोचा मैंने। फॉर एग्जांपल आपने जिसका पैकेट खोल लिया, चिप्स का पैकेट खोल लिया आपने और आपने आधा खाया आधा छोड़ दिया, बड़ा वाला पैकेट लिया, अब वो सील जाते हैं चिप्स उसके अंदर, आप जितनी कोशिश कर लीजिए, है ना। जो लोग कतई समझदार वेरी वेल मैनेजमेंट है उनकी बात दूसरी है, लेकिन मेरे और आपके जैसे लोग जो थोड़े से लीजी होते हैं भाई, चिप्स सील गए पूरे, ये उसको ऊपर पूरी तरह से सील करके देता हूँ। कितने रुपए का बताऊं, रेडियो सुनने के लिए 500 रुपए का है, इंडियन रुपीज में। ये मैं डेफिनेटली लेके आने वाला हूँ भाई, आई बिकेम अ ह्यूज फैन ऑफ दिस प्रोडक्ट एज सून एज आई सॉ द प्राइस टैग, ये तो भाई आएगा। और ये अमेजोन पे अवेलेबल है तो इन केस आप अमेजोन पे कहीं से ऑर्डर करना चाहें या कहीं ट्रेवल करते हैं तो आप इसको मंगा सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं, सो ऑल द बेस्ट। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ, इन टेक न्यूज। तो खबर नंबर 1 गूगल से आ रही है, जब आप ये शो सुन रहे होंगे तो ये सब कुछ हो चुका होगा तो उसका रिव्यू बाद में दूंगा, मगर गूगल मेड बाय गूगल जो उनके फोन्स आते हैं वो इवेंट जो वो करता है वो लॉन्च कर रहा है, कंपनी ने फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। अभी लॉन्च हो चुके होंगे पिक्सल 11, पिक्सल 11 प्रो, पिक्सल प्रो फोल्ड और पिक्सल वॉच 5। आई विल नॉट से मैं बहुत बड़ा फैन हूँ गूगल पिक्सल का, पर रिसेंटली मुझे लगता है कि गूगल जो कर रहा है बहुत नीश है और बहुत कमाल का कर रहा है, एक सेपरेट बेस बनाया है अपना। एंड अब जो पिक्सल 11 की पूरी लाइनअप लॉन्च हो चुकी है जब आप इसे सुन रहे हैं तो उसका रिव्यू भी मैं इंशाल्लाह आपको करके जरूर जरूर बताऊंगा। बट डेफिनेटली इफ यू हैवंट ट्राइड गूगल पिक्सल, अगर आप एक चेंज सोच रहे हैं कि यार मैंने एंड्रॉइड बहुत यूज कर लिया, आई हैव ट्राइड एप्पल, सो यू शुड ट्राई समथिंग डिफरेंट, एक थोड़ा सा ट्वीक आएगा अगर आप पिक्सल यूज करेंगे। मैं भी आपकी तरह सोच रहा हूँ, मेरा भी मन है थोड़ा अलग यूज करने का। तो दिस होल लाइनअप, द पिक्सल 11 लाइनअप इज ऑलरेडी बीन लॉन्च्ड 12 अगस्त को, तो जो भी रिव्यू है आपको इंशाल्लाह अगले शो में मिल जाएगा। आपका कोई रिव्यू है तो बता दीजिएगा कि भाई मैंने ये फोन यूज किया है, इफ यू आर ऑलरेडी यूजिंग पिक्सल तो अपने रिव्यू जरूर दे दीजिएगा, बिकॉज आई नो कि कुछ चीजें ऐसी हैं पिक्सल फोन की जो बहुत ही अच्छी हैं और कुछ ऐसी हैं जो आपको लगता है अरे ये ना होता तो मैं ये फोन ले लेता। बट लेट मी नो जो आपको लगता है रिव्यू और इसके लाइनअप के रिव्यू अगले हफ्ते। ओके, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, अगली खबर जो है सीधा गेमिंग की दुनिया से है,
1: गेम एंड एंटरटेनमेंट।
0: सो रॉकस्टार गेम्स ने अनाउंस किया है कि उनका जो एक्सटेंडेड लुक है GTA 6 का वो नेटफ्लिक्स

0: पे लॉन्च होगा। ये खबर ज्यादा नई नहीं है, लेकिन 27 अगस्त को जब ये लॉन्च होगा आफ्टरनून में, तो निराश मत होइए, आपको लग रहा होगा नेटफ्लिक्स की बिना सब्सक्रिप्शन के आप देख नहीं पाएंगे। भाई दोपहर में नेटफ्लिक्स पे और उसके बाद शाम तक या रात तक ये यूट्यूब पर भी लॉन्च हो जाएगा, ऐसा रॉकस्टार गेम्स ने कहा है। तो आई डोंट वांट टू ट्रस्ट देम, मुझे भरोसा नहीं है रॉकस्टार गेम्स का। आजकल बड़ी डाइसी और बहकी-बहकी बातें करने लगे हैं ये लोग। बट व्हाटएवर द रीजन इज, ये लॉन्च होगा 27 अगस्त को, एंड आई जस्ट कैन नॉट वेट। तो अगर आप भगदड़ में हैं और आप नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं सिर्फ इसके लिए, मत लेना, यूट्यूब पर आ जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है? ये गेमर्स के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये खबर भी गेमिंग की दुनिया से है, बीस्ट ऑफ रीइंकार्नेशन ये गेम लॉन्च हुआ। मैं जब इसका गेम प्ले देख रहा था, मैं बहुत बड़ा फैन हो गया था, मैं को यॉर्क का गेम बनाया, और बनाने वाले वो लोग हैं जिन्होंने पोकेमोन के सारे गेम्स बनाए, तो इट वॉज रियली ऑड, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा कोई गेम नहीं बनाया जिसमें एक समुराई है, उसका तलवार है और वो बकायदा लड़ रहा है। मुझे लगा नहीं था कि पोकेमोन के डेवलपर्स ऐसा करेंगे, बट दे हैव अटेम्प्टेड समथिंग, क्या हो गया मेरी जुबान को, अटेम्प्टेड समथिंग, जो कि ठीक है। मुझे ऐसा नहीं लगा कि ओ माय गॉड ये क्या बना दिया, इट इज ओके। गेम का कॉम्बैट बहुत बढ़िया है, मतलब इफ यूजिंग द सॉर्ड एंड पैरी सिस्टम की आप टिंग टिंग टिंग टिंग आवाज आती रहेगी, पर स्टोरी कुछ भी नहीं है यार, मतलब क्या बना दिए हो, सारे बॉसेस ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, बट फिर भी मैं इसे बैड गेम नहीं बोलूंगा, इट इज स्टिल अ प्लेएबल गेम, इट्स जस्ट दैट आई विल नॉट स्पेंड $60 इस पे अभी। मैं तो वेट करूंगा जब ये सेल पे आएगा या जब फ्री हो जाएगा तब यूज कर लेंगे भाई। पर इफ यू लुकिंग फॉर द रिव्यू बीस्ट ऑफ रीइंकार्नेशन, मैं इतना कहूंगा कॉम्बैट एक नंबर है, स्टोरी बहुत लेंदी है, बॉसेस आर लिटिल रिपीटेटिव, और क्या, हाँ यही है, तो इस कुल मिला के इसके बारे में यही है। बाकी लास्ट बट नॉट द लीस्ट खबर आई है फैंटम ब्लेड जीरो से, फैंटम ब्लेड जीरो के जो बनाने वाले हैं और गेमर्स इस बात को जानते हैं कि वी आर ऑल एक्साइटेड फैंटम ब्लेड जीरो के लिए। उन्होंने बोला कि जितना भी हमने गेम प्ले दिखाया है, सबका सब बच्चों साइड क्वेस्ट है, मेन गेम तो हम दिखाई नहीं है तुमको। So that is news. On that note, this is Doha Wala Kabir signing off. Social media handles FM107 Qatar, FM107 Qatar is naam se hum har jagah maujood hain. Agar aap mujhse rabta qaim karna chahein, so Doha Wala Kabir aapko mil jaunga main TikTok aur Instagram pe bhi. And Kabir ki spelling rahegi KABIR. This is Kabir signing off. Apna khayal rakhiyega, kyunki aap behad behad zaruri hain. Maasalam.
1: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
3: दोस्तों, ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट पहनना आपकी हिफाजत को बढ़ाता है, और हाँ, सीट बेल्ट नहीं बांधने से आपको फाइंस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये ट्रैफिक के कानून का सीरियस वायलेशन है। सीट बेल्ट कार ड्राइवर्स के लिए फर्स्ट सेफ्टी लाइन है, क्योंकि ये आपकी हिफाजत करती है। FM 107 तमाम रोड यूजर्स से गुजारिश करता है कि वो अपनी जानो माल की सेफ्टी के लिए ट्रैफिक कानून की तामील करें। याद रखिए कि ट्रैफिक सेफ्टी ऑफिशियल अथॉरिटीज और सोसाइटी के दरमियान मुश्तरका जिम्मेदारी है।
4: आप सुन रहे हैं FM 107।
2: दिल से देसी।
5: अस्सलामु अलैकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज का टॉपिक है नमाज के वक्त और एहतराम की अहमियत। नमाज सिर्फ एक फर्ज इबादत नहीं, बल्कि अल्लाह से डायरेक्ट कनेक्शन का नाम है। जब इंसान नमाज को उसका हक देता है, तो उसकी ज़िंदगी में सुकून और निज़ाम पैदा होता है। अक्सर हम नमाज को डिले कर देते हैं और जल्दी में अदा करते हैं, लेकिन असल एहतराम ये है कि नमाज को वक्त पर और तवज्जो के साथ पढ़ा जाए। नमाज का एहतराम करने का मतलब है, जब अजान हो तो हम दुनिया के कामों को साइड पर रखकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाएं। यह आदत जिंदगी को डिसिप्लिन देती है और रूहानी तौर पर स्ट्रॉन्ग बनाती है। आज का अमल यह है कि कम अज कम एक नमाज आज फुल फोकस और वक्त पे अदा करें। ये था हमारा आज का मैसेज। आप सुन रहे थे 60 सेकंड्स ऑफ बराका आरजे महावश के साथ।

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 पर पैगाम।
2: नरम दिल लोग बेवकूफ नहीं होते, वो जानते हैं कि दूसरे लोगों का उनके साथ बर्ताव और सलूक कैसा है, लेकिन वो बार बार मुआफ कर देते हैं क्योंकि वो खूबसूरत दिल के मालिक होते हैं। मुआफ करने का मतलब अपने मुखालिफ को गले लगाकर दोस्ती कर लेना नहीं होता, बल्कि ये अपने दिल के साथ एक अहद करना होता है कि जो अजियत या तकलीफ मुझे मेरे मुखालिफ ने दी है, मैं बदले में उसे उसी किस्म की अजियत नहीं दूंगा। याद रखिए।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कतर की कहानी पर्ल की ट्रेडिंग से लेकर पर्ल बनने तक की बड़ी दिलचस्प। इस सफर के बीच पहली इमारत, पहला पार्क, पहला सिनेमा, पहला थिएटर, ये सब अपनी खास अहमियत रखते हैं। इसीलिए इन

0: का जिक्र करना और आपको इस पूरे सफर पे ले जाने का जिम्मा हमने उठाया। कतर्स फर्स्ट आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर्स फर्स्ट मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ, हमारा वीकली प्रोग्राम जहां हम लेकर आते हैं कतर की वो पहली बार शुरू होने वाली कहानियां, वो इंस्पायरिंग मोमेंट्स और वो अचीवमेंट्स जो पहली बार हुई और जिन्होंने हमारे मुल्क की हिस्ट्री और फ्यूचर को शेप किया। हर एपिसोड में हम एक्सप्लोर करते हैं एक कहानी जो पहली बार हुई, चाहे वो पहली यूनिवर्सिटी हो, पहला इनोवेशन, पहला नेशनल अचीवमेंट या कोई और माइलस्टोन जो कतर के लिए एक प्राउड मोमेंट है। हमारे साथ प्रोग्राम में कोशिश ये होती है कि आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं मिले बल्कि इंस्पिरेशंस, इनसाइट्स और थोड़ी मजेदार स्टोरीज भी सुनने को मिले। और दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम सिर्फ आपको मालूमात ही फराहम नहीं करेंगे बल्कि आपके मैसेजेस, एक्सपीरियंसेस और फीडबैक भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, जिनको आप शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 666-22-107 या हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जहां हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और टिकटॉक पर आपके लिए हाजिर खिदमत है। हैंडल हमारा इसी नाम से है, FM 107। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जहां हम कतर की हिस्ट्री के पन्ने खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे इन वाकयात ने कतर में रहने वालों की जिंदगियों को शेप किया है। दोस्तों, नॉलेज वो रोशनी है जो हर नस्ल को रास्ता दिखाती है और कतर के दिल में ये रोशनी सबसे पहले उस दरवाजे से चमकी जो उसकी पहली लाइब्रेरी का था। ये वो जगह थी जहां कहानियां तालिब इल्म से मिलती थीं, जहां दानाई ने अपना घर बनाया और जहां से कतर ने तालीम और सकाफत के मरकज बनने का सफर शुरू किया। आज हम आपको ले चलते हैं उस गुजरे हुए वक्त में जहां हम कतर की पहली लाइब्रेरी का जायजा लेंगे, एक ऐसी बुनियाद जो इस कौम के जहनी विरसे की निगहबान बनी और जो उसके जदीद तालीमी नजरिए का पहला कदम था। तो आज के इस प्रोग्राम कतर फर्स्ट में जुड़े रहिएगा हमारे साथ, जब हम तारीख के सफ़े पलटेंगे और जानेंगे कि कैसे एक लाइब्रेरी ने इस मुल्क के ख्वाब और सोच को ताबीर किया। तो दोस्तों, दारुल कुतुब अल कतारिया सबसे पहले एक पब्लिक लाइब्रेरी के तौर पर कायम हुई थी और इसने अपना सफर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जरिए 29 दिसंबर 1962 को शुरू किया। उस वक्त मिनिस्ट्री ने दो मौजूदा लाइब्रेरीज यानी पब्लिक लाइब्रेरी और अल मारिफ लाइब्रेरी को मर्ज करने का फैसला किया, भाई ताकि स्कूल के स्टूडेंट्स और अवाम को बेहतर सर्विसेज फराहम की जा सकें और बुक्स और पीरियोडिकल्स के जरूरी रिसोर्सेज मुहैया किए जा सकें। दारुल कुतुब के डायरेक्टर उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के भी डायरेक्टर थे, जिन्होंने स्कूल की जरूरत को बेहतर समझने और लाइब्रेरी के ऑपरेशंस को ज्यादा इफेक्टिव बनाने में मदद दी। ये वही शख्स थे जिन्होंने एक मॉडर्न लाइब्रेरी बनाने का आइडिया दिया ताकि स्कूल्स को सपोर्ट किया जा सके और मुख्तलिफ टॉपिक्स पर इल्म फराहम किया जा सके। उसके बाद उन्होंने डैक को मैनेज करने, डैक का मतलब दारुल कुतुब, कतर के अंदर दारुल कुतुब को शॉर्ट में डैक कहा जाता था, तो उसके बाद उन्होंने दारुल कुतुब को मैनेज करने और उसकी कामयाबी को इंश्योर करने का जिम्मा उठाया। दारुल कुतुब तकरीबन 30 साल तक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मारिफ के अंडर रही, फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ मास कम्युनिकेशन के अंडर चली गई। 1971 में मिनिस्टर्स काउंसिल के फैसले के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का रीस्ट्रक्चरिंग हुआ और इस फैसले के बाद दारुल कुतुब को मिनिस्टर्स के अंडर रखा गया, जबकि स्कूल लाइब्रेरीज को डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल अफेयर्स के अंडर कर दिया गया। भाई 1998 में ये नेशनल काउंसिल फॉर कल्चर, आर्ट्स, लिटरेचर एंड हेरिटेज के अंडर चली गई। 1982 में दारुल कुतुब को एक नेशनल लाइब्रेरी का मैंडेट मिला जब इमीरी डिक्री नंबर 14/1982 इशू हुआ, जो कि कतरी पब्लिकेशन के लीगल डिपॉजिट प्रोसेस के कायम से मुतालिक था और ये प्रोसेस डैक के जरिए मैनेज किया गया। इस फैसले के बाद डैक गल्फ स्टेट्स की पहली लाइब्रेरीज में से एक बन गई जो नेशनल पब्लिकेशन को ऑर्गेनाइज और कलेक्ट करती थी। ये लाइब्रेरी मुल्क की नेशनल लाइब्रेरी के तौर पर काम करती रही जब तक 2012 में एक नई नेशनल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर दारुल कुतुब को मुकम्मल इख्तियार हासिल था कि वो मिनिस्ट्री के मुख्तलिफ डायरेक्टोरेट्स और बाहर के इदारों से राबता कर सके, जिससे नए प्रोजेक्ट्स, लाइब्रेरी प्रोग्राम्स और डेवलपमेंट्स को आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सके और कतर के मुख्तलिफ इलाकों में नई लाइब्रेरी ब्रांचेस खोली गयी। दारुल कुतुब अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अरब दुनिया के नेशनल लाइब्रेरीज डायरेक्टर्स के एनुअल मीटिंग में भेज सकती थी। लाइब्रेरी का पहला मकाम एक दो स्टोरी बिल्डिंग में था, जिसमें एक में रीडिंग रूम था जो 1200 स्क्वायर मीटर का था और जिसमें 70,000 वॉल्यूम्स थी और 100 लोगों के लिए सीटिंग अरेंजमेंट भी थी। इस फैसिलिटी में एक पीरियोडिकल रीडिंग रूम था जो 40 रीडर्स को अकोमोडेट करता था और एक छोटी मैनुस्क्रिप्ट रीडिंग रूम भी थी जो 60 स्क्वायर मीटर की थी और 10 यूजर्स के लिए काफी हुआ करती थी। एक 100 स्क्वायर मीटर का माइक्रोफिल्म रूम भी था जो तकरीबन 2 यूजर्स को अकोमोडेट कर सकता था। आज की डेक बिल्डिंग के एक जेनरस डोनेशन के जरिए कायम हुई है, जिसमें शेख अली अल थानी ने अपनी कलेक्शन डोनेट की है और इस कलेक्शन के लिए एक डेजिग्नेटेड बिल्डिंग बनवाने में मदद दी और स्टाफ की रिक्रूटमेंट में भी किरदार अदा किया। तो दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर्स फर्स्ट।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर फर्स्ट, मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ। माइक्रोफिश लाइब्रेरी को एक आर्काइविंग सेंटर या एक डिजिटल लाइब्रेरी में तब्दील करने का इरादा रखा गया था ताकि कतरी विरसे को महफूज किया जा सके। इसे एक मुकम्मल लाइब्रेरी सर्विस फैसिलिटी बनाने के लिए बुक्स और पीरियडिकल्स की बाइंडिंग का एक नया सेक्शन कायम किया गया। हर साल बुक फेयर्स में लोकल और इंटरनेशनल सतह पर हिस्सा लिया गया। बुक फेयर से हासिल होने वाली आमदनी को दारुल कुतुब ने अपने मुख्तलिफ सेक्शंस और सर्विसेज की तरक्की में लगाया, जैसे कि आर्काइविंग, कैटलॉगिंग प्रोसेसेस, नए इक्विपमेंट्स जैसे कंप्यूटर्स को फराहम किया गया और इंटरनेट एक्सेस दिया गया। 2012 में ये कहा गया कि डैक एक नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो रहा है ताकि अपनी सर्विसेज को मजीद बेहतर और तरक्की याफ्ता बनाया जा सके। 2018 में एक रिसर्च स्टडी के जरिए दारुल कुतुब के मुतालिक कम्युनिटी का परसेप्शन समझाने की कोशिश की गई। इसमें ये सामने आया कि बहुत सी कम्युनिटी मेंबर्स को ये मालूम था कि डैक दो लाइब्रेरीज के मर्जर का नतीजा है और 1960 में ये रीजन की पहली पब्लिक लाइब्रेरी बनी थी। जो लोग लाइब्रेरी विजिट करते थे उन्होंने दारुल कुतुब से अपनी पर्सनल अटैचमेंट का इजहार किया और बताया कि वो छोटी उम्र से ही रेगुलरली लाइब्रेरी आते जाते रहे थे। 1970 तक दारुल कुतुब ने दोहा में एक अहम लैंडमार्क का दर्जा हासिल कर लिया था और कतर को बाकी अरब दुनिया से जोड़ना शुरू किया था, जब वो मुख्तलिफ अरब कंट्रीज के पीरियडिकल्स का सब्सक्रिप्शन हासिल करने लगे। आज भी दारुल कुतुब में अरब कल्चर से मुतालिक कीमती और नादर कलेक्शन मौजूद है। 2012 तक डैक के पास 281,000 अरबिक और 38,098 इंग्लिश बुक्स थी, 1,163 अरबिक और 266 इंग्लिश पीरियडिकल्स थे। वहीं 865 अरबिक और इंग्लिश डिजर्टेशंस जो कतरी स्टूडेंट्स ने लिखी थी और वहीं 533 माइक्रोफिश, 2018 मैनुस्क्रिप्ट्स और 154 सीडीज थी। 2011 में डैक के पास 16,000 से ज्यादा मेंबरशिप रिकॉर्ड में मौजूद थी। कतरी कम्युनिटी की बढ़ती हुई जरूरत को पूरा करने के लिए दारुल कुतुब ने एक्सपेंशन प्लान लॉन्च किया। लाइब्रेरी बिल्डिंग में मॉडिफिकेशन की गई और एक एडिशनल लेवल बनाया गया जो यूजर्स के लिए एक बड़ा रीडिंग स्पेस था। 1970 के दौरान मुख्तलिफ रिमोट एरियाज में पब्लिक लाइब्रेरी ब्रांचेस कायम की गई जिनकी तादाद 5 तक पहुंच गई। इनमें से एक ब्रांच सिर्फ विमेन के लिए डेडिकेट की गई थी। हर ब्रांच की कलेक्शन उस शहर की स्पेसिफिक कम्युनिटी की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए तय की गई थी, जैसे कि अलखोर की फिशिंग कम्युनिटी को फिशिंग से मुतालिक टॉपिक्स में दिलचस्पी थी और अशमाल की फार्मिंग और पोएट्री कल्चर को उसकी ब्रांच की कलेक्शन में शामिल किया गया था। वहीं अलवाकरा और मीसईद ऑयल एक्सप्लोरेशन के मरकज रहे हैं तो इस वजह से उनकी लाइब्रेरीज में टेक्नोलॉजी और ऑयल प्रोडक्शन से मुतालिक मटेरियल्स मौजूद थे। वहीं अर्रैयान की बात करें तो अर्रैयान की पब्लिक लाइब्रेरी ने अपनी कलेक्शन को पोएट्री और इस्लामिक स्टडीज पर फोकस किया है, जबकि अल खानसा लाइब्रेरी ने विमेन और चिल्ड्रन को अपना प्राइमरी यूजर ग्रुप बनाया। एक वक्त ऐसा भी आया जब डेक में इंटरनेट कैफे बनाने का प्लान तय हुआ और एक्सपेंशन प्लान्स में मोबाइल लाइब्रेरी या मजीद ब्रांचेस शामिल की गई ताकि ज्यादा यूजर्स तक लाइब्रेरी सर्विसेज पहुंच सके। डेक के ऑब्जेक्टिव्स में कम्युनिटी को सर्व करना शामिल था, जैसे कि जनरल पब्लिक को इंफॉर्मेशन फराहम करना, नई पब्लिक लाइब्रेरी ब्रांचेस कायम करना, लीगल डिपॉजिट का निजाम, कतर की तमाम लाइब्रेरीज के लिए एक यूनियन कैटलॉग बनाना और मेंटेन करना, रिसर्च लाइब्रेरी डेवलपमेंट के लिए लेजिस्लेशन रिकमेंड करना, वहीं बुक एक्सचेंज और लोकल रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ प्रोग्राम्स और हर साल एक बुक फेयर ऑर्गेनाइज करना। तो दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर्स फर्स्ट, मेरे यानी सरवर मिर्ज़ा के साथ। दोस्तों, अपने शुरुआती दिनों में डैक के पास लाइब्रेरी सर्विसेज का एक डेडिकेटेड सेक्शन हुआ करता था, जो कि मैनेजमेंट के 10 सेक्शंस में से एक था, जैसे कि एक्विजिशन, कैटलॉगिंग, फैसिलिटीज, हेरिटेज वगैरह वगैरह। सर्विस सेक्शन में बोरोइंग, इंटरनल रीडिंग और रेफरेंस कलेक्शन शामिल थी, जो यूजर्स को कैटलॉग सर्च में मदद देती थी। डैक ने वर्कशॉप्स और लेक्चर्स कंडक्ट किए, असिस्टेंट लाइब्रेरियंस को ट्रेन किया और डिप्लोमेटिक डेलीगेशंस को टूर्स के जरिए होस्ट किया। दोस्तों, 1990 के बाद दारुल कुतुब को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जो अक्सर स्टाफ के तरफ से तब्दीली और तरक्की को कबूल ना करने की वजह से पैदा हुई। 2017 तक डैक की प्राइमरी बिल्डिंग और ब्रांचेस में टोटल 131 स्टाफ मेंबर थे, जिनमें से सिर्फ 60 डैक में मौजूद थे। सिर्फ एक शख्स के पास लाइब्रेरी साइंसेज में डिग्री थी। सन 2000 में कतर में जो अकेली लाइब्रेरी प्रोग्राम चल रही थी, वो भी बंद हो गई, और ये वजह समझी जाती है कि उस वक्त दारुल कुतुब की ऑपरेशंस में कमी आई। आज का मौजूदा बिल्डिंग आउटडेटेड समझा जाता है और अब वो लाइब्रेरी के मकासद को

पूरा करने के लिए काफी नहीं रहा। 1970 में दारुल कुतुब ने स्पेस एक्सपेंशन की जरूरत को समझा था, मगर उसके बाद आने वाली मैनेजमेंट ने इस डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया। लाइब्रेरी उसी बिल्डिंग में काम करती रही, ना एक्सपेंशन हुआ और ना ही नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया, ताकि बढ़ती हुई आबादी और स्पेस की लिमिटेशंस को दूर किया जा सके। एक रिसर्च स्टडी से ये सामने आया कि दारुल कुतुब में सीरियस कमी है लाइब्रेरी प्रोग्राम्स और सर्विसेज की। लाइब्रेरी को आउटरीच एक्टिविटीज कायम करनी चाहिए जो सोशल मीडिया पर प्रमोट की जा सके। इसके अलावा रिपोर्टिंग सेक्टर की तरफ से सपोर्ट और इनकरेजमेंट की कमी भी है। लाइब्रेरी को अपने प्रैक्टिसेस का जायजा लेना चाहिए और उन्हें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अलाइन करना चाहिए। इसी कल्चरल लेगेसी के तौर पर जो अहमियत है उसे हर लेवल पर तस्लीम किया जाना चाहिए। ये अहम पॉइंट्स जो रिसर्च स्टडी में सामने आए उन्हें दारुल कुतुब की ओवरसीइंग ऑफिशियल्स ने आगे बढ़ाया। और भी नए प्लान्स तय किए जा रहे हैं ताकि लाइब्रेरी के तमाम एस्पेक्ट्स को रेनोवेट और अपडेट किया जा सके। बिल्डिंग को उसकी ओरिजिनल डिजाइन में रिस्टोर करने का काम इस वक्त जारी है। जब ये फाइनलाइज हो जाएगा तो नई कॉन्सेप्ट्स और सर्विस मॉडल्स यूजर्स और दारुल कुतुब के शायकीन के लिए दस्तियाब होंगी। लाइब्रेरी का विरसा एक गहरी नॉलेज हब के तौर पर आइंदा नस्लों के लिए जारी रहेगा। तो दोस्तों, एक छोटी सी शुरुआत से लेकर आज की शानदार लाइब्रेरीज तक कतर का इल्म से लगाव बढ़ता ही जा रहा है, जो नए रीडर्स, रिसर्चर्स और ड्रीमर्स को इंस्पायर करता है। कतर की पहली लाइब्रेरी सिर्फ बुक्स और शेल्फ्स का मजमुआ ही नहीं थी, ये तरक्की, तजस्सुस और सकाफती फक्र का एक निशान थी। तो भाई, आज की कहानी का ये सफर भी इख्तिताम पजीर होता है। और याद रखिए, हर अजीम कौम का आगाज एक किताब से होता है और हर अजीम सफर का आगाज इल्म हासिल करने की ख्वाहिश से। तो भाई, कीप रीडिंग, कीप डिस्कवरिंग और इल्म की रोशनी को जिंदा रखिए। तो दोस्तों, आपके ख्याल में वो कौन सी चीज होनी चाहिए जो आप कतर में पहली बार देखना चाहेंगे, या आप कतर में किस चीज का इंतजार सबसे ज्यादा कर रहे हैं? अपने जवाब हमें टेक्स्ट करके भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 666-22-107। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमेशा की तरह हमारे साथ वक्त गुजारा और शो एंजॉय किया। अगले प्रोग्राम में हम एक नई कहानी, नया टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेकर आएंगे, जिसमें आपको मिलेगी और भी एक्साइटिंग अपडेट्स और स्टोरीज, तो जरूर जुड़िएगा। इसी के साथ प्रोग्राम कतर स्वस्थ से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी,
1: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और

हर हफ्ते नए सरप्राइजेज और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए, फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। दोस्तों, इमरजेंसी नंबर 999 एक अहम जरूरी नंबर है। याद रखिए, अगर आपको किसी इमरजेंसी में मदद की जरूरत हो तो सबसे पहले अपने आप को पूरी तरह से पूरी सिचुएशन में शामिल करें।

0: या दूसरों पे खतरा महसूस कर रहे हैं तो बिना किसी हेजिटेशन के 999 पर कॉल करें। जब आप कॉल करें तो अपना पूरा पता, अपनी हालत और जरूरी मालूमात, जैसे कि किस किस्म की इमरजेंसी है, किस वक्त का इशू है और किस जगह पे आप हैं, ये सब बताना बहुत जरूरी है। ये मालूमात देकर आप अपनी मदद के लिए जल्दी से रिस्पॉन्स हासिल कर सकते हैं। 999 पर कॉल करते वक्त ये जरूरी है कि आप पूरी तरह से शांत रहें। अगर आप घबराएंगे तो मदद देने वाले को आपकी बात समझने में मुश्किल हो सकती है, इसलिए अपनी कॉल को क्लियर और ठीक से देना जरूरी है। जब आप 999 पर कॉल करते हैं तो ये कॉल डायरेक्टली इमरजेंसी सर्विसेज सेंटर तक पहुंचती है। वहां पर ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स आपसे बात करते हैं और सिचुएशन के मुताबिक आपको मदद फराहम करते हैं। अगर आपको मेडिकल मदद की जरूरत है तो एम्बुलेंस भेजी जाती है। अगर किसी कुदरती तूफान या नेचुरल डिजास्टर का सामना है तो रेस्क्यू टीम और सिविल डिफेंस भी आपकी मदद के लिए आती है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए।
2: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो। हर शाम 4 से 5 फजील के साथ संडे से थर्सडे ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: FM 107 पर हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।

0: मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दोस्तों, अब कतर में गाड़ी की मिल्कियत ट्रांसफर करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और डिजिटल हो गया है। मैत्राश 2 ऐप के जरिए आप अपनी रजिस्टर्ड व्हीकल की ओनरशिप घर बैठे ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी फिजिकल विजिट के। इस डिजिटल सर्विस का फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वैलिड हो, यानी उसका इस्तेमारा एक्सपायर ना हुआ हो। दूसरा, गाड़ी के ऊपर कोई ट्रैफिक वायोलेशन या अनपेड फाइन्स मौजूद ना हो। तीसरा, दोनों पार्टीज सेलर और बायर का मैत्राश ऐप में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और चौथा, बायर के पास वैलिड कतर आईडी हो और वो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करती हो। प्रोसेस में सेलर यानी जो पार्टी गाड़ी बेच रही है, मैत्राश 2 ऐप के जरिए व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफर ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और बायर की डिटेल्स डालकर रिक्वेस्ट भेजते हैं। बायर को ऐप पर नोटिफिकेशन मिलता है जिसे वो एक्सेप्ट करता है। जब दोनों तरफ से तस्दीक हो जाती है तो ओनरशिप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाती है और नए मालिक के नाम से रिकॉर्ड अपडेट हो जाती है। ये सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जरिए प्रोवाइड की जा रही है, जिसका मकसद ट्रैफिक सर्विसेज को डिजिटलाइज करना, लोगों का वक्त बचाना और पेपर वर्क को कम से कम करना है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: One hits music station. Anytime, anywhere.
3: Yes, anytime, anywhere.
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

सफर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जिसका दुनिया भर में सामना लाखों अफराद करते हैं, और वो है बेचैनी या एंजाइटी। कोई एग्जाम हो, इंटरव्यू हो, या अहम काम से पहले घबराहट महसूस होना एक आम सी बात है, लेकिन अगर फिक्र और परेशानी हर वक्त रहने लगे और रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासिर होने लगे तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अब सवाल ये है कि ये बेचैनी है क्या? ये दरअसल हमारे जिस्म में एक कुदरती रद्द अमल है जो हमें खतरे या दबाव का सामना करने के लिए तैयार करता है। लेकिन जब ये एहसास बार बार बिला वजह या बहुत ज़्यादा होने लगे तो ये एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर सकता है, और इसमें कुछ अलामत हैं जैसे कि हर वक्त फिक्रमंद रहना और परेशान रहना, दिल की धड़कन जो है वो तेज़ हो जाती है इसमें, हाथ पांव कांपना शुरू हो जाएं या बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आना शुरू हो जाए, सांस लेने में दुश्वारी महसूस हो, नींद पूरी ना होना, और ये कि आपकी जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाए या तवज्जो जो है मरकूज ना कर पाएं, जल्द गुस्सा आ जाए और जिसमें आपको खिंचाव महसूस हो या दर्द महसूस हो, या हर वक्त किसी बुरी खबर या हादसे का खौफ जो है वो आपके जहन पर सवार रहे। बाज़ वक़्त अचानक घबराहट का जो अटैक है वो भी हो सकता है, जिसमें सीना भारी महसूस होता है, दिल तेज़ी से धड़कता है और ऐसे महसूस होता है जैसे बहुत कुछ होने वाला है। इस तरह एंजाइटी और जो दबाव है वो तो महसूस होता ही है, मगर ये बात कि जब बेचैनी कई हफ्तों तक बरकरार रहे, काम, आपकी एजुकेशन या घरेलू ज़िंदगी मुतासिर होने लगे,

0: लगी। खौफ की वजह से आप लोगों या जगहों से बचने लगे, बार बार घबराहट के शदीद अटैक जो हैं वो हों, तो फिर किसी माहिर नफ्सियात से या डॉक्टर से आप ज़रूर कंसल्ट कीजिए। याद रखिए, बेचैनी कमज़ोरी नहीं बल्कि एक काबिल इलाज तबी मसला है। बर वक्त इलाज जिंदगी को बेहतर बना सकता है।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियां, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं मगर ईमान हमेशा जीतता है।

0: स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट, स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट, जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियां, उनकी मेहनत, उनके इम्तिहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हो और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
1: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं फिल्म 107 कतर। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महवश खान और इस शो है द स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट। उम्मीद करती हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मजे में होंगे, अपनी जिंदगियों को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। द स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट एक ऐसा सिलसिला जिसमें हर हफ्ते हम आपको एक नबी की कहानी सुनाते हैं और फिर ये भी जानते हैं कि आजकल के हालात के हिसाब से किस तरह से उनकी जो ज़िंदगी है उससे हमें सबक मिल सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगियों में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर कर सकते हैं। तो आज भी बिल्कुल मैं आपको ये सुनाऊंगी, लेकिन उसके साथ ही आपसे गुजारिश है कि आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 666-221-07 और हमारे सोशल मीडिया FM107 पे आप हमें फॉलो कीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, बताइए कि आपको ये शो कैसा लग रहा है। तो मैं आपका इंतज़ार करूंगी और चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। आज का जो किस्सा है वो है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का शुमार उन बुज़ुर्ग अंबिया में होता है जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी इबादत और सब्र की वजह से मखसूस मकाम अता फरमाया। उनकी नस्ल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ रखती है और वो एक नेक और सालेह खानदान से ताल्लुक रखते थे। कुरान और हदीस में उनका जिक्र संदास से मिलता है कि वो अपनी उम्मत के लिए सब्र, इस्तकामत और अल्लाह की रजा के अलमबरदार थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का मकसद ये था कि इंसान अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे और दुनियावी आजमाइशों में भी सब्र का दामन थामे रखें। उनकी नस्बी हैसियत और ख़ानदान की तफसील हमें ये सबक देती हैं कि अल्लाह के मुंतखब बंदे अमूमन अपने नस्ब या दौलत की बुनियाद पर नहीं बल्कि ईमान और अमल की बुनियाद पर मुंतखब किए जाते हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने वक्त के मालदार तरीन अफराद में शुमार होते थे। उनके पास वसी ज़मीनें, मवेशियों की बड़ी तादाद और एक खूबसूरत एक नेक ख़ानदान था। वो अपने इलाके में एक मोज़ज़ शख्सियत थे और लोगों की रहनुमाई और मदद में मशगूल रहते थे। मालो दौलत के बावजूद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम में गुरूर और तकब्बुर नहीं था। वो हर हाल में अल्लाह के शुक्रगुजार थे और हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करते थे। उनकी ज़िंदगी का ये पहलू इस बात की हमाजी करता था कि हकीकी दौलत दिल की दौलत है और वो लोग सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत हैं जो अल्लाह की नेमतों के शुक्रगुजार हों और दूसरों की मदद करें। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में सब्र एक नुमाया खसूसियत थी। वो हर हाल में अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहते और अपने दिल को अल्लाह की रज़ा के लिए तैयार रखते। उनका सब्र इतना अजीम था कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उनके सब्र की तारीफ करते हुए फरमाया, और हमारे बंदे अय्यूब को याद कर जब उसने अपने रब को पुकारा कि मुझे शैतान ने तकलीफ और इज़ा पहुँचाई और तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। यह आयात हमें बताती है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने दुख और तकालीफ के बावजूद अल्लाह से रुजू किया करते और उसकी रहमत पर कामिल यकीन रखते। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश का खास शैतान के मंसूबे से हुआ जिसे अल्लाह की इजाज़त हासिल थी। उनकी दौलत, ज़मीन, मवेशी और आखिरकार उनके बच्चे सब कुछ ज़ाया हो गया। उसके बाद एक शदीद बीमारी ने उनके जिस्म को घेर लिया जिससे उनकी जल्द फट गई और जिस्मानी दुखों का सामना करना पड़ा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी इतनी शदीद थी कि लोग उनसे दूर हो गए और उनकी बीवी ही उनके पास रही। बीवी ने अपनी तमाम कुव्वत के साथ उनकी खिदमत की और हर मुश्किल में उनका साथ दिया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी एक सब्र वफा की मिसाल थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल आयाम में भी

0: मोड़ कर न जा, मर्जी ये हक यही है तुम मोड़ कर न जा, मर्जी ये हक यही है तुम मोड़ कर न जा।
1: आप सुन रहे हैं स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स आरजे महविश के साथ ओनली ऑन एफएम 107।
2: हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में मुतअद्दिद जगहों पर आया है, जैसे सूरह अल अंबिया, सूरह स्वात। कुरान उनकी इस्तकामत, सबर और अल्लाह की रहमत पर एतमाद की तालीम देता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी आज भी मुसलमानों के लिए सबर और अल्लाह पे तवक्कुल की बेहतरीन मिसाल है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी सबर की बेहतरीन मिसाल है। सबर का मतलब सिर्फ तकालीफ बर्दाश्त करना नहीं, बल्कि अल्लाह के फैसलों पर राजी रहना भी है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीमारी, माली नुकसान और बच्चों की मौत के बावजूद अल्लाह की रजा पे राजी रहे। आज की दुनिया में भी मुश्किलात जैसे बीमारी, माली मसाइल या खानदानी मुश्किलात आ सकती हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की मिसाल हमें ये सिखाती है कि हर मुश्किल में सब्र और इस्तकामत ज़रूरी है। जब भी इंसान मुश्किलात में मुबतला हो, वो फौरन शिकायत ना करे, बल्कि अल्लाह पे भरोसा करे और सब्र इख्तियार करे। सब्र करने वाला बंदा अल्लाह के नज़दीक आला मकाम रखता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी दौलत और सेहत में भी शुक्रगुजार थे। अल्लाह ने उन्हें बहुत सी नींदें दी थी, ज़मीन, मवेशी, दौलत, ख़ानदान और सेहत। जब ये नींदें छिन गईं, तब भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के फैसले पर सब्र किया और शुक्रगुजारी का रवैया बरकरार रखा। शुक्रगुजारी सिर्फ खुशियों में नहीं, बल्कि दुख और मुश्किलात में भी अल्लाह पे भरोसा रखना शुक्र का हिस्सा है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें छोटी बड़ी नियमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। मिसाल के तौर पे सेहत, घर, रोज़गार और अहले खाना का शुक्र बजा लाना इंसान के दिल को सुकून देता है। अल्लाह पे मुकम्मल भरोसा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी खसूसियत थी। जब सब कुछ ख़त्म हो गया और बीवी के अलावा कोई उनके साथ न रहा, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। उन्होंने ख़ुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया और यकीन किया कि अल्लाह की रहमत हर मुश्किल से बड़ी है। इंसान को चाहिए कि हर मामले में अल्लाह पे भरोसा रखे, ख्वाह माली नुकसान हो या बीमारी। दुआ और अल्लाह पे यकीन इंसान को जहनी सुकून फराहम करता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि मुश्किलात का मकसद सिर्फ दुख देना नहीं होता। अल्लाह ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाइश में डाला ताकि उनका सब्र, इस्तकामत और अल्लाह की रजा पर यकीन दुनिया के लिए मिसाल बने। हर इब्तला इंसान को मजबूत बनाती है और ईमान को पुख्ता करती है। जब इंसान किसी मुश्किल में मुबतला हो, तो उसे समझना चाहिए कि आजमाइश है और अल्लाह के नज़दीक सब्र करने वाला बंदा आला मकाम पाएगा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने हर मुश्किल में उनके साथ रह के खिदमत की। बीवी की वफादारी और मदद ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सब्र की ताकत दी। अहले खाना का साथ इंसान को मुश्किलात में हौसला देता है और इंसानी रिश्तों की अहमियत को जाहिर करता है। मुश्किल वक्त में अहले खाना और दोस्तों का साथ अहम है। हमें भी दूसरों के दुख में शरीक होना चाहिए और मदद फरहम करनी चाहिए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह ने फौरन कबूल की। दुआ और अल्लाह की तरफ रुजू करना हर आजमाइश में सबसे बड़ी ताकत है। अल्लाह ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को ना सिर्फ शिफा दी, बल्कि उनकी दौलत और ख़ानदान भी वापस की। मुसलमान को चाहिए कि हर मसले में अल्लाह से दुआ करे, क्योंकि दुआ इंसान के दिल को सुकून देती है और अल्लाह के करम की वसी राहें खोलती है। लिसनर्स, यहाँ हम लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप सुनते रहें एफएम 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स आरजे महवेश के साथ ओनली ऑन एफएम 107।
1: हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी एक सबक है कि इंसान को हर हालत में अल्लाह की रजा को मुकद्दम रखना चाहिए। दौलत, सेहत या मुश्किलात में हमेशा अल्लाह की मर्जी और फैसले पे राजी रहना ही कामयाबी है। दुनियावी नेमात आरजी हैं, असल सुकून अल्लाह की रजा है। जिंदगी के हर पहलू में अल्लाह की रजा को मद्देनजर रखें, चाहे खुशी का वक्त हो या दुख का, अल्लाह की रजा को सबसे मुकद्दम रखें। इंसान को यही हकीकी कामयाबी देता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने तवील उम्र पाई और अपने आखिरी दिनों तक अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे। उनकी जिंदगी की लंबी मुद्दत ये जाहिर करती है कि अल्लाह के नज़दीक सब्र और इस्तकामत का सिला दुनिया में भी दिया जाता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने आखिरी आयाम में भी सब्र और शुक्रगुजारी का अमली मुजाहरा करते रहे। वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते, दुआओं में मसरूफ रहते और अपनी कौम के लोगों को सब्र इस्तकामत की तालीम देते। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं बल्कि एक जिंदा सबक है जो हर दौर के इंसान के लिए रहनुमाई फरहम करता है। उनकी लिगेसी को चंद अहम पहलुओं में तकसीम किया जा सकता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी मिरास उनका सब्र और इस्तकामत है। वो हर किस्म के दुख, बीमारी और माली नुकसान में अल्लाह की रजा पे राजी रहे। दुनिया में कुरान और हदीस में उनका जिक्र हमेशा सब्र की आला मिसाल के तौर पे किया गया है। आज भी मुसलमानों और इंसानियत के लिए

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन एफएम 107। साथियों, हमारी डेली लाइफ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का बहुत बड़ा रोल होता है भाई। हमारे टीवी हो गए, कंप्यूटर हो गए, चार्जर्स हो गए, गेम कंसोल्स भी तो हैं, किचन अप्लायंसेस और मोबाइल डिवाइसेस भाई, जिनके बगैर हम रह नहीं सकते। ये सब हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं, हमें पता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है, नोटिस किया है कि कुछ डिवाइसेस हम यूज ना करने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते ही रहते हैं। मिसाल के तौर पर किस चीज की मिसाल दीजिए। हाँ, सबसे बड़ी, हमारा टीवी बंद है भाई, लेकिन रेड लाइट अभी भी ऑन है। मोबाइल चार्जर सॉकेट में लगा हुआ है लेकिन फोन कनेक्टेड नहीं है। कंप्यूटर यूज नहीं हो रहा लेकिन स्टैंड बाय मोड पर है। ये जो छोटी छोटी चीजें लगती है ना हमें, लेकिन वक्त के साथ एनर्जी का अननेसेसरी इस्तेमाल बढ़ सकता है साथियों। तो भाई, आज के इको स्विच में हम बात करते हैं स्विचिंग ऑफ स्टैंड बाय डिवाइसेस, यानी उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को प्रॉपरली बंद करना

0: जरूरत के बगैर एनर्जी यूज कर रही होती हैं। अच्छा, थोड़ा सा प्रॉब्लम को हाईलाइट कर लें। साथियों, अक्सर हम ये सोचते हैं कि अगर डिवाइस ऑफ है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी यूज नहीं हो रही, मतलब अगर हम उसे यूज नहीं कर रहे, वो ऐसी पड़ी हुई है स्टैंड बाय मोड पर, तो हम उसे बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे। लेकिन कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस स्टैंड बाय मोड में भी थोड़ी बहुत एनर्जी कंज्यूम कर रही होती हैं। इसे अक्सर स्टैंड बाय पावर या फैंटम एनर्जी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टेलीविजन जो रिमोट से ऑन के लिए रेडी रखा जाता है वो हो गया, चार्जर जो सॉकेट में लगे हुए होते हैं लेकिन उनसे कोई मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा होता, कंप्यूटर्स और गेमिंग डिवाइसेस जो स्लीप मोड में होते हैं, किचन अप्लायंसेस जैसे फॉर एग्जांपल हमारा क्या चीज हो गई, माइक्रोवेव हो गया, माइक्रोवेव भी अक्सर औकात हम यूज नहीं कर रहे थे लेकिन उसका स्विच ऑन होता है, जो कंटिन्यूसली प्लग्ड इन रहे लेकिन यूज ना हो रहे हो लेकिन फिर भी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो। हर डिवाइस की एनर्जी कंजम्पशन छोटी लग सकती है लेकिन जब घर में बहुत सारे डिवाइसेस हों और रोजाना ये आदत रिपीट हो तो एनर्जी वेस्ट बढ़ सकता है। देखिए, एनर्जी बचाना सिर्फ बिल कम करने के लिए नहीं होता बल्कि एनवायरनमेंट पर प्रेशर कम करने के लिए भी जरूरी होता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं सिंपल इको स्विच सॉल्यूशंस के बारे में, तो भाई स्टैंड बाय एनर्जी वेस्ट को कम करने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स हैं, हम उन्हें फॉलो कर सकते हैं बहुत आसानी से। पहली चीज ये, यूज के बाद प्रॉपरली स्विच ऑफ करें चीजों को। सिर्फ रिमोट से टीवी बंद करने के बजाय अगर मुमकिन हो तो डिवाइस को कम्प्लीटली स्विच ऑफ करें सॉकेट से, चार्जर्स अनप्लग करें, मोबाइल लैपटॉप या किसी और डिवाइस जो होता है, जो आपका चार्जर होता है, उसे यूज के बाद सॉकेट में ना छोड़ें, ये आदत ना बनाएं, ये सेफ्टी भी है। तीसरी चीज ये, पावर स्ट्रिप का यूज करें, मतलब ये कि मल्टीपल डिवाइसेस के लिए पावर स्ट्रिप या एक्सटेंशन बोर्ड यूज कर सकते हैं, इससे एक ही जगह से कई डिवाइसेस को इजीली स्विच ऑफ करना आसान हो जाता है। चौथी चीज ये कि एनर्जी सेविंग सेटिंग्स यूज करें, कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स में पावर सेविंग मोड्स अवेलेबल होते हैं, इन सेटिंग्स का यूज करना एनर्जी कंजम्पशन को कम करने में मदद कर सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, घर में एनर्जी चेक रूटीन बनाएं, सोने से पहले या घर से निकलते वक्त एक छोटा सा चेक कर लें, क्या कोई डिवाइस अननेसेसरी आपका चल रहा है, ऑन है। ये सिर्फ कुछ सेकंड्स का काम है साथियों, लेकिन इसका फायदा लंबे अरसे तक हो सकता है। अच्छा, अगर इसकी कोई एक रियल लाइफ एग्जांपल ली जाए ना, तो वो बड़ी सिंपल है। एक घर में टीवी, गेमिंग कंसोल, चार्जर्स, कंप्यूटर्स और किचन अप्लायंसेस रोजाना स्टैंड बाय मोड में रहते हैं। अगर फैमिली सिर्फ इतना करे कि रात को सोने से पहले अननेसेसरी डिवाइसेस को स्विच ऑफ कर दे, चार्जर्स अनप्लग कर ले और पावर स्ट्रिप्स बंद कर दे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी वेस्ट को रिड्यूस कर सकता है। और साइकोलॉजिकली भी मैं भी यही करती हूँ, मुझे ये डर होता है कि कोई सेफ्टी हैजर्ड ना हो, इलेक्ट्रिसिटी है, कहीं स्पार्क ना हो जाए, कोई ऐसा मसला ना हो जाए। आई ऑल्सो डू अ थॉरो चेक कि भाई मुश्किल से एक मिनट लगता है और पूरे घर की आप चेकिंग कर लेते हो। कुछ फैमिलीज ने घर में एक सिंपल रूल बनाया हुआ है, लास्ट पर्सन लीविंग द रूम चेक्स द स्विचेस, और हमारे घर का भी यही रूल है भाई, यानी जो शख्स रूम से निकल रहा है आखिर में, वो एक नजर डाल लेता है कि लाइट्स और डिवाइसेस जरूरत के बगैर तो नहीं चल रही। ये एक छोटी सी फैमिली हैबिट है जो सबको रिस्पॉन्सिबल बनाती है भाई, बच्चे छोटे हो बड़े हो सबको रिस्पॉन्सिबल बना देती है। तो भाई साथियों, आज का इको स्विच चैलेंज आपके लिए ये है कि आज रात सोने से पहले अपने घर में चेक करें कि कितनी डिवाइसेस स्टैंड बाय मोड पे हैं। सिर्फ एक ऐसी चीज चूज करें जिसे आप रेगुलरली स्विच ऑफ करना शुरू कर दें, और हमें बताएं आपके घर में कौन सा डिवाइस सबसे ज्यादा वक्त स्टैंड बाय मोड पे रहता है, टीवी, चार्जर, कंप्यूटर या कोई और। मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए, एनर्जी बचाना मुश्किल नहीं है, कभी कभी सिर्फ एक स्विच ऑफ करना ही काफी होता है। छोटी सी आदत बदलें और एनवायरमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें। सुनते रहिए इको स्विच ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: Assalamualaikum, आप सुन रहे हैं 60 Seconds of Baraka FM 107 पर। मैं हूँ आपकी आरजे माविश खान। आज का टॉपिक है नमाज के वक्त और एहतराम की अहमियत। नमाज सिर्फ एक फर्ज इबादत नहीं बल्कि अल्लाह से डायरेक्ट कनेक्शन का नाम है। जब इंसान नमाज को उसका हक देता है तो उसकी ज़िंदगी में सुकून और निज़ाम पैदा होता है। अक्सर हम नमाज को डिले कर देते हैं और जल्दी में अदा करते हैं, लेकिन असल एहतराम ये है कि नमाज को वक्त पर और तवज्जो के साथ पढ़ा जाए। नमाज का एहतराम करने का मतलब है जब अजान हो तो हम दुनिया के कामों को साइड पर रख कर अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाएं। यह आदत जिंदगी को डिसिप्लिन देती है और रूहानी तौर पर स्ट्रॉन्ग बनाती है। आज का अमल यह है कि कम से कम एक नमाज आज फुल फोकस और वक्त पे अदा करें। ये था हमारा आज का मैसेज। आप सुन रहे थे 60 सेकंड्स ऑफ बराका आरजे महावश के साथ।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
3: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे एफ और अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद एक पूरी

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी।
1: क्रिकेट हो,
2: एंड ही इज हुक्ड दैट अवे, दैट्स फोर रन।
1: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में।
3: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
1: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी थर्सडे एट 1 PM।
3: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स
4: की। Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। One step to 2030. Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया। One Step to 2030. दोस्तों आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं ग्रीन एनर्जी और नेट जीरो इकोनॉमीज की। देखिए आज दुनिया को सबसे बड़ा चैलेंज क्लाइमेट चेंज का लगता है। क्लाइमेट चेंज का हम सबको सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती हुई गर्मी, पोल्यूशन, कुदरती तब्दीलियां इंसानी जिंदगी को मुतासर कर रही हैं। इन मसाइल का हल ग्रीन एनर्जी और नेट जीरो इकोनॉमी के तसव्वुर में छुपा है। ग्रीन एनर्जी है क्या? देखिए ग्रीन एनर्जी से मुराद ऐसी एनर्जी है जो कुदरती और रिन्यूएबल रिसोर्स से हासिल की जाती है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर। ये एनर्जी एनवायरमेंट को कम नुकसान पहुंचाती है, फॉसिल फ्यूल्स के मुकाबले में ज्यादा पायदार होती है। वहीं पर नेट जीरो इकोनॉमी का मतलब है ऐसा निजाम जहाँ पे कार्बन इमर्शंस को इतना कम कर दिया जाए जितने कार्बन हवा में जाए उतनी ही एब्जॉर्ब या रिमूव भी कर ली जाए। इस तरह से एनवायरमेंट पर नेगेटिव असर कम से कम हो जाता है। यहाँ पर ये टॉपिक इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर दुनिया ने एनर्जी के पुराने तरीकों को जारी रखा तो क्लाइमेट चेंज मजीद खतरनाक सूरत इख्तियार कर सकता है। समंदरी सतह बढ़ सकती है, मौसम में शदीद तब्दीलियां आ सकती हैं और कई इलाके रहने के काबिल ही ना बचे शायद। दोस्तों ग्रीन एनर्जी का असर हमारी रोजमर्रा जिंदगी पर बहुत गहरा होता है। सोलर पैनल से बिजली सस्ती हो सकती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पोल्यूशन कम कर सकते हैं और इंडस्ट्री ज्यादा इन्वायरमेंटल या ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली बन सकती है। इसके साथ नई जॉब्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी पैदा होंगी। आज बहुत से कंट्रीज नेट जीरो टारगेट सेट कर रहे हैं और रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कतर और दूसरी गल्फ कंट्रीज भी सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस पर काम कर रही हैं ताकि मुस्तकबिल को ज्यादा महफूज और पायदार बनाया जाए। जी हाँ, ग्रीन एनर्जी सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए नहीं बल्कि इकोनॉमी के लिए भी फायदेमंद है। इससे एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी, फ्यूल इम्पोर्ट्स पर खर्चा कम होगा और टेक्नोलॉजी में इनोवेशन को फरोग मिलेगा। दोस्तों ग्रीन एनर्जी और नेट जीरो इकोनॉमी सिर्फ एक एनवायरमेंटल स्ट्रेटजी नहीं है बल्कि इंसानियत के मुस्तकबिल का एक रोड मैप है। आज जो फैसले हम एनर्जी के हवाले से करेंगे या ये कहें कि वही कल की बुनियाद होंगे या वही कल की दुनिया का ताउन करेंगे। अगर हम साफ एनर्जी और पायदार मईशत की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो हम अपने आने वाली नस्लों को एक साफ, सेहतमंद, खुशहाल दुनिया का वादा कर रहे हैं या खुशहाल दुनिया दे सकते हैं। मुस्तकबिल में उन्हें ही है जो इन सारी चीज़ों को संभालना है। मुस्तकबिल उनका ही है। जो आज से इन्वायरमेंट की जिम्मेदारी को समझेगा, अमल करेगा, वो कल एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ बढ़ सकेगा। वेल दोस्तों अभी के लिए तो मैं बढ़ रही हूँ आपसे इजाजत लेने की तरफ, इस वादे के साथ कि कल वापस एक और नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी। One step to 2030.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। दोस्तों, आज की दुआ बंदे की आजिजी, नदामत, उम्मीद और अल्लाह की रहमत पर यकीन का हसीन इजहार है। इसका खुलासा हम कुछ यूं कह सकते हैं कि गुनाह के बाद अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जब मोमिन से कोई गुनाह सादिर हो जाए तो वो दिल दिल में बेचैन हो जाता है, क्योंकि ईमान वाला गुनाह पर मुतमईन नहीं रह सकता। अब इस मोमिन के दिल की कैफियत ये होती है, इलाही ए मेरे अल्लाह, कैफ अफरहु वक़द असैतुक, मैं कैसे खुश रहूं जबकि मैंने तेरी नाफरमानी की है। वकैफ ला अफरहु वक़द अरफ्तुक, लेकिन मैं खुश क्यों ना हूं जबकि मैंने तुझे पहचान लिया है। गोया यहाँ साइल की नज़र उम्मीद के दरवाजे की तरफ है। जिसने अल्लाह को पहचान लिया उसने रहमत का दरवाजा पा लिया है। वो जानता है कि अल्लाह माफ करने वाला, सुनने वाला और रहमत फरमाने वाला है। फिर वो मजीद कहता है, वकैफ अदउका वअना खातिअ, मैं तुझे कैसे पुकारूं जबकि मैं खुद खताकार हूं। यहाँ बंदा अपनी कमजोरियां मान रहा है, अपनी आजिजी को नुमाया कर रहा है। फिर कहता है, वकैफ ला अदउका वअंत करीम, और मैं तुझे क्यों ना पुकारूं जबकि तू बड़ा करीम मेहरबान है। चूंकि वो देखता है कि अल्लाह की रहमत हर चीज पर मुहित है, हर चीज को अपने हाथे में ले लेती है, इसी वजह से वो गड़गड़ा कर ये कहता है, इन कुंत ला तरहम इल्ला ताइईन फमन लिलआसीन, अगर तेरी रहमत सिर्फ नेक लोगों के लिए हो तो फिर गुनहगारों का कौन है मेरे मौला। यानी अल्लाह की रहमत तो सिर्फ कामिल लोगों के लिए नहीं, बल्कि जो तौबा करके बार बार अपने रब की तरफ लौटते हैं उनके लिए भी है। मजीद इसी अंदाज में फिर वो कहता है, وَإِن كُنْتَ لَا تَقْبَلُ إِلَّا الْعَامِلِينَ فَمَن لِلْمُقَصِّرِينَ، अगर तू सिर्फ बेहतरीन अमल वालों को कबूल करे तो हम जैसे कमज़ोर लोगों का क्या होगा। यहाँ बंदे का इतराफ है कि हमारे आमाल कामिल नहीं, इसीलिए हम अमल से ज्यादा अल्लाह के फजल के मोहताज हैं। फिर वो कहता है, रब हस्साइमून वफाजल काइमून वनजल मुखलिसून, रोजा रखने वाले कामयाब हुए, इबादत गुजार कामयाब हुए, इखलास वाले नजात पा गए। यानी तो सारे नेक लोग हैं, ये तो नजात पा गए, लेकिन हमारा क्या होगा। ونحن عبيدك المذنبون, हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, فرحمنا, हम पर रहम फरमा, وجد علينا بفضلك ومنتك, अपने फजल और एहसान से हم پر کرم فرما, یعنی ہم اپنے گناہوں کے باوجود تیرے ہی طرف لوٹ کر آئے ہیں اور تجھ ہی سے ہماری سب امیدیں وابستہ ہیں, بس تو ہم پر رحم فرما, واغفر لنا اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین, اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے, ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے ہوئے ہم سب کو معاف کر دے۔ تو آج کی دعا کا خلاصہ یہ نکلا کہ گناہ کے بعد مایوس نہ ہوں, اللہ کرے مت سے امید رکھو

0: दोस्तों अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे एक चमकते हुए टॉपिक पे, यानी गोल्ड और सिल्वर इन्वेस्टमेंट पे। भाई पुराने दौर के खजाने से लेकर आज की ट्रेडिंग फ्लोर्स तक ये दोनों मेटल्स हमेशा वेल्थ, सिक्योरिटी और स्टेटस की निशानी रहे हैं। लेकिन आज की इकोनॉमी में क्या गोल्ड और सिल्वर अब भी एक स्मार्ट इन्वेस्टर का चॉइस है? यह सिर्फ एक चमकती हुई यादें हैं जो गुजरे हुए वक्त की बात हो गई हैं। चलिए इन सवालों को थोड़ा पॉलिश करते हैं और आज के एपिसोड में जानेंगे कि क्या है इनके फवायदे।
1: कतर में आकर एक्सपर्ट तो बन गए, पर अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है।
0: भाई यहाँ पर मैं आपको लमसम अमाउंट समझाने की कोशिश करूंगा, या जो फिगर्स दूंगा वो सिर्फ एग्जांपल्स के तौर पे हैं। कभी आप सुने और कहने लगे सरूर भाई ने तो इतना बताया था भाई गोल्ड और सिल्वर के बारे में, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करेंगे, जितने भी फिगर्स मैं बताऊंगा सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो जानते हैं कि व्हाट्स हैपनिंग ऑन प्लैनेट अर्थ। तो भाई गोल्ड पहुंच गया है 11,03,860 पर तोला, और सिल्वर है मान लीजिए 134 पर ग्राम। रुपए की बात कर रहा हूं मैं, मतलब 1,34,000 रुपए पर किलो। तो गोल्ड और सिल्वर की हालत अगर ये मानते हैं, ये है सबसे क्रेजी चार्ट। देखिए किस तरह कुछ कंट्रीज ने सालों से गोल्ड अपने रिजर्व्स में जमा किए और फिर अचानक 2024 के बीच में एक मैसिव जंप आया। ये सब देखकर बुजुर्गों की बात याद आती है, गोल्ड खरीद लो बेटा, गोल्ड खरीद लो। और हम उनको अपने हिसाब में समझाते लगते और कहते रहते कि भाई आपको म्यूचुअल फंड्स, SIPs, क्रिप्टो का क्या पता, आपने कभी कूल चीजों में इन्वेस्ट नहीं किया, गोल्ड कूल नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन आज वही डेटा दिखा रहा है, निफ्टी 50 ने दिए हैं 13.5% रिटर्न्स लास्ट 10 सालों में, जबकि गोल्ड ने दिए हैं मोर देन 15%। तो वो बुजुर्ग आज मुस्कुराते हैं और कहते हैं देखा बेटा, अब समझे, ये अब समझ में आया आपके। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप इकोनॉमिक लेंस, मैं हूं आपका दोस्त सरवर मिर्जा, आपका फाइनेंशियल गाइड फॉर हैप्पी लिविंग। और दोस्तों इस प्रोग्राम में हम आपको सिर्फ मालूमात ही फराहम नहीं करेंगे बल्कि आपके मैसेजेस, एक्सपीरियंसेस और फीडबैक भी इस शो का हिस्सा बनेंगे, जिनको आप शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 666-22107 या हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जहां हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और टिकटॉक पर आपके लिए हाजिर खिदमत हैं। हैंडल हमारा इसी नाम से FM 107। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस क्यों सोर कर रहे हैं और क्या आपको इस वक्त बाई करना चाहिए, और अगर हाँ तो एग्जैक्टली आपको इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, ये सब आज के प्रोग्राम में जानेंगे। तो दोस्तों कुछ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे हम बात करेंगे, तो चलिए पहले थोड़ा सा ब्रश अप कर लेते हैं। सबसे पहले जानिए इन्फ्लेशन हेज के बारे में। ऐसी एसेट जो अपनी वैल्यू को बरकरार रखती है या बढ़ती है जब प्राइस राइज करते हैं। वहीं लिक्विडिटी क्या है, किसी एसेट को कैश में कन्वर्ट करने की आसानी। गोल्ड बहुत ज्यादा लिक्विड होता है। स्पॉट प्राइस गोल्ड या सिल्वर की फॉरन डिलीवरी के लिए करंट मार्केट प्राइसेस। वहीं डाइवर्सिफिकेशन, इन्वेस्टमेंट को मुख्तलिफ असेट्स में स्प्रेड करना ताकि रिस्क कम हो। तो दोस्तों यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप इकोनॉमिक लेंस सर्वर मिर्जा के साथ, आगे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, तो कहीं भी मत जाइएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM 107।

0: अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है।
1: तो दोस्तों, सबसे पहले फंडामेंटल्स पे बात करते हैं। गोल्ड हमेशा से लोगों का पसंदीदा और ट्रस्ट वाला एसेट रहा है। इंसानी तारीख के बहुत लंबी ड्यूरेशन तक जब करेंसीज का कंसेप्ट आया तो उनकी वैल्यूज को गोल्ड के जरिए बैक किया जाता रहा। मिसाल के तौर पर अगर आप

डॉलर पर आउंस तक पहुंच गया। आज के दौर में ये लगभग 3,650 डॉलर पर आउंस है। ये क्लियरली दिखाता है कि बैकग्राउंड में कुछ बड़ा हो रहा है। अगर आप टाइमलाइन देखें तो हर नए ऑल टाइम हाई के बाद रिकवरी पीरियड छोटा होता गया है। पहले 31 साल, फिर 12 साल, फिर 4 साल और अब सिर्फ कुछ महीने। इसके पीछे क्या वजह है? तो भाई सबसे पहले जानते हैं डिजिटाइजेशन ऑफ गोल्ड के हवाले से। अब गोल्ड लेना और बेचना बहुत आसान हो गया है। आपको फिजिकल ज्वेलरी या गोल्ड बार्स खरीदने की जरूरत नहीं। आप डिजिटल गोल्ड को इंस्टेंटली बाय

और फिर वो गोल्ड की तरफ रुजू करते हैं। गोल्ड एक फाइनेट एसेट है जिसे प्रिंट नहीं किया जा सकता। बात करें सिल्वर की तो भाई ये हैं छोटे भैया द लिटिल ब्रदर, और फिर आता है इनका नंबर जो गोल्ड के पीछे पीछे चलता है जैसे उसका छोटा भाई, इसलिए मैंने कहा। तो 2020 में सिल्वर का रेट था 40,500 रुपए पर किलो, सिर्फ एक साल में ये जम करके 65,400 रुपए तक चला गया। आज ये 1,34,000 रुपए पर किलो है, सिर्फ 5 सालों में तकरीबन 3 गुना इजाफा। इवन बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स ने भी इतना रिटर्न नहीं दिया। क्यों? क्योंकि सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड ने आसमान छू लिया है। 10 साल पहले तक लगभग 45

panels, electric vehicles, smartphones, telecom equipments, medical devices as well as water purification systems में. इसका मतलब ये है कि चाहे prices बढ़ भी जाएं, industries को silver लेना ही पड़ता है. ये price inelastic है, इसका कोई substitute नहीं है. और ये constant demand ही price को ऊपर ले जाता है. चलिए अब बात करते हैं दोनों के रेशियो के हवाले से, यानी गोल्ड सिल्वर रेशियो के बारे में. तो एक बहुत इंटरेस्टिंग मेट्रिक है गोल्ड टू सिल्वर रेशियो की, यानी आपको एक आउंस गोल्ड खरीदने के लिए कितने आउंसेस सिल्वर चाहिए होता है. पिछले 100 सालों में इसका एवरेज रहा है 65-67 टू द रेशियो 1. इंडस्ट्रियल एज के शुरू में ये सिर्फ 15 टू द रेशियो 1 था. मतलब लोगों के नजदीक सिल्वर और गोल्ड की वैल्यू लगभग बराबर थी. 2020 में ये रेशियो स्पाइक करके पहुंच गया 127.1

गोल्ड ओवरप्राइज्ड है, लेकिन असल में किसी को भी श्योर नहीं कि कौन सा सही है। कुछ एनालिस्ट का कहना है कि सिल्वर अभी भी 30-35% अंडर वैल्यूड है, जबकि दूसरे एनालिस्ट समझते हैं कि गोल्ड की प्राइस ज्यादा हो गई है और उसमें 20-25% करेक्शन आ सकता है। लेकिन हिस्टोरिकली जब भी गोल्ड सिल्वर रेशियो हाई होता है तो ये इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का सिग्नल होता है, क्योंकि लोग अनसर्टेन टाइम्स में गोल्ड ज्यादा खरीदते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप इकोनॉमिक लेंस सर्वर मिर्जा के साथ। आगे आपको बहुत ही इंटरेस्ट

0: अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है।
1: और आजकल वही हो रहा है, कई कंट्रीज गोल्ड को रख रही हैं। तो भाई अब सवाल ये होता है कि शुड यू इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर? गोल्ड दुनिया के सबसे सेफ और स्टेबल असेट्स में से एक है जो आप होल्ड कर सकते हैं। भाई अगर आप जवान हैं, यंग हैं, तो अपने पोर्टफोलियो का तकरीबन 10% गोल्ड में एलोकेट करें। अगर आप 40s या 50s में हैं तो इसे 15-20% तक बढ़ा सकते हैं, या उससे भी ज्यादा अगर आप चाहें। सेफ असेट्स में शामिल हैं पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम, रियल एस्टेट और हाँ गोल्ड। गोल्ड ने पिछले 10 सालों में एवरेज 15% रिटर्न दिया है, जो कि निफ्टी 50 से भी बेहतर रहा है। 5, 10, 15 और फिर 20 साल के हर पीरियड में गोल्ड ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। चलिए अब आपको बताता हूँ गोल्ड ETFs के बारे में, जो डायरेक्ट और सिंपल हैं। गोल्ड ETFs बिल्कुल स्टॉक की तरह एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। हर यूनिट आमतौर पर 1 ग्राम गोल्ड के बराबर होती है और आप फ्रैक्शनल क्वांटिटीज भी खरीद सकते हैं। ये डायरेक्टली फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं जो सिक्योर वॉल्ट्स में इन्वेस्टर्स के लिए रखा जाता है। आपको उन्हें बाई सेल करने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है, बिल्कुल शेयर्स की तरह। ये हाईली लिक्विड, ट्रांसपेरेंट और लो एक्सपेंस रेशियो वाले होते हैं, आमतौर पर 0.5% से 1% के दरमियान। दूसरी तरफ ये जानिए कि गोल्ड म्यूचुअल फंड्स खुद फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदते, ये गोल्ड ETFs में इन्वेस्ट करते हैं और मल्टीपल ETFs को बैलेंस करके स्टेबल रिटर्न देने की कोशिश करते हैं। ये फंड्स रियल टाइम में ट्रेड नहीं करते, आप इन्हें सिर्फ

नेव यानी नेट असेट वैल्यू के बेसिस पर जो 3:30 पीएम पर डिक्लेयर होती है। इनका एक्सपेंशन रेशियो ज्यादा होता है तकरीबन 1-2%, क्योंकि इनमें एडिशनल मैनेजमेंट, रिसर्च और एग्जीक्यूशन कॉस्ट शामिल होती हैं। तो भाई चलिए अब जानते हैं प्रोग्राम के हिस्से में कि सबसे आसान या सबसे बेहतरीन तरीका क्या है इसको खरीदने का। भाई ज्वेलरी को इन्वेस्टमेंट के लिए अवॉइड करें, मेकिंग चार्जेस और प्योरिटी के इश्यूज आपके रियल रिटर्न को कम कर देते हैं। ज्वेलरी सिर्फ पहनने के लिए खरीदें, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। दूसरा, गोल्ड लोन्स हो सकते हैं स्मार्ट ऑप्शन। अपनी ज्वेलरी बेचने के बजाय आप उसे कोलेट्रल के तौर पर यूज कर सकते हैं। गोल्ड लोन्स का इंटरेस्ट रेट होता है 10-12%, जबकि पर्सनल लोन्स का रेट होता है 14-16%। वहीं डिजिटल गोल्ड या SIPs, भाई बहुत से लोग अमूमन ख्वातीन को देखा गया है हर महीने SIP करती हैं डिजिटल गोल्ड में मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के जरिए। ये फ्लेक्सिबल होता है, आप इसे बेच भी सकते हैं या बाद में ज्वेलरी में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो भाई लो एक्सपेंस रेशियो

कई कंपनीज ने 15% एनुअल रिटर्न दिए हैं जो निफ्टी से बेहतर हैं। और आखिर में सिल्वर ETFs, इंडिया में ये एक नया ऑप्शन है, 2022 से अवेलेबल है। रिटर्न हाई रहे हैं, तकरीबन 30% एनुअली फॉर 3 इयर्स, लेकिन वोलेटिलिटी भी ज्यादा रही है। वार्निंग दे रहा हूँ, इसको समझ लीजिएगा। गोल्ड और सिल्वर वोलेटाइल एसेट हैं, ये फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान गोल्ड की प्राइसेस क्रैश भी हुई थी क्योंकि इन्वेस्टर्स को कैश की जरूरत थी, लेकिन उसके बाद 2008 से 2011 के दरमियान गोल्ड की प्राइस 3 गुना हो गई। सिल्वर की वोलेटिलिटी और भी ज्यादा होती है, अगर गोल्ड 10% गिरता है तो सिल्वर 15-20% तक गिर सकता है, इसलिए लमसम इन्वेस्टमेंट से परहेज करें। बेहतर ये है कि आप मंथली SIPs के जरिए इन्वेस्ट करें, चाहे डिजिटल गोल्ड हो या ETFs। टाइम के साथ प्राइसेस एवरेज हो जाती हैं और आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। तो भाई आते हैं कंक्लूजन पर। हाँ, आपके पोर्टफोलियो का 10-20% हिस्सा गोल्ड और सिल्वर में होना चाहिए। ये टाइम लेस है, ग्लोबली ट्रस्टेड है और फाइनेंशियली और इमोशनली रेजिलियंट है। कहीं से भी ऐसा सिग्नल नहीं मिलता कि इन मेटल्स की डिमांड जल्दी खत्म होने वाली है, ना इंडस्ट्रियल लेवल पर, ना इकोनॉमिक और ना ही जियोपॉलिटिकल लेवल पर। गोल्ड और सिल्वर हर वॉर क्रैश और करेंसी कोलैप्स से सरवाइव कर चुका है। ये सिर्फ असेट्स नहीं, ये अनसर्टेनिटी के खिलाफ इंश्योरेंस हैं। आज के दौर में जब दुनिया इन्फ्लेशन, डेट और ग्लोबल टेंशन से गुजर रही है, तो ये मेटल्स कैओस से सुकून देते हैं। एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो जिसमें 10-20% एक्सपोजर गोल्ड और सिल्वर में हो, आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकता है, इन्फ्लेशन से हेज कर सकता है और आपको रात को सुकून से सुला सकता है। तो दोस्तों, अगली दफा जब आप किसी स्टोर्स की विंडो में गोल्ड को चमकते हुए देखें, तो याद रखें कि ये सिर्फ ज्वेलरी नहीं है, ये एक टाइमलेस कहानी है ट्रस्ट, कल्चर और इकोनॉमिक स्ट्रेटजी की। चाहे आप एक गोल्ड कॉइन में इन्वेस्ट करें, एक सिल्वर ETF में या एक डिजिटल वॉल्ट में। और असल बात यह है कि आप अपने गोल्स को समझें और सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, क्योंकि दिन के आखिर में असली दौलत सिर्फ उस चीज में नहीं होती जो चमकती है, बल्कि उसमें होती है जो वक्त के साथ अपनी वैल्यू बरकरार रखती है। मार्केट फ्लक्चुएट करती हैं, करेंसीज बदलती हैं, लेकिन गोल्ड और सिल्वर कभी अपनी चमक नहीं खोते। स्टे स्मार्ट, स्टे इन्वेस्टेड। तो भाई इसी के साथ दोस्तों, सरवर मिर्जा और प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शकीब अहमद जी को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, एक नए मौजू के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने वॉलेट का ख्याल रखिए और सुनते रहिए FM 107।

अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी।

0: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ, रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

0: Maximum music, maximum fun.
1: On FM 107, Dilsi Desi.

0: Absolute Cinema.
1: ये है वो reaction जिसके लिए आप theater जाना चाहते हैं, पर reviews वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप interval से पहले ही घर पे होते हैं. But don't worry, भरोसेमंद review देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर review of the week rolling, ताकि every movie experience बने Absolute Cinema.

दिल ना खुश ना हो जाए तो बताना, मतलब सालों आपने, दशकों कह सकते हैं आपने इसका इंतजार किया है यार। ये मूवी में इमरान हाशमी है, दिशा पटानी है, पटनी ठीक है, अलग अलग लोगों का कहना है, दिशा पटनी है, शबाना आजमी है, पूरन गब्बी है, सुविंदर है, विजयकांत कोहली है, वो अपने वाले कोहली नहीं दूसरे वाले कोहली है, लेकिन बेहतरीन स्टार कास्ट है। और साथ ही साथ सबसे जो लाजवाब बात है इस मूवी के बारे में, जो लोग बात कर रहे थे इसके गाने, इसकी स्टोरी और फिर पुरानी जो बातें हैं, क्या वो पुरानी बातें वापस आ पाएंगी? कई लोगों को पता चल गया होगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं।

ये कहना चाहता हूँ बस देख लो इसके बारे में डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन काम है अपना यार, करना तो पड़ेगा ही। तो चलो शुरू करते हैं जल्दी से बात करना। और सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, इमरान हाशमी है, दिशा पाटनी है, शबाना आजमी है, पूरन है और सुविंदर के साथ दिव्या कांत कोहली है। लाजवाब ये मूवी के स्टार कास्ट है। सबसे पहले इस मूवी का मूड कैसा है इस पर बात कर लेते हैं।

0: कितनी हसीन शक्ल है, मौत से मिलने का शौक है तुम्हें।
1: दोस्तों आवारापन टू का मूड बिल्कुल इंटेंस, डार्क और इमोशनल है, बिल्कुल पहले पार्ट की तरह। जब आप फिल्म देखने बैठते हैं तो आपको वही पुराना दर्द शिद्दत महसूस होती है जो 2007 में थी। स्टोरी में

0: छोड़ देता है या दिल को उनके छू लेता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और लाइटिंग इस डार्क ऑरा को और ज्यादा बेहतरीन बनाती है। और अभी तक आपके सोशल मीडिया पे मीम के जरिए या फिर छोटी वीडियो क्लिप्स के जरिए है ना कुछ फोटोज आई होंगी जिसमें आपको समझ में आ गया होगा किस तरह की थीम का इस्तेमाल। अगर आप थीम वगैरह फोकस करते हैं तो हर सीन में एक हैवी फीलिंग होती है जो आपको सिखाती है कि गुनाह और पछतावा क्या होता है।
1: मौत, मेरा उससे एक पुराना रिश्ता है, एक कर्ज है जो मुझे चुका।

0: एक्शन सीन्स बिल्कुल ग्रिटी और रॉ रखे गए हैं इसमें, जिसमें कोई भी फालतू का ड्रामा नहीं है, बल्कि एक दर्द जो है वो छुपा हुआ है। डायरेक्टर नितिन कक्कड़ ने कोशिश की है कि वो मोहित सूरी का वो क्लासिक अंदाज बरकरार रखे। कुछ सीन्स में जब तेरा मेरा रिश्ता का म्यूजिक धीमे से बजता है तो थिएटर का माहौल पल बदल जाते हैं। वहां पर बैठे हर एक बंदे को गूजबम्स आ जाते हैं और दिल थोड़ा भारी हो जाता है। दिशा पाटनी और शबाना आजमी के कैरेक्टर्स इस इमोशनल सफर को थोड़ा और सपोर्ट करते हैं। हालांकि अगर आए तो आपको समझ में आ गया, अच्छा कुछ कमी भी है। वेल, रोमांस पे थोड़ा कम फोकस है इसमें, इस मूवी में। पर मूवी का जो मूल या मेन मकसद है वो शिवम के अंदर की लड़ाई पर है। अगर आपको ऐसी मूवी पसंद है जो डुबा दे और रुला दे और अंदर तक हिला दे, तो इसका मूड आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर आप ऐसे कि नहीं यार, मेरे को एक्शन मूवी देखनी है, मेरे को कुछ और देखना है, कुछ फनी देखना है, तो ये मूवी आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर दिल से कनेक्ट करना है तो आवारा पॉइंट 2 आपके लिए ऑफिस।
1: कुछ लोगों की कहानियां उनकी मर्जी से खत्म नहीं होती, उनकी कहानी दूसरों के लिए लिखी जाती है।

0: दर्द से पुराना रिश्ता है मेरा।
1: ये कोई हंसी मजाक वाली या हल्की फिल्म नहीं है, ये एक गंभीर और गहरी कहानी है। हर एक डायलॉग और फ्रेम में आपको एक अजीब सा सुकून और दर्द दोनों साथ में मिलेंगे। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका सच्चा और भारी इमोशनल टोन जो एंड तक आखिर तक चलता है। इस मूवी की हाइप कैसी थी दोस्तों, हाइप के बारे में भी बात कर लेते हैं। इस मूवी का हाइप नेक्स्ट लेवल था, क्योंकि यार फैन आज से थोड़ी इंतजार कर रहे हैं, पिछले 19 साल से शिवम पंडित के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ, आवारापन 2 का अनाउंसमेंट हुआ, इंटरनेट पर तो सुनामी आ गई भाई साहब, लोगों की या फैंस की, लोगों का पूरा भरोसा जो है वो हो नहीं पा रहा था कि अरे ये वापस आ रहे हैं, मेरा जो फेवरेट कल्ट कैरेक्टर है वो वापस आ रहा है। तो ये सवाल जो है वो लोगों में था, और ये भी सवाल था कि पता नहीं यार ये मूवी उस तरह से चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, हवा तो बहुत ज्यादा बना हुआ है। लेकिन ट्रेलर आते ही लोग पुराने दिनों में खो गए थे। टीजर में जब तो फिर ये धुन सुनाई दी ना, तो लोगों का एक्साइटमेंट जो है वो डबल आसमान छू गया था लोगों का एक्साइटमेंट। और एडवांस टिकट की बुकिंग के मामले में इस फिल्म ने इतनी तेजी पकड़ी जिसने 2007 वाली ओरिजिनल फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन जो है वो रिलीज से पहले ही क्रॉस कर दिया। एक होता यह कि भाई जो पहली मूवी आई उसका जो लाइफ टाइम कलेक्शन था वो रिकॉर्ड सिर्फ बुकिंग में टूट गया, तो ये तो भाई लाजमी होना भी था। और इसका जो प्रमोशन है वो दबाकर चल भी रहा था, इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर रिलीज होने की वजह से थिएटर्स जो है ना वो एकदम खचाखच भरे हुए थे। लोग सिर्फ इमरान हाशमी का वो विंटेज बैड बॉय लुक और इंटेंस एक्टिंग देखने के लिए क्रेजी हो रहे थे भाई। सोशल मीडिया पर आवारापन 2 का हैशटैग शिवम पंडित ये ट्रेंड भयानक चल रहा था। हर कोई बस इसी बात की चर्चा या बात कर रहा था कि ये सीक्वल पहली फिल्म बेंचमार्क को टच कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। बॉक्स ऑफिस पर भी इसने दोस्तों आग लगा दी और पहले वीकेंड में ही 100 करोड़ से ऊपर का वर्ल्ड वाइड क्रॉस कर लिया, मतलब कमा लिया 100 करोड़ से ज्यादा। अच्छा एक पॉइंट ये भी है कि जब मूवी में इतनी देरी हो और एक पहली मूवी इतनी अच्छी हो ना, तो अब सेकेंड वर्जन इतना अच्छा हो या ना हो, लेकिन मूवी की बुकिंग्स इस तरीके से होती है कि भाई वर्ल्ड वाइड चलती बहुत ज्यादा है, और ये साफ देखने को मिला है यार आवारापन 2 में। तो अब भले दूसरी मूवी लोगों को इतनी पसंद आए ना आए, लेकिन क्योंकि पहली बहुत अच्छी थी ना, तो लोग भीड़ लगा के आएंगे कि हाँ हाँ मेरे को देखनी है। लेकिन ये मूवी ने यार आपके साथ ईमानदारी से काम भी किया है ना। जिन लोगों ने 2000 के एरा में इमरान के गाने और मूवीज को जिया है, एक्चुअली सुना अलग बात है, लेकिन जिन्होंने जिया है उनके लिए ये सिर्फ एक मूवी नहीं है बाबू, बल्कि एक बहुत बड़ा फेस्टिवल जो है वो बन चुका है। सिंगल स्क्रीन से लेकर मल्टीप्लेक्सेस तक हर जगह इमरान हाशमी की दीवानगी साफ दिख रही है, और लोग उनके स्वैग पर सीटियां बजा भी रहे हैं भाई साहब, उनका भौकाल जो है एकदम तगड़ा है। बाकी अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के रेटिंग के बारे में। यार देखो सबसे इम्पोर्टेंट तो रेटिंग ही होती है ना, आप कितना भी मूवी की तारीफ कर लें कि हाँ एक्टिंग भी बहुत अच्छी हुई, फलाना भी अच्छी हुई, लेकिन रेटिंग क्या तय होती है? रेटिंग तय होती है स्क्रिप्ट अच्छी रही हो, रेटिंग तय होती है कि भाई स्क्रिप्ट के अलावा एक्टिंग, सिनेमाटोग्राफी या फिर फलाना फलाना दुनिया भर की चीज़ें होती हैं उस पर बेसिस जो है होता है। लेकिन इसके मामले में जो मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा, ओवरऑल 5 में से 3.5 रेटिंग दूंगा। इसकी बहुत सी वजहें हैं, मैं देखो यार इसका रीजन है सिर्फ एक तो पुरानी मूवी का जो कल्ट था और वो वापस लेके आए उसको बरकरार रखा। 4 इसलिए नहीं दूंगा कि कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट में और थोड़ी टाइटनेस हो सकती थी, है ना। बाकी अगर रेटिंग की गहराई में जाएं तो ये फिल्म पूरी तरह से इमरान हाशमी के कंधों पर थी। उनकी एक्टिंग और स्क्रीन की जो प्रेजेंस है इतनी सॉलिड है कि वो फिल्म के कमजोर हिस्सों को भी छुपा लेती है। लेकिन 1 स्टार यहाँ इसलिए कटा है क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट ऑब्वियसली जैसे कि आपको बताया थोड़ी प्रेडिक्टेबल लग रही थी मुझे कि हाँ ये होगा, और फिर कहीं कहीं ना बीच बीच में धीमा भी हो रहा था, ऐसा लग रहा था या तो फिल्म छोटी कर देती। पहला हाफ तो काफी फास्ट और एक्साइटिंग होता है, जिससे मुझे लगता है ना कभी कभार डायरेक्टर इस तरह से शूट करते हैं कि चलो मूवी बनाते हैं, मूवी बनाया अब एक्साइटमेंट में शुरू के 2-4-6-10-15 दिन तो बहुत तगड़ी बनाई, फिर उसके बाद मूड ऐसा हल्का हो जाता है। क्योंकि बॉलीवुड के साथ ये कई फिल्मों में हुआ, फर्स्ट हाफ तगड़ा, बाद वाला जो है ना वो इसमें पानी डल जाता है ऐसा लगता है, उसी में सब कुछ माहौल खराब हो जाता है। खैर फर्स्ट हाफ अच्छा लगता है, सेकंड में कहानी थोड़ी खिंचने लगती है और विलन का जो कैरेक्टर है वो उतना खतरनाक नहीं लगता जितना आशुतोष राणा का था भाई साहब, वो एरा था उनका भाई, आज भी एरा है यार, कभी कभार अब उनकी रील वगैरह दोबारा से आने लग गई है, लेकिन वो सीधे आदमी के तौर पे आती है। अब हम दिशा पाटनी के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगी है।

उनका काम ही यही है। अरे मतलब उनका काम ये है कि आप मूवी में खूबसूरत लगे, है ना, तो वो खूबसूरत लगी भी है। उनके पास एक्टिंग करने के लिए ज्यादा स्कोप नहीं था। शबाना आजमी जैसी बड़ी एक्ट्रेस को

0: पुराने गाने जब बैकग्राउंड स्कोर में आने हैं तो मजा तो आता है, पर नए गाने पहले पार्ट जैसे सुपर हिट नहीं थे। फिर भी 3 स्टार इसलिए बनते हैं क्योंकि फिल्म नॉस्टैल्जिया को बहुत अच्छे से यूज करती है और इमरान हाशमी के फैंस को बिल्कुल भी निराश तो नहीं करती। अगर आप पहली फिल्म के बड़े फैन हैं तो शिवम पंडित का स्वैग और उनके दर्द के लिए आपको ये मूवी एक बार सिनेमा हॉल में जरूर देखनी चाहिए। ये एक डिसेंट और मासी एंटरटेनर सीक्वल है जो आपका पैसा वसूल करके आया है। अब हम बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे। ये तो हो गया मूड, हाइप, है ना, स्टार रेटिंग क्या मिलेगी इसको। अब बिहाइंड द सीन यानी कि हम प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, डायरेक्टर का विजन क्या है, फिल्मिंग के लोकेशन एंड देन एक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, सिनेमाटोग्राफी, इन सब पर भी जरा नजर डालते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे फन फैक्ट्स के बारे में। तो आवारापन 2 की मेहनत और इसकी शूटिंग के पीछे बहुत सारी दिलचस्प कहानियां हैं। सबसे बड़ा फन फैक्ट ये है कि इस सीक्वल को बनाने का आइडिया पिछले 10 साल से चल रहा है। तो ये जो दशक गुजरा है 2016-17-18, ये इसके बाद से लेकर बस सोच ही रहे कि यार बनाते हैं, यार वापस से बनाते हैं, मजा आएगा। लेकिन अभी वक्त इतना लंबा गुजर गया कि 2026 आ गया, अब जाके रिलीज हुई है। तो सबसे बड़ा फन फैक्ट तो यही है, पर स्क्रिप्ट ना मिलने की वजह से ना ये बार बार ऐसा रुक रहा था। वो परफेक्ट स्क्रिप्ट की तलाश जो है बहुत लंबे वक्त से चल रही है। जब मेकर्स ने आखिरी बार 2024 के एंड में स्क्रिप्ट को लॉक किया तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल सीक्रेट रखा। फिल्म की शूटिंग का कोड नेम प्रोजेक्ट एक्स रखा गया था ताकि मीडिया और फैंस को पता ही ना चले कि इमरान हाशमी की फिर से शिवम पंडित बनने वाली मूवी जो है या कि इमरान हाशमी की ये जो मूवी है दोबारा आ रही। तो प्रोजेक्ट एक्स नाम रखा गया। सेट पर मोबाइल फोन्स पूरी तरह से बैन किए गए थे और बहुत कम ऐसा होता है कि मूवीज में पूरा बैन कर दिया हो, कोई भी मोबाइल लेकर नहीं आएगा। डायरेक्टर, एक्टर, सिनेमाटोग्राफर, अलाना फलाना कोई भी एम्प्लॉय नहीं लेकर आएगा और इमरान का जो मैच्योर्ड लुक है वो लीक ना हो जाए, इस बात का डर भी था लोगों को क्योंकि कहीं ना कहीं से लीक हो ही जाती थी बात। एक और बड़ा मजेदार किस्सा यह है कि फिल्म का या फिल्म के एक बड़े हैवी एक्शन सीन्स के दौरान ना, जो बैंकॉक के एक बिजी मार्केट में शूट हो रहा था, वहां के आम लोग सच में डर गए थे। उन्हें उनको ये लगा कि असली गैंग वॉर शुरू हो गई है। तो मतलब इमरान भाई एकदम लग भी रहे थे इसका मतलब के भौकाल और मारपीट वाले और बाल वाल से और पूरा एकदम ग्रे लुक दिया गया हो, तो ऐसे लोगों को लग भी रहा था कि गैंग वॉर हो गई क्या। तो लोकल पुलिस को कॉल भी कर दिया था लोगों ने, यहाँ तक बात पहुँच गई थी। बाद में प्रोडक्शन टीम को शूटिंग रोक कर सब कुछ और सबको समझाना भी पड़ा। इसके अलावा फिल्म के गानों के लिए पहली बार इंटरनेशनल म्यूजिशियंस को बुलाया गया था ताकि पुराने आवारापन के म्यूजिक वाइब को ग्लोबल टच दिया जा सके। इमरान हाशमी खुद हर दिन म्यूजिक सेटिंग्स में बैठते थे क्योंकि उन्हें पता था कि उनके फैंस उनसे क्या उम्मीद रखते हैं। और ऑब्वियसली अगर इमरान हाशमी के मूवी के बारे में बात हो रही है तो भाई गाने तो अच्छे देने पड़ेंगे। इस पूरे प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा खर्चा फिल्म के क्लाइमेक्स और हेवन सीक्वेंस पर है, जो अब तक की किसी भी फिल्म की मूवी में सबसे ज्यादा बजट है। फैन एक्साइटमेंट इतना ज्यादा था कि सेट पर आसपास रोज हजारों लोग सिर्फ एक झलक देखने के लिए खड़े रहते। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी में डायरेक्टर के बारे में कि डायरेक्टर का विजन क्या रहा इस मूवी को बनाते हुए। डायरेक्टर है नितिन कक्कड़, जो अब तक तो आपको पता चल गया होगा। डायरेक्टर नितिन कक्कड़ के लिए आवारापन 2 को बनाने का एक बहुत बड़ा चैलेंज और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उनका सबसे पहला और साफ विजन ये था कि वो इस फिल्म को एक आम मसाला या फालतू सीक्वल नहीं बनाना चाहते। वो मोहित सूरी के बनाए हुए 2007 वाले उस क्लासिक इमोशनल दर्द को वापस लाना चाहते हैं, पर एक नए और मॉडर्न अंदाज में कुछ नयापन लेकर आना चाहते थे। उनका मानना था कि शिवम पंडित कोई हीरो नहीं है, वो एक टूटा हुआ, परेशान और गुस्से से भरा इंसान है। इसलिए उन्होंने कहानी में उसके पछतावे रिडेम्पशन पर सबसे बड़ा ज्यादा या सबसे बड़ा ध्यान दिया। नितिन ने पूरी टीम को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए कि फिल्म का हर एक डायलॉग और हर एक सीन हैवी लगना चाहिए। वो चाहते थे कि जब ऑडियंस थिएटर में बैठे तो उन्हें पूरी फिल्म में एक अजीब सा सन्नाटा और गहराई महसूस हो, फील हो। उन्होंने रोमांस पर कम और कैरेक्टर के इंटरनल कन्फ्लिक्ट यानी कि अंदर की लड़ाई पर ज्यादा फोकस किया। तो ये एक भारी विजन थी यार, मुझे तो यही लगता है। उनका विजन था कि शिवम का गुस्सा और उनका दर्द आंखों से दिखना चाहिए, ना कि लंबे लंबे डायलॉग्स, भाषण हो, कोई एकदम ही बात किए चले जा रहा है, वो चीजें ना हो, साथ ही वो आज की यंग जनरेशन को भी इस फ्रेंचाइजी से जोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक्शन को बहुत रॉ, रियल और ब्रूटल रखा, जिसमें कोई VFX या हवा में उड़ने वाले स्टंट्स वगैरह नहीं है। डायरेक्टर ने जानबूझकर पुराने गाने जैसे तेरा मेरा रिश्ता का बैकग्राउंड स्कोर में बार बार यूज किया, ताकि फैंस पुरानी यादों से जुड़े भी रहे। उनका ये विजन पूरी तरह कामयाब रहा, क्योंकि फिल्म पूरी तरह से दिल को छू लेती है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि पुरानी चीजों को इस्तेमाल किया लेकिन परफेक्शन के साथ नहीं किया, तो फिर मूवी ना अधूरी रह जाती है। जो सेकंड वर्जन आती है तो वो फिर मजा नहीं आता सीक्वल में, लेकिन ये मूवी में आपको जरूर मजा आएगा। और बहुत लंबे अरसे बाद दोस्तों, बहुत लंबे अरसे बाद एक ऐसी मूवी बनी है जिसमें असल में आपको मजा जरूर आएगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कई ऐसी मूवीज आई हैं जिसका सीक्वल बना है बट सीक्वल बहुत हल्का रह गया है, लेकिन अरसों बाद ये ऐसी मूवी आई जिसका सीक्वल हल्का तो नहीं, क्योंकि 5 में से अगर 3.5 लेकर गई है तो आपको पता है मैं रेटिंग कैसे देता हूँ, और आपको ये भी पता है कि मूवी ने कुछ तो खास किया जरूर। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात कर लेंगे एक शॉर्ट स्पॉइलर फ्री प्लॉट के बारे में, कि क्या है इस मूवी का प्लॉट, एंड देन वी गोना टॉक अबाउट क्रिटिक्स का क्या कहना है, भाई आपको मूवी देखनी है या नहीं देखनी है। डिस्कशन कर लेंगे परफॉर्मेंस पे, कि परफॉर्मेंस इतनी स्ट्रांग है कि देखी जाए या फिर छोड़ दिया जाए। ठीक है, एक फिलहाल छोटा सा ब्रेक, FM 107 पे वापस कुछ ही देर में। दिल से दही से
1: Absolute cinema.
0: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। बट डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो चल रहा है रिव्यू ऑफ द वीक। दोस्तों अब इसी के साथ आवारापन 2 के फिल्मिंग लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इस मूवी को कहां शूट किया गया है। आवारापन 2 का कैनवस पहली फिल्म से बहुत बड़ा है और इसकी शूटिंग बहुत ही खूबसूरत और रियल लोकेशन पे हुई है। फिल्म का तकरीबन 60% हिस्सा बैंकॉक थाईलैंड में शूट किया गया, पर ये वो नॉर्मल सुंदर और घूमने फिरने वाला बैंकॉक नहीं है जो हम आमतौर पर देखते हैं। डायरेक्टर ने बैंकॉक के अंडरग्राउंड एलीज, पुरानी डार्क बिल्डिंग, नियॉन लिट सस्ती वाली स्ट्रीट और क्राइम प्रोन एरियाज को चुना है, ताकि फिल्म का जो लुक है या फिल्म जो डिलीवर करना चाह रही है वो सही से डिलीवर हो पाए। फिल्म का डार्क ऑरा बिल्कुल रियल लगे, इस वजह से इन जगह को चूज किया गया। बैंकॉक की उन तंग गलियों में नाइट शूट्स करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, पर वहां का लुक फिल्म के मूड के साथ बिल्कुल मैच करता है। थाईलैंड के अलावा फिल्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा राजस्थान के जोधपुर और सुनसान डेजर्ट एरिया में शूट भी हुआ है। राजस्थान के पुराने और टूटे हुए किले फिल्म में शिवम पंडित के अकेले और अकेलेपन को और उसकी पुरानी जिंदगी को भी दिखाते हैं। वहां की मिट्टी और धूप को कैमरा इस तरह से कैद करता है कि स्क्रीन पर हैवी रस्टिक लगता है, तो लगे कमजोर ये आदमी, यानी कि इमरान हाशमी कमजोर लगे, असहाय लगे, टेंशन से भरा लगे, खालीपन जो है ना वो लगे। पर्दे पर उतर के आए तो ऐसे में इस तरह की लोकेशन जो जोधपुर की लोकेशन है वो लेना जरूरी था। वैसे आप डेजर्ट भी आ सकते थे, हमारे कदर भी आ सकते थे, बट इट्स ओके। बाकी

0: मुंबई के बड़े स्टूडियोज में भी कुछ बड़े और कॉम्प्लेक्स सेट्स जो है वो बनाए गए थे, खासकर वो एक जेल का सीन है, वेयर हाउस के अंदर की फाइट है। इस सारे लोकेशन का सिलेक्शन इस तरह से किया गया ताकि पूरी फिल्म में एक ट्रेवल और रन का फीलिंग बना रहे, जहां कैरेक्टर एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा है और अपनी मंजिल ढूंढ रहा है। हर लोकेशन फिल्म की कहानी को आगे बढ़ने में कैरेक्टर की तरह मदद करता है। अब बात कर लेते हैं एक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर, के का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा रहा, कि असल में इस मूवी ने इम्पैक्ट डाला फैंस के ऊपर। इस फिल्म में एक्टर्स का बदला हुआ लुक और की तैयारी दोस्तों सबसे बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट है, मेरा यही मानना है।
1: इस बार या तो यह आवारापन खत्म होगा या मैं।
0: इमरान हाशमी ने शिवम पंडित के रूप में वापस आने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है। उन्होंने अपना वेट थोड़ा कम किया है ताकि वो लीन और शार्प दिखे। उन्होंने इस बार एक यूनिक फ्रेंच बियर्ड और थोड़े बड़े बाल रखे, जिस थोड़े व्हाइट हेयर्स भी दिखाए गए हैं, ताकि लोग ये सोच सके कि हाँ यार, ये मूवी 20 साल बाद आ रही है और इसका कैरेक्टर थोड़ा तो बूढ़ा होगा, है ना। उनका कैरेक्टर 19 साल के लंबे समय के बाद आ रहा है यार, तो थोड़ा तो टूटा फूटा होगा, थोड़ा तो वो बूढ़ा हुआ होगा, तो ये चीज फिल्म में दिखाई जा चाहिए। और इसी से ना छोटी छोटी बात से हो सकता है कि जो फैंस है ना वो उस तरह से देखे ना कैरेक्टर को, लेकिन कनेक्ट इसी तरह से करते हैं कि छोटे छोटे डिटेलिंग क्या दी गई है। तो ये डिटेलिंग नितिन ने बहुत ही लाजवाब किया है और इनका कैरेक्टर एक्सपीरियंस्ड हो गया ये सब दिखाने के, छोटे छोटे फर्क जो है चेहरे पर, बालों पर, उनकी चाल में आया है। उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स भी हैं और उनके चेहरे के कट्स उनके दर्द को साफ दिखाते हैं। अब दूसरी तरफ एक्ट्रेस की बात कर ले, दिशा पाटनी। दिशा पाटनी ने इस फिल्म के लिए पूरी तरह से अपना ग्लैम डॉल वाला जो इमेज है ना उसे छोड़ दिया भाई, और उन पर अच्छा लगता नहीं है, लेकिन ठीक है, इस मूवी में चलता है। उन्होंने इस मूवी के हैवी एक्शन हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन्स के लिए लगभग तकरीबन 4 महीने तक मिक्स मार्शल आर्ट्स यानी कि एमएमए और वेपन ट्रेनिंग ली है। फिल्म में उनका बहुत ज़बरदस्त लुक है, रॉ और ग्लैम जो है वो इतना ग्लैम मतलब ग्लैमर इतना नहीं दिखेगा आपको, लेकिन रॉ जरूर दिखेगा, जो उनके करियर का सबसे अलग रोल भी है। सबसे हैरान करने वाला ट्रांसफॉर्मेशन शबाना आजमी का है। वो हमेशा सॉफ्ट और संस्कारी रोल्स के लिए जानी जाती है, पर इस फिल्म में एक बहुत ही खतरनाक, चालाक और बेरहम क्राइम है, क्रिमिनल है। नफीसा नाम है इस मूवी में उनका और वो बनी हुई है। उन्होंने अपने बोलने का जो तरीका है ना उसमें भी चेंजेस जो है वो किया है, चलने का ढंग, चेहरे का एक्सप्रेशन ये पूरी तरह से बदल दिया है भाई, जिसे देखकर कोई भी डर जाएगा। उनका ये नेगेटिव रोल अवतार ऑडियंस के लिए बहुत बड़ा और शानदार सरप्राइज रहने वाला, ये तो मैं कहूँगा। अब बात कर लेते हैं हल्के से सिनेमाटोग्राफी के बारे में दोस्तों, और साउंड के बारे में। सिनेमाटोग्राफी और साउंड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी मूवी के लिए, और इसके लिए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला था। आवारापन टू का टेक्निकल डिपार्टमेंट यानी इसका कैमरा और साउंड इस फिल्म की सबसे बड़ी जान है। सिनेमाटोग्राफर है विष्णु राव, कई लोग इनको जानते होंगे, कई बार आपने सुना भी होगा इनका नाम, मैंने बहुत बार बोला है। विष्णु राव ने फिल्म को एक बहुत ही अलग और डार्क विजुअल स्टाइल दिया है। उन्होंने ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसमें लाइट और शेडो का बहुत बेहतरीन तालमेल होता है, उसका एक अलग से नाम है, शारो स्कोर कहते हैं उसे। बैंकॉक के सीन्स में उन्होंने ग्रीन और नियॉन रेड कलर्स का यूज किया है, जो फिल्म को एक कोल्ड और डेंजरस वाइब देते हैं, जबकि राजस्थान के सीन्स में वार्म येलो और ब्राउन टोन्स का यूज किया है, जो अकेलेपन को दिखाता है। हर एक फ्रेम एक सुंदर पेंटिंग जैसा लगता है, पर उसमें एक उदासी साफ नजर आती है, झलकती है। साउंड डिजाइन के मामले में ये फिल्म एक मास्टर क्लास है दोस्तों। फिल्म के साउंड डिजाइनर ने हर एक छोटे साउंड पर ध्यान दिया है, जैसे बारिश की बूंदें, गन की चलने की हैवी आवाज और सन्नाटे में सांस लेने की आवाज। अच्छा, पहले जमाने में आप देखे गन की आवाज आती थी, ढिचकी, वो वाली चीजें नहीं है। बैकग्राउंड स्कोर को मिथुन और उनकी टीम ने बनाया है और उन्होंने कमाल करके दिखाया है। अब बात कर लेते हैं स्क्रीन पर शिवम पंडित के बारे में। जब भी स्क्रीन पर शिवम पंडित कोई इमोशनल सीन करते हैं तो बैकग्राउंड में धीमे से तो फिर या फिर तेरा मेरा रिश्ता, ये जो गाना है ना, इसका वायलिन या फ्लूट वर्जन बजता है, पूरा गाना नहीं बजता। ये साउंड पूरे थिएटर में एक अजीब सा टाइट माहौल बनाता है, क्योंकि फिर पुराने चीजों के बारे में याद आने लगती है, पुरानी मूवी के बारे में याद आती है, और वैसे ही आप कनेक्ट कर पाते हैं। और जब भी आप कभी आप देखना, जब भी आप कोई पुरानी बात अपने जिंदगी के बारे में भी याद करते हैं ना, तो आप थोड़ा चुप हो जाते हैं, आप सिर्फ आपकी नजर एक जगह टिक जाती है। तो वो एहसास समझते हैं नितिन, जो डायरेक्टर है इस मूवी के।

0: देखने जाऊं मैं? तो देखो बात ऐसी है कि आवारापन 2 की कहानी 2007 की ओरिजिनल फिल्म के लगभग 2 दशक बाद शुरू होती है। वही 2 दशक बोले तो 20 साल बाद। शिवम पंडित बोले तो इमरान हाशमी अभी भी अपनी पूरी जिंदगी के गुनाहों और उन यादों के बोझ तले दबकर जी रहे हैं। वो दुनिया से दूर एक बिल्कुल सुनसान और अकेली जिंदगी गुजार रहा है, जहां उसका गुजरा हुआ कल हर दिन उसे परेशान करता है, टॉर्चर करता है। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब उसकी जिंदगी में एक मासूम लड़की जारा बोले तो दिशा पाटनी आती है, एंट्री लेती है। जारा एक बहुत बड़े इंटरनेशनल क्राइम और ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क के जाल में फंसी हुई है, जिसे एक नफीसा है शबाना आजमी वो चला रही है। शिवम पहले तो इस सब से दूर रहना चाहता है, पर जारा की लाचार हालत देखकर उसके अंदर का इंसान एक बार फिर से जा। तो ये जो चेंज है ना, नितिन ने जो ये चेंज किया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये खास है। क्या शिवम को माफ कर पाएगा या इसी जाल में फंस जाएगा? क्या इसमें तीसरा वर्जन भी आने वाला है, आवारापन 3? तो ये सब आपको अब मूवी देखने के बाद पता चलेगा। इंटेंस स्क्रीन प्रेजेंस फैंस के लिए बहुत बड़ा ट्रीट है। अब दिशा पाटनी ने इस बार क्या किया है? दिशा पाटनी ने सबको हैरान किया। उन्होंने अपने पुराने ग्लैमरस अवतार को छोड़कर एक बहुत ही रॉ, ना ग्लैमरस दिखने वाली डी ग्लैम और इमोशनल परफॉर्मेंस को बरकरार रखते हुए फिल्म को और टाइटनेस दी है। विक्की और बाकी सपोर्टिंग कास्ट ने भी अपना काम बहुत ईमानदारी से, मजबूती से किया है। लेकिन क्रिटिक्स का क्या कहना है, इस पर भी बात होनी चाहिए। फिल्म क्रिटिक्स और रिव्यूअर्स के बीच आवारापन 2 को लेकर एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला है। शानदार सिनेमाटोग्राफी और इमरान हाशमी की पावर हाउस एक्टिंग की बहुत ज्यादा तारीफ की है। ओवरऑल क्रिटिक्स ने इसे एक डिसेंट और वॉचेबल सीक्वल मानते हुए, जो फैंस को बिल्कुल निराश भी नहीं करता मानते हुए, इस मूवी को 3.5 रेटिंग दी है। मेरा मानना है 3.5, 5 में से 3.5 रेटिंग इसे मिलती है। अब बात कर लेते हैं वर्डिक्ट के बारे में। लेकिन मोटा माटी देखो बात यही निकल के आती है, आवारापन 2 को देखो दोस्तों, फाइनल वर्डिक्ट मैं यही दूंगा कि इस मूवी को देखना लाजमी है। और वैसे भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तो बहुत ही सॉलिड शुरुआत की है, तो यू नो 2000 का नॉस्टैल्जिया ये बहुत ज्यादा है। पहले वीकेंड में ही फिल्म ने धांसू कमाई करते हुए 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। मास सेंटर और सिंगल स्क्रीन पर शिवम पंडित के स्वैग और एक्शन को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, जिसकी वजह से फिल्म ने अच्छा प्रॉफिट बनाया। लेकिन मल्टीप्लेक्सेस और मेट्रो सिटीज में सेकंड वीक के बाद इसकी कमाई थोड़ी धीमी हो गई है। इसका सबसे बड़ा कारण या वजह है फिल्म का थोड़ा स्लो सेकंड हाफ और प्रेडिक्टेबल स्क्रिप्ट। कुछ आम ऑडियंस को लगा कि नए गाने पहली फिल्म जितने लेजेंडरी नहीं थे, जिसकी वजह से फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनते बनते रह गई। बाकी लोगों का अपना अपना नजरिया है, फिर भी इमरान हाशमी का हार्डकोर फैंस के लिए ये फिल्म एक बड़ी कल्ट हिट बन चुकी है। अगर आपको इंटेंस इमोशनल ड्रामा, रॉ एक्शन और डार्क थ्रिलर पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए जरूर जरूर है। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीक एक नए मूवी के बारे में बात करते हुए। तब तक सुनते और देखते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: Anytime, anywhere.
3: Yes, anytime, anywhere.
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
4: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
5: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopahar 1:30 baje se. Only on FM 107, Dil Se Desi.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का अहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله.

0: 107 पर हर गाना हिट,
1: हर गाना हिट,
0: हर दूसरा गाना सुपर हिट।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे कतर टेनिस के बारे में। इनफैक्ट कतर टेनिस के एक बहुत ही इंस्पिरेशनल टेनिस प्लेयर हैं जिनका नाम है मुबारक शनान। जी हाँ दोस्तों, मुबारक शनान कतर के नुमाया टेनिस खिलाड़ियों में शुमार होते हैं और मुल्क की नेशनल टेनिस टीम का अहम हिस्सा रहे हैं। उन्होंने छोटी उम्र से टेनिस खेलना शुरू किया और अपनी मेहनत और लगन की बदौलत कतर की बैन अक्वामी सतह पर नुमाइंदगी की और इसके अलावा उन्होंने डेविस कप में कतर के लिए कई यादगार मुकाबले खेले और टीम की कामयाबी में अपना किरदार अदा किया। दोस्तों मुबारक ने 2016 में कतर एग्जाम नोबल ओपन के मेन ड्रॉ में अपना ATP डेब्यू किया जो उनके करियर का एक अहम मोड़ था। इसके बाद उन्होंने ITF और ATP टूर्नामेंट्स में मुसलसल हिस्सा लिया और कीमती तजुर्बा हासिल किया। 2017 इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में मेन सिंगल्स का ब्रॉन्ज मेडल जीतकर उन्होंने कतर का नाम रोशन किया। इनफैक्ट मुबारक अपनी फिटनेस, डिसिप्लिन और फाइटिंग स्पिरिट के लिए जाने जाते हैं। वो हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि कतर टेनिस फेडरेशन की हिमायत ने उनके करियर को मजबूत बुनियाद फराहम की। 2026 कतर एग्जाम मोबाइल ओपन में वाइल्ड कार्ड के जरिए शिरकत के बाद उन्होंने कहा कि दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों के खिलाफ खेलना उनके लिए कीमती तजुर्बा है और इससे उनकी परफॉर्मेंस मजीद बेहतर होगी। आज मुबारक शनान कतर के नौजवान टेनिस खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल हैं। उनका सफ़र ये साबित करता है कि मुसलसल मेहनत, सब्र और अज़म के ज़रिए बैन अक़वामी टेनिस में भी अपनी पहचान बनाई जा सकती है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्टार और लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम, FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों। ये एपिसोड है फ्रॉड अवेयरनेस का, जहां पर नए जमाने के नए फ्रॉड से आपका सामना होता है। वेल, आज हम जिस फ्रॉड के बारे में बात करने वाले हैं, ये बहुत ही ज्यादा आसान फ्रॉड है और इतना आसान है कि कोई भी शख्स इसमें फंस जाता है। दिस फ्रॉड इज कॉल्ड फेक गिव अवे स्कैम या फ्रॉड। आजकल बच्चों को टारगेट करने के लिए ये एक बहुत ही कॉमन ऑनलाइन धोखा है। स्कैमर्स सोशल मीडिया, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब और मैसेजिंग एप्स पर बहुत अट्रैक्टिव एड्स बनाते हैं। वो फ्री स्मार्टफोन्स, गेमिंग कॉन्सोल्स, गिफ्ट कार्ड्स या फ्री सब्सक्रिप्शंस जैसे बड़े रिवॉर्ड देने का झूठा वादा करते हैं। इन इनामों यानी कि प्राइजेस को लेने के लिए बच्चों से किसी लिंक पर क्लिक करने, सर्वे पूरा करने, ऐप को डाउनलोड करने या आपकी अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि नाम, ईमेल्स, फोन नंबर या पासवर्ड ये डालने को कहा जाता है। कुछ फेक वेबसाइट्स तो बिल्कुल ऑफिशियल कंपनी वेबसाइट्स जैसी ही दिखती हैं, जिससे असली और नकली का फर्क पहचानना बेहद मुश्किल हो जाता है। स्कैमर्स का असली मकसद आपकी पर्सनल इन्फो चुराना, ऑनलाइन अकाउंट को हैक करना या डिवाइस में वायरस यानी कि हार्मफुल सॉफ्टवेयर डालना होता है। कभी कभी वो प्राइस देने से पहले एक छोटी सी प्रोसेसिंग फी भी मांगते हैं। जैसे ही आप पैसे देते हैं, उनको पैसे मिलते हैं, स्कैमर्स गायब हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चे अनजाने में अपने पेरेंट्स की बैंक डिटेल्स भी शेयर कर देते हैं, जिससे बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। इससे ना सिर्फ पैसे डूबते हैं बल्कि गेमिंग अकाउंट्स, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स और पर्सनल फोटोज का एक्सेस भी खोना पड़ सकता है। लेकिन इस तरह के स्कैम से बचने का सॉल्यूशन भी है। बड़े गौर से सुनिएगा इन सॉल्यूशंस को, क्योंकि कई बार अगर हमें सॉल्यूशन पता हो, कई बार हमें अगर सिर्फ अवेयरनेस हो, तो हम फ्रॉड से या स्कैम से बच सकते हैं। कैसे सेफ रहें इन स्कैम से? सबसे पहला जो ऑप्शन आपको हर स्कैम में देखना चाहिए या आप अपना सकते हैं, वो है टू गुड टू बी ट्रू। अगर कोई ऑफर सच होने के लिहाज से बहुत ज्यादा अच्छी लगे, तो समझ लीजिए कि वो एक फ्रॉड है, वो एक स्कैम है। कोई ऐसी चीज यानी कि कोई 1000 रियाल की चीज अगर आपको 10 रियाल, 20 रियाल, 50 या 100 रियाल में नहीं मिल रही है, तो ये है साइन टू गुड टू बी ट्रू का। कोई भी ऑफर ऐसा जो आपको जरूरत से ज्यादा लुभावना लगे, उस पर शक जरूर करें। दूसरा है नो लिंक्स और इन्फो। किसी भी प्राइस के लालच में सस्पिशियस लिंक्स पर क्लिक बिल्कुल ना करें और ना ही अपनी पर्सनल डिटेल्स उन वेबसाइट्स पर या सॉफ्टवेयर में डालें जो आपको लग रही हो कि हो सकता है ये फ्रॉड है। जरा भी शक हो तो आप कोई भी डिटेल्स शेयर ना करें। सबसे पहले अपने पेरेंट्स से पूछें। किसी भी कॉम्पिटिशन या गिव अवे में हिस्सा लेने से पहले पेरेंट्स, टीचर या किसी बड़ों से जरूर पूछें, उनसे राय लें। ट्रस्ट वेरीफाइड पेजेस। सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट और वेरीफाइड सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ही भरोसा करें और कभी भी अपना पासवर्ड शेयर ना करें। किसी भी इनाम के बदले अपना पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर बिल्कुल ना करें। यूज टेक सिक्योरिटी। अपने डिवाइस में एंटीवायरस इंस्टॉल करें, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करें और सस्पिशियस पोस्ट को जरूर रिपोर्ट करें। इस तरह से आप नए जमाने के नए स्कैम से बच सकते हैं। फिलहाल मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में एक बार फिर मुलाकात होगी नए जमाने के नए फ्रॉड से बचते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
2: स्कैम अलर्ट। आप सुन रहे हैं FM 107,
0: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। सामीन, आज हम कुरान में बयान करदा एक अजीम नबी की दुआ सीखेंगे। वो है अय्यूब अलैहिस्सलाम। इन्हें हमेशा सब्र इस्तकामत की अलामत के तौर पर जिक्र किया जाता है। ये दुआ अय्यूब अलैहिस्सलाम की है जिन्हें अल्लाह ताला ने सख्त बीमारी, मसाइब और इब्तलाओं में मुब्तला किया। मालो दौलत, सेहत और औलाद सब छिन गए, लेकिन उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। जब उनके जिस्म और जान पर तकलीफ शिद्दत से बढ़ गई तो उन्होंने अल्लाह से ये दुआ की, अन्नी मस्सनी अद्दुर وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، رب مجھے بیماری اور تکلیف نے گھیر لیا ہے۔ یعنی اس جملے میں عاجزی، انکساری اور بندگی کا اعلان ہے۔

0: अच्छा ये बताइएगा कि मुझे ये चीज़ बड़ी इम्प्रेसिव लगी, मैं आउट ऑफ इंस्पायर होकर आपसे पूछ रही हूँ कि अगर किसी बच्चे ने, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि आजकल तो ये शिकायत चल रही है हमारे बच्चे कुछ खाते नहीं, बहुत अंडर वेट है, बहुत अंडर वेट है, तो अगर कोई बच्चा अंडर वेट है
1: जी,
0: तो जैसे आपको बताया आप खुद फिटनेस की शौकीन है
1: जी जी,
0: तो आपको क्या लगता है उसको किस चीज के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए?
1: आई थिंक प्रोटीन में आप ज्यादा तवज्जो दें, आप अंडे खाएं, कच्चे अंडे
0: कच्चे अंडे सब,
1: अगर आपने जल्दी लाइक यू नो वेट पुट ऑन करना है तो कच्चे अंडे आई वुड से, एंड लाइक प्रोटीन्स में मीट, रेड मीट स्पेसिफिकली वो खाएं आप,
0: ओके ओके,
1: एंड दालें वगैरह उनमें भी काफी प्रोटीन।

0: एलर्जी ना हो. अच्छा ये बताइएगा कि स्पोर्ट्स वगैरह पसंद है आपको?
1: स्पोर्ट्स नहीं, अब नहीं,
0: नहीं.
1: अब नहीं रहा शौक.
0: क्यों वेट गेन कर लिया इसलिए?
1: नहीं इतना भी नहीं किया भाई. अब वो स्कूल भी ऑनलाइन है.
0: अच्छा
1: इधर उधर कोई
0: मुझे सोचता है वो लेजीनेस आ जाती है थोड़ी सी स्कूल का.
1: लेजीनेस तो नहीं है मुझे, लेकिन बस वो
0: छूट गया
1: है ना, दोस्त नहीं है जिनके साथ खेलूं, पता नहीं है.
0: अरे भाई ये हमारे दुख है, ये छोटे छोटे. ये देखिए आप लोग जो कहते समझते हैं ना इस छोटी सी दुनिया के कोई बड़े दुख नहीं होते, ये बहुत बड़े बड़े दुख हैं कि मेरे दोस्त नहीं है.
1: दोस्त नहीं है मुझे घर जाना है मेरे
0: जो भी घर मुझे इनकी बात समझ में आ रही है. अच्छा ये बताएं जब आप बिजी होती हैं तो स्टडीज में तब फिटनेस रूटीन कैसे मेंटेन करती हैं?
1: जब मैं ज़्यादा बिजी होती हूँ तो आई यूजली स्किप इट. वो अच्छी बात नहीं है. आई एम थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट विद इट दीज डेज, लेकिन या कोशिश करनी पड़ती
0: है. अच्छा ये ऐसा होता है ना जब आप खुद, ये भी एक बहुत मैं कहूँगी मैं क्या कहूँ से कि ये बहुत एक रिस्पॉन्सिबल बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है कि आप खुद को पिकअप कर लेते हो. जब आपको पता चलता है ना यू आर गोइंग डाउन, अब आपको चलेगा आपकी फिटनेस अब डाउन हो रही है, तो बजाय इसके कि अम्मा अब्बा के कंधे के ऊपर आप आओ और आप बीमार पड़े रहो और आप लेजी पड़े रहो, या आप जाहिर बात है आयरन की कमी, अंडर वेट हो जाओ, तो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा शदीद डैमेज हो जाती है.
1: या
0: तो बजाय इसके कि आप ये मम्मी डैडी बच्चा बने रहो कि मम्मा कर लेंगी पापा कर लेंगे, यू मोटिवेट योर ओन सेल्फ. दैट्स वेरी गुड. अच्छा भाई एज अ ब्यूटी क्वीन माशाल्लाह से तो आपकी ब्यूटी टिप्स की तरफ आते हैं, तो ये बताएं मेकअप और स्किन केयर में आपको सबसे ज्यादा क्या चीज, किस चीज का शौक है?
1: आई वुडंट से मुझे मेकअप का इतना शौक है. मेकअप तो मैंने यहाँ पे आके करना शुरू किया, मुझे बिल्कुल नहीं आता था. मैंने अपनी दोस्त से सीखा है. मुझे मोस्टली स्किन केयर का है. देखिए अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी तो आप मेकअप कैसे करेंगे?
0: हाँ
1: मतलब आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए. आपकी अगर स्किन अच्छी होगी तो मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको.
0: सही सही
1: yeah.
0: और ये स्किन को दुरुस्त कैसे किया जाए मुझे तो बता दो भाई, मुझे टिप्स दे दो प्लीज, आई नीड इट.
1: डिपेंड करता है आपकी स्किन टाइप पे, आपके स्किन प्रॉब्लम्स पे.
0: चले भी इसको स्किप कर जाते हैं ये बहुत ज्यादा बड़े बड़े प्रॉब्लम मेरे लिए, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम,
1: बहुत डिटेल में चला जाएगा.
0: अच्छा मुझे एक बात बताएं ऑन अ सीरियस नोट कि आपके लिहाज से ब्यूटी का क्या मतलब है? अगर मैं एक मतलब एक सेंटेंस में आपसे पूछूं व्हाट इज ब्यूटी फॉर यू?
1: What is beauty for me? Beauty for me would be natural beauty, like without any makeup and all. मतलब आपकी clear skin हो और मतलब yeah clear skin beauty I would say.
0: सही. अच्छा ये बताइएगा अगर कोई छोटी सी एज वाला लिसनर आपको सुन रहा हो इस वक्त तो उनको आपको क्या लगता है क्या स्टार्ट करना चाहिए? बड़े हो रहे होते हैं ना बच्चे थोड़े से वो फेस के पिंपल्स आना शुरू होते हैं ये वो, तो कोई ऐसी रूटीन है जो आप कहेंगी कि नहीं भाई ये चीज़ मैंने फॉलो की ना तो मुझे बहुत फ़र्क पड़ा तो आप भी करके देखें?
1: आई वुड से कि रैंडम चीज़ें अपने मुंह पे ना थोपे प्लीज़.
0: वेरी गुड वेरी गुड.
1: चीज़ें आई मीन आपकी स्किन, यू हैव बेबी स्किन, हर चीज़ थोपने की नहीं होती मुँह पे.
0: बिल्कुल.
1: और योर एज के आपके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं तो एक्ने आती है.

0: सीरम या
1: ओके ओके
0: तो दोस टू वर्क वंडर्स लेकिन इतनी भी जरूरत नहीं है बस आप मुंह सैलिसिलिक एसिड से धो
1: सही, सही सही सही सही अच्छा विदाउट ब्रांडिंग ब्रांड का नेम नहीं लेना हमने किसी विदाउट ब्रांडिंग आप मुझे बताएं अगर मैं आपके पर्स में अभी झांक कर देखूं तो मुझे मेकअप का कौन सा सामान मिलेगा ही मिलेगा
0: मैं पर्स कैरी नहीं करती
1: लो जी ये मेरी बहन ये तो बिल्कुल मेरे जैसी निकली है देखिए मेरे पास यही है मेरा मोबाइल ये

0: माशाल्लाह से ये बिल्कुल सेट चल रही है, बहुत कामयाब होगी बेटा, मेकअप के पीछे नहीं भाग रही
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
0: अच्छा ये बताएं कि मेकअप करते हुए आपको सबसे ज्यादा मजेदार स्टेप, अगर मेकअप कर रहे हैं, कभी होता है कि पार्टी में जाना है कहीं जाना, तो सबसे मजे वाला स्टेप कौन सा लगता है?
1: आई वुड से सारे ही पसंद है, 'cause

0: मुझे कुछ नहीं दिखाओ, मुझे बस आंखें, मैं फिदा हो जाती हूं।
1: आई मेकअप करना आता है मुझे, बेस वेस बिल्कुल लगानी नहीं आती, तो मैं लगाती ही नहीं हूँ बेस।
0: क्या आपको मेरी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा
1: है? नहीं नहीं, आपका मेकअप अच्छा लग रहा
0: है। नहीं भाई, मुझे मुझे सिर्फ आई मेकअप करना आता है। मैंने अपने ऊपर
1: मुझे भी सिर्फ आई मेकअप करना
0: चलो दो एक जैसे चल रहे।
1: अच्छा, मुझे आईलाइनर लगाना भी नहीं आता सही, मैं स्टैम्प से लगवाती हूँ।
0: बेटा बहुत बहुत देखें, अभी गिनना शुरू करूंगी, 20-25 साल तो हो गए
1: जी,
0: 20-25 साल तो हो गए, अभी आपका स्टेप अभी बाकी, हमें 20-25 साल लगे, आप अभी रास्ते में चले भाई। अच्छा और आगे बढ़ते हैं, आपसे बात करते हैं। तो बरिस्ता और तो ये मुझे इसका कुछ मुझे पता है वैसे, लेकिन मैं चाहूंगी आप अपने पास से लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दें कि ये क्या कोर्स है और ये क्या इंडिपेंडेंस का चक्कर है। हम कहते हैं ना बच्चे, अच्छा भाई आजकल के बच्चे बड़े इंडिपेंडेंट हो गए हैं।
1: जी जी, मैं कोशिश कर रही हूँ।
0: होना चाहिए, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई बिलीव होना चाहिए।
1: अच्छा, तो मेरी जो मदर है, शी इज अ वर्किंग वुमन, माशाल्लाह से शी इज माय इंस्पिरेशन।
0: ओके,
1: तो ऑब्वियसली शी इज अ वर्किंग वुमन, तो
0: भाई इंडिपेंडेंट अम्मा के बच्चे हमेशा माशाल्लाह कॉन्फिडेंट निकलते हैं, रिस्पांसिबल, माशाल्लाह माशाल्लाह ये है।
1: एंड आई एम द ओल्डेस्ट, सो मेरे ऊपर मोर सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी।
0: ये जो दुख है ना सबसे बड़ा होने का,
1: बहुत बड़ा दुख है ये,
0: इसको हम वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक बात बताऊं, खास तौर पे आई बिलीव कि जो बच्चे, खास तौर पे जो बच्चियां सबसे बड़ी होती हैं ना घर में, क्योंकि मैं एक ऐसे घर से बिलोंग करती हूँ, मेरी सबसे बड़ा बच्चा हमारे घर में हमारी मेरी बहन थी, एंड शी इज द बैकबोन ऑफ आवर होम। तो जो दोज पीपल आर वेरी लकी जिनकी पहली बच्ची, पहला आप जो बच्चा होता है ना वो बेटी होती है।
1: जी जी,
0: दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, वेरी सेंसिबल। तो हाँ भाई, हम आपके बरिस्ता के बारे में बात कर रहे थे, कसीदे हम बाद में करेंगे।
1: जी जी, तो आई वाज लुकिंग फॉर पार्ट टाइम जॉब्स,

0: खाते खाते फटाफट हो गया।
1: अरे भाई नहीं होता,
0: करने बैठो तो चारों तबक रोशन हो जाते हैं कि ये कितनी मेहनत का काम है। अच्छा ये बताएं कि आगे चलकर कभी कुछ सोचा है कि भाई एक काम मैंने सीखा है तो उसको और आगे लेकर जाऊंगी, कभी कोई कॉफी शॉप खोलने का, ऐसा कुछ कुछ दिमाग में आया?
1: नहीं
0: नहीं अभी तक नहीं, नहीं।
1: कुछ बचपन में था कि ओ कॉफी शॉप करनी है, कुछ करेंगे, लेकिन अब नहीं।
0: अच्छा ये बताएं कि बड़े होकर क्या बनने का शौक है?
1: बड़े होकर अभी तक मैंने सोचा नहीं,
0: अभी सोचा नहीं है।
1: या आई हैवंट फिगर्ड इट आउट यट।
0: जल्दी सोच लो।
1: हाँ नहीं, अब टाइम लिमिटेड है
0: बेटा, जल्दी सोच, टाइम लिमिटेड है, मैं बता रही हूँ। लिमिटेड एडिशन चल

0: सो गेट रेडी क्योंकि जूनियर जनाब ला रहा है एक नया अंदाज, एक नया जज्बा और ढेर सारी मस्तियाँ। जूनियर जनाब विद आरजे सफा।
1: अच्छा ये बताएं कि अगर जो हमारे जितने छोटे लिसनर्स आपको सुन रहे हैं, जाहिर बात है बच्चे पूछेंगे भाई इन्होंने किया तो हम भी कुछ करने की कोशिश करें। जितने लिसनर्स आपको सुन रहे हैं, ये जो बरिस्ता का बता सकते हैं कि बरिस्ता का कोर्स करने से आपने क्या सीखा और कैसे कहाँ से आपको, एक होता ना आप कहीं भी एप्लीकेशन देते हो या कहीं भी कुछ
2: मतलब किधर काम आए।
1: हाँ
2: आपकी
1: आपको कैसे पता चला था कि बरिस्ता का कहीं कोर्स हो रहा है या कुछ कुछ न्यूज़पेपर से देखा था, कहीं सर्च किया था?
2: ये मैं आई वाज सर्चिंग फॉर शॉर्ट कोर्सेज कि मैं अपनी सीवी बनाऊं कुछ करूं
1: सही।
2: तो आई फाउंड दिस कोर्स तो आई वाज लाइक ये करके देख लेते हैं बिकॉज़ आई ट्राइड अप्लाइंग फॉर जॉब्स तो दे सेड कि यू हैव टू हैव अ सर्टिफिकेशन।
1: ओह सर्टिफिकेशन ओके।
2: तो आई वाज लाइक कि ये मेरे पास सामने आ गया है तो लेट्स डू दिस। तो आई वेंट देयर एंड आई स्टार्टेड एंड इट्स नॉट इजी एट ऑल।
1: It's not बेटा नथिंग इज इजी एट ऑल।
2: जो लगता है आसान, जो आसान इंसान बहुत लगता है।
1: देखिए ये जो है ना ये हमारी साइकोलॉजी है, मैंने कहा ना मुझे साइकोलॉजी बहुत पसंद है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जिस चीज को हम लोग बोल देते हैं ना कि इट्स टू मच, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकूंगा, यकीन माने गेम चेंजर यही होता है कि आप अपने माइंड को कैसे ट्रेन करते हो। यू से टू योर सेल्फ नथिंग इज ईजी इन दिस लाइफ, आई वॉज नॉट प्रोमिस्ड एन ईजी लाइफ। हम दुनिया में ईजीनेस के लिए नहीं आए, तो सीधी सी बात है नथिंग इज गोइंग टू बी ईजी। The choice is mine कि मैं कौन सा हर्डल लेना चाहता हूँ, तो वहां से आपका माइंड फ्लिप हो जाता है। आप कहते हो भाई ये नहीं तो फिर कुछ और मुश्किल होगा, कुछ और नहीं तो कुछ और मुश्किल होगा। चलिए मैं उनका बात कर करके ना गला सूख गया तो पानी पी रही है। अच्छा ये बताइएगा,
2: सॉरी मैं बहुत बोलती हूँ।
1: आप बेटा मुझसे ज्यादा नहीं बोल सकोगी, आई गेट पेड टू टॉक।
2: मैं अनपेड भी बोल रही
1: हूँ, बहुत बोलती हूँ। चलिए भाई मैं पेड कॉर्नर चल रही हूँ, अनपेड चल रही हूँ। अच्छा ये बताइएगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी क्योंकि हमारा वक्त थोड़ा सा लिमिटेड है, तो मैं आपसे अगर पूछूं कि आपसे अगर पूछा जाए कि जो हमारे आने वाली जनरेशन है, आपके साथ वाले जितने बच्चे, उनको कोई एक पीस ऑफ एडवाइस देना चाहें आप? अभी तक आपकी माशाल्लाह 18 इयर्स उम्र हो गई है, इतना तो एक्सपीरियंस हो ही गया है लाइफ का, ज्यादा नहीं लेकिन एक हद तक हो गया है। मैं कह सकती हूँ कि एडल्ट बच्चा मुझसे बात कर रहा है, तो मुझे ये बताएं कि आप अभी तक के अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से दूसरों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे?
2: आई वुड से कि आप अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, उनकी मदद करें, लाइक छोटे मोटे, अभी अभी तो आप काफी छोटे हैं तो सिंस यू कांट गेट अ जॉब तो आप घर के कामों में उनकी मदद करें, घर के कामों में उनकी मदद करें और ट्राई टू बी फिजिकली मोर एक्टिव, डोंट जस्ट ब्रेन रॉट ऑल डे ऑन योर बेड और समवेयर। और अभी आप अपनी फिजिकल हेल्थ बनाएंगे तो कल को आपके ही काम आएगी वो।
1: बिल्कुल,
2: तो दीज आर योर प्राइम ईयर्स, अभी आप कर लो फिर बाकी एंड में इट्स गोना हेल्प यू।
1: मुझे मेरे भाई की बातें आती हैं, छोटी थी ना भाई हमेशा कहता था सफा ये वाले जो साल है ना, बस ये वाले साल कुछ हार्डशिप से गुजार लो, बाद में रूटीन ऐसी पक्की हो जाती है कि फिर वो आपको हार्डशिप लगती नहीं ना। जाहिर बात है एबीसी आपने पढ़ना शुरू की थी, इट वाज हार्ड, लेकिन अब आप पूरे पूरी बुक्स पढ़ जाते हो, आप पूरी पूरी थीसिस पढ़ जाते हो, आपको पता नहीं चलता। सो द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टफ, द रेस्ट जब आपको एक दफा आ जाता है, व्हेन यू प्रैक्टिस इट एंड डू इट, तो आप आराम से भाई उसके अंदर गुजार लेते हो। तो भाई आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच कि आप हमारे स्टूडियो में आई, अपने अपना अच्छा सा टाइम लिया। और अभी जो ना मैं बाद में ना शो खत्म करने के बाद इनसे पूछूंगी कुछ स्किन केयर की टिप्स शिप्स मिली मैं इनसे। देखिए सीक्रेट बातें होती हैं ये, तो खैर अभी के लिए स्टॉक। तो भाई फिलहाल के लिए हम दोनों स्टूडियो से इजाज़त चाहेंगे और आपको कहेंगे अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, याद रखें साथियों, अपने आप को फिट रखें, अपने आप को हैप्पी रखें, याद रखें कि यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। आप अगर अपने आप को सही चलाएंगे तभी आप दूसरों की मदद करने के काबिल होंगे। जो इंसान अपने लिए कुछ नहीं कर सकता वो दूसरों के लिए क्या ही कुछ करेगा। तो भाई बड़ों की इज्जत करें, छोटों का ख्याल रखें और सबसे ज्यादा ख्याल अपना रखें, क्योंकि जो अपना ख्याल नहीं रख सकता वो दूसरों का भी ख्याल नहीं रख सकता। तो हमारी तरफ से साइनिंग आउट, अल्लाह हाफिज। सुनते रहें FM 107 दिल से दिल।
0: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है, और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉर्पोरेशन।

0: मिशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
2: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्कप्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
3: आप सुन रहे हैं FM 107
4: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: News at 7 p.m. only on FM 107 Dil Se Desi।
4: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रियासत कतर की आवाज़ रेडियो कतर से पेशे खिदमत है आज का दूसरा नशरिया, इस्माइल खान की ज़ुबानी और पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। रियासत कतर बरतानवी दारुल हकूमत एडनबर्ग में 7 से 29 अगस्त तक जारी रहने वाले आलमी फौजी फेस्टिवल रॉयल एडनबर्ग मिलिट्री टैटू 2026 में शिरकत कर रही है। रियासत कतर सऊदी अरब, तुर्किया, पाकिस्तान, उर्दन, अलजज़ायर, इंडोनेशिया, लुबनान, मलेशिया, मोरितानिया, फ़लस्तीन और सोमालिया के वज़राए खारजा ने शुमाल मगरबी शाम में अबू अल ज़हूर फौजी हवाई अड्डे को निशाना बनाने वाले इसराइली फिजाई हमलों की शदीद मुज़म्मत की है। खलीज तआवुन कौंसिल ने आज मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइल के मुसलसल आबादकारी के मनसूबों, बिलखसूस ईवन आबादकारी के मनसूबे की शदीद मुज़म्मत की है। और अमरीकी सेंट्रल कमांड ने आज ऐलान किया है कि जुलाई के वस्त में ईरान के खिलाफ जामे बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज किए जाने के बाद से ईरान जाने वाले 68 तजारती बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ दिया गया है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब समाप्त कीजिए मुफसल नशरिया।

0: जिंदगी हर रोज नई कहानियाँ लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जुबानी। ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपके अपने दिल से लगे हुए शो, दिल से जुड़े हुए प्रोग्राम में। भाई वो प्रोग्राम जहां रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे यादगार कहानियों में बदल जाते हैं, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, कभी शॉपिंग मॉल्स की रोशनियों में चमकती यादें, और कभी मेट्रो या दीगर सफर के पहले एनकाउंटर्स जो दिल पर हमेशा के लिए नक्श हो जाते हैं। हर शख्स के पास एक कहानी होती है, एक एहसास, एक याद जो उसकी अपनी वर्चुअल डायरी का हिस्सा होती है, और ये यादें ही हैं जो हमें रोजमर्रा की मसरूफ जिंदगी से थोड़ी देर के लिए दूर ले जाती है, एक सुकून, एक मुस्कुराहट और एक नई ताजगी देती है। तो आइए मिलकर सुनते हैं, महसूस करते हैं और शेयर करते हैं वो कहानियां जो हम सबको एक दूसरे के और भी करीब ले आती हैं। यह है आपका अपना प्रोग्राम जहां हर याद एक सफर है और हर सफर एक कहानी, और इसी सिलसिले से हमारे साथ इस प्रोग्राम में होते हैं एक मेहमान, जहां हम उनसे उनकी कहानी सुनते हैं, कुछ सवाल जवाब के जरिए से उनको जानते भी हैं और उन यादों से खुद को कनेक्ट भी करते हैं। तो दोस्तों इसी सिलसिले से आज के हमारे प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं जिनकी जिंदगी इल्म, दीन और दावत अल्लाह से वाबस्ता है। हमारे मेहमान नौमान शाहिद साहब असल में इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। आप बचपन में तकरीबन 6 साल की उम्र में अपने वालिद साहब के साथ कतर तशरीफ ले आए और आपकी इब्तदाई तालीम तरबियत कतर में ही हुई। अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा कतर में गुजारने के बाद आपने आला दीनी तालीम के लिए इंडिया का रुख किया और दुनिया भर में मकबूल इदारा दारुल उलूम देवबंद से कुल्लियतु शरिया की डिग्री हासिल की। इसके साथ साथ आपने फने तफसीर में तखस्सुस भी किया और अल्लाह सुभानहु ताला के फजल से हाफिज़े कुरान भी हैं। तालीम मुकम्मल करने के बाद आप कतर वापस तशरीफ ले आए और इस वक्त आप विदारतुल औकाफ बराए इस्लामी उमूर दोहा कतर से वाबस्ता हैं और आप एक मस्जिद में इमाम व खतीब के फराइज अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा मरकज अब्दुल्ला बिन जायद आल महमूद अल तकाफी में बाहैसियत दाई की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और कतर की मुख्तलिफ मसाजिद में दरस कुरान, दरस हदीस और दीगर इल्मी और दावती मौजूआत पर मुतअद्दिद दर्स देते हैं। आप विदारतुल औकाफ के शोबा तहफीज के तहत मरकज इमाम अबू हनीफा में बाहैसियत मुदर्रिस भी अपनी कीमती खिदमात पेश कर रहे हैं। आज हम उनसे उनकी इल्मी सफर, दीनी खिदमात, दावत के तजुर्बे और कतर में दीनी तालीम के फरोग के हवाले से भी बातचीत करेंगे। आइए उनके हुजूर चलते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। नौमान शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला।
2: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सरवर भाई कि आपने हमें मौका दिया, और माशाल्लाह हमने सुना, बहुत ही कीमती, बहुत ही मालूमती और बहुत ही लुत्फ से भरा हुआ प्रोग्राम।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अब हम कुछ सवाल जवाब के सिलसिले से इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। तो नौमान साहब, आप असल में भारत से हैं, इंडिया से हैं, लेकिन बचपन से दोहा में पले बड़े हैं। आज दोहा को आप किस नजर से देखते हैं?
2: सरवर भाई, दोहा को मैं यूं समझता हूँ कि मैं भी कम उम्र ही में दोहा आ गया था, 5-6 साल की उम्र में। जो जो मैं जवान हुआ तो दोहा भी जवान हुआ है।
1: वाह,
2: जैसे मैं जवान हुआ हूँ, मेरी परवरिश हुई है, इसी तरीके से दोहा भी जवान हुआ है। आज भी मुझे याद है यहाँ की कॉर्निश की सड़कें और वहाँ पर मौजूद इमारतें। आज जब मैं जाता हूँ तो मुझे बड़ी हैरत होती है, क्योंकि पिछले तकरीबन सारी जो मेमोरी है, पूरी जो जिक्रियात सब वापस आ जाती हैं। हमारे वक्त में तो कॉर्निश का हाल यह था कि सिर्फ दो बिल्डिंगें नजर आती थी, ले देकर एक शेरेटन की, दूसरी पोस्ट ऑफिस वाली।
1: सही,
2: लेकिन आज जाइए, आज तो पूरा मंजर ही बदल गया।
1: सही,
2: तो इसलिए आसान जवाब यही है आपके सवाल का कि जैसे मैं जवान हुआ उसी तरीके से दोहा भी जवान हुआ।
1: क्या बात है। शायद साहब, आपके लिए दोहा सिर्फ एक शहर है या घर जैसा एहसास देता है?
2: नहीं, अमानतदारी का तकाजा ये है कि दोहा हमारे लिए सिर्फ एक ऐसी जगह नहीं जहां हम रहकर कमा रहे हैं, ये नहीं, बल्कि ये हमारे लिए घर से भी बढ़कर है। घर से भी बढ़कर है। जिस तरीके से हमें अपने वतन हिंदुस्तान की मिट्टी से मोहब्बत है, चाहत है, वहाँ की मिट्टी में हमें अपनाइयत महसूस होती है, तो मैं अपने तौर पर कहता हूँ, अपने लिए बिना किसी तामुल के, मुझे दोहा की मिट्टी से भी वही खुशबू महसूस होती है।
1: वाह।
2: और मैं कहीं भी चला जाऊं, इवन कि मैं हिंदुस्तान जाता हूं, वहां से जब वापस आता हूं, जैसे ही लैंड करता हूं यहां दोहा में, तो वो सुकून, वो राहत जो मैसर होती है ना, वो बयान नहीं की जा सकती। इस कदर सुकून महसूस होता है।
1: क्या बात है।
2: और यहाँ के लोगों का बड़ी उसातेज़रफी है कि हम लोगों को इस तरह से समेटा है कि मालूम ही नहीं होता कि हम कहीं और से आकर यहाँ रह रहे हैं।
1: क्या बात है।
2: ये इस मुल्क की खूबसूरती है और इस मुल्क का एक इम्तियाज है।
1: क्या बात है सर, बहुत खूब। तो चलिए ये बताइए कि दोहा में आपका एक आइडल या सुकून भरा दिन कैसा होता है?
2: देखिए सरवर भाई, दोहा में एक सुकून भरा दिन, अगर हम इसको तकसीम करें दो हिस्सों में, एक तो वो दिन हुआ करते थे जब हम तालिब इल्म थे, स्कूल जाते थे और इसी तरीके से तालीमी मशगूलियत हुआ करती थी, स्कूल है, ट्यूशन है, तहफीज है, ये सारी चीजें। और एक होता है, एक दिन वो है जो आज हम जी रहे हैं, यानी आज हमें स्कूल की टेंशन नहीं है, आज हमें अपने काम की टेंशन रहती है। तो आप खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों दिन कैसे गुजरते थे, आपको पता होगा, दोनों में फर्क रहता होगा बिल्कुल।
1: वाह वाह,
2: ठीक है।
1: वाह, बहुत खूब, बहुत खूब।
2: और स्कूल के जो अय्याम थे, यानी जब हम स्कूल जाया करते थे, तब का तो सुकून का दिन हम यही समझते थे कि किस तरह से स्कूल में छुट्टी हो जाए आज, क्यों। लेकिन यहाँ तो वो सीन नहीं है कि भाई, जिस तरह अपने मुल्कों में होता है कि किसी वजह से छुट्टी, बहरहाल, लेकिन सुकून का दिन यही होता था कि आप सुबह स्कूल से वापस आए, स्कूल से वापस आने के बाद, और आने के बाद बस ये इंतजार रहता था किस तरह से बस घर के पास पहुंचे और हम निकल कर अपना फुटबॉल या कभी जब क्रिकेट का शौक चढ़ा तो बैट बॉल लेकर मैदान की तरफ रवाना हो जाए। और ये आप हमारे नाज़रीन को भी इल्म होगा, यहाँ कॉर्निश पर ये जो अभी कतन नेशनल म्यूजियम बना हुआ है
1: जी,
2: तो इसके करीब ही हमारा घर हुआ करता था, सलाता करीम में हमारा घर होता था। और कतन नेशनल म्यूजियम के बिल्कुल पड़ोसी में एक बड़ा सा मैदान है जो अब एक होटल में तब्दील हो गया है, और तो वहाँ पहले होटल नहीं था, वो पूरा मैदान
1: हुआ करता था, जहाँ पे क्रिकेट हुआ करता था। याद है,
2: वहीं पर क्रिकेट होता था, वहीं पर लोग साइकिलिंग करते थे, वहीं पर लोग फुटबॉल भी खेलते थे। तो वो एक तरह से समझिए कि हमारे मोहल्ले के जो लड़के थे, हमारा वो एक क्या कहते हैं कि पॉइंट था जहाँ हम लोग इकट्ठा होते थे, जहाँ खेलते थे। और आज भी याद है, जब कभी कभार मैं बकाले में जाता हूँ, वो एक रैल वाला जो वो आता है, रानी के फ्रूटी आती है, वही सबके हाथ में हुआ करती थी।
1: क्या बात है।
2: और वहाँ अपना किस तरह से इसको हम लोग बड़ा क्या कहते हैं कि खुशी का और बहुत सुकून का लफ्ज़ समझते थे। और ये चीजें बहुत कम मैसर होती थी, इसलिए कि हफ्ते के बीच में घर वाले निकलने नहीं देते थे।
1: क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या खूबसूरत साचा खींचा है आपने। सिर्फ 6 साल की उम्र में दोहा आना हुआ, और बचपन की पहली याद जो आज भी जहन में है आपके, आपने काफी चीजें हमें बता दी ऑलरेडी, फिर भी कोई एक लाइन में कुछ इसको और ज्यादा खास बताना चाहते हो इस बात को, इस सवाल के जवाब में?
2: दोहा आने के बाद सबसे پہلی چیز جو یہاں جب ہم ایئرپورٹ پہ نکلے, چونکہ میں اپنے ناظرین کو بتا دوں ہمارے والد صاحب یہاں 90 سے یہاں پر ہیں, لیکن ہم لوگ آئے ہیں 2005 یا 2006 میں آئے ہیں. تو جیسے ابھی جو چیز مجھے یاد ہے ابھی اپنے دماغ میں وہ یہ کہ جیسے ہم لوگ یہاں تو ایئرپورٹ پہ لینڈ کیے جب باہر نکلے, اس وقت یہ پرانا ایئرپورٹ ہوتا تھا مطار قدیم والا اور یہ حتیٰ کی یہ مسجد ابو بکر کے سامنے والا بھی ایئرپورٹ نہیں تھا.
3: جی جی.
2: تو میں چھوٹا سا تھا, میرے دادا لے کر آئے تھے مجھے, تو والد صاحب نے دیکھتے ہی جو چیز مجھے یاد ہے
3: جی.
2: گود میں اٹھایا اور ایک باپ والی مشفقانہ محبت والی جھانکی دے کر ایک پپی دی تھی.
3: واہ واہ واہ,
2: یہ لمحہ مجھے یاد ہے.
3: کیا بات ہے, کیا خوبصورت بات کہی ہے بھائی. واہ, 1990s, اور کہنا چاہیے ابا جب ہوں گے تو آپ ظاہر بات ہے چھٹی وغیرہ میں بھی آتے ہوں گے, اور پھر جب آپ پرماننٹ آ گئے تو پھر تو بات ہی الگ تھی. بٹ آج کے دوحہ میں سب سے بڑا فرق آپ کو کس چیز میں نظر آتا ہے, جب کے دوحہ میں اور آج کے دوحہ میں, اگر بس ایک لائن میں ہم اس کا جواب چاہیں تو؟
2: تب کا دوحہ تو بالکل ہی مختلف تھا, لیکن آج کے دوحہ میں بہت ساری خصوصیات ہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ کو یہاں پر مختلف ممالک کے لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ کو مختلف ثقافتیں بھی دکھتی ہیں.
3: واہ.
2: آپ کو مختلف کلچر بھی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے.
3: واہ.
2: اور یہاں کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اتنے ممالک کے لوگ, دنیا کے کونے کونے سے لوگ یہاں موجود ہیں, لیکن ہر آدمی ایک دوسرے کے کلچر کی, ایک دوسرے کی عادات کی, ایک دوسرے کی تقالید کی, ایک دوسرے کی زبان کی, ہر چیز کی عزت کرتا, قدر کرتا, اس میں شریک ہوتا ہے.
3: صحیح.
2: اور یہ چیز ملتی ہے آج بھی دنیا میں, بہت سارے ممالک ترقی یافتہ ہیں, لیکن یہ خاص امتیاز جو ہے نا وہ دوحہ کو نصیب ہے.
3: کیا بات ہے. دوحہ میں گزری ہوئی تعلیمی زندگی نے آپ کی شخصیت کو کس طرح سے شیپ کیا ہے؟
2: بالکل یقیناً دوحہ میں گزرے ہوئے تعلیمی جو ایام ہمارے ہیں, میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ ہماری جس طرح سے نشو و نما دوحہ میں ہوئی, اسی طریقے سے ہماری وسعت ظرفی, فکری بلندی اور علمی بلندی, اور مختلف جنسیات, مختلف ذہنوں کے ساتھ ہم آہنگی, اور ان کے ساتھ ملنا جلنا, ان کی باتوں کو سمجھنا اور ان کو سمجھنا, یہ ساری نعمت جو ہے نا, یہ ساری چیزیں دوحہ ہی کی مرہون منت ہے. باقی اور کسی جگہ پر میں اپنے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں ہوتا, شاید اپنے ملک ہی میں اگر میں ہوتا, شاید میں اس قدر جو وسعت ہے, اس قدر جو کھلاپن ہے, وہ نہیں ہوتا. اور یہ وسعت, یہ کھلاپن ایسا نہیں کہ کوئی غلط چیز ہے. اگر آپ حدود شرع کے اندر کسی کے اندر یہ چیز ہے, یہ محمود چیز ہے, پسندیدہ چیز ہے. اور آگے آپ اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, میں آپ کو, چونکہ میں جس شعبے سے وابستہ ہوں, مختصرا کہتا ہوں کہ اگر آپ دعوت الی اللہ کا کام کرنا چاہتے ہیں, جب تک آپ کے اندر وسعت نہیں ہوگی ضرور بھائی, تب تک آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں.
3: صحیح.
2: لوگوں کو اپنے قریب آپ کیسے لائیں گے؟
3: صحیح صحیح.
2: اور یہ چیز جو ملی ہے دوحہ کی برکت سے ملی.
3: واہ واہ واہ, کیا بات ہے کیا بات ہے. تو سر

0: ये घरेलू बैकग्राउंड ये क्या है कि भाई दीनी है, तो जिस तरीके से हम बड़े हुए शऊर की उम्र को पहुंचे तो हमारे कानों में ये बात आने लगी कि भाई आपको भी इसी लाइन पर चलना है।
1: क्या बात है, क्या बात,
0: आपको भी इसी लाइन पर चलना है। जिस तरीके से आप देखेंगे कि डॉक्टर के घर में डॉक्टर ही होता है अमूमन, ठीक है ना, तो यही चीज थी कि भाई ये मुफ्तियों का घराना है तो इसमें भी आलिम और मुफ्ती ही होंगे।
1: क्या बात,
0: तो ये चीज हमारे कानों में जाने पड़ने लगी और कानों में जब चीज जाती है तो वो दिलों में जाकर बैठ जाती है। फिर हमने उसी को अपना रास्ता चुना और अल्हम्दुलिल्लाह उसी पर चले और चल रहे हैं और इंशाअल्लाह ता कयामत चलते रहेंगे, अल्लाह ताला इस्तिकामत अता
1: फरमाए। आमीन आमीन। और यहाँ से फिर दारुल उलूम का देवबंद का सफर शुरू हुआ, तो इसके हवाले से क्या बताना चाहते हैं?
0: जी, मैंने हिफ्ज यहीं किया अपने वालिद साहब के पास, उसके बाद यहाँ मंसूरा में एक मरकज है तहफीज का औकाफ का, उससे वाबस्ता हुआ। उसके बाद मैंने यहाँ अरबी स्कूल जो होता है, मैंने अरबी स्कूल में भी पढ़ा, हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब स्कूल था, फिर इमाम अहमद बिन हम्बल था, और वहाँ से उसके साथ साथ स्कूलिंग के साथ साथ मैं अपने वालिद साहब के पास ये दर्स निज़ामी जिसे कहते हैं कुल्लियतु शरिया, इसके इब्तदाई दर्जात की तालीम में हासिल करता रहा। लेकिन जाहिर सी बात है कि अब आपको आला तालीम तो घर तो मिलेगी नहीं, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं का सफर करना होगा।
1: सही।
0: और दारुल उलूम देवबंद एक दुनिया की मायानाज इल्मी दरसगाह है, दीनी दरसगाह है, और हमारे घराने के कई अफराद वहाँ से फारिग तहसील है, वहाँ से उन लोगों ने दर्स हासिल किया। और जिस तरह उम्र बढ़ती रही तो वालिद साहब इस चीज की तरगीब भी देते रहे कि बेटा कोशिश करो, मेहनत करो, और आपको वहाँ जाना है, वहाँ से आपको वहाँ दाखिला लेकर आपको पढ़ना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब वक्त आया 2018 में हमने जाकर दारुल उलूम देवबंद में एंट्रेंस एग्जाम दिया, और अल्लाह का करना ऐसा था कि माशाल्लाह नसीब भी था, वालिद साहब की दुआएं थी वालिदैन की, वहाँ एग्जाम में पास हो गए, हमारा दाखिला हो गया। और उसके बाद सिर्फ एक तकरीबन 4 या 5 साल की मुद्दत हम वहाँ अर्सा क्याम हमारा क्याम रहा और हमने वहाँ आला तालीम हासिल की। और ये चीज पहले से थी कि हमें दारुल उलूम जाना है, मैं तो हमें पहले से बात बताई गई थी।
1: सही।
0: उसी वजह से फिर उसी चीज को ध्यान में रख के हमने तैयारी भी की। फिर
1: क्या बात है सर, तो सर देवबंद में तालीम हासिल करते हुए दोहा की कौन सी बात सबसे ज्यादा याद आती थी?
0: सबसे ज्यादा यहाँ के खाने याद आते थे।
1: क्या सच्ची बात है भाई। वाह वाह वाह, क्या बात है
0: यार, यहाँ की खाने याद आते थे और तुर्की होटल के शॉर्मे याद आते थे।
1: वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। तो तालीम मुकम्मल करने के बाद कतर वापस आने का फैसला कैसा रहा, क्यों किया, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए।
0: वापस तो आना था हमको इसलिए कि हमारा पूरा घराना यही मुकीम था, यही है, ठीक है,
1: ओके।
0: और दूसरी बात ये हमने देखा कि हमने जो तालीम हासिल की है इसके जो मौके और इसमें काम करने के जो मौके यहाँ फराहम होंगे, यहाँ मिलेंगे, वो शायद से हिंदुस्तान में नहीं मिल सकते थे। और हमारे वालिद साहब क्योंकि करते से इस मैदान में इस काम में थे, उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के मैं वापस आया और मुझे आना भी था।
1: क्या बात है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सरवर मिर्जा आपके साथ, बस मैं यूं गया और यूं वापस आया, देखते और सुनते रहिए एफएम 107 दिल से देसी।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर, दिल से देसी।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
4: आज ही राब्ता करें
3: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
5: ओवरसीज कतर वीजा सेंटर्स में विजन टेस्ट सर्विसेज की सहूलियात खासतौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए दस्तयाब हैं जो ड्राइवर्स के तौर पर रिक्रूट किए जाते हैं। ये सर्विसेज उन्हें अपना जरूरी विजन टेस्ट अपने मुल्क में ही मुकम्मल करने का मौका देती हैं, जो सीधा जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक के लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के सिस्टम से लिंक्ड होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब ड्राइवर कतर पहुंचते हैं तो उन्हें दोबारा आई टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी वक्त और मेहनत दोनों की बचत होती है। इस तरह वीजा के अमल का एक अहम हिस्सा पहले ही मुकम्मल हो जाता है, जो एप्लीकेंट्स के लिए आसानी, सहूलत और फास्ट प्रोसेसिंग का सबब बनता है। ये कदम

मॉडर्न और एफिशिएंट सर्विसेज की मिसाल है जो लोगों के लिए प्रोसेस को सिंपलीफाई करती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 पर पैगाम.
2: इस दुनिया में रहते हुए हर इंसान की जिंदगी में उतार और चढ़ाव जरूर आते हैं, कभी खुशी कभी गम, कभी नरमी कभी सख्ती, हालात बदलते रहते हैं। एक दिन हमारे हक में होता है तो दूसरा दिन हमारे मुखालिफ। जो दिन आपके हक में हो उस दिन अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, और जो दिन आपके मुखालिफ हो उस दिन सबर का दामन हाथ से न जाने दीजिए, इसी में आफियत और भलाई है।
1: पैगाम ऑन FM 107।
3: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल

0: शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
1: Gen Z की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो FOMO एवर अगेन। सुनिए कथा 2026 मेरे यानी दुहा वाले कबीर के साथ। रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
3: आप सुन रहे हैं दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
4: आज इमाम और खतीब के तौर पर उसी मुल्क में यानी कतर में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो ये ऐसा करना कैसा लगता है जहां आपकी परवरिश हुई और वहीं अब आप माशाल्लाह इस लेवल पे हैं, तो कैसे क्या एहसास है इसको लेके?
5: ये बहुत अच्छा एहसास है, जिस मुल्क ने हमें पाला पोसा, हमें सिखाया पढ़ाया,
4: वाह,
5: अब हम उसी मुल्क को सर्व कर रहे हैं,
4: वाह।
5: और ये हक है, इस मुल्क का हक है हमारे ऊपर कि हम इस मुल्क की खिदमत करें, और जिस तरीके से जिस शोबे से हम वापस होकर खिदमत कर सकते हैं हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास आज जो कुछ भी है, देखिए अल्लाह का करम है यकीनन, लेकिन अल्लाह के करम के बाद, अल्लाह के फजल के बाद इस मुल्क की देन है। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को जरिया बनाया, तो हम उसी मुल्क की खिदमत कर रहे हैं वापस।
4: वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। मरकज में दाई के तौर पर मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात होती ही होगी और होती ही है, कोई यादगार वाकया शेयर करना चाहते हैं जो हम सब के लिए फायदेमंद भी हो?
5: जी जी, एक बतौर दाई, जैसा आपने कहा कि भाई मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात होती है, सब हर किस्म के हर नस्ल के लोग, बहरहाल एक वाकया है, चाहे इसको आप किस तरह से लेंगे बल्कि हमारे सामीन को मजा आएगा।
4: हाँ हाँ बिल्कुल।
5: कि जी एक आदमी, एक मुझे अच्छे से याद है, मैं सुख वाकिफ की मस्जिद में इमाम था, तो एक आदमी आया हमारे पास, अफ्रीकी किसी मुल्क से वो उसका ताल्लुक था, उसने कहा नमाज के बाद आकर कि उसके साथ एक आदमी और था कि भाई मुझे इस्लाम कबूल करना है।
4: वाह,
5: ठीक है,
4: सुभानअल्लाह,
5: बड़ी खुशी की बात, बड़ी खुशी की बात थी। तो बहरहाल हमने उससे बात उसकी, नमाज के बाद हमने ऐलान किया हम मस्जिद के अंदर कि भाई एक हमारे भाई हैं, वो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। तो सरवर भाई ये ऐलान हुआ, और आपको पता है कि जब यहाँ इस तरह की चीज होती है तो लोग किस कदर उसका एहतराम करते हैं, लोग एहतराम और मोहब्बत के साथ साथ लोग माली ताउन भी करना शुरू कर देते हैं उसकी सबात पदने के लिए, ठीक है। तो ये चीज हुई, और एग्जैक्ट वही चीज, उसी वही आदमी मुझे दो हफ्ते के बाद, मैं सनाइया की अलातिया जामे मस्जिद में जुमा पढ़ाता था उस वक्त,
4: ओके,
5: ये बात है सन 2023-24 की, तो वहाँ तो देखा कि नमाज के बाद फिर एक जगह कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, मैंने मालूम करने पता चला कि एक आदमी इस्लाम लाना चाहता है। मैंने कहा भाई तो बहुत अच्छी बात है, तो यहाँ जाइए। उसके बाद जब मैंने उसको देखा,
4: मैं पहुंच गया,
5: वही आदमी, मैंने कहा भाई, मैंने कहा कि तुम तो वहाँ भी थे बस 2-3 हफ्ता पहले वहाँ, अभी यहाँ। तो बाद में पता चला कि ये दो तीन आदमी, इनका काम ही यही है।
4: माजरा चाहता हूँ, मुझे हंसी आ गई, बट क्योंकि बात ही ऐसी थी और बड़े अच्छे तरीके से आपने उसको बताया। अभी बाहर हाल आगे बढ़ते हैं। आज के दौर में कतर जैसे मल्टी कल्चरल माशरे में दीनी पैगाम पहुंचाना कितना चैलेंजिंग है आपके लिए?
5: हकीकत ये कि इसमें कोई इस कदर चैलेंज नहीं है कि जिसे हम परेशानी से ताबीज करें,
4: बल्कि हमारे लिए
5: सहूलत पैदा करता है। और इसकी सबसे अच्छी मिसाल मैं आपको बताऊं सरवर भाई, 2022 में जब कतर में फीफा हुआ था, आप देखें कि ये खेल का प्रोग्राम था, दुनिया खेल के लिए आ रही है, और बहुत ये दुनिया का बहुत बड़ा मेला होता है खेल का,
4: फीफा, सही,
5: ठीक है। लेकिन आप देखें कि कतर ने, यहाँ कतर में रहने वाले दुआत ने किस तरह उसका इस्तेमाल किया और उसे एक इस्लामी प्रोग्राम भी बनाया और दावती प्रोग्राम बनाया, और उस नतीजे में कितने लोग, बल्कि कितने हजार लोगों ने इस्लाम कबूल किया।
4: सुभान अल्लाह,
5: शायद रिपोर्ट पड़ी होगी,
4: सुभान अल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल।
5: तो ये इसको कोई चैलेंज नहीं कह सकते, बल्कि ये हमारे लिए मुफीद होता है, मददगार साबित होता है।
4: क्या बात है,
5: मददगार साबित होता है। यहाँ के हम जब किसी के

0: से देखते हैं, उसकी इज्जत करते हैं ना, तो वो ये सारी चीजें वो इंसान के करीब होने का सबब बनता है। और जब कोई आपसे करीब होता है ना, तो वो आपकी अपनी जिंदगी से अगर अच्छी जिंदगी तो उससे मुतासर भी होता है, फिर वो तासुर किसी न किसी दर्जे में आपको एक कामयाब सफर पे लेके जाता है।
1: क्या बात है। क्या कोई ऐसा वाकया है जब किसी शख्स की जिंदगी में आपकी बात ने खूबसूरत तब्दीली लाई हो और आपको याद हो, या उन्होंने आपसे शेयर किया हो, कभी ऐसा हुआ है?
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह ये होता रहता है, क्योंकि हम लोगों का काम, आपने जैसा कि आपने शुरू में बताया था, कई मसाजिद में ये दुरूद देना और इसी तरीके से दावती अस्पार की सारी चीजें, तो ऐसा बहुत हुआ है कि हमारे दर्स में बहुत सारे लोग आते थे जिनकी जिंदगी पहले कुछ थी, लेकिन दुरूस में आने के बाद अल्लाह की मदद और तौफीक के साथ उनकी जिंदगी काफी तब्दील हुई, काफी तब्दील हुई। और मैं आपको बताऊं कि एक आदमी, एक हमारे साथी थे, उनकी अपने घर अपने वालिदैन से किसी बात पर नाशाकी थी, इख्तलाफ था। आप यकीन ही करेंगे सरोर भाई, वो उस बंदे ने 3 साल अपने वालिदैन से बात नहीं की थी किसी बात पर ना, और ना वो अपने वतन जा रहा था। मैं यहाँ मुगरीना में मस्जिद नंबर 131 है, जहाँ में हलीमा सादिया या मेरा दर्स होता है, और उस दिन मैंने दर्स पर ये वालिदैन के हुकूक पर थोड़ा सा गुफ्तगू की, तो आदमी मेरे पास आया और आकर उसने अपनी ये सारी चीजें बताई। मैंने उसको बस इतनी बात की, मैंने कहा कि आप जरा ये सोच लें कि अगर आपका बच्चा आपके साथ ये करे, आपको आप पर कैसे गुजरेगा। मैंने कहा कि अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो अपने वालिदैन को बर्दाश्त कराओ, अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं ना, तो फिर खुद भी ये काम मत करो।
1: बहुत खूब।
0: मैंने उससे बस इतनी बात की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो वतन भी गया, उसने माँ बाप से बात भी की, और हमने कहा कि आप वीडियो कॉल करके माँ को एक बार उसको बात तो करो, उसको एक क्या कहते हैं मोहब्बत भरी शफकत भरी पप्पी तो दो माँ को,
1: क्या बात
0: बता दो बाप को,
1: क्या बात।
0: लेकिन माशाल्लाह इसी एक मुख्तसर से बात ने उसका ये जो जिंदगी का एक तारीख पहलू था 3 साल का, वो उसने
1: बहुत खूब। शाहिद भाई, इतनी मसरूफ जिंदगी के बावजूद अपने लिए वक्त कैसे निकालते हैं? क्योंकि एक मतलब एक अजीब सी बात यह है कि हम सोचते हैं दाई हैं, इमाम हैं, मौलाना हैं, जिम्मेदारी तो इनके ऊपर है, बट ये बड़ा मुश्किल काम है, ऐसा यूजुअली लोग सोचते हैं, तो इसलिए मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूँ।
0: देखिए मेन चीज ये है सौरभ भाई कि अगर आप अपने औकात को मुरतब कर लेना, अपना एक निजामुल औकात बना ले, टाइम टेबल बना ले, तो ये सारी चीजें आसान हो जाती हैं। और इस मुल्क की नशोनुमा में ये चीज भी थी कि हमने देखा कि लोग किस तरह से अपने औकात की हिफाजत करते हैं, अपने औकात को कीमती बनाते हैं। तो ये चीज अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से घर वालों ने भी सिखाई, तो तमाम तर मसरूफियात के साथ साथ घर वालों के लिए अपने लिए वक्त निकालना आसान होता है। मैं इसको भी उसी मसरूफियात में समझता हूँ।
1: वाह।
0: मैं इसको भी उसी मसरूफियात में समझता हूँ। जैसे यहाँ पर वीकेंड का बड़ा शिद्दत से इंतजार रहता है, सबको रहता है, जिस तरह से वीकेंड आता है, मिसाल के तौर पर मैंने अपने लिए जुमा के दिन चुना, जुमा के दिन असर के बाद से लेकर ऐशा तक ये सारा वक्त घर वालों के लिए होता है, बच्चों के लिए होता है, और उसके बाद लेके निकलना इधर उधर, और अपने लिए क्या है कि भाई तमाम तर जो काम है उसको अंजाम देने के बाद जो वक्त निकलता हो तो अपने वक्त है।
1: क्या बात है। दोहा के लोगों की कौन सी आदत या खूबी आपको सबसे ज्यादा पसंद है?
0: दोहा में जो लोग जब बाहर के लोग दोहा आ जाते हैं, उनके अंदर एक जो चीज सबसे ज्यादा मुझे पसंद आती है, अच्छी लगती है, कि वो बहुत सारी वो हरकतें जो अपने मुल्क में नहीं, वो अपने मुल्क में बड़ी खुले दिल से करते, तो यहाँ आकर वो एक अच्छे इंसान बन जाते।
1: वाह वाह,
0: ठीक है,
1: वाह क्या अच्छी बात है।
0: जैसे मिसाल के तौर पे मैं आसान से बात बताता हूँ, अपने मुल्क में लोग जब लोग रहते हैं ना, तो उनकी उनको हर आदमी की फिक्र रहती है, हर आदमी पर तबसरा, हर आदमी पर तबर्रा, भाई फला
1: मैं समझ रहा
0: हूं, फला पतला फला मोटा। यहाँ आने के बाद ना, तो ये सारी जो खुराफात है उनसे उनके दिमाग से निकल जाती है, ठीक है। और जो लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ रह के फिर वापस जाते हैं, तब भी वो इसी सूरत इसी हालत पर कायम रहते हैं।
1: ये हमारे दोहा की खूबसूरती है माशाल्लाह।
0: जी
1: नौमान भाई, क्या किसी गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, या जैसे कि आपने बताया नए मुस्लिम के साथ कोई ऐसा

0: वाकया हुआ जो आप शेयर करना चाहते हो?
1: हमारे मरकज में तो इस तरह से बहुत सारे लोग आते रहते हैं, उनसे मुलाकातें होती हैं। मैं एक बार, तो मैं जब भी उनसे किसी से पूछता हूँ कि भाई आखिर आप कोई भाई 30 साल से कोई किसी और मजहब को मानने वाला, कोई 40 साल से किसी और मजहब को मानने वाला है, तो और उसी में सारी उनकी खानदान है, सारी फैमिली है, मैं पूछता हूँ कि भाई आखिर वो कौन सी चीज है जो आपको इस तरफ लेकर आ रही है, ठीक है? तो अक्सर तकरीबन 80% लोगों का जो जवाब होता है वो कहते हैं कि हमें इस्लामी तकालीस से, इस्लामिक जो कल्चर है, यहाँ इस्लामी जो सकाफत है, हम इससे मुतासिर होकर हम इस तरफ आए, हमने इस्लाम को पढ़ना शुरू किया, इस्लाम को समझना शुरू किया, आज हम इस्लाम को कबूल करने के लिए आए।
0: क्या बात है।
1: इसलिए सुनने वालों से, हमारे सुनने वालों से यही गुजारिश है कि बजाय किसी को अपनी जुबान से कहने कि भाई तुम ये हो जाओ, वो हो जाओ, ये करो, वो करो, हम अपनी अपने अखलाक से, अपनी आदात से और अपने हुस्ने अखलाक से, बल्कि हम दूसरों को दावत दें। याद रखिए, किसी बड़े अल्लाह वाले का ये कहना है कि जितना आपका अमल दूसरों पर असर डालता, आपका कौल उतना असर नहीं डालता
0: है। क्या बात है। जो प्रोग्राम हमारा इख्तिताम को पहुंच रहा है, तो कुछ एक दो सवाल और। जो फैमिलीज और यंग जनरेशन के जो लोग हैं कतर में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं या आ रहे हैं या अभी अभी आए हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है?
1: उनके लिए हमारा पैगाम यही, हमारे जो नौजवान हमारे भाई बहन यहाँ रहते हैं और इसी तरीके से जो आएंगे, आप सबसे पहली चीज आप इस मुल्क की कदर करें, इसलिए कि जो चीजें आपकी जिंदगी में इस मुल्क की वजह से हैं, वो आपको अगर शायद वहाँ मिलती तो आप यहाँ ना आते, वहाँ ना मिलती इसलिए आप यहाँ।
0: बहुत अच्छा।
1: आप इस मुल्क की कदर करें और यहाँ के कवानीन की कदर करें, और यहाँ की जो सबसे बड़ी नेमत है वो अमन अमान की नेमत है, अमन अमान की सबसे बड़ी नेमत है, इसलिए यहाँ के कवानीन की कदर करके आप इस मुल्क की कदर करें। और दूसरी बात ये है कि ये एक, आप यहाँ आए हैं, आपको मुख्तलिफ जिंसियात, मुख्तलिफ सकाफतें, मुख्तलिफ कल्चर के लोग मिलेंगे, तो आप अपने अंदर अदब और एहतराम का जज्बा पैदा करें।
0: वाह।
1: किसी की बात पर बेजा तनकीद, बेजा नकीर, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, हरगिज नहीं।
0: वाह।
1: इसलिए कि एक इस्लामी मुल्क है, अगर एक इस्लामी मुल्क ने किसी चीज की जगह दी, इजाजत दी है, तो वो हमसे और आपसे अच्छे अंदाज से समझ कर उन्होंने दी है, क्या पता वही चीज कल उसके लिए किसी और रास्ते पर चलने का सबब बन जाए। इसलिए इज्जत और एहतराम को अपने अंदर जरूर पैदा करें, किसी पर बेजा तनकीद ना करें।
0: क्या बात है भाई, बहुत खूब। प्रोग्राम के इख्तिताम पर हमारे लिसनर्स के लिए आपका क्या मुख्तसर पैगाम है?
1: हमारे जो भाई सुनने वाले हैं, भाई बहन, उनके लिए भी मुख्तसर यही पैगाम है कि इस मुल्क की कदर कर यहाँ के लिए और यहाँ के जो हुक्काम हैं उनके लिए आप दुआएं किया करें।
0: वाह।
1: उनके लिए दुआएं किया करें। आप अपनी जुबान से, अपने कौल फेल से कोई इस तरह की बात ना करें जो आपके लिए भी परेशानी का सबब बने और इस मुल्क की जो एक इज्जत है, इसका जो एक वकार है, उसको भी आप मजरूह करें। और इसी तरीके से इस मुल्क में रहते हुए मैं दीनी जाविये से बात कहता हूँ कि अपने आप को आप इस्लाम से जोड़े, करीब करें, इसलिए कि जितना जिस कदर आपको यहाँ मौके मैसर है ना, आपको कहीं और मैसर नहीं हो सकते हैं। आप इस चीज पर तवज्जो दें और यहाँ पर इस चीज को, बल्कि हुकूमती सतह पर प्रमोट किया जाता है। यहाँ पर आपको जगह जगह मराकिज, कुरान के मराकिज मिलेंगे, दीनी मराकिज मिलेंगे, ये वो बहुत सारी चीजें हैं, वो इसीलिए कि आप यहाँ आए, कुछ सीखें, कुछ पढ़ें, कुछ लिखें और अपनी जिंदगी को तब्दील करें, एक मकाम को लेके जाएं।
0: क्या
1: ये चीज यहाँ आसानी में है।
0: जज़ाक अल्लाह खैरन, बहुत बहुत शुक्रिया नौमान साहब। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, बट दिल ये चाहता है कि आपसे बात करते रहें और आपसे सीखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपने कीमती वक्त में से इतना वक्त निकाला कि आप हमारे साथ बातचीत कर पाए। अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। तो दोस्तों, आप सब भी इतना ख्याल रखिए, और आपसे इतना ही कहना है कि जिंदगी का हर सफर खूबसूरत है, हर नई मंजिल पर अपना

0: हौसला जिंदा रखिए, अपनी पहचान को संभाल कर रखिए, क्योंकि कहानी सिर्फ शहर ही नहीं लिखता, कहानी आप भी लिखते हैं। इसी खूबसूरत सोच के साथ इजाजत चाहते हैं, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी और मुझे सरवर मिर्जा को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए। सुनते और देखते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: दोहा डायरीज, जहाँ हर कहानी बनेगी यादगार।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
1: आर यू रेडी लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको
2: टॉप 10 काउंटडाउन
3: हाँ जी मैं कह रहा था आ जाओ जी 107 पे बहुत बढ़िया था आपको शो सुनाएंगे अस्सलाम वालेकुम मैं दुआ वाला कबीर एफएम 107 पे एंड वेलकम टू टॉप 10 दिस वीक मुझे सच में ऐसा लगता है मैं किसी गेम शो को होस्ट हूँ जब भी मैं ये शो कर रहा होता हूँ काफी एक्साइटमेंट रहती है और इतने सारे दिमाग लगते हैं ये पूरी की पूरी लिस्ट बनाने में मजा आ जाता है सच में सारे के सारे ऐसे बात कर रहे होते हैं गानों को लेकर जैसे पता नहीं कौन सा अभी कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट तैयार हो रहा है कि इसका गुंबद एक यहाँ लगा दो यहाँ पे गुंबद नहीं चाहिए और इसके अंदर ये फैसिलिटी होनी चाहिए तो मजा आ जाता है तो आज भी लिस्ट जो तैयार हुई है ज्यादा चेंजेस नहीं है लेकिन जो चेंजेस हैं वो बहुत तगड़े वाले हैं और कुछ नई एंट्रीज हैं कुछ पुराने गाने जो अपनी पोजीशन पे बने हुए हैं और जो हमारी फर्स्ट पोजीशन है वो भी थोड़ी सी हिल चुकी है वो फॉर अ वेरी वेरी वैलिड रीजन मगर आप जो है आप भी शो का हिस्सा बन सकते हैं बाय एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग तो आप जो है बता सकते हैं कौन सा गाना आपको लगता है कि नंबर 1 पे होना चाहिए कौन सा गाना टॉप 10 में होना चाहिए कौन सा गाना चाहिए नहीं टॉप 10 में सब आपके ऊपर है भाई साहब तो आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड आपको करता है इनवाइट भाई साहब हमारे सोशल मीडिया के दोहरे आ जाओ सोशल मीडिया है FM 107 कतर FM 107 कतर इस नाम से हम हर जगह मौजूद है आप मुझे भी ढूंढ सकते हैं दुहा वाला कबीर के नाम से लेकिन मैं न्यू कह रहा था स्पेलिंग में गलती मत करना KABIR है आधे से ज्यादा लोग EER लिखते हैं विच इज ओके मगर मैंने KABIR लिखा है कबीर ये जोक बाकी शोज में के लिए बचा के रखते हैं एनी हमारी लिस्ट आप जानते हैं किस तरीके से शुरू होती है किस तरीके से खत्म होती है वी विल स्टार्ट फ्रॉम 10 देन 8 9 फिर 7 6 5 4 3 2 1 तो सबसे पहले गाना नंबर 10 ये गाना अभी भी लिस्ट में है इस बात से बिल्कुल हैरान नहीं हूं मैं क्योंकि आधी से ज्यादा रील्स में मैं इस गाने को देख चुका हूं जब भी कोई रील ऐसी होती है इसमें ऑरा फार्मिंग हो रही होती है जिसमें कोई बहुत ही शानदार कोई एटीट्यूड वाली बात होती है या कोई ऐसी रील होती है जहां पे कोई फ्लेक्स कर रहा होता है किसी चीज को तो ये गाना हमेशा बैकग्राउंड में लगा ही होता है और ये वो गाना है जो आधे से ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता लेकिन अच्छा लग रहा होता है बहुत सारे ऐसे लिसनर्स हैं जो हिप हॉप बिल्कुल नहीं सुनते हैं बिल्कुल रैप नहीं सुनते हैं बट दे लाइक द वाइब ऑफ दिस ट्रैक अगर आप नहीं समझे तो बता दूं गाना है बूम शाकलाका हिला दे हूं शाकलाका तो ये जो गाना है बाय के अडोलसाइन कृष्णा और डाना न्योली वाला तो ये गाना एट नंबर 10 एंड आई थिंक लिस्ट में रुकेगा अभी तो इसका अभी इसका दौर गया नहीं है भाई यूट्यूब पर भी व्यूज

रहे हैं इसके लगातार स्ट्रीम्स पे भी यूज बढ़ते चले जा रहे हैं एंड दोनों का ये कोलैबोरेशन कभी होगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था. कृष्णा एंड डाना न्यूलीवाला ऑफ कोर्स दे आर बोथ कनेक्टेड टू हरियाणा. कृष्णा इज फ्रॉम गुड़गांव, गुड़गांव में से हमारा भाई और न्यूलीवाला तो न्यूलीवाला से भाई, लेकिन बढ़िया कोलैबोरेशन किया है. और वह चीज है ना क्या है वो चीज जो आग ला दे ना भाई गाने में, तो मौसम बदल दिया दोनों ने एक साथ कोलैबोरेशन करके बहुत बढ़िया गाना ले आए हैं. तो ये गाना बूम शाक इलाका इज एट नंबर 10 ऑन द लिस्ट एंड आई बिलीव हिप हॉप अगर आप समझना चाहते हैं तो इसमें दोनों के वर्सेस को सुनने की कोशिश कीजिएगा. कृष्णा का जो वर्स है जो उन्होंने रैप किया बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो अगर वो ना भी समझ में आया तो चलेगा, बट वेरी टेक्निकल एंड अमेजिंग. बट डांडा भाई का जो रैप है ओ भाई समझ में आ जाया करे, बहुत मुश्किल ना है, तो एक बार सुन के देख लेना अच्छा लग सकता है आपको भी अगर आपने आज तक रैप नहीं सुना है, आज तक आपने हिप हॉप में कोई रुचि नहीं दिखाई. सो गाना नंबर 10 बूम शाकलाका कृष्णा एंड ढाणा न्यूलीवाला. अब गाना नंबर 9 जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं. गाना नंबर 9 है आदित्य लिखारी का और आई थिंक इनकी जो लिखाई है बड़ी कमाल की है. मैं ये नहीं कहूँगा इनका बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ मैं, बिकॉज उसके लिए आपको फुल गाने फॉलो करने पड़ते हैं, मैं तो सिर्फ गाड़ी में रैप ही सुनता रहता हूँ. बट आदित्य की एक ख़ास बात यह है कि वो किसी के साथ भी कोलैबोरेशन करें, ज़रूरी नहीं है कि उनका कोई पसंदीदा कोलैबोरेशन ही हो, कोई एक पर्टिकुलर म्यूज़िक डायरेक्टर ही हो, वो किसी के साथ भी गाना बनाते तो पता नहीं गाने की वाइब ऐसी होती है कि आपको लगता है यार गाना तो बहुत बढ़िया है और ये फेल नहीं होते. मतलब कोई ऐसा गाना नहीं जो लगे यार ये क्या फालतू के लिरिक्स हैं. एवरीथिंग दैट ही डज इन अ सॉन्ग इन अ ट्रैक इज वेरी मीनिंगफुल. गाने में या तो कहानी होगी, गाने में बहुत ज़बरदस्त पोइट्री होगी, गाना किसी चीज़ को लेकर रिकॉल होगा या गाना किसी इमोशन को टैप इन करेगा. ये गाना वो है बारियां इज एन अमेजिंग अमेजिंग ट्रैक. इस बार वो रोचक कोहली के साथ हैं, इस गाने को तैयार किया है रोशनी वालिया के साथ भी उन्होंने एंड इट इज़ अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ट्रैक. बोए बारियां इज अ ट्रैक जो मैंने पहली मरतबा सुना एंड इट गॉट ऑन टू माई नर्व्स. मुझे लगा ये गाना ड्राइव के लिए बहुत बढ़िया है एंड स्पेशली वो वाली ड्राइव जब आप एक लंबे सर में होते हैं और आपको कोई साथी नहीं चाहिए होता. सो दिस इज वन ऑफ दोज ट्रैक्स जिसमें आपको कोई नहीं चाहिए. कल्ले कल्ले गाड़ी जा रही है भाई, गेड़ियाँ मार रहे हैं, हांडे पे रहे पूरा कतर में और यो गाना भाई ला दोगे तो मौज आ जाएगी. तो ये जो गाना है आदित्य लिखारी का ये सच में बहुत बहुत खास है और ये भी मुझे लगता है कि लिस्ट में काफ़ी दिनों तक रहने वाला है. सरोजा कोहली के साथ आदित्य लिखारी विद द सॉन्ग बोहे बारियां एट नंबर 9 ऑन द लिस्ट. अब गाना नंबर 8 की बारी है. गाना नंबर 8 ये गाना मैंने एक चीज़ नोटिस करी है जो बताने जा रहा हूँ मैं. इतने सारे लिसनर्स हैं जो पाकिस्तान से हैं, नेपाल से हैं, बांग्लादेश से हैं, जिन्होंने मुझे मेरे शो में भी जब मैं शाम का शो करता हूँ या कभी सुबह का करता हूँ तो लोग ये बोलते हैं कि ये गाना चला दो. उन्हें भले ही शायद ही समझ में ना आ रहा हो गाने में क्या क्या है बट दे लव द टोनैलिटी ऑफ द ट्रैक और जो कुछ कुछ उन्हें हरियाणवी में समझ में आ रहा होता है दे एब्सोल्युटली लव इट. ढांडा भाई ने भाई सच में हरियाणा के हिप हॉप को ले गए इंटरनेशनल वो. और ये जो गाना है दिल दे बैठी एक छोरे ने भाई कति जहर गाना भाई कति जहर गाना दिल दे बैठी एक छोरे ने तो धूम उठा दिया भाई लट काट दिया इस गाने से चस सजाएगी. आप भी सुन के देखो एक बारी दिल दे बैठी एक छोरे ने जो गाना है एट नंबर 8 ऑन द लिस्ट. इस गाने की खास बात है इसके बीच में बहुत सारी लाइंस हैं, तारों के बारे में बात है, लड़की की किताबी होने के ऊपर बात है एंड द काइंड ऑफ थिंग्स दैट ही हैज रिटन इज प्योर शायरी. भाई क्या लिखाई है यार क्या लिखाई है. पहले क्या होता था लोग समझते थे हरियाणवी में सिर्फ जो है फ्लैक्स किया जाता है कहो मेरी गाड़ी धो रहे ये वो ना, सिर्फ गाड़ी और अग्रेसिव चीज़ों के बारे में बात नहीं हो रही यहाँ पर भाई, प्यार के बारे में बात हो रही और बहुत प्यारी शायरी है जो सुनने के बाद आपको लगेगा नहीं यार ये वाली शायरी जो है कि ये हरियाणवी में ही अच्छी लग रही है. एंड खड़ी भाषा में एक मोहब्बत भरा गाना कितना खूबसूरत लग सकता है उसका ये प्राइम एग्जांपल है. सो दिल दे बैठी एक छोरे ने एट नंबर 8 है भाई सब हमारी लिस्ट पे. रिवीजन कर देता हूँ मैं छोटे से ब्रेक से पहले. तो गाना नंबर 10 बूम शाकलाका कृष्णा एंड डांडा न्यूलीवाला, नंबर 9 पे है बोहे बारियां आदित्य लिखारी रोचक कोहली एंड रोशनी वालिया एंड गाना नंबर 8 है दिल दे बैठी एक छोरे ने ढांडा न्यूलीवाला का गाना एट नंबर 8 ऑन द लिस्ट. जाना आपने नहीं सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 कतर FM107 कतर इस नाम से हर जगह मौजूद है. प्लीज प्लीज फाइंड अस और दुहा वाला कबीर के नाम से मैं मिल जाऊंगा. स्टे ट्यून्ड FM 107 टॉप 10 नंबर 10.

0: FM 107 Top 10.
1: वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। मैं दो हवाला कबीर एफएम 107 पे। अगर आप थोड़ा सा लेट हैं तो आप ज्यादा लेट नहीं है, 10, 9, 8 ही गाना अभी तक हमने बताया है। अब गाना नंबर 7 की बारी है इन टॉप 10 दिस वीक। यानी बता दूं, ये गाने दे आर एंटायरली बेस्ड ऑन देयर व्यूअरशिप ऑन यूट्यूब या फिर इनकी स्ट्रीम्स जो कि स्पॉटिफाई और गाना.com और एप्पल म्यूजिक पे आती हैं। तो इन सब के बेसिस पे ये गानों की लिस्ट हमने तैयार करी है। सो गाना नंबर 7 जो है, मुझे इस गाने की वाइब, माय गॉड क्या गाने की वाइब है। देयर इज समथिंग अबाउट दर्शन।

0: चावल जो इतना कैप्टिवेटिंग है कि एक कंसिस्टेंसी उनके साथ रहती, कोई भी गाना ये बंदा बनाता है वो कहीं ना कहीं जाके अपनी ऑडियंस ढूंढ ही लेता है. आई हैव नेवर सीन अ दर्शन रावल सॉन्ग विच जस्ट डाइड. होता है ना, कुछ सिंगर्स बहुत बेहतरीन होते हैं, वो गाना डालते हैं, उनके व्यूज नहीं आते, उनके फैंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख रहे होते हैं कि ये गाना कैसे अभी तक 1 मिलियन नहीं पहुंचा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा. दैट नेवर हैपेंस टू दर्शन रावल. दर्शन रावल का गाना है बरसात लगती है, और इतना खूबसूरत वीडियो, इतने खूबसूरत लिरिक्स, एंड क्या हुक है गाने का भाई, क्या हुक है गाने का. बरसात के बहुत सारे गाने आगे चले गए, बहुत टाइम से आए भी नहीं थे, मैं सोचता था कब आएंगे. आई थिंक वो जो एक मूवी आई थी श्रद्धा कपूर अर्जुन कपूर की हाफ गर्लफ्रेंड, उसमें बहुत बेहतरीन गाने थे बरसात के, उसके बाद भी आए लेकिन वो इतने नहीं चले. और रिसेंट टाइम्स में तो कोई भी बरसात का गाना इतना अच्छा नहीं आया. तो बरसात होना हो, तपती गर्मी में, धूप में, ये गाना भाई एकदम बढ़िया है. गाने का नाम है बरसात लगती है. इसमें दर्शन रावल है और सिमरन चौधरी साथ दे रही है उनका. बट नॉट जस्ट द ट्रैक, ओके, एक होता है कि ट्रैक को बना दिया, अब इसमें वीडियो क्या करें. वीडियो में भी इक्वल मेहनत की गई है. बंदा बसों में चढ़ा है, उतरा है, बारिश हो रही है, पूरी एक स्टोरी है जो गाने के अंदर भी है और जो वीडियो में बहुत ही विजुअलाइजेशन उसका खूबसूरत किया गया. आई लव द ट्रैक एंड आई थिंक दर्शन रावल इज अप देयर. मैं उन्हें अंडर रेटेड नहीं कहूंगा, अंडर रेटेड तो नहीं है बंदा, बट बॉलीवुड वालों को इन पे नजर बनाने की जरूरत है, बिकॉज इन रिसेंट टाइम्स अपार्ट फ्रॉम द गुजराती ट्रैक्स मैंने दर्शन रावल के गानों को सुना नहीं है इतना बॉलीवुड के अंदर, जितना वो सिंगल्स अपने आउट कर देते हैं. तो आई थिंक दर्शन रावल के ऊपर अटेंशन जानी चाहिए बॉलीवुड की, एंड उनको मौका मिलना चाहिए और भी ज्यादा गाना गाने का, बिकॉज उनकी वॉइस भी बहुत यूनिक है. ये मैंने सेम बात विशाल मिश्रा के बारे में कही है इससे पहले. विशाल मिश्रा इज जस्ट टॉप नॉच, और उनका काम अभी बहुत बढ़िया चल रहा है, वो बॉलीवुड के लिए भी गा रहे हैं, इज डूइंग अ ग्रेट जॉब. पर दर्शन रावल इज इन द सेम कैटेगरी एज हिम, आई बिलीव दर्शन रावल का फैन बेस बहुत तगड़ा है भाई. ही ओनली नीड्स टू गेट अ लॉट ऑफ वर्क इन बॉलीवुड एज वेल. सिंगल्स बना रहे बहुत बढ़िया है दर्शन रावल, अब एल्बम निकाल देंगे तो मुझे लगता है कि आंधी आ जाएगी. सो दर्शन रावल का गाना बरसात लगती है इज एट नंबर 8 ऑन आवर लिस्ट, an absolute banger of a track. और क्या हो गया भाई गाने का. All right, अब जो है वक्त आ गया है गाना नंबर 6 का. आतिफ भाई आ गए आलिये रे. आतिफ असलम ने एल्बम लॉन्च करी और हलचल पैदा कर दी भाई, हलचल. सबसे खूबसूरत बात बताता हूँ आपको मैं, ऑल्दो पाकिस्तान में उर्दू तो ऑब्वियसली है ही, मगर किसी ने भी ना इंडिया में ना पाकिस्तान में उर्दू से प्लेलिस्ट को लिखा हो. सारे गानों के नाम जो है उर्दू में लिखे हुए हैं, और वो जो एल्बम कवर है आतिफ असलम का वो इतना कमाल का है भाई, इतना कूल लगता है ना. तो आतिफ भाई ने इस बार जो किया है मैं बहुत खुश हूँ, बिकॉज मेरी उनसे शिकायत ही रहती थी कि चलो आतिफ असलम इज अ स्टार, इज अ रॉक स्टार, आतिफ असलम कुछ भी गाएंगे चलेगा, मार्केट में दौड़ेगा इनफैक्ट. मगर उनकी जो अदायगी है, जो उनकी मौसीकी है, जो डिलीवरी है, वो सालों से सेम ही रही है, ऑलमोस्ट रिजेक्ट रही. लेकिन इस एल्बम से उन्होंने मेरे जैसे कई लोगों का मुंह चुप करा दिया, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट ही डिड इट. बहुत बहुत शानदार एल्बम है, हर इमोशन के लिए गाना है. इसमें क्लब बैंगर्स भी हैं, तो सैड गाना भी है, तो मोहब्बत वाला गाना भी है, एंड देर आर मैनी मैनी ट्रैक्स इन द लिस्ट. तो ये गाना नंबर 6 जो है सच्चे वादे गाने का नाम है, आतिफ असलम ने इसे गाया है, एंड अ वेरी वेरी वेल रिटन सॉन्ग.
1: सच्चे वादे क्यों तोड़े थे, मोड़े थे तुम जल्दी.
0: वेरी वेल रिटन सॉन्ग, एंड किसी ना किसी पाकिस्तानी ड्रामे का टाइटल ट्रैक ही बन सकता है सच्चे वादे. इनफैक्ट सच्चे वादे एक बहुत बढ़िया टाइटल हो सकता है किसी भी पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल का. तो भाई ये मैं आइडिया थ्रो कर रहा हूँ, कोई अगर मुझे सुन रहा है जो पाकिस्तान में मेरी आवाज को ले जा सकता है, प्लीज सच्चे वादे नाम से एक सीरियल बना डालो और आतिफ असलम का ये जो गाना है इसे टाइटल ट्रैक बना दो. हिट है, मैं लिख के दे रहा हूँ, हिट है, अभी से कह रहा हूँ, जैसे गाना नंबर 6 पे हिट है भाई. अब जरा आ जाते हैं गाना नंबर 5 पे. गाना नंबर 5 अभी भी नंबर 5 पर है. इस गाने की क्वालिटी ऐसी कि अभी नहीं गिरने वाला है. Nah, not really in recent times. थोड़ा टाइम लगेगा इसको पूरी तरह से लिस्ट से बाहर होने में, क्योंकि ये अभी भी गाना वायरलिटी में बहुत आगे है. और सिर्फ गाने के हुक की वजह से नहीं, गाने के डांस स्टेप्स की वजह से. तो गाने का नाम है बन जा तू मेरी,
1: बन जा तू मेरी, बन जा.
0: ये गाना है चरणप्रीत और बादशाह भाई ने रैप किया है. बहुत कमाल का गाया है यार चरणप्रीत, बहुत कमाल का गाया है. इससे पहले मैंने उनको डिस्कवर भी नहीं किया था, लेकिन उनकी डिस्कोग्राफी में ये गाना हमेशा

0: बेंचमार्क बन के रहेगा। इस गाने ने कई सारे कोरियोग्राफर्स की जो है दुकान खोली है और बड़ा खुश हूं कैसा हुआ है। कई लोग इसके डांस स्टेप्स को सिखाने के पैसे ले रहे हैं भाई, बात यहां तक पहुंच गई है। एंड स्पेशली द लीड डांसर इन द ट्रैक आसी, जिनका नाम है, बहुत अच्छा डांस किया है, बहुत फैबुलस ट्रैक, कमाल का रैप एंड कमाल का हुक स्टेप एंड कमाल की कोरियोग्राफी, सब कुछ कमाल है इस गाने के अंदर। और ये गाने को भी टाइम हो गया, फिर भी इट इज एट नंबर 5 ऑन द लिस्ट। बन जा तू मेरी, बादशाह एंड चरणप्रीत दोनों साथ में, व्हाट अ कोलैबोरेशन मैन, ये है एट नंबर 5 ऑन द लिस्ट, जाना नहीं।
1: FM 107 Top 10 Number 7।

0: FM 107 Top 10.
1: तो अगला गाना है जो है वो है एट नंबर 4. नंबर 4 पे भी इस लिस्ट में, पूरी टॉप 10 की लिस्ट में इतने सारे गाने ढांडा भाई के आ चुके हैं. एंड आई एम जस्ट प्राउड टू से दिस कि मैं सिर्फ फेवरिज्म नहीं कर रहा हूँ, मुझे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ढांडा भाई का गाना भाई बनता है इस लिस्ट पे. गाना अभी भी जा रहा है आगे और हम भी चला रहे हैं, एंड वी आर प्राउडली प्लेइंग इट ऑन आर स्टेशन 107 पे. जगाड़ने गाने का नाम है, ढांडा लूलीवाला का गाना है और इसमें एक लाइन है के बेटी चाहे दुश्मन की हो मारे घर महफूज मिलेगी.
2: बेटी चाहे दुश्मन की हो मेरे घर महफूज मिलेगी.
1: What a line man, what a line. एंड जिस तरीके से वीडियो उन्होंने शूट किया है, वो आइडिया जिसका भी था बहुत कमाल का आइडिया है. वीडियो बहुत जबरदस्त है. ढांडा भाई इज लुकिंग सुपर सुपर कूल. उनकी रिसेंट जो EP आई है उसका ये गाना है जगाने. इस गाने में एटीट्यूड है, इस गाने में लाइन डिलीवर्स है, इस गाने में हल्का सा डिस भी है. जो आर्टिस्ट ढांडा भाई के बारे में बात करते आए हैं हमेशा थोड़े बहुत, जो उनसे जलने वाले लोग हैं उनको भी ढांडा भाई ने रिप्लाई दिया है. और साथ साथ गाने में हर एक चीज़ डाली है. गाना थोड़ा सा बीच में मोहब्बत वाला भी हो जाता है, तो गाना बीच में कहीं फ्लैक्स वाला भी हो जाता है, और गाना कहीं बीच में एक ईगो बूस्टर भी है, बट इन अ वेरी पॉजिटिव वे. तो जगाने जो है भाई साहब, ये गाना है एट नंबर 4 ऑन द लिस्ट, एंड ये बैंगर ऑफ अ ट्रैक. अगर आपने अभी तक नहीं सुना था, सो दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू लिसन टू इट. सो ये आलो जी सुन लो. ओके, तो ब्रेक पे जाने से पहले मैं इतना ही बोलूंगा कि लिस्ट को रिवाइज करने का वक्त आ गया है, तो लिस्ट को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. अभी तक हम 4th नंबर तक पहुंच चुके हैं. सो गाना नंबर 10 रहा बूम शाकालाका कृष्णा एंड ढांडा लूलीवाला. देन गाना नंबर 9 बोहे बारियां. एंड देन गाना नंबर 8 दिल दे बैठी ढांडा लूलीवाला अगेन. नंबर 7 पे बरसात लग दी है दर्शन रावल एंड सिमरन चौधरी. व्हाट अ ट्रैक. इसके बाद जो है गाना नंबर 6 है सच्चे वादे आतिफ असलम की आवाज में. देन है नंबर 5 पे बन जा तू मेरी विच इज बाय बादशाह एंड चरण प्रीत. जैसे मैंने कहा ये गाना लिस्ट में रहेगा. एंड देन गाना नंबर 4 है जगाने अगेन ढांडा न्योली वाला. वापिस आते हैं, टॉप 3 गानों की बात होने वाली है. जाना नहीं है आपने. स्टे ट्यून्ड.

0: FM 107 Top 10.
1: वेलकम बैक, मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे। एंड भाई साहब, वक्त आ लिया नंबर 3-2-1 का, प्राउडली प्रेजेंटिंग द टॉप 3 सॉन्ग्स ऑफ दिस वीक। एंड तीनों के तीनों एक ही पिक्चर से, तीनों के तीनों बैंगर हैं, तीनों के तीनों जबरदस्त ट्रैक्स हैं। नंबर 3 पे है आवारापन 2 से वे जुनू। मैं आगे नहीं गाऊंगा, नहीं तो सुर बिखर जाएगा, आप रेडियो बंद कर देंगे, ताला लगा देंगे गाड़ी में। तो वे जुनू आवारापन 2 का ये गाना, ये वैसा ट्रैक है जो स्लो पॉइजन की तरह है, धीरे धीरे असर करता है आप पे। तो वे जुनू इज अ ब्यूटिफुल ट्रैक, डेफिनेटली ऑन द लिस्ट एंड डेफिनेटली एट नंबर 3 जगह बना ली है। सुन के देख लो भाई। अब नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 पे है आवारापन 2 से ही इसका टाइटल ट्रैक, ये आवारापन एंड द कमबैक ऑफ अरिजीत सिंह। कमबैक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीच में रिटायरमेंट उन्होंने ले ली थी, मगर अमाल मलिक के चलते उन्होंने वापस गाने का फैसला किया। एंड अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, अरिजीत सिंह ने इसका एक पैसा नहीं लिया है इस गाने को गाने का। उसके बाद भी ये गाना फ्री फंड में बनने के बाद इतना खूबसूरत गाया है, ये बंदे का डेडिकेशन दिखाता है। आवाज इतनी जबरदस्त, और जैसे अरिजीत सिंह कहते हैं कि गले को तोड़ तोड़ के उन्होंने आवाज बनाई है, तो उन्होंने साबित भी किया है। क्या गाना गाया है यार, बहुत अच्छा गाया है। और नॉट जस्ट दैट, गाने के लिरिक्स जो हैं, जो सईद कादरी साहब ने लिखे हैं, वो भी टॉप नॉच हैं। सो इफ यू फोकस ऑन द लिरिक्स, आपको गाना अपने आप पसंद आएगा ही आएगा। देर इज नो वे कि गाना आपको पसंद ना आए। ये आवारापन, आवारापन 2 से एट नंबर 2 ऑन द लिस्ट। और अब बारी है उस गाने की जो है नंबर 1 ऑन द लिस्ट। मुझे पता है कि आपको भी पता है कि गाना नंबर कौन सा है नंबर 1 पे, लेकिन फिर भी इसकी तारीफ किए बिना मैं रह नहीं सकता। ये गाना जब इसका पहला वर्जन आया था तो लोग दीवाने हो गए थे 2007 में। ये गाना जो इसका पहला वर्जन था वो गाया था मुस्तफा जाहिद साहब ने। आवारापन 2007 में जब रिलीज हुई थी जून के महीने में। आई एम अ ह्यूज ह्यूज फैन, तो मुझे सारी डेट सब कुछ पता हुआ है, सब कुछ पता है। तो ये गाने ने आग लगा दी थी। वी थॉट के ऐसा गाना तो बन ही नहीं सकता। एन आवारापन 2 से मुझे उम्मीद थी, पर अंदर अंदर दिल में चल रहा था पता नहीं ऐसा गाना बन पाएगा नहीं बन पाएगा। बट देन आई हर्ड द स्निपेट ऑफ द ट्रैक एंड आई गॉट क्रेजी, ये गाना भाई। और फिर उन्होंने गाना डाला तेरा मेरा रिश्ता कंटिन्यूज रीसेंट टाइम्स। एंड कंटिन्यूज का बहुत बड़ा मीनिंग है, लोग जो है समझ नहीं रहे। अगर आपने पुराना तेरा मेरा रिश्ता सुना है तो उस गाने के बाद का ही, तो गाना ऐसा नहीं कि अलग से बना दिया डाल दिया मूवी के अंदर, नहीं, ये गाना पहले वाले गाने की कहानी को आगे बढ़ाता है। व्हाट अ ब्यूटी मैन। कभी आपने सुना कि पिक्चर का जो है वो दूसरा पार्ट आया और पुराने गाने का एक सीक्वल बनाया गया। पिक्चर के तो सीक्वल बहुत सुने हैं आपने, गाने का सीक्वल भाई, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट हैज हैपेंड। और क्या लिखा है भाई, क्या लिखा है इस गाने को सईद कादरी साहब ने। और बहुत ही बढ़िया किया कि इस गाने को नाम इन्होंने दिया तेरा मेरा रिश्ता कंटिन्यूज। एंड इट डेफिनेटली रॉक द फ्लोर, मुझे बहुत पसंद आया ये गाना। एंड मैं बड़ा खुश हूँ कि गाना 6 मिनट का है। शुरुआत में आपको लगेगा कि गाने में कुछ भी नहीं है, गाना शुरुआत कैसे हो रहा है। वो मेलो शुरुआत के बाद जब बीच में रॉक म्यूजिक मिलता है पॉप म्यूजिक से और गाना उस पिच पर चला जाता है जहां पे आप सोच भी नहीं सकते, वो है इस गाने की ब्यूटी। अ वेरी अनएक्सपेक्टेड हिट इन अ वे के लोगों को शुरुआत में लगेगा नहीं कि गाना चढ़ पाएगा, लेकिन गाना इज डेफिनेटली ऑन द लिस्ट, डेफिनेटली टॉपिंग द चार्ट्स, और लिस्ट पे ये नंबर 1 पे रहने वाला है। अभी तो पिक्चर की हाइप भी जारी है भाई, बहुत कुछ जारी है। तो आवारापन से टाइटल ट्रैक तो नंबर 2 पे है, और अपन से ट्रैक नंबर 1 ऑन द लिस्ट टॉप 10 दिस वीक में ब्लॉकबस्टर ऑफ द वीक इज तेरा मेरा रिश्ता कंटिन्यूज। तो ये था टॉप 10 दिस वीक। आई होप आपको मजा आया। कोई गाना आप चाहते हैं कि लिस्ट में आए, कोई गाना आप चाहते हैं लिस्ट से बाहर जाए, प्लीज प्लीज बताइएगा 666-22-107 के जरिए। और हमारे व्हाट्सएप के अलावा सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं, FM107 Qatar, FM107 Qatar, इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं। प्लीज प्लीज गेट इन टच विद अस। एंड ऑन दैट नोट, दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं। मस्सलाम।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
3: क्रिकेट हो
4: and he's hooked that away. That's four runs.
3: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में.
5: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
3: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी थे एट 1 PM.
5: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की.
6: स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की.
0: FM 107 Top 10 Number 3.

अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूँ सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन एफएम 107। साथियों, हमारी डेली लाइफ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का बहुत बड़ा रोल होता है भाई। हमारे टीवी हो गए, कंप्यूटर हो गए, चार्जर्स हो गए, गेम कंसोल्स भी तो हैं, किचन अप्लायंसेस और मोबाइल डिवाइसेस भाई, जिनके बगैर हम रह नहीं सकते। ये सब हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं, हमें पता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है, नोटिस किया है कि कुछ डिवाइसेस हम यूज ना करने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते ही रहते हैं? मिसाल के तौर पर किस चीज की मिसाल दी जाए? हाँ, सबसे बड़ी, हमारा टीवी बंद है भाई, लेकिन रेड लाइट अभी भी ऑन है। मोबाइल चार्जर सॉकेट में लगा हुआ है लेकिन फोन कनेक्टेड नहीं है। कंप्यूटर यूज नहीं हो रहा लेकिन स्टैंड बाय मोड पर है। ये जो छोटी छोटी चीजें लगती है ना हमें, लेकिन वक्त के साथ एनर्जी का अननेसेसरी इस्तेमाल बढ़ सकता है साथियों। तो भाई, आज के इको स्विच में हम बात करते हैं स्विचिंग ऑफ स्टैंड बाय डिवाइसेस, यानी उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को प्रॉपरली बंद करना जो जरूरत के बगैर एनर्जी यूज कर रही होती है। अच्छा, थोड़ा सा प्रॉब्लम को हाईलाइट कर लें साथियों। अक्सर हम ये सोचते हैं कि अगर डिवाइस ऑफ है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी यूज नहीं हो रही, मतलब अगर हम उसे यूज नहीं कर रहे, वो ऐसी पड़ी हुई है स्टैंड बाय मोड पर, तो हम उसे बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे। लेकिन कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस स्टैंड बाय मोड में भी थोड़ी बहुत एनर्जी कंज्यूम कर रही होती हैं। इसे अक्सर स्टैंड बाय पावर या फैंटम एनर्जी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, टेलीविजन जो रिमोट से ऑन के लिए रेडी रखा जाता है वो हो गया, चार्जर जो सॉकेट में लगे हुए होते हैं लेकिन उनसे कोई मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा होता, कंप्यूटर्स और गेमिंग डिवाइसेस जो स्लीप मोड में होते हैं, किचन अप्लायंसेस जैसे फॉर एग्जांपल हमारा क्या चीज हो गई, माइक्रोवेव हो गया। माइक्रोवेव भी अक्सर औकात हम यूज नहीं कर रहे थे लेकिन उसका स्विच ऑन होता है, जो कंटिन्यूसली प्लग्ड इन रहे लेकिन यूज ना हो रहे हो लेकिन फिर भी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो। हर डिवाइस की एनर्जी कंजम्पशन छोटी लग सकती है, लेकिन जब घर में बहुत सारे डिवाइसेस हों और रोजाना ये आदत रिपीट हो तो एनर्जी वेस्ट बढ़ सकता है। देखिए, एनर्जी बचाना सिर्फ बिल कम करने के लिए नहीं होता, बल्कि एनवायरनमेंट पर प्रेशर कम करने के लिए भी जरूरी होता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं सिंपल इको स्विच सॉल्यूशंस के बारे में, तो भाई स्टैंड बाय एनर्जी वेस्ट को कम करने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स हैं, हम उन्हें फॉलो कर सकते हैं बहुत आसानी से। पहली चीज ये, यूज के बाद प्रॉपरली स्विच ऑफ करें चीजों को। सिर्फ रिमोट से टीवी बंद करने के बजाय अगर मुमकिन हो तो डिवाइस को कम्प्लीटली स्विच ऑफ करें सॉकेट से। चार्जर्स अनप्लग करें, मोबाइल, लैपटॉप या किसी और डिवाइस जो होता है, जो आपका चार्जर होता है, उसे यूज के बाद सॉकेट में।

0: ना छोड़े, ये आदत ना बनाए, ये सेफ्टी भी है। तीसरी चीज ये पावर स्ट्रिप का यूज करें, मतलब ये कि मल्टीपल डिवाइसेस के लिए पावर स्ट्रिप या एक्सटेंशन बोर्ड यूज कर सकते हैं। इससे एक ही जगह से कई डिवाइसेस को इजीली स्विच ऑफ करना आसान हो जाता है। चौथी चीज ये कि एनर्जी सेविंग सेटिंग्स यूज करें, कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स में पावर सेविंग मोड्स अवेलेबल होते हैं। इन सेटिंग्स का यूज करना एनर्जी कंजम्पशन को कम करने में मदद कर सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, घर में एनर्जी चेक रूटीन बनाएं। सोने से पहले या घर से निकलते वक्त एक छोटा सा चेक कर लें, क्या कोई डिवाइस अननेसेसरी आपका चल रहा है, ऑन है। ये सिर्फ कुछ सेकंड्स का काम है साथियों, लेकिन इसका फायदा लंबे अरसे तक हो सकता है। अच्छा, अगर इसकी कोई एक रियल लाइफ एग्जांपल ली जाए ना, तो वो बड़ी सिंपल है। एक घर में टीवी, गेमिंग कंसोल, चार्जर्स, कंप्यूटर्स और किचन अप्लायंसेस रोजाना स्टैंड बाय मोड में रहते हैं। अगर फैमिली सिर्फ इतना करे कि रात को सोने से पहले अननेसेसरी डिवाइसेस को स्विच ऑफ कर दे, चार्जर्स अनप्लग कर ले और पावर स्ट्रिप्स बंद कर दे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी वेस्ट को रिड्यूस कर सकता है। और साइकोलॉजिकली भी मैं भी यही करती हूँ, मुझे ये डर होता है कि कोई सेफ्टी हैजर्ड ना हो, इलेक्ट्रिसिटी है, कहीं स्पार्क ना हो जाए, कोई ऐसा मसला ना हो जाए। आई ऑल्सो डू अ थॉरो चेक कि भाई मुश्किल से एक मिनट लगता है और पूरे घर की आप चेकिंग कर लेते हो। कुछ फैमिलीज ने घर में एक सिंपल रूल बनाया हुआ है, लास्ट पर्सन लीविंग द रूम चेक्स द स्विचेस। और हमारे घर का भी यही रूल है भाई, यानी जो शख्स रूम से निकल रहा है आखिर में, वो एक नजर डाल लेता है कि लाइट्स और डिवाइसेस जरूरत के बगैर तो नहीं चल रही। ये एक छोटी सी फैमिली हैबिट है जो सबको रिस्पॉन्सिबल बनाती है भाई, बच्चे छोटे हो बड़े हो सबको रिस्पॉन्सिबल बना देती है। तो भाई साथियों, आज का इको स्विच चैलेंज आपके लिए ये है कि आज रात सोने से पहले अपने घर में चेक करें कि कितनी डिवाइसेस स्टैंड बाय मोड पे हैं। सिर्फ एक ऐसी चीज चूज करें जिसे आप रेगुलरली स्विच ऑफ करना शुरू कर दें, और हमें बताएं आपके घर में कौन सा डिवाइस सबसे ज्यादा वक्त स्टैंड बाय मोड पे रहता है, टीवी, चार्जर, कंप्यूटर या कोई और। मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए, एनर्जी बचाना मुश्किल नहीं है, कभी कभी सिर्फ एक स्विच ऑफ करना ही काफी होता है। छोटी सी आदत बदलें और एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें। सुनते रहिए इको स्विच ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

Assalamualaikum दोस्तों, Qatari Sports Legends के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे कतर टेनिस के बारे में। इनफैक्ट कतर टेनिस के एक बहुत ही इंस्पिरेशनल टेनिस प्लेयर हैं जिनका नाम है मुबारक शनान। जी हाँ दोस्तों, मुबारक शनान कतर के नुमाया टेनिस खिलाड़ियों में शुमार होते हैं और मुल्क की नेशनल टेनिस टीम का अहम हिस्सा रहे हैं। उन्होंने छोटी उम्र से टेनिस खेलना शुरू किया और अपनी मेहनत और लगन की बदौलत कतर की बैन अक्वामी सतह पर नुमाइंदगी की और इसके अलावा उन्होंने डेविस कप में कतर के लिए कई यादगार मुकाबले खेले और टीम की कामयाबी में अपना किरदार अदा किया। दोस्तों, मुबारक ने 2016 में कतर एग्जाम नोबल ओपन के मेन ड्रॉ में अपना ATP डेब्यू किया जो उनके करियर का एक अहम मोड़ था। इसके बाद उन्होंने ITF और ATP टूर्नामेंट्स में मुसलसल हिस्सा लिया और कीमती तजुर्बा हासिल किया। 2017 इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में मेन सिंगल्स का ब्रॉन्ज मेडल जीतकर उन्होंने कतर का नाम रोशन किया। इनफैक्ट मुबारक अपनी फिटनेस, डिसिप्लिन और फाइटिंग स्पिरिट के लिए जाने जाते हैं। वो हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि कतर टेनिस फेडरेशन की हिमायत ने उनके करियर को मजबूत बुनियाद फराहम की। 2026 कतर एग्जाम मोबाइल ओपन में वाइल्ड कार्ड के जरिए शिरकत के बाद उन्होंने कहा कि दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों के खिलाफ खेलना उनके लिए कीमती तजुर्बा है और इससे उनकी परफॉर्मेंस मजीद बेहतर होगी। आज मुबारक शनान कतर के नौजवान टेनिस खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल हैं। उनका सफर ये साबित करता है कि मुसलसल मेहनत, सब्र और अजम के जरिए बैन अक्वामी टेनिस में भी अपनी पहचान बनाई जा सकती है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्टार और लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।

0: One Step to 2030.
1: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया.
0: One Step to 2030.
1: दोस्तों आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं ग्रीन एनर्जी और नेट जीरो इकोनॉमीज की. देखिए आज दुनिया को सबसे बड़ा चैलेंज क्लाइमेट चेंज का लगता है. क्लाइमेट चेंज का हम सबको सामना करना पड़ रहा है. बढ़ती हुई गर्मी, पोल्यूशन, कुदरती तब्दीलियां इंसानी जिंदगी को मुतासिर कर रही हैं. इन मसाइल का हल ग्रीन एनर्जी और नेट जीरो इकोनॉमी के तसव्वुर में छुपा है. ग्रीन एनर्जी है क्या? देखिए ग्रीन एनर्जी से मुराद ऐसी एनर्जी है जो कुदरती और

0: रिन्यूएबल रिसोर्स से हासिल की जाती है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर। ये एनर्जी एनवायरमेंट को कम नुकसान पहुंचाती है, फॉसिल फ्यूल्स के मुकाबले में ज्यादा पायदार होती है। वहीं पर नेट जीरो इकोनॉमी का मतलब है ऐसा निजाम जहां पे कार्बन इमर्शंस को इतना कम कर दिया जाए जितने कार्बन हवा में जाए उतनी ही एब्जॉर्व या रिमूव भी कर ली जाए। इस तरह से एनवायरमेंट पर नेगेटिव असर कम से कम हो जाता है। यहाँ पर यह टॉपिक इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर दुनिया ने एनर्जी के पुराने तरीकों को जारी रखा तो क्लाइमेट चेंज मजीद खतरनाक सूरत इख्तियार कर सकता है। समंदरी सतह बढ़ सकती है, मौसम में शदीद तब्दीलियां आ सकती हैं और कई इलाके रहने के काबिल ही ना बचे शायद। दोस्तों, ग्रीन एनर्जी का असर हमारी रोजमर्रा जिंदगी पर बहुत गहरा होता है। सोलर पैनल से बिजली सस्ती हो सकती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पोल्यूशन कम कर सकते हैं और इंडस्ट्री ज्यादा इन्वायरमेंटल या ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली बन सकती है। इसके साथ नई जॉब्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी पैदा होंगी। आज बहुत से कंट्रीज नेट जीरो टारगेट सेट कर रहे हैं और रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कतर और दूसरी गल्फ कंट्रीज भी सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस पर काम कर रही हैं ताकि मुस्तकबिल को ज्यादा महफूज और पायदार बनाया जाए। जी हाँ, ग्रीन एनर्जी सिर्फ एनवायरमेंट के लिए नहीं बल्कि इकोनॉमी के लिए भी फायदेमंद है। इससे एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी, फ्यूल इम्पोर्ट्स पर खर्चा कम होगा और टेक्नोलॉजी में इनोवेशन को फरोग मिलेगा। दोस्तों, ग्रीन एनर्जी और नेट जीरो इकोनॉमी सिर्फ एक एनवायरमेंटल स्ट्रेटजी नहीं है बल्कि इंसानियत के मुस्तकबिल का एक रोड मैप है। आज जो फैसले हम एनर्जी के हवाले से करेंगे, क्या ये कहें कि वही कल की बुनियाद होंगे या वही कल की दुनिया का ताउन करेंगे? अगर हम साफ एनर्जी और पायदार मईशत की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो हम अपने आने वाली नस्लों को एक साफ, सेहतमंद, खुशहाल दुनिया का वादा कर रहे हैं या खुशहाल दुनिया दे सकते हैं। मुस्तकबिल में उन्हें ही है जो इन सारी चीज़ों को संभालना है। मुस्तकबिल उनका ही है जो आज से एनवायरमेंट की जिम्मेदारी को समझेगा, अमल करेगा, वो कल एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ बढ़ सकेगा। वेल दोस्तों, अभी के लिए तो मैं बढ़ रही हूँ आपसे इजाजत लेने की तरफ, इस वादे के साथ कि कल वापस एक और नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो।
1: द रिक्वेस्ट शो
0: हर शाम 4 से 5 फजील के साथ संडे से थर्सडे ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
2: कानून हमें तहफ्फुज़ देता है और वजारती दाखला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं। MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और आवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ।
3: पुलिस और आवाम एवरी मंडे 8 PM लाइव ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
4: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए
5: आज ही रابطہ करें
4: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qm

0: गुजारिश करता है कि वो अपनी जानो माल की सेफ्टी के लिए ट्रैफिक कानून की तामील करें। याद रखिए कि ट्रैफिक सेफ्टी ऑफिशियल अथॉरिटीज और सोसाइटी के दरमियान मुश्तरका जिम्मेदारी है।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। सामने कराम, आज की सुन्नत का खुलासा यह है कि मोहब्बत की कदर कीमत से नहीं होती। तोहफा बड़ा हो या छोटा, दावत शानदार हो या मामूली, अगर उसके पीछे खुलूस है तो उसे इज्जत के साथ कबूल करना चाहिए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे पाए या दस्त के गोश्त खाने की दावत दी जाए तो मैं यकीनन कबूल कर लूँगा, और अगर मुझे दस्त या पाया बतौर तोहफा भेजा जाए तो मैं उसे ज़रूर कबूल करूँगा। इसे रिवायत किया है बुखारी ने। सामिन किराम, इस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्ने खुल्क, आपकी तवाज़ो खाकसारी और इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की दिलजोई करते थे और ये कि मामूली तोहफा भी कबूल करना चाहिए। नीज़ जो किसी आदमी को अपने घर दावत दे उसे कबूल करना चाहिए, अगरचे ये मालूम हो कि वो मामूली चीज़ के लिए दावत दे रहा है, क्योंकि हदिया और दावत कबूल करने का मकसद दावत देने वाले की दिलजोई करना और बाहमी मोहब्बत को मजबूत करना है, जबकि दावत रद्द करने और उसे कबूल न करने से नफरत व अदावत जन्म लेती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर दस्त और पाए का इसलिए जिक्र किया है ताकि मामूली और अहम दोनों चीज़ें यकजा कर दे, क्योंकि दस्त का गोश्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा पसंद था, जबकि पाए की उतनी कीमत नहीं है जितनी दस्त के गोश्त की है। सामने कराम, बाज़ औक़ात हम तोहफे की कीमत देखते हैं कि ये कितना महंगा है, किस ब्रांड का है, कितना कीमती है, लेकिन सुन्नत हमें सिखाती है कि असल चीज़ मोहब्बत और नीयत है। कभी एक सादा खजूर, एक छोटी किताब या एक कप चाय भी बड़े तोहफे से ज़्यादा कीमती होती है अगर उसके पीछे दिल की मोहब्बत हो, खलूस नीयत हो। जब कोई आपको अपने घर बुलाता है तो वो सिर्फ खाना नहीं बांट रहा होता। हमने तो दावत के तसव्वुर को खाने में महदूद कर लिया है। जो आपको घर में बुलाता है वो तो आपको अपनी मोहब्बत में शरीक कर रहा होता है। वो चाहता है कि आप उसके करीब आएं, आपके साथ वक्त गुजारे, दिलों के फासले कम हो। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत कबूल करने को पसंद फरमाते थे। अगर दावत किसी जायज चीज की हो और कोई शरीर रुकावट ना हो तो उसे कबूल करना हुस्ने मुआशरत का हिस्सा है। इसी तरह हदिया कबूल करना ये दिलजोई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटा हदिया भी कबूल फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ये नहीं देखते थे कि चीज़ कितनी कीमती है। अल्लाह ताला हमें अपने महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवाज़ो, हुस्ने मुआशरत और जूदो करम अपनाने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों से तकब्बुर निकाल दे, हमें लोगों की मोहब्बत की कदर करने वाला बनाए और हमारे ताल्लुकात को खुलूस, एहतराम और रहमत से भर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। सामीन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है, और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है।

स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम, FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों। ये एपिसोड है फ्रॉड अवेयरनेस का, जहां पर नए जमाने के नए फ्रॉड से आपका सामना होता है। वेल आज

हम जिस फ्रॉड के बारे में बात करने वाले हैं ये बहुत ही ज्यादा आसान फ्रॉड है और इतना आसान है कि कोई भी शख्स इसमें फंस जाता है. दिस फ्रॉड इज कॉल्ड फेक गिव अवे स्कैम या फ्रॉड. आजकल बच्चों को टारगेट करने के लिए ये एक बहुत ही कॉमन ऑनलाइन धोखा है. स्कैमर्स सोशल मीडिया, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब और मैसेजिंग एप्स पर बहुत अट्रैक्टिव एड्स बनाते हैं. वो फ्री स्मार्टफोन्स, गेमिंग कॉन्सोल्स, गिफ्ट कार्ड्स या फ्री सब्सक्रिप्शंस जैसे बड़े रिवॉर्ड देने का झूठा वादा करते हैं. इन इनामों यानी कि प्राइजेस को लेने के लिए बच्चों से किसी लिंक पर क्लिक करने, सर्वे पूरा करने, ऐप को डाउनलोड करने या आपकी अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि नाम, ईमेल्स, फोन नंबर या पासवर्ड ये डालने को कहा जाता है. कुछ फेक वेबसाइट्स तो बिल्कुल ऑफिशियल कंपनी वेबसाइट्स जैसी ही दिखती हैं, जिससे असली और नकली का फर्क पहचानना बेहद मुश्किल हो जाता है. स्कैमर्स का असली मकसद आपकी पर्सनल इन्फो चुराना, ऑनलाइन अकाउंट को हैक करना या डिवाइस में वायरस यानी कि हार्मफुल सॉफ्टवेयर डालना होता है. कभी कभी वो प्राइस देने से पहले एक छोटी सी प्रोसेसिंग फी भी मांगते हैं. जैसे ही आप पैसे देते हैं, उनको पैसे मिलते हैं, स्कैमर्स गायब हो जाते हैं. इसके अलावा बच्चे अनजाने में अपने पेरेंट्स की बैंक डिटेल्स भी शेयर कर देते हैं, जिससे बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाता है. इससे ना सिर्फ पैसे डूबते हैं बल्कि गेमिंग अकाउंट्स, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स और पर्सनल फोटोज का एक्सेस भी खोना पड़ सकता है. लेकिन इस तरह के स्कैम से बचने का सॉल्यूशन भी है. बड़े गौर से सुनिएगा इन सॉल्यूशंस को, क्योंकि कई बार अगर हमें सॉल्यूशन पता हो, कई बार हमें अगर सिर्फ अवेयरनेस हो, तो हम फ्रॉड से या स्कैम से बच सकते हैं. कैसे सेफ रहें इन स्कैम से? सबसे पहला जो ऑप्शन आपको हर स्कैम में देखना चाहिए या आप अपना सकते हैं वो है टू गुड टू बी ट्रू. अगर कोई ऑफर सच होने के लिहाज से बहुत ज्यादा अच्छी लगे तो समझ लीजिए कि वो एक फ्रॉड है, वो एक स्कैम है. कोई ऐसी चीज यानी कि कोई 1000 रियाल की चीज अगर आपको 10 रियाल, 20 रियाल, 50 या 100 रियाल में नहीं मिल रही है तो ये है साइन टू गुड टू बी ट्रू का. कोई भी ऑफर ऐसा जो आपको जरूरत से ज्यादा लुभावना लगे उस पर शक जरूर करें. दूसरा है नो लिंक्स और इन्फो. किसी भी प्राइस के लालच में सस्पिशियस लिंक्स पर क्लिक बिल्कुल ना करें और ना ही अपनी पर्सनल डिटेल्स उन वेबसाइट्स पर या सॉफ्टवेयर में डालें जो आपको लग रही हो कि हो सकता है ये फ्रॉड है. जरा भी शक हो तो आप कोई भी डिटेल्स शेयर ना करें. सबसे पहले अपने पेरेंट्स से पूछें. किसी भी कॉम्पिटिशन या गिव अवे में हिस्सा लेने से पहले पेरेंट्स, टीचर या किसी बड़ों से जरूर पूछें, उनसे राय लें. ट्रस्ट वेरीफाइड पेजेस. सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट और वेरीफाइड सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ही भरोसा करें और कभी भी अपना पासवर्ड शेयर ना करें. किसी भी इनाम के बदले अपना पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर बिल्कुल ना करें. यूज टेक सिक्योरिटी. अपने डिवाइस में एंटीवायरस इंस्टॉल करें, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करें और सस्पिशियस पोस्ट को जरूर रिपोर्ट करें. इस तरह से आप नए जमाने के नए स्कैम से बच सकते हैं. फिलहाल मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत. अगले एपिसोड में एक बार फिर मुलाकात होगी नए जमाने के नए फ्रॉड से बचते हुए. सुनते रहे FM 107, दिल से देसी. स्कैम अलर्ट.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: Gen Z, Gen X, Gen Alpha, Millennials. ये सब महज टर्म्स नहीं हैं, ये अलग अलग ख्याल, आदतें और अलग इराज हैं। इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा? Generation Talk, दोहा वाले कबीर के साथ सिर्फ FM 107 पर।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं दुहा वाला कबीर FM 107 पे। और क्या है कि आज जो मेरे गेस्ट हैं, अगेन माँ बेटी की जोड़ी बड़ी कमाल की होती है। हमेशा मैं कहता हूँ इसमें क्या है ना, बीच में गॉसिप करने को मुझे मिल जाता है, तो जो इनसाइट्स होती हैं और ऐसी चुगलियाँ जो सिर्फ मुझ तक पहुँचती है, मुझे बड़ा मजा आता है। तो आज मेरे पास ये मौका है कि उन्हें इसका पूरा पूरा फायदा उठाऊं। अस्सलाम वालेकुम दोनों को।
3: वालेकुम अस्सलाम।
2: आप दोनों का नाम बता दीजिए, अपने आपसे शुरू करते हैं, नाम बता दो।
3: जी मेरा नाम सारा खान है।
2: अच्छा सारा, और आपका नाम?
3: मैं हूँ शादमा खान।
2: अच्छा तो आप कहाँ से हैं वैसे?
3: हम लोग इंडिया से हैं।
2: इंडिया में कहाँ से?
3: अलीगढ़ से।
2: माशाल्लाह माशाल्लाह। साल भर में कितनी बार जाना होता होगा?
3: साल भर में एवरी ईयर ऑलमोस्ट चले जाते हैं हम लोग।
2: ये बढ़िया है, ये
3: जी
2: बढ़िया
3: जी
2: है। तो अलीगढ़ के अलावा भी कोई जगह ऐसी पसंद है? यूपी उत्तर प्रदेश तो माशाल्लाह काफी फैला हुआ है।
3: उत्तर प्रदेश में हमारा होम टाउन है।
2: हाँ।
3: जहाँ हमारे पेरेंट्स वगैरह के बागा।
2: भाई साहब का भी वही है, अलीगढ़ ही है?
3: जी जी उनका भी अलीगढ़, मतलब वो पीलीभीत से है एक्चुअली।
2: अच्छा अच्छा, ओके।
3: लेकिन सब सेटल उधर ही है। तो उनकी जो फैमिली है, वो फैमिली है ना, उनकी ज्यादातर ये दुबई में सेटल है, कोई भी अभी नहीं है।
2: अच्छा सब जा चुके हैं
3: जी दुबई में है, और हम यहाँ खतर में।
2: अच्छा ओके, काफी यूनिक आपका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अच्छा सारा, कमिंग बैक टू यू, क्या चल रहा है जिंदगी में अभी? क्या पढ़ाई चल रही है, क्या चल रहा है करियर?
4: जी बस अल्हम्दुलिल्लाह, आई जस्ट गॉट एक्सेप्टेड इनटू माय यूनिवर्सिटी।
2: माशाल्लाह, क्या कौन सी आपकी आपकी जॉनरा फील्ड क्या है?
4: मैं स्टडी कर रही हूं केमिकल इंजीनियरिंग।
2: अरे भाई इंजीनियरिंग से बहुत डर लगता है, ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग। एंड इसमें कोई मम्मी पापा को इन्फ्लुएंस था इस तरफ आने के लिए?
4: नहीं, एक्चुअली मेरा ही डिसीजन था।
2: अच्छा, आपका इन्फ्लुएंस कौन था फिर?
4: मुझे केमिस्ट्री बहुत पसंद है।
2: अच्छा
4: इसलिए।
2: क्या बात है, तो उन्होंने आपको ये जो रिवील किया, आपको कुछ, जैसे माँ बाप ना अक्सर करते हैं बच्चों को थोड़ा सा उस तरफ सरकाते हैं, इस तरफ वो चाहते हैं?
3: नहीं नहीं, एक्चुअली मैंने हमेशा से यही चाहा है अपने बच्चों के लिए कि वो खुद से अपने बारे में सोचे।
2: बहुत बढ़िया,
3: क्योंकि जैसे हम ज्यादातर स्कॉलर्स वगैरह को सुनते हैं, तो कुछ एटलीस्ट सोशल मीडिया से हमें भी तो कुछ अपना माइंड चेंज करना होगा, जिसमें कि बच्चा जो जो उसको पसंद होगा ना, हमें किसी को नहीं देखना है कि उसका बच्चा इसका बच्चा, हमें ना अपने ही बच्चों को देखना है उसको क्या पसंद है। तो जो भी पहले मेडिसिन में जाना चाहती थी, ओके, फिर ये इन्होंने चेंज किया कि मुझे इधर ही रहना है।
2: ये कैसा यूटर्न मारा भाई तुमने?
3: हाँ, बहुत बड़ा यूटर्न,
4: पूरा ऑपोजिट करियर में चली गई मैं तो।
3: और मैं इसके बहुत ज्यादा मैं प्राउड फील करती हूँ इसके लिए कि इसका वो कभी सोचा भी नहीं था।
2: हाँ।
3: हमें यूनिवर्सिटी ने ही ऑफर करी।
2: हाँ।
3: और इन्होंने बहुत ही खुशी से एक्सेप्ट करी, और ये बहुत खुश भी है उसमें।
2: पर ये जैसे होता ना, करियर चॉइसेस अक्सर आसपास होती हैं, ये तो दोनों बिल्कुल आसपास है भी नहीं।
4: जी
3: टोटली डिफरेंट
2: है ना। तो डॉक्टर माइंड में क्यों आया था, वो चला गया मतलब?
4: क्योंकि मुझे बायोलॉजी से लाइक बहुत प्यार था, लाइक रियल में। एंड फिर मुझे लाइक मूव आउट करना होता, अब्रॉड जाना होता था, एंड मेरा एक्सेप्टेंस भी आ गया था फॉर MBBS।
2: ओके,
4: बट आई डोंट नो क्या क्लिक हुआ, अल्लाह ताला की किस चीज में बेहतरी थी, मैं
2: पहुंच गई थी।
4: जी जी जी, eventually फिर मैं यहाँ पे एंटर हुई हूँ इंजीनियरिंग में।
2: अच्छा, सो अब जिस मुद्दे पे हम आए हैं आज, बेसिकली जनरेशन में थोड़ा सा गैप आ जाता है, एंड राइट नाउ हम जितने माँ बाप से लोग ये कहते हैं कि आज की जनरेशन इज मोर एक्सप्रेसिव, यू नो, यू पुट एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया, और यू पुट इट इन अ वेरी सटल वे, स्नीकिंगली किसी को डिस भी कर लेता है, एवरीथिंग हैपेंस, यू नो। डू यू डू दैट, आर यू ऑन सोशल मीडिया बाय द वे?
4: I am, but मैं इतनी मतलब अपनी लाइफ नहीं दिखाती।
2: You don't really, yeah.
4: Yeah, I'm okay. Very private person.
2: घर में कोई है सोशल मीडिया पे?
4: नहीं, इतना नहीं है कोई।
2: कोई भी नहीं है?
3: नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था कि हमने इनको छोड़ दिया था कि आप देख लो, जिस
2: आप
3: तरह
2: देख लो।
3: तो इन्होंने जो हालात और सिचुएशन देखी, क्या होता है ना कि देखिए

0: पेरेंट्स दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, तो बच्चे छुप छुप कर भी करते हैं, करते हैं जरूर है।
1: देखिए जितना दबाएंगे प्रेशर कुकर फटेगा,
0: पेरेंट्स को पता नहीं होता बाकी सबको पता होता है,
1: बिल्कुल
0: ये तो फैक्ट है। अब ये माशाल्लाह मेरी दोनों बेटियां हर चीज मुझे दिखाती हैं, बताती हैं, मुझसे पूछती हैं, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। एक ही बात कही कि पेरेंट्स से अगर छुपा लिया तो ये बच्ची भी यही कहती है हमने अपने पेरेंट्स से छुपाया तो हम तो बहुत खराब कर रहे हैं जो सबसे करीब है हमारे। तो बच्चे नॉर्मल है, नॉर्मल सोशल मीडिया पे है जो कि आज की बहुत जरूर डिमांड है, लेकिन ये है कि पर्सनल लाइफ थोड़ी सी
1: पर इनकी इनकी परवरिश एक एक मेन आजकल फैक्टर लोग जो परेशान है, अक्सर आपने देखा भी होगा कि बिना टैप के बच्चे खाते भी नहीं है।
0: जी जी।
1: तो इनको कैसे आपने मतलब उस चीज से कैसे डील किया कि क्या क्या एडवाइस है इस टाइम?
0: इसके टाइम पे एडवाइस यही रही कि बिजी रहती हैं और मेरे हस्बैंड का इसमें बहुत रोल है।
1: तो दूर कैसे रखा है इन बच्चों के?
0: दूर तो लेकर कोई भी नहीं है,
1: कोई रखा
0: ये
1: है।
0: मैं झूठ नहीं
1: बोलूं, बहुत बढ़िया।
0: ये तो हम वैसे ही कहेंगे दूर कोई भी नहीं है,
1: वेरी नाइस। ओके।
0: लेकिन ये है कि इन्हें पता है कि इनको बता दिया है कि तुमने अपना टाइम कहाँ कहाँ स्पेंड करना,
1: फन बता दिया,
0: फन भी करो आप, अपने दोस्तों से बात भी करो, लेकिन अपना टाइम ये नहीं कि एक ही जगह सब खत्म कर दो जिससे कि दिल भी हट जाता है उस चीज से। लेकिन मेरे हस्बैंड का ये रूल है कि रात को 11 o'clock सब गैजेट्स वो ले लेते हैं, इवन टीवी का रिमोट भी।
1: ओहो, अदा, ओके।
0: जी, मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड कितनी भी बोलती रहे कि हमारा ये अर्जेंट वो अर्जेंट, ये तो एक फैक्ट है।
1: अच्छा ठीक है,
0: इनको आदत पड़ गई है।
1: हाँ, सही फैक्ट भी है।
0: और कभी कभी वीकेंड पे लोग करती है तो हमारे सामने सब इंजॉय करना, जो भी फ्रेंड्स के साथ बातचीत है वो सब सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी तो देखिए ट्रस्ट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा।
1: हाँ, वो तो मैं,
0: और ये सोशल मीडिया का जाल ऐसा है बना हुआ पूरी दुनिया में कि आप
1: बच नहीं सकते।
0: बच्चे जो उल्टा बच्चे मुझे रोकते
1: क्या चल रहा है?
0: मेरी बेटी मुझे समझाती है
1: सारा, कितना कितना रहती है मम्मी सोशल मीडिया रहता है इनका मतलब?
2: ये जो न्यू रील्स शुरू हुई है इसके कुछ ज्यादा एडिक्शन है, हर कुछ भी आता है रील्स पे तो जी बिलीव कर लेते
1: हैं।
0: मेरा तो भैया
2: जो है लाइक रेसिपीज है, फूड रेसिपीज और इन्फ्लुएंसर्स इनकी लाइफ वगैरह।
1: अच्छा, वैसा सीन है वो आजकल एक वो टिपिकल एआई आवाज में भी।
2: जी जी जी, वो जो बेबीज होते हैं उनके ऊपर एआई वॉइस ओवर, वो बहुत
1: नहीं मिलता। ये पार्ट देखिए, ये पार्ट वैसे भी आते हैं ना बोलने वाले, और माँ बाप का कंटेंट बड़ा सा डिफरेंट होता है तो आई थिंक उससे डील करना पड़ता है। बट आप बताइए कुछ।
0: मैं एक्चुअली ज्यादातर डॉक्टर्स जो होते हैं ना, डॉक्टर जेन्युइन डॉक्टर, उनको फॉलो करती हूँ। वो घरेलू नुस्खे भी बताते हैं और वो वर्क भी करते हैं। उसके अलावा मैं थोड़ा सा ये स्कॉलर्स हैं जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, इस तरह की चीजें, और अपना फन भी, कॉमेडी
1: थोड़ा फालतू भी देख लीजिए।
0: कॉमेडी, हाँ मैं कॉमेडी देखती हूँ ना, मुझे हंसी है, जब मुझे बहुत हंसी आती है बहुत फन फील हूँ।
1: अच्छा, ओके।
0: क्योंकि फन फील होना चाहिए ना लाइफ में, सारी चीजें वहाँ
1: तो
0: है कि नहीं।
1: ये बात तो देखिए बड़ी जरूरी है, और आप पूरा खुली छूटा आपको कौन काम?
0: मैं तो वहाँ
1: घर की हेड है। और सारा आपके पेल पूरे जो ग्रुप है, सर्कल है, कोई बहुत ही ज्यादा एक्टिव सोशल मीडिया पे लाइक हैव यू सीन?
2: जी, मेरी बहुत फ्रेंड्स है जो मतलब पूरे टाइम दे लिव ऑन सोशल मीडिया। रील्स पे लाइक यू नो सब हर चीज का अपडेट होता है उनके पास, हर चीज उन्हें पता होती है, दूसरों की जिंदगी चल रहा होता है, तो इस तरीके से गॉसिप भी मिल जाती है मुझे उनके थ्रू।
1: हाँ, ये कुछ लोग ना स्नैपचैट पे पैर के नाखून भी डाल देते हैं
2: जी, जी।
1: वो स्ट्रीक बढ़ाने के लिए कुछ ज्यादा ही है, राइट? तो डू यू फील लाइक एवर कैसा होता है कि नो आई शुड कम आउट एंड टेल माय पोस्ट कर दें इसमें क्या एक कसम पे प्रेशर है?
2: नहीं, इतना नहीं। मुझे प्राइवेट रहना ज्यादा पसंद है बिकॉज़ आई बिलीव इन नजर बहुत ज्यादा, स्ट्रॉन्ग
1: बिलीवर,
2: स्ट्रॉन्ग बिलीवर नजर में। और मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि अब एआई का जमाना है, यू नेवर नो, हर चीज यू नेवर नो, कोई आगे वाला बंदा कुछ भी स्क्रीनशॉट लेके कुछ भी बना सकता है।
1: अरे लोग किसी को चैन से कॉफी नहीं पीने देते
2: जी, वो कॉफी में किसी को खड़ा कर देंगे एडिट करेंगे, यू नेवर नो।
1: अच्छा, और घर पे ज्यादा कन्विंस करना किसे आसान है, अब्बा को या फिर अम्मा को, कौन ज्यादा?
2: मम्मा को, अब्बू बहुत स्ट्रिक्ट है।
1: हां ठीक है, तो एक देखो गुड कॉप बैड कॉप खेलना पड़ता है, तो आई थिंक वो सही खेल,
2: आई थिंक वो नेसेसरी है, बैलेंस जरूरी,
1: बैलेंस जरूरी। तो ये डिसाइड होता है ना, जैसे माँ बाप डिसाइड कर लेते हैं आपस में कि देखो मैं गुस्सा करूंगा तुम संभाल लेना,
0: ऐसा होता है। वो कहते हैं कि अम्मा से पूछो,
1: अम्मा से
0: मैं लेकर जाती हूँ इनका प्रपोजल। अच्छा। फाइनल वही करते हैं कि अब्बा से पूछो, और वही छोड़ के आते हैं, कहीं जाना होगा आना होगा, कुछ ही प्लान्स होते हैं तो सब बताते हैं कि हम फ्रेंड्स के जा रहे हैं, इतनी देर में आना है, ऐसे जाना है।
1: ये सिचुएशन सही है।
0: और इनको जैसे हम मेट्रो से ज्यादातर जैसे अक्सर होता है ना खुद ड्रॉप करना, वो हस्बैंड का भी करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप मेट्रो से जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह खतर गवर्नमेंट की सर्विसेज, मैं कहती हूँ, मैं दिल से दुआएं देती हूँ, इतनी जबरदस्त यानी सिक्योरिटी, क्या बाहर निकले तो पुलिस है हर जगह, आउट ऑफ सडन आ जाती, कोई किसी को उसकी परमिशन के बगैर ऐसे ऐसे भी नहीं देख सकता। मेट्रो सेफ, सब सेफ है, बसेस सेफ है, हर जगह कैमराज बहुत जबरदस्त। तो मैं दुआ देती हूँ इस खतर गवर्नमेंट को कि इसने ना हमें बहुत सुकून दिया, अल्लाह पाक इस पे नजर का साया न बना रहे और बिल्कुल ये सेफ रहे।

0: कंट्री
1: इंशाल्लाह,
0: और बस बहुत ही अच्छा माशाल्लाह हम लोग बहुत सुकून से हैं यहाँ।
1: बेशक वो बात तो है। और जब ये स्कूलिंग थी, स्कूलिंग यहाँ पे हुई है तुम्हारी?
0: जी जी।
1: अच्छा तो यहाँ पे स्कूलिंग हो रही थी तो कितना घर से कितना दूर था स्कूल?
2: 15 मिनट्स 20 मिनट्स।
1: कैसे जाना होता था?
2: अबू ड्रॉप करते थे, घर से जाते थे।
1: कभी मन में आया बस से चले जाओ?
2: बस से मैं पहले जाती थी पर बहुत हेक्टिक होता था, लाइक यू नो आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, तो मुझे सुबह उठा ही नहीं जाता था, वो बहुत जल्दी आ जाती थी। एंड मेरी इतनी बार बस मिस हुई है, मेरे अब्बू लाइक बस के पीछे जाते थे कार लेके।
0: और मेरी एक बेटी अभी बस से ही जा रही है क्योंकि वो सिंगल अभी जा रही है ना, इनकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई तो इनका रूट अलग है, तो वो बस से जा रही है।
1: पर आपको लगता नहीं, मतलब जैसे मैं एक चीज मानता हूँ, यहाँ पे बस का एक ऐसा मसला रहता है जैसे भी सारा ने बताया कि बहुत अर्ली उठना पड़ता है, आने जाने में एक घंटा आपको ऐड करना ही पड़ेगा, बट वो जो बस में जो दोस्ती होती है ना,
0: जी जी जी,
1: वो बड़ी कमाल की है।
2: Yes, I've experienced that.
1: है ना?
2: Yes.
1: वो क्योंकि वो दोस्त आपके क्लास वाले नहीं है, यू माइट एज वेल फाइंड समबडी जो आपका जूनियर से ना कोई भी हो सकता है, और बड़ी कमाल की दोस्ती होती है, तो उस पे एक रहता है नहीं। तो कभी आपने इन्हें पूछा है बेटा बस से क्या अब्बा को छोड़ने के लिए?
0: हाँ, नहीं, ये तो लिंक से इससे जाती है, मेट्रो से जाती है।
1: अच्छा, नहीं पहले जब था?
0: हाँ, पहले तो ये था, अभी जैसे सामिया है ये जाती है मेरी बेटी, तो ये बहुत फन करती है, नाश्ता लेकर जाती है, लोग नाश्ता करते हैं, रोल्स की अम्मा आपके रोल्स बहुत पसंद है सबको, इस तरह के
1: हमें कब खिला रही हैं आप रोल्स?
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
1: कौन से रोल बनाती हैं आप?
0: बस ये टेंडर्स होते हैं और जो ये पीता ब्रेड होती है, बस इसमें चीज और थोड़ा टेंडर्स, होममेड होते हैं सब, थोड़ी सी।
1: दिल्ली वालों से क्या दुश्मनी है आपकी? हम भी तो नॉर्थ।
0: इंशाल्लाह खिलाऊंगी, बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, कभी भी आप लोग आइए।
1: ये मैंने अपनी अपॉइंटमेंट यहीं फिक्स कर ली है। अच्छा, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ मदर आपके जहन में होता है जब बच्चे होते हैं, तो आपको लगता है फैमिली को एक साथ रखना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। हर किसी का अपना एक तरीका है
0: जी, सबका तरीका होता
1: है। कुछ लोग कहते हैं कि घर के कुछ सर्टन रूल्स हैं, डिनर हम साथ में करेंगे या फिर ये साथ में करेंगे या फिर विल वॉच समथिंग, तो आपका क्या घर में क्या रूल है, हाउ टू सब एक साथ कैसे रखते हैं?
0: एक्चुअली टाइम के इश्यूज है यहाँ पे,
1: वो तो ऑब्वियसली
0: क्योंकि ये आती है 5:30, 6 o'clock,
1: राइट,
0: एक बेटी आती है 2:30, कुछ बच्चे आते हैं 2 o'clock पे, तो उनके सबके टाइमिंग अलग है, लेकिन सबके टेबल पे खाना रेडी रहता है, तो वो मैं सबके साथ ही रहती हूँ खिलाने के टाइम पे, तीन छोटों के साथ, हस्बैंड का भी टाइमिंग ऐसा होता है अपना लंच लेकर जाते हैं, तो वहां को रात को डिनर करते हैं, तो सब ऑलमोस्ट साथ ही होते हैं, साथ बैठते हैं, कोई टीवी देखता। अब क्या है ना, सब जरा सा फ्रेश होना चाहते हैं, उस पर बर्डन नहीं होता हमारे, किसी को सोना है वो थोड़ी देर सो जाए, ये अपना रेस्ट करती है माशाल्लाह। बहुत यूनिवर्सिटी से पहले इनके अंदर बहुत मेच्योरिटी माशाल्लाह भाई, पहले ये जो है इतनी हेल्प वगैरह इतनी ज्यादा वो नहीं करती थी, लेकिन अभी माशाल्लाह यूनिवर्सिटी के बाद ये पूरा देखती है मेरा, मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट करती है, और मैं बहुत खुश हूँ उनको यहाँ रोक के। पहले मैं चाहती थी कि चलो बाहर कहीं चली जाएं बच्चे, थोड़ा मुझे भी जिम्मेदारी, लेकिन पता है आजकल की सिचुएशन हालात से बस मैं चाहती हूँ बच्ची है, 40 मिनट में पहुंच जाती है, सारे अपडेट्स देती रहती है, घर आ जाती है, तो मतलब अच्छा लगता है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्लाह यकीन करे एक वक्त ऐसा आया कि मैं बिल्कुल सुन हो गई थी। ये हर पेरेंट्स की लाइफ में आता है, देखिए ऑन एयर सुन रहे होंगे सब लोग, 12th के बाद कितने भी प्लान बना लो
1: सब फेल है,
0: लेकिन पता नहीं क्या होता है, बता नहीं सकती। तो मेरे 6 महीने यकीन करें पूरे टाइम सिर्फ इसी में गए, फिर मैंने क्या किया कि मैंने फिर अल्लाह से बहुत दुआ मांगी और तस्बीहें पढ़ी, इतनी तस्बीहें पढ़ी कि मेरे बच्चे, जैसे मेरा काम हो गया तो छोटे बच्चे कह रहे हैं आपको तस्बीह चाहिए, तो मैं कहती हूँ हाँ दे दो यार।
1: अच्छा, ओके।
0: हाँ, क्योंकि मैं बहुत पढ़ती थी।
1: अच्छा।
0: तो हम लोग ऐसे करते काम हो जाता फिर थोड़ा पीछे हो जाती
1: ये तो बात है जब तक जरूरत है ना तब तक बहुत बहुत उसके बाद
0: अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते। अब मुझसे पूछते रोज रात में आपको तस्बीह चाहिए, हाँ दे दो
1: सारा। वैसे कभी लेट आना हुआ है, मतलब जरूरत पड़ी है कि अभी लेट होने वाली हूँ, कुछ भी हो सकता है कुछ?
2: जी जी, ये तो होता है, लाइक होता है,
1: कन्विंस करना, वाज इट लाइक इट बिकम्स डिफिकल्ट? अब तो नहीं होता यूनिवर्सिटी?
2: नहीं, अब तो मैं यूनिवर्सिटी, बट लाइक उन्हें घबराहट ना हो या कुछ ना, तो आई कीप देम अपडेटिंग, मैं पिक्चर्स भेज रहती हूं, आई एम कॉलिंग देम कि जी अम्मा मैं यहां पे हूं, मुझे टाइम लग जाएगा, सो कि मैं होमवर्क कर रही हूं कुछ, जी तो मैं करती रहती हूं
1: अपनी कुछ चीजें जो है मम्मी को सिखाने, कुछ करते लाइक डू यू शेयर मीम्स एंड एनीथिंग, डू यू शो हर, कुछ ऐसा है
2: जी? कुछ रील्स होती है जो आई फाइंड फनी एंड आई नो कि हमारा लाइक ह्यूमर थोड़ा सिमिलर है, सो आई शेयर रील्स विद देम, मुझे बहुत हंसी आती है।
1: और कुछ दिखाया मम्मी को कुछ देखते हो तुम सीरीज और मूवीज व्हिच यू डोंट बिलीव कि उनको पसंद आई है बट यू ट्राई टू शो हर?
2: जी आई नो दिस लाइक यूट्यूब चैनल्स वगैरह, तो यू नो उसमें लाइक थोड़ी जेन ज़ी टाइप ऑफ लैंग्वेज होती है, बट मम्मा को बहुत मजा आता है तो मैं उन्हें दिखाती हूँ।
0: लेकिन मैं फिल्म वगैरह मैं बता दे मुझसे बैठ के नहीं देखा जाता एक्चुअली, 3 hours या कोई सीरियल, टाइम एक तो कम है, मैं चाहती हूँ कम टाइम है, लेकिन मैं अपना फन दूसरे टाइप से कर लेती हूँ, फ्रेंड्स के साथ बैठती हूँ।
1: अच्छा।
0: मुझे फ्रेंड्स के साथ बैठना।
1: घर में सारे सोशल हैं या कोई एंटी सोशल भी?
0: नहीं नहीं, सब सोशल है माशाल्लाह।
1: क्या बात है,
0: खूब सोशल है, मेरे छोटे बच्चे भी सोशल है। तो नहीं पता क्या, हम लोग ऐसे हैं बैलेंस सोशल, मतलब अपने वीकेंड पे हो गया, वीकडेज में तो देखा सब लोग बिजी, यहाँ क्या है ना चाह कर

0: वीकडेज में सब बिजी हैं
1: हाँ
0: रूटीन ऐसे बने हुए लेकिन जब वीकेंड आता है तो हम घर में भी कर लेते हैं पार्क में चले जाते हैं चाय पी लेते हैं आउट ऑफ सेवन पॉटलक कर लिया कि जो जहां है बस पहुंचो तो मैं जरा एनर्जी डाल देती हूं लोगों में थके पिटे भी पहुंच जाते हैं
1: अच्छा आप ही ट्रिपल ए बैटरी है मैं समझ रहा हूं
0: जी तफरीह है बस हंसी मजाक थोड़ा ये चलता है
1: अच्छा एज एज मदर क्योंकि पूरी जिंदगी तो सैक्रिफाइस हो जाती है बच्चों की और ये एक होता है ना कि एक लड़का होने के नाते एक लौता बच्चा होने के नाते आई नाउ अंडरस्टैंड क्योंकि उसको भाई बहन नींद के तो है दे वुड नॉट अंडरस्टैंड दैट पॉइंट अभी माँ बाप घर पे वहाँ पे तो एक रहता है कि उन्होंने भी कुछ सपने देखेंगे तो आप आपका कुछ सोल एम्बिशन है जिसमें इनका कोई लेना देना नहीं है बच्चों का घर वालों का कुछ अपने लिए कुछ
0: मेरे अपने लिए
1: हाँ अपने लिए
0: सबसे पहले मैं हर मदर को हर लेडी को हर किसी को कहना चाहूंगी प्रायोरिटी में अपने आप को रखना है
1: हाँ तो आपका क्या सपना है
0: मेरा है कि मैं अपने आप को एक बहुत खुश मतलब सबसे पहले अपने आप को खुश रखना है
1: ओके
0: जो कि हम लेडीज क्या होता है ना सब भूल जाते हैं बिजी इतना रखते हैं अपने आप को ऐसा नहीं कि मैं बिजी नहीं हूँ मेरे माशाल्लाह बड़ी फैमिली है जिम्मेदारी बहुत है लेकिन मैं अपना टाइम जरूर निकालती हूँ
1: तो मी टाइम में क्या करती हैं
0: मी टाइम में मैं अपने मतलब ड्रेसिंग का बहुत शौक है
1: माशाल्लाह बढ़िया बहुत बढ़िया सही है
0: और मैं थोड़ा सा ऑनलाइन भी कुछ काम वगैरह करती हूँ जी अपना ऑनलाइन काम देखती हूँ मेरा पैशन है ये ड्रेसेस वगैरह का और कुछ भी जो भी ऑनलाइन में कर सकती हूँ
1: ये कभी मत रुकिएगा यही मैं जाना
0: चाहता हूँ नहीं रोका कभी भी
1: वेरी नाइस आप घर में बार्गेनिंग में कौन सबसे बढ़िया है कभी बार्गेनिंग करते हो देखा किसी
2: ऑब्वियसली मेरी मम्मा ये तो जवाब आपको पता है
1: ये जेनेटिकली नहीं दिया आपने इनको सिखाया नहीं कैसे बार्गेनिंग
0: लोग ऐसा मौका ही नहीं पड़ता कभी भी मौका नहीं पड़ता हमारा भी अब नहीं पड़ता
2: मुझे बहुत मजा आता है करने में मुझे कहीं जगह मिलती नहीं लेकिन मैं सूख में जाती हूँ तो मैं ऐसी मजे मजे के लिए करती हूँ चाहे मुझे लेना ही है नहीं कुछ बस फ्रेंड्स के साथ
0: बस ये हमारा टाइम है कि अच्छे से हम अपना मतलब हर लेडीज को देखिए एक होता है देखिए क्या होता है मैंने अभी कुछ ऐसा एक अपना QNL में एक ऑडिटोरियम में एक मैंने प्रोग्राम में मैं गई थी शरीक हुई थी तो वहाँ पे मैं बड़ा अच्छा एक पेरेंटिंग के ऊपर वो था
1: अच्छा।
0: जिसमें वो ये कह रहे थे कि बड़ा अच्छा लगा मुझे उन्होंने कहा कि आप ना मास्टर्स और ये PhD सब लेडीज ने कैरियर जो है बच्चों के ऊपर बिल्कुल खत्म कर दिए वो उनको अपना कैरियर बना के बैठी मैं कहती हूँ बच्चों का कैरियर होना चाहिए मैं बहुत बिलीव करती हूँ क्योंकि आजकल लाइफ में कैरियरिस्टिक होना जरूरी लड़का हो या लड़की
1: स्किल आनी चाहिए
0: जी स्किल्स बहुत जरूरी है मेरा बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है स्किल का तो स्किल्स भी होने चाहिए और कैरियर पे भी ध्यान लेकिन अपने लिए जैसे मैंने देखा कुछ पेरेंट्स कुछ लेडीज हैं जो कि बहुत ही हाई स्टडी और PhD हैं घर में कोई जॉब नहीं अब वो चाह रही है लेकिन अब उनको नहीं मिल रहा क्योंकि एक्सपीरियंस ही नहीं है तो बस मेरा ये है लेडीज से ज्यादातर कि बैलेंस बनाकर चलो बना सकते हैं देखिए 24 आवर्स में हम टाइम निकाल सकते हैं
1: वो बहुत जरूरी है
3: आप सुन रहे हैं जनरेशन टॉक विद दोहा वाला कबीर ओनली ऑन FM 107
1: और सारा क्या क्या लिया मम्मी की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर सिमिलैरिटी है
2: आई थिंक बीइंग सोशल आई गॉट दैट फ्रॉम मॉम बिकॉज अम्मी पता है किसी से भी कहीं भी बात कर लेती हैं इट्स सो इजी फॉर हर टू सोशलाइज एंड आई लाइक दिस सो मच बिकॉज अब मैं भी उनसे थोड़ा थोड़ा सीखती हूँ आई कैन मेक फ्रेंड्स अब यूनिवर्सिटी में मुझे ये बहुत काम आ रहा है लाइक
1: डाइवर्सिटी ज्यादा हो गई है यूनिवर्सिटी
2: जी लाइक यू नो डिफरेंट एथनिसिटी के लोग होते हैं इट्स इजी फॉर मी टू टॉक टू देम अब मेरी जो फ्रेंड्स हैं दे आर वेरी लाइक इंट्रोवर्ट टाइप तो उनसे इतनी आसानी से बात नहीं होती तो मैं ही दोस्ती कराती हूँ सबके आगे जाके
1: ये भी सही है ये भी
0: और एक चीज ये कहती है अम्मा आप कहीं भी जाए तो अपना जरा सही से जाए जैसे मैं अक्सर होता है ना ऐसे बंदा रात के 1 बजे निकल रहा है गाड़ी में बैठ के ड्राइव भी करती हूँ माशाल्लाह से मैं तो ये कहती है कि आपके जानने वाले हर जगह मिलते हैं
1: ये अच्छी बात है बुरी बात
2: ये
1: मतलब
2: अच्छी बात भी है थोड़ी इतनी अच्छी बात भी नहीं है
0: मैं क्या करूं मैं कहती हूं ना कि आप लोग आ जाओ और पहचान लेते हैं मुझे लोग
2: हम कहीं भी जाए ग्रोसरी या कहीं मैं कहती हूँ पक्का यहाँ कोई मिलेगा हमें और हमें मिलता है 2-3 पीपल हमें मिल जाते हैं
1: बात है मतलब उसके प्रोस भी हैं कौन से
0: देखिए सोशल क्राइटेरिया बहुत जरूरी है आज की लाइफ में ये बता दूं आपको
1: है मगर लाइक
0: मैं 24 इयर्स यहां हो गया मुझे कंप्लीट
1: हां तो 24 साल
0: कतर में
1: इतना तो बनता है
2: और कतर तो वो छोटा है वैसे
0: मेरा थोड़ा सा ऑनलाइन काम भी है
1: अरे अलीगढ़ में पूछो लोग जानते होंगे वो इतने बाजड़ जोगे
0: वहां तो अब भूल गए सब ज्यादातर अब सब यहां जानते हैं
1: कैसा लगता है तुम्हें अलीगढ़
2: मैं इतना नहीं गई हूं I've never been to India इतना ज़्यादा just like you know born and brought up यहाँ पे मेरी यहाँ पे जो मेरे friends हैं वो मेरी family है
1: पर कोई जगह ऐसी लगती है इंडिया में कि you want to visit
2: India में I want to visit Delhi life like जो local Delhi life है
1: चलो आज जीत गए हम बहुत बहुत शुक्रिया finally
2: like I've been to Delhi mostly अलीगढ़ मैं नहीं गई इतना UP के side I've never been that much I've been बहुत ज़्यादा Delhi थोड़ा थोड़ा गई हूँ पर I'm very scared to go out. पता नहीं क्यों.
1: हम दिल्ली वाले यही कहते हैं, हम हमारी तरफ हर कोई आना चाहता है, but वो जो दूसरा factor है ना, वो खत्म
2: हो गया. वो I'm just very scared to go out.
1: Yeah, yeah. Because एक different set of skill चाहिए आपको दिल्ली में survive करने के लिए.
2: Yes,
1: But क्या तुम्हारे plans क्या? What is your ambition? Main goal क्या है? कहाँ बढ़ रही हो तुम नाक की सीध में? किधर जा रही?
2: देखो अभी मेरे भी इतना sudden change of plans हुआ है.
1: कुछ नहीं, daydreaming किस चीज के बारे में करती हो? कुछ है?
2: I just wanna be successful. Like, अच्छा जो भी करूँ मैं अच्छा करूँ, मुझे खुशी होए. बाद में I don't want anything like मैं regret करूँ किसी चीज़ का. So I want to try everything.
1: देखो जैसे मैंने बताता हूँ, I'll give you an example.
2: Yes.
1: यहाँ पे कई लोग आए और उनसे मैंने पूछा कि भाई क्या गोल है, तो लड़कों का तो reply ऐसे होता है ना, वो आए बोले कि हमारा एक ही plan है भाई, सब कुछ कर करा के पार्टी भी चले जाएंगे, बढ़िया बकरे वगैरह चलाएंगे, मौज करेंगे. तो ऐसा कोई अल्टीमेट चीज दिमाग में आई है कि यू नो व्हाट, आई विल डू ऑल दीस थिंग्स एंड दिस इज वेयर आई वांट टू बी.
2: Yes, I want to be somewhere peaceful.
1: Okay.
2: मतलब I just want to be like have a good like house, mansion बनाओ,
1: flat.
2: तो एक island में जाके रहूँ सबसे दूर.
0: अच्छा.
2: I need that.
0: Actually मैं कहती हूँ देखिए.
2: I need that. This is what I need.
0: बच्चों की सबकी high thinking होनी चाहिए.
1: हाँ.
0: और वो work करती है.
1: हाँ हाँ करती है, क्यों नहीं करती?
0: मेरा personal experience.
1: Manifestation तो Islam में भी. You have to many, you have to think कि बहुत बड़ी नेमत है. हाँ लक्ष्य.
0: Universe में सब घूमता है. और इनको सारा को जो है कतर ही पसंद था, कतर में ही रहना था, वो नहीं अच्छा लगता था. एक या दो बार इंडिया गई है, दो या तीन बार.
1: अच्छा ओके.
0: ये लोग नहीं, तो इनको ना अल्लाह ने ऐसा असबाब बनाया कि अल्हम्दुलिल्लाह यहीं यूनिवर्सिटी में इनको.
1: तो सोशली ओके था, ये बिल्कुल अकेले आइलैंड पे रहने से.
2: कभी कभी मुझे ज्यादा लोग से ज्यादा
0: यहाँ है ना, बनाना आइलैंड चली जाएंगी सिंपल.
1: एंटी सोशल इंडक्टेड जो
2: कभी कभी
0: आइलैंड जा सकती है, आइलैंड भी है.
1: ये आइडिया मत लेना. पर कमिंग बैक टू दिस, एक बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं आई नो के हमारे देसी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट देन अगेन स्लीप ओवर्स आर देयर यू नो इन दिस प्रोग्रेसिव कम्युनिटी, इट इज देयर. आई मीन इट्स नॉट अ बैड थिंग टू हैव इट, बट कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा ना उसे दूर रहने पसंद करते हैं. व्हाट इज योर टेक ऑन इट? कभी तुमने पिच किया इस बारे में?
2: This sleepovers, night outs, ये सब, yeah. I really love them. मुझे बहुत मजा आता है in sleepovers with my friends. But कभी कभी it's just not, I don't feel right. Like मुझे इतना, sometimes I just want to distance myself.
1: Okay.
2: Because I don't want to be engaged इतना ज्यादा with the engaged people in my life. मुझे खुद problem होने लगती है. And I find it very disturbing. Fair, you know, ये हुआ है मेरे साथ बहुत बार.
1: Okay.
2: Like I usually just distance myself.
1: जाने में या फिर बुलाने में किसी को घर पे?
2: बुलाने में तो I have no इतराज. No. बिल्कुल भी इतराज नहीं है मुझे.
1: बुलाया कभी?
2: हाँ, everyone's welcome to my place.
1: Very nice.
2: पार्टी हम मेरे घर पार्टी वार्टी सब करते हैं हम. बट मुझे जाना कभी कभी थोड़ा जहर लगता है, यू नो, किसी और का घर और दूसरे रूल्स वगैरह. और कभी क्या पता किसी की कितनी स्ट्रिक्ट फैमिली है, और यू नेवर नो, यू कांट डू
1: कौन सा रूल ब्रेक कर रही हो.
2: हां वही तो, आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ दैट, बिकॉज उनके पेरेंट्स की नजर में हम बुरे हो गए या कुछ, यू नेवर नो. कभी
0: इनकी फ्रेंड्स माशाल्लाह से मुझे बुलाती हैं.
1: उनसे भी दोस्ती कर ली आपने?
0: हाँ, जब मीट पे बात करती
2: हूँ तो मम्मा को बहुत पसंद करती हैं,
0: बुलाती हैं मुझे.
1: अच्छी बात है. तो उनको भी रोल मिलते हैं?
0: मम्मा को बुलाओ थोड़ा सा.
1: उनको भी रोल मिलते हैं खाने के लिए?
0: जब वो आते हैं तो उनको भी, मैं जब ये जाती थी ट्यूशन तो मैं देती थी पैक करके, मतलब मेरी कोशिश होती है कि मैं, मेरी आदत है खिलाने पिलाने की मेरे हस्बैंड की.
1: मेरा हो गया सेट. अच्छा तो तुम्हारा क्या कहना है अपनी जनरेशन को? डू यू हैव अ मैसेज फॉर देम जो जो तुम्हारे इस फेज से गुजर रहे हैं, लाइक यूनिवर्सिटी? थोड़ा एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है ना व्हेन यू कम आउट एंड यू गो टू यूनिवर्सिटी. बहुत बड़ा चेंज है, राइट? उसमें क्या पॉकेट मनी का भी सीन है तुम्हारा? कैसे सीन चल रहा है पहले तो ये बताओ.
2: नहीं नहीं, पॉकेट मनी ऐसी कोई वो नहीं है जो मुझे जरूरत होती है, जस्ट आस्क हिम.
1: ऐसे कोई हफ्ता महीने का
2: नहीं,
1: व्हिच इज इन अ वे गुड. अच्छा आप बताओ कि तुम्हारा क्या क्या मैसेज है, व्हाट यू सी अराउंड एंड तुम्हें क्या लगता है क्या जरूरत है चेंज?
2: आई थिंक यूनिवर्सिटी में जाने के लिए यू हैव टू बी वेरी सोशल. सोशल होना बहुत जरूरी है. जो भी इंट्रोवर्ट्स हैं दिमाग में लेके बैठे हैं कि नहीं हम तो वापस अपनी क्लास जाएंगे, वापस आ जाएंगे, उनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हर चीज में दोस्त चाहिए.
1: आप तो चाहिए,
2: हर क्लास में दोस्त चाहिए. कभी तुम कुछ स्किप कर दो या कुछ, वही तुम्हारी हेल्प करेंगे. जो छोटे मोटे क्विज होते हैं उसमें भी तुम्हारी दोस्त हेल्प.
1: नेटवर्किंग बेसिकली आजकल सीखनी बहुत जरूरी है.
2: एंड कनेक्शंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू नो फ्यूचर में कितना काम आता है. यू नेवर नो किसका रेस्टोरेंट है, हमें डिस्काउंट मिल जाए.
0: डिस्काउंट बहुत ढूंढते हैं ये लोग, जहाँ भी जाते डिस्काउंट ढूंढते हैं.
1: कुछ गलत नहीं, मैं तो बिल्कुल इसके
0: स्टूडेंट. मैंने कहा देखिए स्टूडेंट टाइम में स्टूडेंट लाइफ होनी चाहिए. आपके पास है 100 रियाल, जाके चुपचाप शॉप पे स्पेंड करिए. नहीं, मैं कहती जाती हूँ, पहले ढूंढो सारे ऑफर. हम एक साइड में गाड़ी पार्क करते हैं, कहते हैं ऑफर ढूंढो, फिर ऑफर ढूंढते हैं.
1: कभी आपने इनके वो सेट किया है कि महीने में इतना इतना खर्चा, हाथ खर्चा?
0: नहीं, ये खुद ही माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, और ये ज्यादातर घर का

0: प्रेफर करती हैं, इन्होंने पहले ट्राई किया बाहर, फिर जब इन्होंने देखा कि वही चीज जो अम्मा बना रही है बाहर महंगी है।
1: नहीं, मुझसे यूनिवर्सिटी में नहीं खाया जाता, वहाँ के कैफे का बहुत गंदा खाना था। आई डोंट वांट नेम द यूनिवर्सिटी, बहुत लाइक फूड पॉइजनिंग वगैरह और बहुत ओवरली एक्सपेंसिव था।
2: अम्मा इतना चटोरा खाना बना रही है तो फिर क्या?
1: जी वही, मुझे तो, और सारी मेरी फ्रेंड्स कहती यार आज तुम क्या लाई हो, दो दो हमें भी दो।
0: मैं इनको वैसे ही देती हूँ, जैसे ना जैसे ब्रोकलीज हो गई, कैरेट्स हो गई, स्टीम करके सॉटे करके जो रेस्टोरेंट में
2: फैंसी भी दिखे और
0: फैंसी भी दिखे, जी रोल्स हो गए ये सब, तो वो फिर अच्छा है ना, वो खुद ही इनकी चॉइस है, खुद ही नहीं खाती।
2: अच्छा,
0: वो कहती मैं ये मनी सेव करूंगी तो मैं कुछ और बाय कर लूंगी।
2: और आप देखती होंगी आपकी बहुत सारी दोस्तों उनके भी बच्चे हैं, उनको देख के ना कई बार होता है ना कि यू लर्न समथिंग, आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है मेरे अराउंड, मतलब मैं भी माँ हूँ और मैं इस चीज को समझती हूँ, बट व्हाई आर दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो क्या आपका क्या मैसेज है आपके उस फेज में जितनी भी हैं औरतें, जो माँ हैं, उनको क्या मैसेज है?
0: मतलब मेरा मैसेज यही है कि अब जैसे मेरी फैमिली है तो मैं अपने ही हिसाब से उनके नेचर के हिसाब से एडजस्ट करती हूँ,
2: राइट?
0: तो मैं कंपैरिजन नहीं करती,
2: नहीं कंपैरिजन नहीं, मगर फिर भी
0: मतलब मैं, लेकिन मुझे डिसिप्लिन बहुत पसंद है, जैसे डिसिप्लिन हो गया और टाइम टेबल, जैसे बच्चों का, जो बच्चे माशाल्लाह से अच्छा कर रहे हैं, उनकी माया उनके साथ सपोर्ट और हेल्प कर रही है, मुझे इतनी ही खुशी होती है अल्लाह गवाह है जितने मुझे अपने बच्चे की खुशी है। मैं हर बच्चे को सेलिब्रेट करती हूँ, मेरा दिल चाहता है कि मैं हर बच्चे को अलग अलग सेलिब्रेट, इवन मुस्लिम नॉन मुस्लिम कोई भी।
2: कमी क्या लगती है आपको आजकल, जैसे आप देखती होंगे आप बहुत सारे लोग जो है अभी पेरेंटिंग मामले, उनको अभी भी सीखने की जरूरत है, कुछ ड्रॉबैक्स भी है ना? क्या लगता है जो आपको लगता है कि आपकी फेज में जितने भी लोग हैं उनको ये समझने की जरूरत है, कुछ ऐसा है?
0: बस अंडरस्टैंडिंग अगर है फैमिली में,
2: कॉन्वर्सेशन बच्चों के साथ है,
0: कॉन्वर्सेशन भी जरूरी है बच्चों के साथ। और बच्चे ना, मुझे ये लगता है कि फ्रेंडली, मतलब फ्रेंडली लोग कहेंगे कि फिर रेस्पेक्ट नहीं करते, ये चीज ज्यादा
2: ये ज्यादा आती है,
0: तो आपका इतना ऑरा होना चाहिए कि इतनी हिम्मत नहीं हो। मेरा, मैं फ्रेंड हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन मैंने ये कहा है कि बच्चे छोटे वाले एक डायलॉग बोलते हैं हमारे यहाँ कि बदतमीजी नहीं करना बेटा, शरारत शरारत कर सकते हो, बदतमीजी नहीं। वो मुझे नहीं बर्दाश्त, ये पांचों बच्चों को मालूम।
2: आंखों का डर चलता है आज भी?
0: आंखों का इतना नहीं चलता फ्रेंकली।
2: ओके,
0: हस्बैंड का बहुत ऑरा हाई है माशाल्लाह,
2: माशाल्लाह,
0: वो तो बस है, लेकिन वो मारते भी नहीं कुछ नहीं, लेकिन है मुझसे तो कम। हाँ, पर्सनैलिटी मुझसे थोड़ा सा, बच्चे थोड़ा सा, लेकिन ये है कि बदतमीजी नहीं कर सकते, वो मुझे नहीं बर्दाश्त बिल्कुल भी।
2: नहीं, ये सही है। इशारों का चलता कुछ जोर के?
0: मेरा इशारा नहीं चलता
1: फ्रैंक, बिल्कुल फ्रैंकली।
2: ये भी सही है,
0: मेरा इतना नहीं चलता इशारा।
2: हाँ, इसमें क्या करता
0: है, हस्बैंड से कभी कभी हेल्प मांगती हूँ मैं। लेकिन ये है कि मैंने बस ये स्ट्रिक्ट रूल बनाया हुआ, बड़ी बेटी हो या कोई भी, जो भी बैक आंसर देगा उसकी फिर हफ्ते भर की चीजें खराब होने लगती हैं।
2: तो सारा सबसे बड़ी है?
0: जी, ये बड़ी है।
2: तो तुमने हुकुम चलाया अपने भाई बहनों का?
1: जी, एक्चुअली मैं एक बार में बिल्कुल थर्ड पेरेंट वाली वाइब आ गई थी, कैसे मेरे तीन छोटे सिबलिंग्स थे।
2: ओके।
1: और उनमें माशाल्लाह माशाल्लाह एक एक साल का गैप है उनमें, तो उस पीरियड ऑफ टाइम में मेरे ऊपर भी लाइक बहुत ज्यादा लोड आ गया था।
2: ओके।
0: लेकिन उससे ये बहुत ज्यादा सीखा है सारा तुमने।
2: वो तो है, वो तो ऑब्वियसली
0: माशाल्लाह ऑर्गेनाइज बहुत है, इतनी अच्छी ऑर्गेनाइज करती है चीजों को।
2: जैसे एक और चीज देखी जा रही है आजकल, मेरे एक दोस्त है यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि जब उनका उनकी एक बेटा है, वो अभी 8-10 साल का हो गया, उसके बाद फिर उनका एक और बेटा हुआ, अभी क्या है कि उसको थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है कि अरे मेरी जगह रिलीज ने,
1: जी जी,
2: अब तो मेरी टेंशन सारी की सारी चली गई, इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है?
0: मैं, मेरे साथ ही एक्सपीरियंस है,
2: ऐसा हुआ है,
0: मैं आपको अपने फोटो दिखा सकती हूँ जिस तरह मैंने मैनेज किया आप फोटो से अंदाज और वीडियो से लगा सकते हैं।
2: अच्छा,
0: जो कि मेरी बेटी बनाया करती थी, क्योंकि तीन मेरे छोटे थे।
2: अच्छा,
0: तो उस टाइम पे मैं इस तरह हैंडल करती थी,
2: अटेंशन डिवाइडेड है।
0: जी जी, लेकिन मेरा अल्लाह का शुक्र, पता नहीं, मैं तो कहती हूँ, अच्छा, अक्सर मैं सुनने को मुझे मिला है इंडिया में भी, यहाँ भी, कि पेरेंट्स जो है थोड़ा सा वो हो जाते, लेकिन मैं, हर बच्चे की अलग जिम्मेदारी और हर किसी का अलग टाइम है, कभी हुई होगी कमी, लेकिन पता
2: है।
1: आई थिंक मम्मा ने हमेशा से बहुत अच्छे से मैनेज करा है, शी हैज मैनेज्ड एवरीथिंग वेरी वेल, हर सबको लाइक यू नो सेपरेट अटेंशन दिया हुआ है, व्हिच हैज हेल्प्ड अस ओवर द इयर्स ऑब्वियसली।
2: माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेन पार्ट ही रहता ना कि
0: बच्चे भी बता सकते हैं, क्योंकि हम तो कहेंगे नहीं, हम तो बहुत अच्छे, हम तो बहुत अच्छे, ऐसा तो बहुत अच्छा कोई भी
2: नहीं, वो देखिए
0: कमी है,
2: वो गलती भी नहीं है, वो एक्चुअली क्या है, वो होना ही है, लाजिम है।
0: सारी जिम्मेदारी यहाँ देखिए, हर मैं सारी जो भी यहाँ पे बाहर लेडीज रहती हैं बच्चों के साथ, तो कोई यहाँ तो है नहीं, जैसे किसी ने मुझे कहा आपके बच्चे सलाम नहीं कर रहे जब छोटे थे, तो मैंने कहा दादी या फुप्पी तो है नहीं कि एक साइड में बिठा के सलाम सिखाती रहती है, मैंने कहा जब ये बड़े होंगे तो बहुत अच्छा सलाम करेंगे, डोंट वरी। तो वो सिखाया हस्बैंड ने भी, तो लेकिन अब करते हैं थोड़ा सा, जैसे समझ आ गया, पता है क्या,

0: नहीं बस
1: हाँ वो तो चलता हाँ, है
0: अब बड़े मैच्योरिटी के बाद तो माशाल्लाह बहुत
2: मैं पता नहीं किस चीज की जिद करूँ आई थिंक कोई वो नहीं है पर आई थिंक कतर में कोई इवेंट चल रहा था कुछ तो मेरे दिल चाहते जाने की तो वहाँ पे थोड़ा सा जिद कर
1: वो बनता है बट लास्टली मैं तुम दोनों को कहना चाहूंगा वैसे क्या
2: वैसे कोई कुछ नहीं था
1: वैसे ठीक है वैसे ये तो
0: इनको इवेंट वगैरह में जाना होता है ना तो बेचैन हो जाती है इनको अच्छे लगते हैं इवेंट
2: जैसे ट्रेविस स्कॉट आया था यहाँ मेरा तो बहुत दिल था जाने का
1: नहीं नहीं ठीक है अगली बार बहुत सारे इवेंट्स आएंगे इंशाल्लाह जाओगे तुम पर कैसा रहा एक्सपीरियंस आप दोनों का यहाँ पे आने का कोई भी बता
0: बहुत ही अच्छा रहा बहुत रिलैक्स रहा और बड़ा अच्छा लगा दिल की बात करके और सही मतलब माशाल्लाह सही है कि पता नहीं ऑडियंस को हमारी बात किस तरह होगी लेकिन जो भी था वो जेन्युइन था और अच्छा लगा आपसे मिलके भी अच्छा लगा बहुत ही कंफर्टेबल किया आपने सबसे पहले
1: मैंने तो बोला था आपसे
0: तो माइंड रिलैक्स हो गया पहले ही
1: थैंक यू सो मच
0: घबराए नहीं हम लोग बहुत शुक्रिया आपका हमें बुलाने के लिए
1: बड़ी मेहरबानी
0: और बस ये है कि
1: चलता रहे
0: पेरेंट्स को सबको बस मैं भी यही अपनी तरफ से कहना चाहूंगी कि ज्यादातर वही है कि आजकल की जो सोसाइटी है ना क्योंकि सोसाइटी में बच्चे उस लेवल पर ना पहुंचे वो किसी और से मशवरा नहीं लेने लगे
1: वेरी नाइस तो यही लाइन जो है वो बॉटम लाइन है हमारे
0: मेरे बच्चे अल्लाह का शुक्र है हर चीज में मुझे बताते हैं मशवरा लेते हैं बस ये चीज नहीं आनी चाहिए कि बच्चे अपने दिल की बात किसी और से कर रहा है वो अब वो आप किस तरह मैनेज करेंगे आपकी फैमिली का होता है ना हर किसी का नेचर हर किसी की बस वो बच्चा किसी और से ना अपने दिल की बात शेयर करे जो कि उसे कोई और गलत राह दिखा दे यहाँ तक हमें
1: एडवाइस लेने के लिए आप बने रहे बस
0: वही चीज
1: एक्सपीरियंस
2: बस आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर एंड मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ क्योंकि मेरे थोड़े स्केड्यूल से हटके थोड़ा सा मुझे टाइम मिला अपने इस मेरी कोई अभी आउटिंग भी नहीं हो रही थी तो और मुझे बहुत अच्छा लगा इस टॉपिक पे बात करने के लिए क्योंकि कोई इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा लेकिन जनरेशनल गैप या डिफरेंसेस वगैरह बहुत टाइम से इस पे किसी ने बात नहीं करी तो आई थिंक ये अच्छा था मुझे अच्छा लगा यहाँ पर
0: अंडरस्टैंड तो देखिए हमें करना पड़ेगा जनरेशन गैप को हम पिछली चीजें ला नहीं सकते
1: अरे कैसे ला देंगे हाँ वो सुनेंगे भी नहीं
0: और वो हम भी चाह रहे हैं नई चीजों में आना आसानी हो गई ना हमारे लिए एक सेकंड में सब काम होते हैं
1: सीखना पड़ेगा साथ साथ कदम से कदम मिला
0: अल्लाह का शुक्र है मैं तो चलती हूँ बराबर बच्चों से पूछो आप तो मतलब अल्लाह का शुक्र है एंजॉय करती हूँ
1: नहीं पर बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का यहाँ पे आने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा दोनों से बात करके सच में वक्त का पता नहीं लगा हमने एक्चुअली मैं 30 मिनट्स बात करी विदाउट एनी ओमिट और एडिट रिक्वायर्ड जज़ाकअल्लाह और बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त देने के लिए अपना ख्याल रखिया बेहद
3: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi

0: M107 पर हर गाना हिट,
1: हर गाना हिट,
0: हर दूसरा गाना सुपर हिट।
2: माशाल्लाह, माशाल्लाह, start the beat.

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी।
1: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
2: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
1: गेम ऑन,
2: वॉल्यूम अप,
1: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
2: विद अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन।
1: सुनिए समर स्पोर्ट्स ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
3: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब। सुनिए हदीब टू हैबिट RJ महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीब सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीब, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीब टू हैबिट, हदीब टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
4: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं RJ सरवर मिर्जा और RJ सफा के साथ सन एंड साउंड। सन एंड साउंड संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर।

0: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट आरजे महविश के साथ, ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
1: Assalamualaikum listeners, आप सुन रहे हैं FM 107 Qatar, मैं हूं आपके साथ आपकी RJ महावश, और शो है ये हदीस टू हैबिट। हम कहेंगे आपको एक दफा फिर से वेलकम, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमें एक और हफ्ता मिला, एक और मौका मिला कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें, अपने अखलाक को संवार सकें और अपने दिलों को साफ कर सकें। आज के इस शो में भी हम एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करने वाले हैं, और ये टॉपिक सिर्फ हमारी एक आदत नहीं बल्कि हमारे ईमान, हमारे दिल और हमारे ताल्लुकात से जुड़ा हुआ है। आज हम बात करेंगे गीबत से बचने के बारे में। गीबत, जिसे हम बैकबाइटिंग भी कहते हैं, एक ऐसी बीमारी है जो अक्सर हमें महसूस भी नहीं होती, मगर ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे दिलों को खराब करती जाती है। हम अक्सर जिसे कोई आम सी बात समझ लेते हैं, जैसे किसी के बारे में बात करना, किसी की कोई कमी बयान करना, किसी की गलती दूसरों को बताना, लेकिन इस्लाम ने हमें बहुत वाज़े अंदाज में समझाया है कि किसी की पीठ पीछे उसकी ऐसी बात करना जो उसे पसंद ना हो, वो गीबत है। और ये बात सिर्फ एक अखलाकी मसला नहीं बल्कि एक रूहानी मसला भी है, क्योंकि जब जबान खराब होती है तो दिल भी आहिस्ता आहिस्ता सख्त हो जाता है। आज के दौर में अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो गीबत बहुत आम हो चुकी है। घर हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर सोशल मीडिया, हर जगह लोग दूसरों के बारे में बात करते नजर आते हैं। कभी हम दोस्तों के साथ बैठकर किसी की आदतों पर बात करते हैं, कभी हम किसी रिश्तेदार की कमी बयान करते हैं, और कभी हम ऑनलाइन किसी के बारे में तबसरे कर रहे होते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर वो बात जो हम दूसरों के बारे में उनकी गैर मौजूदगी में करते हैं, वो हमारे नामा अमाल में लिख दिया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबान की हिफाजत पर बहुत जोर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक इंसान को मुसलमान होने के लिए अपनी जबान और हाथ से दूसरों को महफूज रखना चाहिए, यानी एक अच्छा और सच्चा मुसलमान वो है जो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए, ना अमल से और ना जबान से। गीबत सिर्फ दूसरों को तकलीफ नहीं देती बल्कि ये हमारे अपने दिल को भी कमजोर करती है। जब हम बार बार दूसरों की गलतियां बयान करते हैं तो हम खुद भी मनफी सोच के आदी हो जाते हैं, फिर हमें हर शख्स में कमी नजर आने लगती है और हम अच्छाई को देखना भूल जाते हैं। यहां एक बहुत अहम बात समझने की है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि मैं तो सच ही कह रहा हूं, सच्ची बात तो है, इसलिए गीबत नहीं। लेकिन इस्लाम ने हमें यह सिखाया है कि अगर बात सच भी हो, लेकिन अगर वो बात किसी के बारे में ऐसी हो जो उसे पसंद ना हो और वो गैर जरूरी तौर पर की जाए, तो वो भी गीबत में आ जाती है। और अगर वो बात झूठी हो तो वो सिर्फ गीबत नहीं बल्कि बहुत

कर करें। मसलन आपकी कोई कमजोरी, कोई गलती, कोई आदत या आपकी जिंदगी का कोई मामला, अगर आप वहां मौजूद होते तो शायद आपको बुरा लगता। इस्लाम हमें सिखाता है कि जिस चीज का सुनना हमें अपने बारे में पसंद नहीं, वो दूसरों के बारे में कहना भी पसंद नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि कुरान करीम ने गीबत को बहुत सख्त अंदाज में बयान किया है। अल्लाह ताला सूरह हुजरात में फरमाते हैं, और तुम में से कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा, तुम तो उसे नापसंद करोगे। ये मिसाल सुनकर इंसान का दिल कांप जाता है। सोचने की बात है, अल्लाह ताला ने गीबत के लिए इतनी सख्त मिसाल क्यों दी? इसलिए कि गीबत सिर्फ अल्फाज नहीं होते, ये किसी की इज्जत को नुकसान पहुंचाता है। और इस्लाम में इंसान की इज्जत, जान और माल सब काबिले एहतराम है। एक और अहम बात यह है कि गीबत सिर्फ जबान से नहीं होती। आज के दौर में गीबत के तरीके बदल गए हैं। कभी हम किसी की नकल उतारते हैं, कभी तंजिया अंदाज में किसी का जिक्र करते हैं, कभी किसी के बारे में मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, कभी किसी पोस्ट पर नेगेटिव तबसरा करते हैं, और कभी सिर्फ एक हंसी या इशारे के जरिए किसी का मजाक उड़ा देते हैं। ये सब चीजें भी गीबत के दायरे में आ सकती हैं। अफसोस की बात यह है कि बाज़ औकात गीबत नेकी के पर्दे में भी आ जाती है। मसलन कोई कहता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें खबरदार कर रहा था, या मैं तो सिर्फ हकीकत बता रहा हूं, या मैं उसकी भलाई के लिए बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मकसद इसला नहीं बल्कि दूसरों के सामने किसी की बुराई बयान करना हो, तो इंसान को बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। साहबा कराम अपनी जबान के मामले में बहुत हसास थे। वो जानते थे कि जबान से निकलने वाला एक लफ्ज भी इंसान को जन्नत तक भी ले जा सकता है और जहन्नम तक भी। इसलिए वो बोलने से पहले सोचते थे। आज हमारे लिए भी यही सबक है। हम अक्सर बगैर सोचे समझे बोल देते हैं, गुस्से में बोल देते हैं, मजाक में बोल देते हैं, आदतन बोल देते हैं, लेकिन बाद में एहसास होता है कि शायद हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। एक कॉल है, जो शख्स अपनी जबान की हिफाजत करता है वो अपने दीन की हिफाजत करता है। ये बात बहुत गहरी है, क्योंकि ज्यादातर झगड़े, नाराजगियां, गलत फहमियां और दिल आजारी जबान से ही पैदा होती हैं। अगर इंसान बोलने से पहले चंद लम्हे सोच ले तो बहुत से मसाइल पैदा ही ना हो। जरा अपने रोजमर्रा मामूलात पर गौर करें। घर में बैठकर हम कितनी बार किसी रिश्तेदार का जिक्र करते हैं, दफ्तर में कितनी बार किसी कोलीग के बारे में बात होती है, गुफ्तगू होती है, दोस्तों की महफिल में कितनी बार किसी गैर मौजूद शख्स पर तबसरा होता है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में कितनी बार लोग दूसरों के बारे में राय देते हैं। अगर हम ईमानदारी से जायजा लें तो हमें एहसास होगा कि गीबत हमारी जिंदगी में हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा मौजूद है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस्लाम सिर्फ मना नहीं करता बल्कि इस्लाह का रास्ता भी दिखाता है। अगर इंसान अपनी गलती पहचान ले, अल्लाह से माफी मांग ले और आइंदा मोहतात रहने की कोशिश करे, तो अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है। हर नया दिन हमें बेहतर बनने का मौका देता है। आज जब हम इस हदीस को सुनते हैं तो हमें सिर्फ दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि वो देखो कितनी लोगों के बारे में बातें करता है, उसने कितनी लोगों की हिब्बत की मुझसे, ये वो। हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, क्या मेरी गुफ्तगु लोगों के लिए खैर का जरिया है? क्या मेरी जबान दूसरों को सुकून देती है
या तकलीफ

0: क्या मेरी बातों से रिश्ते बनते हैं या टूटते हैं? ये सवालात हमारी खुद एहतसाबी में हमें मदद देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का हुसन यही है कि वो इंसान के दिल को बदलती हैं। जब दिल बदलता है तो आदतें बदलती हैं, और जब आदतें बदलती हैं तो जिंदगी बदल जाती है। हमारा मकसद भी यही है कि हदीस को सिर्फ सुने नहीं बल्कि इसे अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाए। हमने हदीस मुबारका की रोशनी में समझा कि गीबत क्या होती है। अब आगे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमारी जो मसरूफ जिंदगी है आजकल की, सोशल मीडिया, रोजमर्रा माहौल में गीबत किन किन शक्लों में हमारे सामने होती है और हम इनसे किस तरह से बच सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं हदीथ टू हैबिट, हदीथ टू हैबिट आरजे महविश के साथ, ओनली ऑन एफएम 107।
0: तो लिसनर्स, हदीथ टू हैबिट में हम गीबत पे बात कर रहे हैं, और अब सवाल ये है कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में गीबत कहाँ और कैसे दाखिल होती है, क्योंकि अक्सर लोग जानबूझकर गीबत नहीं करते बल्कि ये आदत आहिस्ता आहिस्ता मामूल का हिस्सा बन जाती है। अगर हम अपनी जिंदगी पर नजर डालें तो हमें एहसास होगा कि गीबत सिर्फ बड़ी महफिलों में नहीं होती, ये अक्सर छोटी और आम गुफ्तगु से शुरू होती है। मसलन दो दोस्त बैठे हैं और बातों बातों में किसी तीसरे शख्स का जिक्र शुरू हो जाता है। पहले एक छोटी सी बात होती है, फिर उसकी आदतों का जिक्र, फिर उसकी कोई गलती याद आ गई, फिर देखते ही देखते पूरी गुफ्तगु उस शख्स के गिर्द घूमने लगती है। कई बार महफिल खत्म होने के बाद हमें एहसास भी नहीं होता कि हमने एक लंबा वक्त किसी गैर मौजूद शख्स के बारे में बात करते हुए गुजार दी। घरों में भी ये मसला आम है, कभी रिश्तेदारों के बारे में गुफ्तगु होती है, कभी पड़ोसियों के बारे में, कभी किसी मतलब जो है दोस्त के बारे में बात हो रही होती है, कभी किसी बहू दामाद सास या नंद के बारे में, कभी किसी खानदान की कमजोरियां मौजू बन जाती हैं। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि चूंकि वो अपने करीबी लोगों के बारे में बात करें इसलिए ये तो मामूल की गुफ्तगू है, लेकिन अगर इस गुफ्तगू में किसी की बुराई, कमजोरी या ऐब बयान किया जा रहा है तो हमें रुककर सोचने की जरूरत है। दफातर और काम की जगहों पर भी गीबत बहुत आम है। किसी साथी की शिकायत करना, उसकी गलतियों को बार बार बयान करना, उसके रवैये पर तबसरा करना या उसकी ज़ाती ज़िंदगी पर गुफ्तगु करना एक आम बात बन चुकी है। बाज़ औक़ात लोग अपने काम से ज़्यादा दूसरों की बातों में मसरूफ रहते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि महफिल में नेगेटिव सोच बढ़ जाती है और एतमाद खत्म होने लगता है, टीम वर्क भी मुतासिर होता है। स्टूडेंट्स और यूथ के साथ भी ये मसला मौजूद है। स्कूल या यूनिवर्सिटी में अक्सर स्टूडेंट्स के लिबास, अंदाज, उनके नंबर, उनकी पर्सनालिटी के बारे में तबसरे किए जाते हैं। कभी किसी का मजाक बनाया जाता है, कभी उसकी खामियों को मौजू बना लिया जाता है। शुरू में ये सब मजाक लगता है, लेकिन जिस शख्स के बारे में बात हो रही होती है उसके लिए ये तकलीफ दे हो सकता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि किसी का दिल दुखाना मामूली बात नहीं है। और फिर आजकल के जमाने की बात करें तो आता है सोशल मीडिया, और शायद आज के दौर में गीबत की सबसे बड़ी जगह यही है। जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे चंद सेकंड में लोग अपनी राय दुनिया भर के सामने रख देते हैं। कभी किसी की तस्वीर पर तबसरा, कभी किसी की जिंदगी पर तनकीद, कभी किसी की गलती को शेयर करना, कभी किसी की नाकामी का मजाक उड़ाना, ये सब काम ऐसे हैं जिन्हें हम मामूली समझ लेते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के नजदीक हर लफ्ज़

0: और आज हमने एक बहुत ही अहम मसले के बारे में बात की है जिसके बारे में हम यकीनी तौर पे इतना सोचते नहीं हैं कि ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन यकीन माने कि अगर हमने इस अपनी आदत पे कंट्रोल कर लिया तो हम दुनिया की बहुत सी बुराइयों से महफूज रह सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक एक और हदीस टू हैबिट के साथ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड बाय।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

मैंने कहा मैं जवान आदमी हूं निभा नहीं सकूंगा इसलिए मैंने बीवी से कहा कि तुम मैके चली जाओ और कोई फैसला होने तक वहीं रहो इस दौरान मैं मस्जिद नबवी में जाता रहा नमाज में शरीक होता था और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठता था हाजिर होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम अर्ज करता और मुंह दूसरी तरफ करके कन आंखियों से देखता कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सलाम का जवाब दिया है मगर उधर मुकम्मल खामोशी रहती थी इस इम्तिहान और आजमाइश में रोजो शब गुजर रहे थे एक रोज मैं अपने चचाजाद भाई और गहरे दोस्त अबू कतादा रजी अल्लाह अन्हु के पास उसके घर चला गया मैंने सलाम किया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें खुदा की कसम देकर पूछता हूँ कि क्या तुम इस बात को नहीं जानते कि मैं अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कल्बी मोहब्बत रखता हूँ उसने कोई जवाब नहीं दिया मैंने दोबारा से हवारा कसम दिलाकर पूछा तो उसने सिर्फ इतना ही कहा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं इस पर मैं इंतहाई मायूसी के आलम में रोते हुए उस घर से निकल आया हमारे साथ मदीना मुनव्वरा के लोगों के सोशल बॉयकॉट पर 50 रातें गुजर चुकी थीं और हमारी परेशानी में मुसलसल इजाफा हो रहा था कि एक रोज मैं फजर की नमाज पढ़कर फारिग हुआ तो मुझे घर के सामने के पहाड़ सुलह से आवाज सुनाई दी कि एक काब खुश हो जाओ मैं समझ गया कि हमारी माफी का ऐलान आ गया है हुआ यूं कि रात को वही के जरिए अल्लाह ताला ने हमारी माफी का फैसला सूरह तौबा की मस्कूरा बाला आयत करीमा के जरिए सादर फरमा दिया था और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह नमाज फजर के बाद जब मस्जिद नबवी में उसका ऐलान फरमाया तो दो हजरात मुझे उसकी खबर देने के लिए दौड़ पड़े और उनमें मुझे ये खबर पहले देने में मुकाबला हो गया एक घोड़े पर सवार होकर पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए मेरी तरफ तेजी से आ रहा था जबकि दूसरा पैदल ही दौड़ पड़ा और दरमियानी रास्तों से होते हुए मेरे घर के बिल्कुल करीब जबल सिला तक पहुंच गया ये सहाबी हमजा असलम रदी अल्लाह अन्हु थे उन्होंने जब देखा कि घोड़ सवार उनसे पहले काब रदी अल्लाह अन्हु के घर पहुंच जाएगा तो उन्होंने उसी पहाड़ से मेरे घर की तरफ रुख करके मेरे लिए खुशखबरी की आवाज लगा दी जो मुझे फौरन पहुंच गई और वो घड़ सवार पर सब कत ले गए मैं दीवाना वार घर से निकला अपने कपड़े खुशखबरी देने वाले को इनाम के तौर पर दिए और खुद पड़ोसी से मांग कर कपड़े पहने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा तो आप सहाबा इकराम के साथ इंतहाई खुशी के आलम में तशरीफ फरमा थे तलहा रदी अल्लाह अन्हु ने आगे बढ़कर मेरा इस्तकबाल किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस आजमाइश में सरखरो होने पर मुबारकबाद दी मैंने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह मुझे सच बोलने की वजह से यह एजाज मिला है इसलिए वादा करता हूँ कि जिंदगी भर कभी झूठ नहीं बोलूंगा और आज मैं ऐलान करता हूँ कि इस खुशी में मेरा सारा माल और जायदाद अल्लाह की राह में सदका है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारा नहीं अपने लिए भी कुछ रोक लो मैंने अर्ज किया ठीक है खैबर में मिलने वाला बाग मैं अपने लिए रोक लेता हूँ उसके सिवा बाकी मेरा सारा माल अल्लाह ताला की राह में सदका है सामिन इकराम यही हकीकत है कि दुरुस्त कोई उपाय से नजात है हदीस शरीफ में आता है सच्ची बात नेकी है और जन्नत की जानिब रहनुमा है जबकि झूठ गुनाह है और गुनाह जहन्नम की जानिब मुफ्ती है प्रोग्राम कससुल कुरान का आज का यह हल्का अपने अख्तिताम को पहुँचा है साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफ उज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाज़त मा सलामा

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, दी अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एस प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
2: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se desi.

0: दोस्तों, लिफ्ट में फंस जाने की सूरत हाल में इन हिदायत पर अमल करें। सबसे पहले तो पुरसुकून रहिए और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए। गहरी सांस लें और अपने आप को याद दिलाएं कि मदद रास्ते में है, क्योंकि परेशान होने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। इमरजेंसी बटन या इंटरकॉम का यूज करें। हर लिफ्ट में एक सिस्टम होता है जो डायरेक्टली सिक्योरिटी या बिल्डिंग मैनेजमेंट से कनेक्ट करता है। बटन को प्रेस करें और जवाब का इंतजार करें। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। दरवाजों को फोर्स ना करें। ऑटोमेटिक डोर्स को हाथों से खोलना खतरनाक हो सकता है। ओपन या क्लोज बटन को 5 सेकंड प्रेस करके चेक करें, लेकिन दरवाजों को फोर्स ना करें। हरकत कम करें और मोबाइल का सिग्नल चेक करते रहें। ज्यादा मूवमेंट से हवा और एनर्जी पर असर पड़ता है। पुरसुकून होकर बैठें या खड़े रहें। अगर मोबाइल सिग्नल है तो 999 पर कॉल करें और अपनी लोकेशन बताएं। रेस्क्यू टीम का सब्र से इंतजार करें। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करें। घबराहट या परेशानी से बचने की कोशिश करें और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी नंबर 999 पर कॉल करें। FM 107 आपके सेफ और खुशहाल दिन की दुआ करता है।
1: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए।
2: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो।
3: द रिक्वेस्ट शो
2: हर शाम 4 से 5 फजील के साथ संडे से थर्सडे ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
4: आप सुन रहे हैं FM 107
5: दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: कानून हमें तहफ्फुज देता है और वजारत दाखला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं। MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और आवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ।
2: पुलिस और आवाम एवरी मंडे 8 PM लाइव ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। दिल से देसी।
3: दोस्तों, रात को बिना लाइट के गाड़ी चलाना कानून की खिलाफ वर्जी है। ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 70 के मुताबिक रात के वक्त अगर आप गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन किए बगैर ड्राइव करते हैं तो ये ना सिर्फ एक ट्रैफिक वायोलेशन है बल्कि किसी की जान के लिए भी खतरा बन सकता है। रात के अंधेरे में दूसरी गाड़ियों, पेडेस्ट्रियंस और ऑब्स्टिकल्स को देखना मुश्किल होता है। हेडलाइट्स ऑन करने से ना सिर्फ आपको रास्ता बेहतर दिखाई देता है बल्कि दूसरे लोग भी आपकी गाड़ी को देख सकते हैं। हमेशा याद रखें, रात को गाड़ी चलाने से पहले लाइट्स चेक करें। बिला जरूरत हाई बीम का इस्तेमाल करना भी गलत है। हाई बीम सिर्फ उन जगहों पर इस्तेमाल करें जहां रोशनी कम हो और सामने से कोई आ ना रहा हो। अपनी और दूसरों की जिंदगी की हिफाजत का ख्याल करें और ड्राइविंग में एहतियात बरतें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है। कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।

0: FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

और मामूजाद और खालाजाद बहने जिन्होंने तुम्हारे साथ हिजरत की है, और वो मोमिन औरत जिसने अपने आप को नबी के लिए हेबा किया हो अगर नबी उसे निकाह में लेना चाहे। ये रियायत खालिसतन तुम्हारे लिए है, दूसरे मोमिनों के लिए नहीं है। हमको मालूम है कि आम मोमिनों पर उनकी बीवियों और लौंडियों के बारे में हमने क्या हदूद आयद किए हैं। तुम्हें उन हदूद से हमने इसलिए मुस्तस्ना किया है ताकि तुम्हारे ऊपर कोई तंगी न रहे, और अल्लाह गफूर और रहीम है। तुमको इख्तियार दिया जाता है कि अपनी बीवियों में से जिसको चाहो अपने से अलग रखो, जिसे चाहो अपने साथ रखो, और जिसे चाहो अलग रखने के बाद अपने पास बुला लो। इस मामले में तुम पर कोई मुजायका नहीं है। इस तरह ज्यादा मुतवक्के है कि उनकी आंखें ठंडी रहेंगी और वो रंजीदा ना होंगी, और जो कुछ भी तुम उनको दोगे उस पर वो सब राजी रहेंगी। अल्लाह जानता है जो कुछ तुम लोगों के दिलों में है, और अल्लाह आलीम व हलीम है। इसके बाद तुम्हारे लिए दूसरी औरतें हलाल नहीं हैं, और न इसकी इजाजत है कि उनकी जगह और बीवियां ले आओ, खा उनका हुस्न तुम्हें कितना ही पसंद हो। अलबत्ता लौंडियों की तुम्हें इजाजत है, अल्लाह हर चीज पर निगरान है।